0: नमस्कार फोटोग्राफर
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बड़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं, और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।
1: के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
4: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
1: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
4: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
1: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
4: जिन्ना के अनुयायी हैं,
5: इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
1: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
5: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
1: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
5: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
5: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
1: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
5: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
1: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
6: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
7: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, एसडीएम विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
6: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवाद पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
8: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
9: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
10: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
9: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
11: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
12: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो ये है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
1: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
13: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
1: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
1: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
14: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
1: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
15: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
1: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
16: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
17: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया। कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
16: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
17: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
16: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
18: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उस पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे होगी ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
19: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
16: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
20: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में। और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है, जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था, उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले ली।
16: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
3: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
1: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
0: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे, वो सब मिले।
1: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
21: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
1: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक,
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जिगर दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले ने कहा पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा स्टूडेंट के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा भी महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव की दो टूक। कहा जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार। हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। अमेरिका ईरान के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। सेंटकॉम ने ईरान पर सातवीं रात हमले का दावा किया। वहीं ईरान ने कई शहरों में धमाकों की खबर। इराक में कुर्द कैंप पर ड्रोन अटैक से हालात तनावपूर्ण।

मॉर्निंग आप देख रहे हैं, आज तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से, ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई लगातार सातवें दिन भी जारी रही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एक बार फिर एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ 9 सैनिक नाकाबंदी भी सख्त कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई के शुरुआती 3 दिनों में 4 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया है और इसके साथ ही

0: हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, एक बार फिर ईरान पर अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और जबरदस्त एयर स्ट्राइक की कही जा रही है। सातवें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तो ईरान में अमेरिकी हमलों के बीच कई इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मध्य यज्द प्रांत में 5 धमाके सुने गए हैं, जबकि फार्स और खुजिस्तान प्रांत में भी विस्फोटों की रिपोर्ट है। वहीं ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में 2 तेल टैंकर्स में विस्फोट के बाद आग लग गई। ईरानी मीडिया के अनुसार ये टैंकर माइनफील्ड वाले इलाके से गुजर रहे थे। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बेहद असुरक्षित बताते हुए बंद होने का दावा किया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने कई बड़े दावे किए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने बुशहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जिसकी कीमत करीब 3,40,00,000 बताई गई है। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के एक ठिकाने को निशाना बनाने और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा किया। इसके अलावा इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों और कुर्द अलगाववादी समूहों के खिलाफ भी हमले किए जाने की बात कही गई है। तो MQ-9 ड्रोन को उड़ाने की बात ईरान की तरफ से की गई, जिसकी कीमत 3,40,00,000 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। और यह बताया कि बुशहर में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिराया है, तो अमेरिका ईरान को ताबड़तोड़ बमों से दहला रहा है। तो ईरान का कहना है कि हम भी पलटवार कर रहे हैं, MQ-9 ड्रोन को हमने मार गिराया है। ऐसा ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से दावा है। तो वही ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका की कार्रवाई को एक और स्पष्ट युद्ध अपराध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन अपनी ताकत दिखाने के लिए नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है, आम लोगों की जान ली जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर अमेरिका की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए आम लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। देश की बात करते हैं। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी, उसका ट्रेलर कांग्रेस 2 दिनों से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में

0: बड़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
0: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। देखिए, मौका तो विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का था, लेकिन योगी ने इस मौके का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने के लिए किया। माफिया राज पर हमले किए, वही कांवड़ियों का मुद्दा बनाया, चढ़ावा चोरी का जवाब दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
2: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: और देखिए, योगी सरकार की बात हो और संभल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी भले ही आज संभल जाए, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।
4: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
5: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
4: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी दोनों का प्लान अब सामने आ गया। बीजेपी की कोशिश जहां दलित वोटों को साधने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल का मुद्दा बनाने जा रही है, अब जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर जोर होने वाला है।
6: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
7: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
8: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सबसे आगे थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
7: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
9: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
10: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
7: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
11: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
7: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: उधर पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला किया और जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
7: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
12: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
7: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
13: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
7: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है।
0: मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की, जहां उन्होंने कई रेल और सड़क योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। वहीं नशे और अपराध के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया।
14: और कृपान देके प्रधानमंत्री जी का स्वागत।
15: रेल अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है।
3: तो नशे पर, क्राइम पर, करप्शन पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है।
16: यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घुसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
18: क्या तिल के दानों के प्रयोग से शनि की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं? क्या तिल के दानों के प्रयोग से रोजगार की समस्या हल हो सकती है? कौन से हैं तिल के दानों के अचूक प्रयोग और क्या हैं उनके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
19: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
20: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
22: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
23: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
24: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
25: somebody save me,
24: to timeless favorites,
25: and life is like a song,
24: and new discoveries.
25: You and that's so much more than a history. Wake up!
24: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. You and

यूट्यूब पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव कम होने और शांति का माहौल बनने के बाद हर किसी के मन में सोने की चाल को लेकर दुविधा बढ़ती जा रही है। दरअसल ग्लोबल मार्केट के बदले समीकरणों के बीच इस साल सोने की चाल तय करने वाले फैक्टर्स पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका कम होने से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, जिससे वैश्विक बाजार में सोना दो हफ्ते के रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया है। यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से मिलने वाले संकेतों से पहले निवेशकों का भरोसा सोने पर लगातार मजबूत बना हुआ है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल सोने की कीमतों को अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जैसे फैक्टर्स प्रमुख रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध या संकट के समय सोना सबसे तेजी से भागता है, लेकिन इस साल सोने ने पारंपरिक तौर तरीकों को पीछे छोड़ दिया है और ये शेयर बाजार की तरह एक रिस्क एसेट की तरह बर्ताव कर रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े सेक्टर्स में सोने की डिमांड थोड़ी कमजोर रहने की वजह से शॉर्ट टर्म में इसकी कीमतें एक सीमित दायरे में रह सकती है। हालांकि इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल के आखिरी महीनों में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी दोबारा रफ्तार पकड़ सकती है, जिससे सोना एक बार फिर बड़ी रिकवरी दिखा सकता है। HSBC का मानना है कि साल खत्म होने तक सोने में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। वैश्विक बाजारों में भले ही ऊंची कीमतों की वजह से आम खरीदार थोड़ा रुक कर चल रहे हों, लेकिन बड़े निवेशकों का भरोसा कम नहीं हुआ है। इस समय गोल्ड मार्केट के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और मजबूत होता डॉलर है। जब भी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज बढ़ता है, सोने में निवेश की लागत बढ़ जाती है। वहीं चीन के शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर ग्लोबल प्राइस के मुकाबले करीब $20 का प्रीमियम चल रहा है, जो दिखाता है कि वहां सोने की संस्थागत मांग बेहद मजबूत है। ग्लोबल मार्केट में डॉलराइजेशन यानी डॉलर के दबदबे को कम करने की मुहिम लंबी अवधि में सोने की कीमतों को बड़ा सपोर्ट देने का काम कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब शेयर बाजार में उथल पुथल की वजह से कैश की जरूरत होती है, तब सोना अपनी लिक्विडिटी की वजह से निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मददगार बनता है। ये सारे फैक्टर्स साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड भले ही बहुत तेज छलांग न लगाए, लेकिन इसमें किसी बड़ी गिरावट की गुंजाइश भी काफी कम है। साफ है कि ग्लोबल मार्केट में आए इस बदलाव और सेंट्रल बैंकों की रणनीति खरीदारी की वजह से आम भारतीय ग्राहकों और निवेशकों को इस साल सोने की कीमतों में स्थिरता के साथ मजबूती देखने को मिलने वाली है। आदित्य के राडा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

कर दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले ने कहा, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा भी महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव की दो टूक, कहा जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार। हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों? अमेरिका ईरान के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव, सेंटकॉम ने ईरान पर सातवीं रात हमले का दावा किया। वहीं ईरान ने कई शहरों में धमाकों की खबर, इराक में कुर्द कैंप पर ड्रोन अटैक से हालात तनावपूर्ण।

0: ईरान के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई लगातार सातवें दिन भी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एक बार फिर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ 9 सैनिक नाकाबंदी भी सख्त कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई के शुरुआती 3 दिनों में 4 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया, 1 जहाज को निष्क्रिय किया गया और 1 पर सवार होकर जांच की गई। अमेरिका का यह कहना है कि वो ईरान से जुड़ी सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो ईरान में अमेरिकी हमलों के बीच कई इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मध्य यज्द प्रांत में 5 धमाकों की गूंज सुनाई थी, जबकि फार्स और खुजेस्तान प्रांत में भी विस्फोटों की रिपोर्ट है। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। ईरानी मीडिया के अनुसार ये टैंकर माइनफील्ड वाले इलाके से गुजर रहे थे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जल डमरू बंद को बहुत असुरक्षित बताते हुए बंद होने का दावा किया, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने कई बड़े दावे किए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने बुशहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जिसकी कीमत करीब 3.40 करोड़ बताई गई। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के एक ठिकाने को निशाना बनाने और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा किया। इसके अलावा इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों और कुर्द अलगाववादी समूहों के खिलाफ भी हमले किए जाने की बात कही गई है। तो MQ-9 ड्रोन मार गिराने की बात IRGC की तरफ से कही गई कि अमेरिका को हमने नुकसान पहुंचाया है और ये लगातार जारी रहेगा। वहीं ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका की कार्रवाई को एक और स्पष्ट युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन अपनी ताकत दिखाने के लिए नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और आम लोगों की जान ले रहा है। हालांकि इन आरोपों पर अमेरिका की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं और बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस 2 दिन में पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका तो विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का था, लेकिन योगी ने इस मौके का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने के लिए किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाया और चढ़ावा चोरी का जवाब दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
1: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है, जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी की कोशिश जहां दलित वोटों को साधने की, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
6: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
7: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया पॉजिटिव किया उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
6: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
8: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
9: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
6: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
10: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
6: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: उधर पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
6: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
11: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
6: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
12: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
6: ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है।
0: दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: दानों के प्रयोग से शनि की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं क्या? तिल के दानों के प्रयोग से रोजगार की समस्या हल हो सकती है? कौन से हैं तिल के दानों के अचूक प्रयोग और क्या हैं उनके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
13: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगातार सातवें दिन अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में धमाके। ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, कुवैत बहरीन में अटैक के सायरन। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज हुई, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले ने कहा। पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा भी महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। और यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव की दो टूक, कहा जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई लगातार सातवें दिन भी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए एक बार फिर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ 9 सैनिक नाकेबंदी भी सख्त कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई के शुरुआती 3 दिनों में 4 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया और एक जहाज को निष्क्रिय किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया और एक पर

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि तिल के दानों के प्रयोग से आप शनि की तमाम समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, तिल के दानों के प्रयोग से आपको किस तरीके से लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम के 6 बजे तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:59 तक, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि तिल के प्रयोग से, तिल के दानों के प्रयोग से आप शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण ऑयल कंटेंट पाया जाता है। तिल के बीज 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं, लेकिन शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक और केश वर्धक होता है। तिल के दाने संतान उत्पत्ति की क्षमता को और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। सामान्यतः पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग किया जाता है, तेल जलाने में भी, दान करने में भी और अर्पित करने में भी। तो जब आप शनि संबंधी समस्याओं का समाधान करने जाते हैं तो आपको काले तिल के दानों की जरूरत पड़ेगी। तिल के ऊपर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ।

वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

भ्रांति से बचें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तिल के दानों के प्रयोग पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जानते हैं कि अगर शनि की वजह से आयु की समस्या हो या लंबे समय से बीमारियों से आप परेशान हैं तो क्या उपाय करेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाइएगा, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। इसके बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा या शनि चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद तिल के लड्डुओं का दान करें या काला तिल 250 ग्राम, आधा किलो, एक किलो, जितना संभव हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल का दान करिएगा। अगर ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करें तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तिल के दानों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उमेश कुमार जी ने पूर्वी चंपारण बिहार से लिखा है। 7 अगस्त 1961 का जन्म है, 6 बजे शाम को पूर्वी चंपारण बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं अपने 2 फ्लैट बेचना चाहता हूं और बेच करके एक नया फ्लैट लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा फ्लैट नहीं बिक पा रहा है, तो फ्लैट कब तक बेच पाऊंगा, नया फ्लैट कब तक ले पाऊंगा। उमेश जी, आपकी कुंडली है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शनि की चल रही है। अक्टूबर 2026 के बाद और साल 2027 के मार्च के पहले, यानी इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में आप अपने फ्लैट बेच पाएंगे और अगले साल मार्च के बाद नया मकान या नया फ्लैट खरीद पाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय अक्टूबर तक थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा बचिएगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर शनि की वजह से आपकी कुंडली में, आपके जीवन में दुर्घटना के योग बन गए हों, मुकदमेबाजी की या बदनामी की, अपयश की स्थिति बन गई हो, तो क्या उपाय करेंगे? एक चुटकी काला तिल जल में डाल करके इस जल से शनिवार को स्नान करिए। एक लोटे में एक चुटकी काला तिल डालिए और इस जल को सूर्य देव को अर्पित करिए। शाम के समय में भोजन में जरा सा तिल छिड़क करके तिल से बनी हुई या तिल मिली हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। और इसके अलावा शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं क्रूराय नमः, ओम शं क्रूराय नमः।

घटना अपयश और मुकदमेबाजी के मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शनि की खराब स्थिति की वजह से रोजगार की समस्या बन जाती है। अगर रोजगार की समस्या बन गई है, एक एक पैसे को लेकर के कष्ट उठाना पड़ रहा है, न नौकरी चल पा रही है, न व्यापार चल पा रहा है, तो क्या करेंगे? शनिवार की शाम को एक विशेष प्रयोग करिएगा। नीम की या शमी की लकड़ी ले लें, इसको तिल के तेल की सहायता से और कपूर से जला लें। अब काले तिल की चुटकी चुटकी कर करके 108 बार आहुति डालें, अग्नि में डालिएगा और हर आहुति पर कहिएगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। हर शनिवार को ये प्रयोग करते जाइए और तब तक ये प्रयोग करिए जब तक आपके रोजगार की समस्या पूरी तरह से दूर ना हो जाए। काले तिल के अन्य उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से विष योग बना है शनि चंद्रमा का, या कोई बुरा योग बना है शनि राहु का, सूर्य शनि का, शनि नीच राशि में निगेटिवली बैठा हुआ है, कोई नकारात्मक योग शनि का है और उसकी वजह से जिंदगी में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएंगे उसमें चुटकी भर काला तिल डालिएगा। हर शनिवार की शाम को बहते हुए जल में एक चुटकी काला तिल डालिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें, जल में तिल डालकर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शनिवार को बहते जल में काला तिल डालें, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली के बुरे योग समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती है और धनु राशि पर, सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, क्या करना चाहिए? रोज सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर काला तिल डालिएगा और इसके बाद इसी जल से स्नान करिएगा। घर से निकलते समय तिल के दो चार दाने चबा करके तब निकलिएगा और हर शनिवार की शाम को या रात के समय में घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो शनि की साढ़े साती या ढैया का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्या किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन अगर आप करते हैं तो इससे किसी तरह का नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, अगर दूसरा व्यक्ति अशुभ संस्कारों वाला है या आपके लिए मन में अच्छे विचार नहीं रखता, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम रुक सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार की स्थितियों में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कपूर सिंह ने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 19 दिसंबर 1990, 9:38 प्रातः, बैजनाथ, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। कपूर जी, आपके पुत्र की कुंडली है मकर लग्न की और धनु राशि की। महादशा राहु और अंतर दशा बुध की चल रही है। साल 2027 के शुरुआत में अप्रैल के पहले इनके विवाह होने की संभावना बनती है और वर्तमान में इनकी शादी तय हो सकती है। ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए,
12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाएं और आप अपने पुत्र के लिए हर बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके बेटे को लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को

शुभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक वालों के लिए, करियर की समस्या दूर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है,

को लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल ले गई है। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी तो ऐसे में उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई है दिल्ली पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई है। जंतर मंतर पर पिछले काफी लंबे वक्त से हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल पर थे और ऐसे में उनका वजन लगातार कम होता जा रहा था। डॉक्टर्स ने भी चिंता जताई थी और अब जंतर मंतर पर जो पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर, अब उनको दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई है जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करेगी, उनका हेल्थ चेक करेगी और हेल्थ चेकअप के बाद जो भी उनका इलाज होगा वो किया जाएगा। देखिए वजन लगातार कम होता जा रहा था और ये देखिए ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त सुरक्षा का घेरा यहाँ पर बनाया हुआ था क्योंकि बहुत भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। सोनम वांगचुक के समर्थक वहाँ पर मौजूद थे जो 20 दिनों से जंतर मंतर पर उनके साथ में धरना दे रहे थे, तो वो लोग भी मौजूद थे और ऐसे में तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जान को कोई खतरा ना हो, दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पहले एक घेरा बनाया गया जहां पर आरएएफ मौजूद थी, पुलिस की टीम मौजूद थी ताकि उस घेरे को तोड़कर कोई आगे ना जा पाए और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं उनका इलाज कराने के लिए। 20 दिन का ये उपवास था। 20 तारीख को आपको याद होगा मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सोनम वांगचुक का एक बयान भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक मैं जिंदा रहूंगा और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन अब चूंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनका वजन भी कम हो रहा था, चिंता भी जताई जा रही थी उनकी सेहत को लेकर, तो ऐसे में एक कदम उठाना पड़ा और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब उनको ले जाया गया है हॉस्पिटल जहां पर उनका हेल्थ चेकअप के बाद उनका इलाज किया जाएगा। और भूख हड़ताल पर थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर यह हड़ताल थी। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक का मामला, छात्रों का मुद्दा सोनम वांगचुक की तरफ से उठाया गया था, छात्रों का समर्थन भी उनको मिल रहा था, लोगों की भीड़ जंतर मंतर की ओर जा रही थी। कई ऐसे युवा हैं, छात्र हैं जो सोनम वांगचुक के साथ थे, कुछ लोग सोशल मीडिया से उनका साथ दे रहे थे, कुछ कॉमेडियन भी आए वहाँ पर और उनकी तरफ से भी समर्थन दिया गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी आ पा रही है आपके पास?
1: देखिए 20वां दिन था हंगर स्ट्राइक का और जैसा कि पुलिस को पहले से ही इस बात का अंदेशा था हमें कि पुलिस ले जा सकती है क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनकी देखभाल, उनकी जो उनकी कंडीशन है मेडिकल कंडीशन उसके बारे में भी बोला गया था, तो इस बात की अंदेशा था और पुलिस की टीम पहुंची और साथ में डॉक्टर्स भी थे जो जानकारी मिल रही है और उसके बाद पुलिस की टीम हॉस्पिटल लेकर के गई है ताकि कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो सके। अब अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है लेकिन ये जो जानकारी मिली कि शायद जो डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी उन्होंने जांच करने के बाद जो एडवाइस दिए उसके अकॉर्डिंग काम किया गया है। पुलिस के स्टेटमेंट का हमें इंतजार है यहाँ पे और उसके बाद जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे उनको पुलिस ने वहीं पर रोका और पुलिस की टीम सोनम वांगचुक को वहां से पिक करने से पहले उठाने से पहले पुलिस की भारी संख्या में वहां पर तैनाती की गई थी और उसके बाद जो पुलिस की टीम थी डॉक्टर्स के टाइम साथ पहुंची, साथ में आला अधिकारी भी थे, उनकी वहां पर मेडिकल जांच की गई और मेडिकल जांच करने के बाद उनको वहां से पुलिस की टीम ने अपने साथ लिया और उसके बाद हॉस्पिटल लेके गई है। जी
0: इस दौरान हम देख रहे हैं क्योंकि उनके समर्थक पिछले 20 दिन से उनके साथ में थे, जो युवा हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे, उनकी तरफ से भी क्या किसी तरह का विरोध जताया गया या उन्होंने सहयोग दिया?
1: देखिए जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोनम वांगचुक को वहां से किसी भी तरीके से हटाया जाए लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा थी और चूंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम चुना गया, आप देखिए सुबह का वो वक्त होता है जब वहां पर उतनी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे और ज्यादातर जो लोग हैं वो वहां पर जो आसपास के हैं वो दिन के वक्त आते हैं शाम में लौट जाते हैं, ऐसे भी बड़ी संख्या में लोग होते हैं। लेकिन सुबह जिस वक्त पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद नहीं थे जितनी संख्या में आमतौर पर दिन के वक्त में होते हैं, तो ऐसे में जो लोग थे उनको पुलिस ने कंट्रोल किया और उसके बाद सोनम वांगचुक जिनकी तबियत पूरी मेडिकल जांच की इस वक्त बेहद जरूरी था ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया था, ऐसा उनको कोर्ट की तरफ से कहा गया है, तो इसलिए सोनम वांगचुक की जो डॉक्टर्स वहां पे साथ में डॉक्टर्स भी थे तो डॉक्टर्स ने पहले मौके पर ही उनकी जांच की, हालांकि जांच उनकी रोजाना चल रही है।
0: नहीं, लेकिन ये भी कहा गया था कि पिछले 20 दिनों से जैसे वो भूख हड़ताल पर हैं, उनका 8 किलो वजन कम हो गया था और उनका वजन बहुत तेजी के साथ कम होता जा रहा था, तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी, तो उनका हेल्थ चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे आप बता रहे डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी हेल्थ चेकअप की और उसके बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं क्योंकि जरूरत वहां पर महसूस हो रही होगी कि इस वक्त उनको इलाज की जरूरत है। डॉक्टर्स की तरफ से शुरुआती कुछ जानकारी क्या अभी दी गई है और किस हॉस्पिटल ले जाया गया अगर जानकारी हो तो?
1: देखिए इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि पुलिस की टीम ने बड़े ही ऐसे इस चीज को अंजाम दिया कि किसी को जरा सी भनक नहीं लगी। सुबह के वक्त अचानक से पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पहुंचने के साथ ही पुलिस ने जो डॉक्टर्स थे उनके साथ उन्होंने जांच की, हालांकि जांच जो है वो रोजाना चल रही थी लेकिन 20 दिन का वक्त काफी लंबा होता है, ऐसे में कोई चांस यहाँ पर न तो डॉक्टर्स और न शायद पुलिस लेना चाहती थी कि किसी भी तरीके से तबियत बिगड़नी न पाए और कंट्रोल के बाहर मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से शायद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पुलिस को एडवाइस किया या पुलिस ने खुद अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है, इसके स्टेटमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, किसी बड़े और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर उनका अब पूरी एक टीम वहां पर पहले से ही तैनात की गई थी। आप सोचिए
0: आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि कितनी देर में पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पर कुछ आधिकारिक बयान आ सकता है या प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है?
1: देखिए कुछ ही कभी भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं जानने की कि आखिर जो ये एक्शन लिया गया है इसके पीछे की डायरेक्ट वजह क्या है, मेडिकल कंडीशन है या फिर आप कहें, देखिए क्योंकि 2 दिन बाद पार्लियामेंट है मंडे से और पार्लियामेंट चलो का नारा भी है, तो क्या वजह क्या है ये हमें जानना होगा पुलिस से। और यहाँ पर सोनम वांगचुक को उठाया गया उनकी मेडिकल कंडीशन के लिए उठाया गया या फिर कोई और वजह है, तो ये स्टेटमेंट का हमें पुलिस की तरफ से इंतजार रहेगा और साथ ही साथ जिस हॉस्पिटल ले गए हैं वहां से मेडिकल बुलेटिन की क्या कंडीशन है सोनम वांगचुक की, क्योंकि ये वक्त बहुत लंबा होता है मैच, पिछले 20 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पे है तो ऐसे में जो मेडिकल कंडीशन होती है वो बिगड़ने की आशंका रहती है।
0: ये बात आपने सही कही है कि मेडिकल कंडीशन बिगड़ने की आशंका रहती है और इसीलिए बहुत जरूरी था कि उनका इलाज कराया जाए क्योंकि वजन उनका लगातार कम हो रहा था, भूख हड़ताल पर थे, अन्न नहीं जा रहा था उनके शरीर के अंदर, तो वजन बहुत कम हो रहा था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन एक और चीज है जो बिगड़ सकती है वो है सिचुएशन वहां मौके पर जहां पर उनका धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था क्योंकि बहुत सारे युवा वहां पर मौजूद थे। अब ये भी खबर आ रही है कि समर्थकों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और जब पुलिस ले जा रही थी तब भी नारेबाजी की जा रही थी, तो क्या पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इन युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है और क्या रिस्पॉन्स है?
1: जो पुलिस की टीम है उनसे वहां पर जो अधिकारी थे वो युवाओं से बात कर रहे थे और वहां पर कई जगहों पर आप ये देखिए पोस्टर भी लगा दिया गया था हिमांशु की ये जो प्रोटेस्ट साइट है ये प्रोटेस्ट अब यहाँ पर इलीगल है क्योंकि जो परमिशन थी वो सिर्फ कुछ घंटों की थी, सुबह से शाम तक के लिए थी लेकिन लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वहां पर जो तमाम प्रोटेस्टर्स आ रहे थे उनसे और साथ ही साथ जो लोग लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से उनसे लगातार संपर्क में थे और आज भी जब सुबह ये एक्शन लिया गया तो 2 तरीके से पुलिस ने काम किया हिमांशु। एक जो टीम आई वो डॉक्टर्स की के साथ पुलिस की आई लेकिन उसके पहले कुछ पुलिस के आला अधिकारी और जो पुलिस के जवान है वहां पे पहुंचते हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और उसके बाद जो तमाम युवा थे उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोनम वांगचुक को ठीक रखने के लिए किया जा रहा है ताकि उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक रहे। 20 दिन हो गए हैं और ये जिम्मेदारी है प्रशासन की कि उन्हें कुछ ना हो और इसलिए वहां से उनको हटाया जा रहा है, उनको मेडिकल टेस्ट उनका कराया जाएगा और जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी, इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है। अब सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लगातार जो लोग बीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हिमांशु उनकी तरफ से ट्वीट भी किए जा रहे हैं और इस पूरे मामले
0: बहुत ज्यादा जरूरी है कि युवाओं को एक सही संदेश देना और उनको बताना कि ये जो किया गया है पुलिस की तरफ से वो इसीलिए किया गया है कि सोनम वांगचुक की तबीयत और ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वजन कम हो रहा था तो परेशानी लगातार बढ़ रही थी, इसीलिए हेल्थ चेकअप के लिए और इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष। अनमोल बाली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आपके पास क्या जानकारी है, ताजा अपडेट?
2: हिमांशु, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 21 दिन सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल थी उसको पूरे होने जा रहे थे और 20 जुलाई को देखा जा रहा था कि बड़ा एक पार्लियामेंट घराव का भी सीजेपी ने ऐलान किया था, उसको देखते हुए आज दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराने की कोशिश की है, साथ ही अभिषेक दिपके को भी वहां पर रोका गया और साथ ही देखा गया जो लेफ्ट के और अन्य छात्र विंग थे आईसीआई ये सब जो भी वहां पर अपनी स्ट्राइक पर बैठे थे उन पर भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि 21 दिन पूरे हो गए थे। सोनम वांगचुक की जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी, इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला जाता जा रहा है। हाईकोर्ट कहती है कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है और साथ ही कहा गया था कि उनकी जो तबीयत है उसकी निगरानी रखी जाए, उनका जो हेल्थ है वो चेकअप किया जाए। इसको देखते हुए सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस ने अभी उठा लिया और उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा ताकि जो उनकी भूख हड़ताल है उसको खत्म किया जा सके। हिमांशु,
0: और जो समर्थक इस वक्त जुटे हुए थे जब पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी उस वक्त भी वो नारेबाजी कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल उस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद था और इलाज कराना है। सोनम वांगचुक की सेहत बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो ऐसे में पुलिस उनको हॉस्पिटल ले गई है। समर्थकों को कैसे समझाया जा रहा है, जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हालात है, क्या वहां पर माहौल पूरी तरह से शांत है?
2: हिमांशु, अगर मैं बात करूं जंतर मंतर पर, इस सुबह सुबह देखा गया कि भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान वहां पर पहुंचते हैं। बहुत ही देखा जाता है कि इस कार्रवाई के बारे में पहले किसी को नहीं पता होता, क्योंकि कल देर शाम देखा गया कि अभिषेक दिपके बड़े आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि कोई सोनम वांगचुक पर हमला करा, उन पर कुछ फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि सुबह सुबह आज देखा गया अर्ली मॉर्निंग की दिल्ली पुलिस ने अपनी एक कार्रवाई शुरू की, जिसको देखते हुए छात्रों में वहां जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनमें नाराजगी भी देखी गई, उन्होंने नारेबाजी भी की। पर हाँ, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री के जो जवान थे वहां पर तैनात किए गए थे।
0: और कब तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान इस बारे में जारी किया जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में ले गए हैं हेल्थ चेकअप को लेकर, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पाई है अभी तक?
2: महसूस जल्दी देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आएगा, पर अभी दिल्ली पुलिस का जो सारा ध्यान है मामले को शांत करने को लेकर है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक देखा जा रहा था कि बहुत भारी भीड़ जो थी इस मामले को लेकर उमड़ रही थी। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कि बहुत से लाइक्स आ रहे थे, बहुत शेयर हो रहे थे सीजेपी प्रोटेस्ट को, था कि धीरे धीरे जैसे जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जंतर मंतर पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो इस समय कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ध्यान धरातल पर मामले को कंट्रोल करने को लेकर लगा हुआ है।
0: लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है और सूत्र क्या कहते हैं कि जो कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है सोनम वांगचुक की सेहत का हवाला देते हुए, और 20 तारीख को मानसून सत्र भी शुरू है, मानसून वहां पर भी अच्छा एक बार सुन लेते हैं।
3: चुपके से पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा है, ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस, वी वेर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर बिकॉज वी विल कंप्लाई इफ द जस्ट।
0: तो देखिए लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जबरन उठा के ले गए, लेकिन पुलिस की तरफ से ये बहुत स्पष्ट था कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी तो उनको अस्पताल में इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए उनको यहां से ले जाया गया है। जल्दी इस पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया जाएगा। युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस के अधिकारी लगातार युवाओं के संपर्क में है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कई जगह पर लोगों को शांत करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, जिनके शरीर में अन्न का दाना नहीं गया था, तो उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। और जैसे हमारे सहयोगी अनमोल वाली भी बता रहे थे कि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है, कीमती है, तो ऐसे में उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी की, हेल्थ चेकअप की, एक अच्छे इलाज की। और ये देखिए, ये वो जगह जब मंच से सोनम वांगचुक देखिए हाथ लहरा रहे हैं, हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। और पुलिस की आप देखिए क्या सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, RAF यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स में आपको जवान दिखेंगे, आपको पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, कई आपको सिविल ड्रेस में आपको पुलिस के जवान दिखेंगे। और वो उनको वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाते, किस हॉस्पिटल ले गए अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जारी किया जाए, क्योंकि युवाओं को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो युवा हैं जो 20 दिन से सोनम वांगचुक के साथ में थे, और इनकी भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए। नीट UG परीक्षा पेपर लीक होता है, तो ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मंत्रियों पर, लोगों पर कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे थे जो यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। और इसी को लेकर यह भूख हड़ताल थी, सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा था, दूर दूर से लोग छात्र यहां पर आ रहे थे, जंतर मंतर पर एकजुट हो रहे थे और मांग कर रहे थे कि वो सोनम वांगचुक के साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह 8 किलो से ज्यादा वजन कम हुआ था, ऐसा बताया गया पिछले कुछ दिनों में, 8 किलो से ज्यादा। अब सुबह सुबह पुलिस की टीम पहुंचती है, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंचती है, उनका मंच परिचय कब किया जाता हो, जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जरूरत है इन्हें मेडिकल अटेंशन की, जरूरत है इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की, इनका इलाज करने की, तब उसके बाद वो तस्वीर जो आप पहले देख रहे हैं, पुलिस की टीम उनको मंच से सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। 20 दिन तक उनका भूख हड़ताल चली, उनकी उपवास चला, और अब उनको हॉस्पिटल ले गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से जबरन उठा के ले जाया गया है। युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखिए, संसद चलो ये नारा भी दिया था, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को मार्च में साथ रहेंगे। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, अनमोल और क्या जानकारी आ रही है आपके पास?
2: हिमांशु, अभी देखा गया कि DCP नई दिल्ली की तरफ से एक बयान भी जारी किया जाता है, जहां दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो इस मामले को लेकर हमने पहले भी देखा, हाई कोर्ट पहुंचा जाता है, जहां देखा जाता है कि हाई कोर्ट के कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है बहुत अनमोल है, और साथ ही कहा जाता है कि डॉक्टर का एक पैनल उनकी जो हेल्थ की निगरानी करे। 20 दिन कल देखा गया था पूरे हो गए थे, आज 21 दिन पूरे होने थे, उसी को देखते हुए सुबह सुबह ये कार्रवाई देखने को मिली। ना केवल सोनम वांगचुक वहां पर धरना प्रदर्शन स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, और भी जो अन्य छात्र थे आईसा और AISF के जो छात्र थे वो भी वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो इन सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस की आज ये बड़ी कार्रवाई, जहां देखा गया कि भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, सुबह सुबह वहां पर पहुंचते हैं, धरना स्थल पर जंतर मंतर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही अपनी कार्रवाई शुरू करते। कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ताकि जो उनकी सेहत है उसमें सुधार लाया जा सके, जो है उनको बचाने की ये दिल्ली पुलिस कह रही है कोशिश की गई है। पर वही दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 20 जुलाई को देखा गया था कि बड़ा धरना मार्च जो है बुलाया गया था, संसद घराव की बात CJP ने की थी, उसी को देखते हुए उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने आज बड़ी कार्रवाई सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के खिलाफ कर दी।
0: अब वो तस्वीरें भी दिखाई जा रही है, सामने आ रही है, जहां पर जो कार्यकर्ता थे, भले ही वो छात्र हैं चाहे वो छात्राएं हैं, जो समर्थक थे, जो युवा यहां पर आए थे सोनम वांगचुक के साथ, अब उनको भी पुलिस हटाने की वो तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अनमोल, बहुत ज्यादा जरूरी है स्पष्टता, पारदर्शिता इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ये खबर अब युवाओं को मिली है, वो युवा भी अब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, सुबह भी वहां पर कई युवा मौजूद थे, कई छात्र मौजूद थे, तो ऐसे में उनको बताना कि किस हॉस्पिटल ले गए हैं, तबीयत की जानकारी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा ताकि हालात ना बिगड़े।
2: हिमांशु, जैसे कि आप जानते हैं कि धरना जो है पिछले बहुत दिनों से चल रहा था, पहले देखा गया था धरना स्थल 5 बजे तक की परमिशन थी, जब पहला दिन जब CJP प्रोटेस्ट शुरू होता है, बाद में देखा जाता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वहाँ बैठ जाते हैं, फिर सोनम वांगचुक आते हैं, और 21 दिन उनको आज पूरे होने थे उनके इस भूख हड़ताल के धरना प्रदर्शन को लेकर, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जो है अब इस कार्रवाई के जो विजुअल हैं वो ट्रेंड करना शुरू कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं दिल्ली से हैं वो शायद जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी टेंशन होगी, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी कंट्रोल करना, प्रदर्शनकारियों को भी कंट्रोल करना और सोनू मांगचुक की सेहत को लेकर भी शायद जल्दी स्टेटमेंट जो है जारी की जा सकती है, जहां बताया जा सके कि उनको किस अस्पताल लेकर गया, जब उनको लेकर जाया गया तो उनकी बॉडी की कंडीशन क्या थी, बॉडी हेल्थ कैसी थी और साथ ही क्या उन पर और अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये सब जल्दी देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जारी की जाए। पर हाँ, कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी कि जैसी बात ये सोशल मीडिया पर फैलेगी, बच्चों को पता लगेगा, जो प्रोटेस्टर्स थे जो कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर देखा गया कि बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन जाता है पास में भूखताल में तब्दील हो जाता है जब सोनू मांगचुक जंतर मंतर पर बैठते, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए डबल चैलेंज, एक तो जंतर मंतर पर
0: डबल चैलेंज। आपने बहुत अच्छी, बहुत सही बात आपने की और देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 9 किलो से ज्यादा वजन घटा ऐसी खबर आई थी, ब्लड शुगर बीपी गिरा, डॉक्टर्स ने ऑर्गन डैमेज की चेतावनी दी, हाईकोर्ट ने डेली मॉनिटरिंग का आदेश दिया था और फिर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। मौके पर आप पहुंच चुके हैं, क्या हालात, क्या तस्वीरें हैं वहां?
4: देखिए, पहली बैरिकेड यहां से ही सभी को अंदर, कोई भी अब अंदर यहां पर नहीं आ सकता, पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिया है जगह जगह यहां पर आपको पुलिस के। अच्छा, आप देखिए सामने आपको महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगी। इसके अलावा इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, देखा गया कि कहीं से कोई जब पुलिस का एक्शन हो, जब पुलिस की टीम डॉक्टर्स के साथ पहुंचे तो कहीं किसी तरीके का विरोध ना हो, इसके लिए पुलिस की टीम पहले पहुंची। जो तमाम प्रोटेस्टर्स थे उनको समझाने की कोशिश की गई कि मेडिकल कंडीशन है, कोर्ट लगातार मॉनिटर कर रहा है कंडीशंस जो है सोनम वांगचुक की, तो ऐसे में चांस नहीं लिया जा सकता, 20वां दिन है और अब उनकी मेडिकल जांच जरूरी है, इलाज जरूरी।
0: अच्छा, आपको रोकते हैं, आपको रोकते हैं मानशु, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जिसका इंतजार किया जा रहा था दिल्ली पुलिस, उसका बयान आ गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो सुबह सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले गई, तो दिल्ली पुलिस का बयान आया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले जाया गया। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, मॉनिटरिंग हो रही थी, हाईकोर्ट ने डेली मॉनिटरिंग का आदेश दिया था। दोबारा चलते हैं हिमांशु के पास, हिमांशु आ गया है, दिल्ली पुलिस का बयान कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह सब हुआ।
4: बिल्कुल, मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाई कोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी, दो टीम आई थी, एक टीम जो तमाम प्रोटेस्टर्स सुबह के वक्त मौजूद थे उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेडिकल जांच बेहद जरूरी है और पुलिस की कार्रवाई में किसी तरीके की रोक टोक ना करे, लेकिन जम के नारेबाजी हुई। आपको हम अंदर की तस्वीरें यहां पर दिखाते हैं, आप ये देखिए कि यहां पर जो प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं वो लगातार अभी भी यहां नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर आप प्रोटेस्ट साइट की देख रहे हैं कि लगातार यहां पर नारेबाजी जारी है, अभी भी नारेबाजी की जा रही है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ किया गया वो हाईकोर्ट लगातार नजर बना के रखी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर ही यहां पर ये जो कुछ भी किया गया, जो एक्शन लिया गया वो बेहद जरूरी था, खासतौर से सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये बेहद जरूरी था और इस वजह से ये एक्शन यहाँ पर लिया गया। अब हम आपको अंदर लेके चलते, देखिए जो जो जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स मौजूद थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अब लगातार वीडियोज भी शेयर किए जा रहे हैं और यहाँ पर, लेकिन अब और ज्यादा लोग ना पहुंचने पाए, जो लोग यहाँ पर हैं ये यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए सामने जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के DCP हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और यहीं से वो पूरे कंडीशन को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह लगातार जो टीम लेकर के गई है पुलिस की टीम, मेडिकल टीम के साथ सोनम वांगचुक को, उन पर भी
0: हिमांशु अगर तस्वीरों के जरिए आप दिखा पाए तो जरा बताइए कि जो छात्र जो यूथ उनके साथ में था पिछले कई दिनों से जो सुबह भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया, विरोध करते हुए दिखाई दिया, क्या उनको शांतिप्रिय तरीके से ये स्थान खाली करने के लिए कह दिया गया और उन्होंने ये जगह खाली कर दिया या यहाँ पर अभी डटे हुए हैं?
4: नहीं, अभी देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि आपको बड़ी संख्या में अंदर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने इस साइड को पूरी तरीके से खाली नहीं किया है और इलाके के DCP यहाँ पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब परमिशन सिर्फ एक दिन की दी गई थी और यहां पर पहले दिन से ये लगा करके रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो इलीगल है और ये समझाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस लगातार कर रही है जो प्रोटेस्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर जो उनके लीडर्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी जगह को खाली कर दें, ये समझाने की कोशिश है। लेकिन प्रोटेस्ट जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, अधिकारी भी लगातार उनसे बात कर रहे हैं और जो मेडिकल टीम है उनसे रिपोर्ट का इंतजार है। जो यहाँ पर लोग का कहना है कि उन्हें जानना है कि सोनम वांगचुक को कहां लेकर जाया गया है और सोनम वांगचुक को जो लेकर के जाया गया है तो उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, जो इतनी देर से जो उनकी जांच जारी है तो फिलहाल उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो फिलहाल क्या है ये जानने की कोशिश जो यहां पर प्रोटेस्टर्स हैं बैठे हैं। आप देखिए ये वो हिस्सा है जहां पर प्रोटेस्टर्स अभी भी जमे हुए हैं, नारेबाजी यहां पर की जा रही है और उनको समझाने की कोशिश साथ साथ की जा रही है। तो आप ये देखिए जो प्रोटेस्टर्स हैं यहां पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, साथ में आपको बड़ी संख्या में यहां पे पुलिस के जवान भी नजर आएंगे जो यहां पर मौजूद हैं, समझाने की कोशिश किया जा रहा है। और धीरे धीरे देखिए एक तरफ एक जो टेंट लगा हुआ है वहां पर, स्टेज से दाहिनी तरफ जो टेंट लगा हुआ है वहां

0: यहाँ पर है वो लगातार संबोधित भी कर रहे हैं। तो कंडीशन
1: हिमांशु जरा इसी फ्रेम को जरा समझाइए कि यहाँ यहाँ पर छात्रों को एक जगह पर रोक के रखा गया है, इसी जगह पर जो अभी जो आपके कैमरे में फ्रेम है।
0: देखिए पुलिस लगातार बातचीत कर रही है, जो लोग यहां से जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है, पुलिस यहां पर रोक नहीं रही है। लेकिन इस पूरे जगह में जो पूरा प्रोटेस्ट साइड है, आप देखिए, हम अगर कैमरा दूसरी तरफ आपको घुमा के दिखाएं तो ये स्टेज देखिए, स्टेज आपको लगभग खाली यहां पर दिखेगा। स्टेज पे अभी फिलहाल ज्यादा लोग मौजूद हैं, इक्का दुक्का लोग ही मौजूद हैं, और सभी लोग वो जो साइड में टेंट है, क्योंकि पूरे में पुलिस है, साइड में टेंट है, उस तरफ एक तरफ पहुंच गए हैं और वहीं पर नारेबाजी हो रही है। और पुलिस की टीम जो है, जो इस वक्त यहां पर लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को जो लोग लीड कर रहे थे, वो जो लोग मौजूद हैं, उनको पुलिस यहां पर समझाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो यहां से जाएं। यहां से जाने पे किसी को नहीं रोका गया है, लेकिन यहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं हिमांशु, वो एक चीज पर अड़े हुए हैं कि सबसे पहले तो उन्हें यह जानना है कि क्या मेडिकल कंडीशन है, रिपोर्ट क्या आई, क्योंकि करीब एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ले गए हैं, तो क्या रिपोर्ट क्या आई, ये जानने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये देखिए, तमाम अधिकारी जो आप देखिए, एंट्री गेट है वहां पर अधिकारी मौजूद है डीसीपी लेवल के, और ये आप देखिए तमाम अधिकारी यहां पर अंदर भी आप देखेंगे मौजूद है, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, तमाम ऑफिसर यहां पर मौजूद है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, ये देखिए ये पूरी तस्वीर है, ये पूरी प्रोटेस्ट साइट है, इस तरीके से हम समझते हैं। स्टेज आप देखिए, स्टेज की तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टेज पर यहां पर आपको अब स्टेज पर कोई नजर नहीं आएगा। जब पुलिस की टीम सुबह पहुंची तो जब मेडिकल टीम के साथ, तो सोनम वांगचुक को यहां से उठाया गया, मेडिकल टीम और साथ साथ जो प्रोटेस्टर थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा सुबह के वक्त में नहीं थी, उन सभी को समझाने की कोशिश की गई और फिर जो लोग विरोध किए उनको दूसरी तरफ कर दिया गया। तो ये देखिए, ये जो पूरी तस्वीर है यहां पर आप देखिए, पुलिस फोर्स आपको यहां पर नजर आएगी, ये पूरा जो प्रोटेस्ट साइट है अब आपको, और दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर इस तरफ से लोग आते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये देखिए इस तरफ से कुछ लोग जो हैं।
1: अच्छा हिमांशु, तस्वीरें आप बहुत सही दिखा रहे हैं, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन पुलिस का बयान क्या आया पहले वो सुन लेते हैं।
2: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू।
3: यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा
4: सर, कौन से हॉस्पिटल?
1: नई दिल्ली इतना बताया गया। हिमांशु आप जुड़े हुए ना हमारे साथ, अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि माननीय हाईकोर्ट की आदेश अनुसार उनको जरूरी था अस्पताल पहुंचाना, सरकारी अस्पताल उनको पहुंचाया गया है। अब जरा बताइए कि कितना डिप्लॉयमेंट वहां पर जवानों का किया गया है और समर्थकों की तस्वीरें जरा आप बताइए।
0: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहां पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है। हालांकि लगातार अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां से कुछ छात्रों का आना अब यहां पर शुरू हो गया है और वो सामने का आप देखेंगे, अब जब कहेंगे कि स्टेज फिलहाल ये नहीं है, अब वो सामने वाला जो आपको टेंट दिख रहा है वहां पर एक नया आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल वो हॉटस्पॉट बना है, सभी लोग वहीं पर पहुंच रहे हैं और पूरी पुलिस टीम ने उस इलाके को घेर के रखा हुआ है। लेकिन आने से आप देखिए अभी किसी को रोका नहीं जा रहा है, लगातार जो कुछ जो छात्र हैं या जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वो यहां पर आते जा रहे हैं, उनको शामिल यहां पर आगे की तरफ हो रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं। और वो तस्वीरों में देखिए आपको सामने नजर आएगा कि कुछ छात्र ऊपर की तरफ चढ़े हुए हैं, चेयर पे चढ़े हुए हैं, जो पूरे जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। यहां पर पुलिस की टीम अपनी तरफ से लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है। आप ये देखिए, ये दूसरी तरफ देखिए, जो डीसीपी है नई दिल्ली जिले के, वो यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दो छात्र भी वहां पर मौजूद हैं, ये देखिए प्रोटेस्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है अपने तरफ से। हाँ। और दूसरी

0: दूसरी तरफ यहाँ पर हाय हाय के नारे आप देखिए, यहाँ पर सामने आप देखिए हाय हाय का नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है और पुलिस कह रही है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए किया है और कोर्ट के आदेश पर किया है। कोर्ट के जो कोर्ट की तरफ से था उनकी मेडिकल कंडीशन को लेकर के जो चिंता जताई गई थी उसके अनुसार किया गया है कि अगर जो उनकी तबीयत है उसको ठीक रखना, वो खराब ना हो, ये एक तरीके से जिम्मेदारी।
1: अच्छा हिमांशु, ये बात बताइए, आपकी वहां पर बात जरूर हुई होगी पुलिस अधिकारियों से, जो लोग वहां पर अभी हाथों में जिनके तिरंगे देख रहे हैं, जो नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं, जो नाराज हैं सोनम वांगचुक को इस तरह से यहां पर ले जाने से, क्या उनको शांतिप्रिय तरीके से यहां पर प्रदर्शन की इजाजत अभी दी गई है या फिर उनको यहां से हटाया जा रहा है, ये जगह खाली कराई जा रही है, अभी क्या हो रहा है वहां?
0: अभी देखिए अभी पुलिस ना तो किसी को हटा रही है ना किसी को यहां से आने से रोक रही है। अभी जो कंडीशन है वो ये है कि सोनम वांगचुक को यहां से जो ले जाया गया है उसको देखते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो विरोध हो रहा है उसको समझाने की, उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ मेडिकल कंडीशन और कोर्ट के आदेश पे हुआ है, ये एक तस्वीर है। वही दूसरी तरफ पुलिस फिलहाल यहां पर किसी को आने से नहीं रोक रही। आप ये देखिए यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार नजर बना के रखे हुए, देखिए डीसीपी लेवल के कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, यानी कि जो कुछ भी आज सुबह हुआ इसकी तैयारी पहले कर ली गई थी। लगातार जो पुलिस की टीम है वो आपस में बात कर रही थी और मेडिकल कंडीशन, क्योंकि डॉक्टर्स तो विजिट कर रहे थे हिमांशु लगातार, अब जब डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंच रही थी, सोनम वांगचुक की जांच हो रही थी, उनकी रिपोर्ट्स डेली पहुंच रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई, जो वजन था वो काफी कम हुआ था, तो ऐसे में पुलिस ने कोई चांस नहीं लिया। और जब मेडिकल टीम यहां पर पहुंची और मेडिकल टीम ने जो एडवाइस किया पुलिस ने उनको गार्ड किया, पुलिस ने उनको सोनम वांगचुक को, क्योंकि सोनम वांगचुक को जो मेडिकल टीम आई थी वो अपने साथ लेके गई हॉस्पिटल, अब वहां पर उनका इलाज जारी है। अब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी जो पहली डिमांड है वो ये कि क्या कंडीशन है, किस तरीके से उनकी तबीयत है, इसकी जानकारी तुरंत दी जाए, हमें बताया जाए कि सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, नंबर एक, सोनम वांगचुक को कहां पर रखा गया है, नंबर दो। तो ये दो चीजें हैं, ये जानने की कोशिश प्रोटेस्टर्स जो मौके पे मौजूद हैं वो यहां पर कर रहे हैं और पुलिस की टीम का कहना है कि डॉक्टर्स की तरफ से जब जांच पूरी हो जाएगी, तमाम जो टेस्ट है वो होंगे, क्योंकि 20 दिन का वक्त था हिमांशु, 20 दिन का लंबा वक्त हो गया, शरीर में इसकी क्या प्रतिक्रिया है ये समझने के लिए, देखने के लिए वक्त लगेगा थोड़ा, तो वो समझने की, वो जब रिपोर्ट डॉक्टर्स की तरफ आएगी, जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तभी क्लियर होगा। यहाँ पर आप देखिए, अब आप देखिए ये डिप्लॉयमेंट देखिए, ये स्टेज से अगर आप समझिए, पहले मैं बताऊं कि ये जो जंतर मंतर सीधे अशोक रोड पे मिलता है, ये वाला जो पूरा रास्ता है अशोक रोड से, जब आप गोलचक्कर से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो वहीं पर बैरिकेड है, यानी इस तरफ से तो एंट्री नहीं है किसी की। उसके बाद ये बैरिकेड आप देखिए, 1, 2, 3, 4 लेयर की बैरिकेड के बाद आप यहां पहुंचते हैं। यहां पर स्टेज के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। उसके बाद की ये तस्वीर है, यहां पर आपको रैपिड आरएएफ के जवान नजर आएंगे, जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, आप ये देखिए डीसीपी हैं जो यहां पर आपको सामने फ्रेम में नजर आ रहे हैं, तो ये डीसीपी यहां पर मौजूद
1: हैं। अच्छा हिमांशु, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, जो बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि आखिर कहां लेकर गए हैं सोनम वांगचुक को, तो सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। सफदरजंग अस्पताल में हेल्थ चेकअप किया जाएगा सोनम वांगचुक का, डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की जांच करेगी और फिर जैसी जरूरत है उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस इस वक्त, जो जानकारी अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनका बयान भी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि हाईकोर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग करने को कहा गया था, तो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि वजन बहुत कम हो गया है, जरूरत है उनको इस वक्त अच्छे इलाज की, तो ऐसे में उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको सफदरजंग अस्पताल लेकर ले जाया गया है। हिमांशु खबर आ गई है, सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंचे हैं।
0: देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएंगे ये सुबह ही क्लियर था और उसके बाद सफदरजंग लेके गए। वहां पर डॉक्टर्स की टीम पहले ही तैयार थी। सोनम वांगचुक के तमाम टेस्ट किए गए हैं और टेस्ट करने के बाद उन तमाम रिपोर्ट्स का इंतजार है और उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या कंडीशन है उनकी मेडिकल, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जारी की जाएगी कुछ देर में हॉस्पिटल की तरफ से, तब जाकर के ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या कंडीशन है। ये अंदर की आप तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान सबसे पहले नजर आएंगे, पीछे पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं इस पूरे इलाके में अब पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो आपको दूसरी तरफ टेंट में नजर आएंगे और साथ ही साथ जो दूसरी तरफ का रास्ता है, जो कनॉट प्लेस की तरफ आप कहते हैं, जो ये सामने वाला रास्ता आ रहा है जो जनपद से जोड़ती है सड़क को, सीपी की तरफ से संसद मार्ग से जोड़ती है, अगर आप लेफ्ट लेंगे तो यहाँ से लोग अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार नजर बना करके भी यहाँ पर पुलिस की टीम हर कंडीशन पे रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है जिस कंडीशन के, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने इस चीज की प्लानिंग पहले कर ली थी कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को डॉक्टर्स के साथ यहाँ से अगर जरूरत पड़ी तो मूव कराया जा सकता है। आप देखिए जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ज्वाइंट सीपी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के भी तमाम जो अधिकारी हैं, जो क्राइम के भी डीसीपी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सामने आपको प्रोटेस्ट
1: नहीं मानसु, लेकिन अब तो ये खबर आ रही है कि सफदरजंग अस्पताल लेके जाया गया है, तो जो जो आपके कैमरे में कैद हो रहा है, जो छात्र इस वक्त भी नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नाराजगी पुलिस के प्रति जाहिर हो रही है, क्या उनको ये संदेश मिल चुका है कि उनका सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है? क्योंकि मेन कंसर्न उनका यही था कि कहां लेकर गए हैं और वो अब साफ हो गया है।
0: प्रदर्शन यहां पर लोग कर रहे थे बिल्कुल हिमांशु साफ हो गया है, लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शायद उनको इस बात का अंदेशा है कि अगर वो इस जगह को छोड़ेंगे तो वापस जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए प्रोटेस्टर्स यहाँ पर टिके हुए हैं। और हो सकता है कि कुछ अलग से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं या जो सोनम वांगचुक के साथ जुड़े हैं, वो सफदरजंग हॉस्पिटल भी अब जाए, क्योंकि जानकारी यहाँ पर आ चुकी है कि सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया है, तो कुछ लोग वहां भी जाएंगे। तो पुलिस जो है वो लगातार दोनों कंडीशन पे नजर बना के यहाँ पर रखी हुई है। सामने जो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो उनको पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर देखे, जो स्टेज की तरफ का रास्ता है वो यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर की क्या कंडीशन है, ये आप देख के अंदाजा लगाइए। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं ये पुलिस के सामने एक बड़ी दिक्कत इस वक्त ये भी आ रही है हिमाचल कि कोई यहाँ पर ऐसा लीडर नहीं है जिससे बात की जाए और ये क्लियर हो सके कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं, क्या वो यहाँ से हटेंगे। इसलिए जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से, आप देखिए जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो पूरा रास्ता है इधर से लोगों का आना अभी भी जारी है और यहाँ पर जो है इस हिस्से में अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो लोग, चूंकि ये जंतर मंतर है यहाँ पर प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से लोग करते ही हैं, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट अलग अलग दिशा के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी अपनी अपनी मांगों प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोई एंट्री बैन नहीं है इस तरफ से अभी भी।
1: मैं यही आपसे थोड़ा सा और समझना चाह रहा था हिमांशु, क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि तीन चार लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर आने नहीं दिया जा रहा था, अगर कोई छात्र वहां पर जाना चाहे, प्रदर्शन में शामिल होना चाहे, तो क्या उनको आने दिया जा रहा है या पहले ही उनको रोक दिया जा रहा है?
0: दो पीछे की सड़क मैं दिखाऊंगा, जो ये आप स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज के पीछे जो रोड है वो जो अशोक रोड है जो इंडिया गेट से जो पटेल चौक को जोड़ती है, वो जो उस रास्ते से अगर आप आएंगे तो वहां से एंट्री नहीं है। लेकिन जो ये सामने का रास्ता है, ये जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस से जुड़ता है, जनपद से जुड़ता है, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इधर से एंट्री बैन नहीं की गई है, ये जो एंट्री है ये ओपन है और यहां से आने दिया जा रहा है और लोग आराम से यहां पर मूवमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन आगे की तरफ का जो मूवमेंट है वो यहां पर पूरी तरीके से बंद किया गया है, जो दूसरी तरफ का मूवमेंट है। देखिए किस तरीके का, देखिए प्रोटेस्ट, देखिए ये आप देख रहे हिमांशु की क्या एक जो जो जो जो ये आप कंडीशन दे रहे हैं, ये देखिए किस तरीके का रिएक्शन है भीड़ की तरफ से, ये चंद लोग हैं जो यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप ये देखिए और यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि जो भीड़ है उसको पुलिस आखिर कंट्रोल करे भी तो कैसे करे, क्योंकि अलग अलग डिमांड है, अलग अलग तरीके के लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, तो कोई कुछ भी डिमांड कर रहा है, कोई कुछ भी कभी भी किसी भी
1: तरीके। हिमांशु ये बात ठीक है, लोगों की भावनाओं, लोगों की भावना यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह एक बार फिर यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 दिन सोनम वांगचुक को हो चुके थे भूख हड़ताल करते हुए, सेहत खराब होती जा रही थी, 8 किलो से ज्यादा वजन उनका कम हो गया था, 8 से 9 किलो बताया जा रहा था, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, उनका उनका हेल्थ चेकअप कर रही थी, हाईकोर्ट की तरफ से भी उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए थे, और जब डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंचती है, उनकी हेल्थ चेकअप करती है, तो जरूरत होती है उनको अस्पताल में भर्ती कराने की, और उसके बाद उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए। क्या कहा गया था आज सुबह जो भी पुलिस की तरफ से किया गया है वो सुनते हैं।
2: ऑनरेबल, हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
1: और देखिए इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है कि हालत स्थिर बताई जा रही है सोनम वांगचुक की, इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की जांच कर रही है, निगरानी कर रही है, और जो भी उनको इस वक्त जरूरत है वो उन तक मदद मुहैया कराई जा रही है। सोनम वांगचुक होश में है, स्थिति फिलहाल स्थिर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु जो समर्थक वहां पर जुड़े हुए हैं, जो युवा वहां पर हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, ठीक है, उनको फिक्र हो रही है, लेकिन एक अच्छी खबर ये आई है कि सोनम वांगचुक होश में है, उनकी स्थिति स्थिर है, स्थिर है।
0: तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ की अगर मैं आपको बताऊं, एक तो वहां पर हालत स्थिर है, ये जो शुरुआती जांच हुई है, दूसरी चीज यहाँ पर जो बातचीत हुई है कि यहाँ पर कंडीशन नॉर्मल है, पुलिस ना तो यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाने की अभी किसी तरीके की कोई बात है, सिचुएशन को पूरी तरीके से नॉर्मल रखा गया है, जो एंट्री एग्जिट है जिस रास्ते को हम अभी दिखा रहे थे कैमरे में, वो रास्ता अभी पूरी तरीके से ओपन करके रखा गया है, नॉर्मल करके रखा गया है, ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, यानी प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा था वो चलेगा। यहाँ पर पुलिस का साफ तौर पर बस ये कहना है कि जो मेडिकल कंडीशन थी, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पर सीधे प्रशासन की बनती कि अगर कोई तबीयत खराब होती या किसी तरीके की सोनम वांगचुक को दिक्कत होती मेडिकल, तो वो रिस्पांसिबिलिटी थी, और वो कोर्ट के आदेश पर जो कुछ भी किया गया वहां से इनको यहाँ से हटाना, इनकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन जानना क्या कंडीशन है, ये बेहद जरूरी था। तो इसलिए जो डॉक्टर्स ने किया, जो कोर्ट के आदेश पे, उसमें पुलिस ने सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और किसी तरीके का कोई भी किसी के भी आने या जाने पर रोक नहीं है, कोई तरीके का रोक नहीं है, और लोग जो है वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, चाहे कोई भी आए जाए, यानी प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा है, और ये जो है और
3: जरूरी था, बोले
0: और उसके बाद है ना, और देखिए आप अपने आप प्रोटेस्ट करिए और हमें अपना काम करने दीजिए, आप प्रोटेस्ट करिए हमें अपना काम करने दीजिए। और ये देखिए, ये जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं इनकी अपनी अलग ही वो है, उनके हिसाब से यहाँ पर जो मेडिकल कंडीशन थी वो यहाँ पर पुलिस ने जो किया वो अलग चीज है, और पुलिस यहाँ से फिलहाल हिमांशु लोगों को हटा नहीं रही है, ये बात एकदम क्लियर किया गया है। तो ये जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं, आप देखिए किस तरीके का इनका जो कंडीशन है वो यहाँ पर बना हुआ है,
1: देखिए ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, लेकिन ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां से जो प्रदर्शनकारी थे, यानी जो छात्र थे, युवा थे, उनको हटाया नहीं जा रहा है, वो वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं सोनम वांगचुक को, उनको नहीं हटाया जा रहा है, ना ही वहां पर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो जरूरी था वो जरूरी था सोनम वांगचुक की जो सेहत लगातार खराब होती जा रही थी उस सेहत का ध्यान रखना, डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि जब चेकअप किया जा रहा था तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का भी डर सताया जा रहा था, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी था उनका इलाज। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम वांगचुक को लेकर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है कि बीजेपी सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है, और सोनम वांगचुक को हटाना सिर्फ कार्रवाई नहीं है, डिंपल यादव कह रही है कि ये सिर्फ कार्रवाई नहीं। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी के पास हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, सियासत हो रही है वो होती रहेगी, बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन मौके पर अब और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? ये भी बताया जा रहा है कि हालत तो अभी बिल्कुल स्थिर है, प्रदर्शनकारियों को वहां पर रहने दिया जा रहा है, उनको हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी वहां पर क्या स्थिति बन रही है?
0: देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल है फिलहाल, क्योंकि ये स्टेज का जो पूरा हिस्सा हिमांशु अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो सामने का जो टेंट है वहां पर जो तमाम जो है प्रोटेस्टर्स वो पहुंच गए हैं, आने जाने का रास्ता सामने वाला बिल्कुल ओपन है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी यहाँ पर जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पर पुलिस ने जो लोग, क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं इनका कोई एक लीडर यहाँ पर नहीं है जिससे बात करके भीड़ को या लोगों को कोई मैसेज दिया जा सके या फिर उनको कुछ बताया जा सके, तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर बस एक चीज क्लियर कर दिए कि किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस जो प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट साइट है, इसको अभी न तो खाली कराया जा रहा है, न प्रोटेस्ट को यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है या यहाँ से प्रोटेस्टर्स को आने से रोका जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है जो लोग हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो वहां पर ओपन कर दिया गया है। और आप ये देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके की भगदड़ की कंडीशन भी यहाँ पर मौजूद बन रही है, बार बार यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की भी देखने को आ रही है, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर रोक रहे हैं कुछ लोगों को, देखिए किस तरीके से ये जो शख्स है वो यहाँ पर लगातार जो है ये कंडीशन यहाँ पर बन, ये देखिए ये सामने की तस्वीर है कि कुछ लोग एकदम से अंदर से जैसे वो धक्का मुक्की करते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं। अब आप देखिए चूंकि पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर किस तरीके की लेयर है वो यहाँ पर बनी हुई है, तो वो जो शख्स है वो पूरी तरीके से एकदम धक्का मुक्का करते हुए वो आगे की तरफ आया है, अब उसकी क्या वजह है ये जानना होगा, देखते हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी तक सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर थे, लेकिन उनकी संख्या चूंकि कुछ लोग यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उनकी संख्या भी धीरे धीरे दूसरी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस की यहाँ पर जो लेडी पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको एक तरफ जो पुलिस की टीम है, जो आला अधिकारी है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, यहाँ से हम किसी को ना तो हटा रहे हैं ना फिलहाल किसी को यहाँ पर आने से रोका जा रहा है।
1: लेकिन हिमांशु, यहाँ पर युवाओं के मन में और जो समर्थक है सोनम वांगचुक के, उनके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा, और वो सवाल ये भी चल रहा होगा कि 20 तारीख को जिस बात का जिक्र सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि 20 तारीख तक मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मानसून सत्र और संसद के मार्च तक की बात वहां पर कही गई थी सोनम वांगचुक की तरफ से, और उससे पहले ठीक है ये हाईकोर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग के लिए कहा गया था कि सेहत की जाँच होनी चाहिए, और उसी के बाद डॉक्टर्स की टीम उनको लेकर गई है सफदरजंग अस्पताल। अब संजय सिंह का भी बयान आ गया है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की मांग सुनने की जगह उनको हटाया गया, ये संजय सिंह कह रहे हैं। तो देखिए पहले डिंपल यादव का बयान आ गया, अब संजय सिंह का बयान आ गया कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं। सांसद सोनम वांगचुक को लेकर पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव का बयान सामने आता है, और उसके बाद अब संजय सिंह का भी बयान सामने आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलेगा। हिमांशु बने हुए हमारे साथ। हिमांशु, वही बात कि डॉक्टर्स का इस वक्त इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था सोनम वांगचुक के लिए, उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा, युवाओं के मन में यह भी चल रहा होगा कि 20 तारीख से पहले जब मार्च करने वाले थे संसद, उससे पहले इस तरह की कार्रवाई सवाल खड़े करती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट थी पॉलिटिकल पार्टी के कहिए या सेलिब्रिटीज के कहिए, तो ये जो सामने आप स्टेज देख रहे हैं इस पे मूवमेंट अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो सेलिब्रिटीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ स्टेज पर आए और उन्होंने अपना समर्थन, यहाँ पे सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे थे उनको उन्होंने अपना समर्थन दिया। और इस बीच चूंकि अब मंडे से पार्लियामेंट शुरू है, तो यही सवाल जो है यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स के द्वारा उठाया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा उठाया जा रहा है कि सरकार ने इस चीज को प्लान करके किया है ताकि जो प्रोटेस्ट है वो आगे थोड़ा कमजोर पड़े। जिस तरीके से अभी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू है, तो इसलिए यहाँ पर ये किया गया है। वहाँ पर पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कुछ भी किया गया वो सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन को देखकर किया गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये अब आगे जो यहाँ पर जो अभी की तस्वीर इसमें किस तरीके का जो बदलाव है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टर्स अभी सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर अब ज्वाइन भी हो रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ भी रही है। और यहाँ पर आप देखिए जो सामने का हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो प्रोटेस्टर्स एक तरफ जो है वो एकत्र है, वहीं पर उनकी संख्या ज़्यादातर है। और सामने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ओपन है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और अब पुलिस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि शुरुआती जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर दी गई है। जो अधिकारी आगे बातचीत जिनकी हो रही है कि भाई कंडीशन नॉर्मल है, और दूसरी तरफ इनके साथ के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ के लोग भी जो सोनम वांगचुक के साथ साथ गए थे वो भी वहाँ पर मौजूद है, हॉस्पिटल मौजूद है, और वहाँ से ये लोग खुद भी लगातार कॉन्टैक्ट में है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है। जो 20 तारीख के लिए जो इनका मार्च यहाँ से आगे के लिए पार्लियामेंट तक के लिए जो प्रस्तावित है उसको लेकर के क्या ये रणनीति बनाते हैं इसको।
1: और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि 20 तारीख को आने में अभी वक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त सोनम वांगचुक की तबीयत थी और उसमें सुधार बहुत ज्यादा जरूरी था, जो लगातार बिगड़ती जा रही थी। सफदरजंग अस्पताल में है, स्थिर है, होश में है, यह अच्छी बात है, लेकिन सियासत होने लगी है मानचू, पहले डिंपल यादव और अब संजय सिंह।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन जो मेडिकल कंडीशन है जो उसको देखने की जिम्मेदारी भी थी। यहाँ पर जब हमने कुछ अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि सोनम वांगचुक की तबीयत की जिम्मेदारी सीधे प्रशासन को देखनी थी, अगर कुछ भी तबीयत खराब होती या ज्यादा गड़बड़ होती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और प्रशासन जो थी उसकी होती। तो ऐसे में जब कोर्ट ने साफ किया तो उसके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की गई। और दूसरी तरफ पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रोटेस्ट को न तो यहाँ से हटाया जा रहा है, न प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है, न किसी को यहाँ से आने से रोका जा रहा है, यानी जो प्रोटेस्ट साइट।
1: अच्छा हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे दर्शकों को बताना है कि सुबह से लगातार अभी तक हुआ क्या। देखिए अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन अब से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, उनके साथ में आरएएफ के जवान भी मौजूद रहते हैं, सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस मौजूद रहती है, डॉक्टर्स की टीम उनके साथ में होती है, मंच पर जाते हैं, सोनम वांगचुक की मेडिकल चेकअप करते हैं। अब वहां पर डॉक्टर्स को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है उनका अस्पताल में इस वक्त होना, उनका अच्छा इलाज होना, क्योंकि सेहत में गिरावट हो रही थी, उनका वजन लगातार घटता जा रहा था, उनको बीपी से लेकर कई तरह की दिक्कत थी, और डॉक्टर्स ने यह कहा कि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो उनके ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए तुरंत उनको डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया, और ये वो तस्वीरें हैं जब मंच से डॉक्टर्स की टीम उनको अस्पताल ले जा रही थी। उस वक्त सोनम वांगचुक अपने हाथ उठाकर, जो समर्थक जो युवा उनके वहां पर मौजूद थे उनका अभिवादन करते हैं, आरएएफ के जवान भीड़ को वहां पर रोकती है, और उसके बाद मंच से उनको सीधे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ वक्त के लिए नाराजगी युवाओं में जरूर रहती है कि अचानक से सोनम वांगचुक को ऐसे ले जाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जबरन ले जाया जा रहा है और प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, ऐसा युवा सोचते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यह बयान सामने आ जाता है कि सोनम वांगचुक इमरजेंसी में पहुंचे थे सफदरजंग अस्पताल, स्थिर हैं, होश में हैं, और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनकी सेहत की जांच की जा रही है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं और उनका स्वास्थ्य में सुधार हो सके उसकी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो युवा कार्यकर्ता मौजूद थे, जो समर्थक थे, छात्र थे, उनको आने से रोका नहीं गया है। पुलिस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी को नहीं रोका गया है, वो लोग जहां पर हैं वहां पर वो प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर वो बैठे हुए हैं, किसी को नहीं रोका गया, किसी को नहीं हटाया गया। कुछ जो प्रदर्शन जो वहां पर लगातार कोशिश कर रहे थे पुलिस के आमने सामने, उनको वहां पर रोका गया, लेकिन बाकी जो भी आ रहा है उनको वहां पर कोई मनाही नहीं है। पुलिस की तरफ से बयान भी जारी हो गया है, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग के आदेश दिए थे सोनम वांगचुक की, और उसके बाद जरूरत लगी तो उनको अस्पताल पहुंचाया गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, और क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? ये अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक स्थिर हैं, होश में हैं, उनकी तबीयत में सुधार अब होगा क्योंकि डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी इस वक्त कर रही है।
0: जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम यहां पर आ रही थी जब तक संभव था, वो उनका कहना है जो हमारी बातचीत हुई है कि जब तक संभव था यहीं पर डॉक्टर्स की टीम चेकअप करती थी और जो जरूरी कदम थे उनकी सेहत से जुड़े वो लिए जाते थे, लेकिन अब जब जरूरी लगा, क्योंकि ये डिसीजन पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर की तरफ से था कि अब जब जरूरी लगा तो उनको यहां से इमरजेंसी ले जाने का फैसला किया गया। पुलिस ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी, यहां पर हालात न बिगड़े इसके लिए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया कि जो छात्र यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट विंग से किसी जुड़े हों या जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर हालात कंट्रोल में रहे, इसके लिए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया और साथ ही साथ कोई अड़चन न पैदा करे सोनम वांगचुक को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो उसको यहाँ पर ध्यान दिया गया, इसलिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई। अब दूसरी तरफ आप देखिए जो कंडीशन है वो यहाँ पर अब सेम है, अब इंतजार है, यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर है वो वीडियोस अपने अपने हिसाब से पोस्ट किए जा रहे हैं, व्यूज पोस्ट किए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शंस आना शुरू हो चुके हैं, तो इसके जो जो जो रिएक्शंस हैं वो अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पर कुछ लोग हैं उनकी संख्या में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर ये एक्शन लिया गया हिमांशु उस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, प्रदर्शनकारी सुबह के वक्त में जो होता है वो सबसे कम होते हैं और शायद डॉक्टर्स की टीम और पुलिस ने वो वजह भी इसीलिए चुना कि वो मुफीद रहेगा कि अगर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो जानकारी लगातार आ रही थी कि किस तरीके से वजन कम हो रहा है और अब उसके उल्टे प्रभाव जो लगातार 20 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे थे उन पर दिखने लगे थे, उनके मूवमेंट पे दिखने लगे थे, और इस वजह से डॉक्टर्स की टीम जब यहाँ पर आई और उन्होंने जो डिसीजन लिया तो पुलिस ने उनको यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचवाया। अब यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है, पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके में एक तो लगातार हर जगह पर सीसीटीवी बना के रखा गया है ताकि एक एक चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके, इस पूरे साइट को सिक्योर बनाया जा सके। इस पूरे साइट को आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड किया गया है और सबसे बड़ी बात यह हिमांशु कि यहाँ पर सिर्फ CJP का ही प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो कई सारे और भी जो संगठन है वो अपनी अलग अलग मांग।
1: हिमांशु मैं आपको रोकता हूँ, इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, और जो भी नई खबर आ रही है सबसे पहले बताया जा रहा है सोनम वांगचुक पर अब आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया, लोकतंत्र जबरन बेशर्मी से तोड़ा जा रहा है, ये आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है, तो पहले डिंपल यादव की तरफ से आया, आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि अयोग्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है सरकार, लोकतंत्र जबरन बेशर्मी से तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह की तरफ से बयान आता है, और अब शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से आदित्य ठाकरे का एक बयान आता है कि लोकतंत्र जबरन बेशर्मी के साथ तोड़ा जा रहा है। हिमांशु, आपने इस तरह की बहुत सी खबरों को कवर किया है, विश्लेषण भी किया है, क्या कहता है आपका अनुभव, अब यह किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सोनम वांगचुक, उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं था, वो छात्रों की बात, युवाओं की बात कर रहे थे, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और उद्धव शिवसेना अब सामने आ गए।
0: बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे जो उनका समर्थन, ये अभी से नहीं, अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के मूवमेंट पे, तो एक हफ्ते का जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। ये जो सामने का जो स्टेज है, ये स्टेज अब धीरे धीरे तमाम जो वीवीआईपी पॉलिटिशियंस हैं या सेलिब्रिटीज हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो चुके थे, लोग बढ़ने लगे थे अब यहाँ पर, तो लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका था। और अब उसको लेकर के, क्योंकि जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसको समर्थन यहाँ पर अपनी तरफ से जाहिर भी किया जा रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो तमाम जो सेलिब्रिटीज हो, उनकी तरफ से यहाँ पर उनको अब समर्थन दिया जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की भीड़ भी, क्योंकि जब कोई यहाँ पर आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है या किसी तरीके से कोई यहाँ पर ज्वाइन करता है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, तो उसके साथ उसके लोग, उसके समर्थन के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती है। तो जो परिस्थिति आज से 20 दिन पहले थी, वो परिस्थिति अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोगों का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लोग भले ही एक बार में यहाँ पर आके रुक नहीं रहे थे, लेकिन लोगों का जो आना जाना था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। ये देखिए, ये सामने जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये स्टेज के राइट साइड पे आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर वो नज़र इसके, और चारों तरफ यहाँ पर पुलिस है। दूसरी तरफ हम जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर पुलिस की टीम जो है यहाँ पर भी मौजूद है, और इस इलाके को काफ़ी हद तक सैनिटाइज करके रखा गया है, ताकि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो। हम डीसीपी सर हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे हम कोई रिएक्शन ले सके, उनसे हम बात कर सके, जो नई दिल्ली इलाके के हैं। सर, कुछ कहना सर, क्या मेडिकल कंडीशन है, कुछ जानकारी आप?
3: अभी मेडिकल टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो जैसे भी आगे होगा तो बता दिया जाएगा।
0: और सर, क्या यहाँ से प्रोटेस्टर्स को, इस साइट को खाली कराया जा रहा है?
3: अभी सिचुएशन देख रहे हैं, स्थिति अंडर,
0: किसी को आने जाने से रोक रहे हैं?
3: नहीं।
0: तो ये डीसीपी नई दिल्ली जिन्होंने क्लियर किया कि किसी को आने जाने से नहीं रोक रहे, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, तो सिचुएशन पर नजर बना करके पुलिस रखी हुई है, किसी को आने जाने से नहीं रोका जा रहा है, और मेडिकल जो कंडीशन है उसको लेकर के उनका बयान था कि जो
1: हिमांशु आप नजर बनाए रखिए, लेकिन देखिए एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, अब एक और बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर, वो भी बता देते हैं। और सोनम वांगचुक को लेकर जो बड़ी खबर है, आरएमएल अस्पताल की सिफारिश, सोनम को तत्काल इलाज की जरूरत है, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से कहा गया था, जो एक लेटर में, ये देखिए 13 जुलाई को आरएमएल अस्पताल ने सोनम वांगचुक की जांच की थी, 13 जुलाई को, अब आज 6 तारीख हो गई, आज हो गई 18 जुलाई, आरएमएल अस्पताल में तत्काल भर्ती करने को कहा गया था। अब आज दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है, सोनम वांगचुक पर आरएमएल अस्पताल की सिफारिश, और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, चेकअप किया गया था 13 तारीख, और जब चेकअप किया गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि उनको तत्काल इलाज की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से कहा गया था 13 जुलाई को, जब जांच की गई थी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। हिमांशु बने हुए हमारे साथ, हिमांशु 13 जुलाई को जांच हुई थी आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से सोनम वांगचुक की, और तब कहा गया था कि उनको तत्काल इलाज की जरूरत है, उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन और हो जाते हैं, तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, वजन और कम हो जाता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उनको अस्पताल में पहुंचाना, तब डॉक्टर्स की टीम उनको सफदरजंग अस्पताल आज लेकर जाती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और जो लगातार जो मॉनिटरिंग थी, उस मॉनिटरिंग के जरिए भी जो पुलिस को है वो रिपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तो आ ही रही थी, और डॉक्टर्स की टीम जिस तरीके से जो रोज की रिपोर्ट बन रही थी यहाँ पर, डेली एक रिपोर्ट तैयार होती थी, और वो रिपोर्ट जो है वो शेयर की जाती थी, तो शायद वही रिपोर्ट आधार बनी, जिसके बाद यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ले जाने की सोची, क्योंकि अब यहाँ पर शायद इलाज पॉसिबल नहीं लगा, जिसको ध्यान में रख करके फिर उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो फिलहाल जो यहाँ की कंडीशन है वो ये कि डॉक्टर्स के उस पर यहाँ से सोनम वांगचू को ले जाया गया है, उनसे उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। वहाँ पूरी डॉक्टर्स की एक टीम थी जो पहले से तैयार थी, जो नज़र बना के रखी हुई थी पहले से, और वहाँ पर उनके जाते ही जो तमाम ज़रूरी टेस्ट हैं सोनम वांगचुक के सबसे पहले वो किए गए। उसके बाद उस टेस्ट के बाद नज़र ये देखा गया कि किन किन तरीकों के इलाज की ज़रूरत है, किस तरीके की मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रख करके आगे के एक्शन लिए गए। और यहाँ की अगर हम कंडीशन की बात करें, क्योंकि सोनम वांगचुक के बाद प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें कि यहाँ की क्या कंडीशन है, तो प्रोटेस्ट साइट पर आप देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट है, मूवमेंट फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी तरीके से मूवमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो हालात पर नज़र बना के रखे हैं, किसी को रोका नहीं है लेकिन हालात पर नज़र बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो कोशिश है, जो पुलिस की टीम है वो लगातार संपर्क में है, और ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो भी यहाँ आ रहा है वो ये जान ले कि ये एक्शन जो लिया गया है वो सोनम वांगचुक की सेहत को ध्यान में रख के लिया गया। वो देखिए एक बार फिर से लोग यहाँ पर किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो रह रहकर यहाँ पर उग्र हो जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो अगर आप कहेंगे तो मीडिया को देख करके वो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो बुरी तरीके से उग्र हो जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस का जो हस्तक्षेप है वो भी कई बार देखने को यहाँ पर मिला है। अब सामने का जो रास्ता है वहाँ पर कई और जो पार्टी के कई और लोग जो है प्रोटेस्टर्स वो भी बैठे हुए हैं, उनकी भी मूवमेंट है। तो यहाँ पर किसी तरीके का जो प्रोटेस्ट साइट है उसको किसी तरीके से न तो ब्लॉक किया गया है, न रोका गया है, न किसी को आने से जाने से, लेकिन जो कंडीशन है वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में बनी रहे, इसके लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल रूम एक बनाया गया है जहाँ पर लगातार सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है, पूरे प्रोटेस्ट साइट पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके को सिक्योर रखना भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार कंट्रोल रूम के भी संपर्क में हैं, और जो सिचुएशन है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
1: और हिमांशु, अभी जब आप भी अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी जो हमारी प्राथमिकता थी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था, वो था सोनम वांगचुक की सेहत, और इसीलिए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उनके मेडिकल टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, अलग अलग मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत की पूरी जांच कर रहे हैं और उनको ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बहुत ज्यादा होता है। 20 दिन अन्न का दाना नहीं गया, उपवास पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और मांग क्या थी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की उनकी मांग थी। और ऐसे में जब सेहत बिगड़ती गई, वजन कम होता गया, 13 जुलाई को आरएमएल अस्पताल की वो चिट्ठी आपको दिखाई जहां पर कहा गया था कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, तत्काल इलाज की उनको जरूरत है, उनको आरएमएल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए 13 जुलाई को। उसके बाद 5 दिन और हो जाते हैं, 18 तारीख हो जाती है, आज सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत की मॉनिटरिंग करते रहिए सोनम वांगचुक की। उसके बाद आज पुलिस की टीम, आरएएफ के जवान, डॉक्टर्स की टीम जाती है मंच पर, और जब जांच की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है उनकी सेहत की, तब पता चलता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, वजन बहुत कम हो गया, बीपी की दिक्कत आ रही है और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। उसके बाद तुरंत डॉक्टर्स की टीम उनको अस्पताल भर्ती करने की बात कहती है और फिर उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। अधिकारियों की तरफ से बहुत स्पष्ट किया गया कि कोई लाठीचार्ज हमने नहीं किया है, किसी भी तरह का बल प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है, वहां पर जो युवा हैं, समर्थक हैं, उनको हटाने के लिए वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये बहुत स्पष्ट किया गया है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जब हिमांशु मिश्रा उनसे बात कर रहे थे। हिमांशु,
0: जी हिमांशु, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो थी वो दो तरीके से, क्योंकि जब पुलिस की टीम आई थी तो उनको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर विरोध हो सकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया, नंबर एक। नंबर दो, जो वक्त चुना गया आप देखिए, वो वक्त वो चुना गया कि कम से कम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई साथ में डॉक्टर्स थे तो डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि इनको अभी अब मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तमाम जो टेस्ट है वो 24 आवर अब उनको निगरानी में रख के किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वक्त लंबा था और लगातार वजन उनका कम हो रहा था। तो कहां पर किस तरीके का बॉडी में रिएक्शन है ये समझने के लिए कंप्लीट बॉडी टेस्ट की जरूरत है, तो उसके बाद यहां से उनको ले जाया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में। और अब कुछ ही देर में, चूंकि कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है, अब कुछ देर में एक मेडिकल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, एक बुलेटिन जारी होगा, उससे एकदम स्पष्ट होगा कि सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन क्या है और कितने दिन उन्हें हॉस्पिटलाइज रहने की
1: जरूरत है। मानसी बने रही है हमारे साथ, लगातार बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, सफदरजंग पीआरओ का बयान आया है सोनम वांगचुक को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है, ये सफदरजंग पीआरओ की तरफ से कहा गया है कि उनको भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया था कि कई तरह के टेस्ट किए गए हैं, मेडिकल टेस्ट होंगे और जल्द आधिकारिक बयान भी जारी करेंगे। एक बार वो रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है उसके बाद जल्द वो बयान जारी करेंगे। स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये सफदरजंग अस्पताल के जो पीआरओ हैं उनका बयान सामने आया है। हिमांशु, बयान सामने आओ, जैसा कि ये बता रहे थे कि मेडिकल जांच की जा रही है, कई टेस्ट भी कराए जाएंगे, और आमतौर पर होता है कि जब भी कोई पेशेंट होता है, जब वो अस्पताल जाता है तो मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता चल सके कि अभी सेहत कैसी है, अभी अंदर सिस्टम कैसा काम कर रहा है, तो उसके बाद ही बयान, आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा, ये पीआरओ की तरफ से कहा गया सफदरजंग अस्पताल के।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी जो डॉक्टर्स की टीम है, सबसे पहले जो है वो तमाम टेस्ट किए गए हैं, और इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल है जो जब यहाँ पर वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और यहाँ पर उनके जो डेली मेडिकल जो जांच होती थी उसके लिए जो डॉक्टर्स आते थे, यानी कि जो लगातार जाँच में मेडिकल उनके जुड़े हुए थे, उन डॉक्टर्स को भी रखा गया है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से उनकी मेडिकल कंडीशन और जिस तरीके से उनका हेल्थ कमजोर होता जा रहा था तो उसको लेकर के उन्हें अच्छे तरीके से जानकारी है। तो ये सभी लोग उस टीम में मौजूद है जो टीम सोनम वांगचुक की जांच कर रही है हॉस्पिटल में, और अब कुछ देर के बाद जब मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा हॉस्पिटल हिमांशु, तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की दिक्कत और कहां क्या जो 19 दिन का जो 20 दिन का इंपैक्ट रहा है सोनम वांगचुक पे हंगर स्ट्राइक का वो आया है और कितना वक्त उनको लगेगा अब नॉर्मल होने में, और ये सारी चीजें अब हॉस्पिटल से जब बुलेटिन जारी होंगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो आप प्रोटेस्ट साइट देख रहे हैं इसको भी कंट्रोल में रखना ये एक पुलिस की जिम्मेदारी थी, तो पुलिस का कहना है कि वो नजर बना के रखे हुए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट साइट पे तमाम जो अधिकारी हैं। अब आप सोचिए ब्लॉक में इसको पूरा इस जगह को डिवाइड किया गया है, यानी ये जो पूरा प्रोटेस्ट साइट आप जंतर मंतर जो शुरू होता है अशोक रोड से और यहाँ सामने संसद मार्ग तक जो पूरा इलाका पहुंचता है, तो इसको जोन में अलग अलग बांट के अलग अलग अधिकारी।
1: अच्छा हिमांशु, मैं आऊंगा आपके पास, और भी कई सारे सवाल है जो मुझे लगता है कि मैं आपसे पूछूं और उनका जवाब मिले, जनता जानना भी चाहती है कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जहां सोनम वांगचुक को ले जाया गया है सफदरजंग अस्पताल, ठीक वहां से आप अनमोल बाली जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़ गए, उनको आप देख भी सकते हैं। अनमोल, क्या जानकारी आपके पास आ पा रही है अभी तक?
4: हिमांशु, अभी मैं आपको तस्वीरों में अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बाहर की तस्वीरें, कि कैसे यहां पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं यहां पर तैनात किए गए हैं, महिला और पुरुष दोनों जवान तैनात किए गए हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी यहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आरएफ के जो जवान है एंटी राइट गियर के साथ, और साथ ही विक्रांत जो दिल्ली पुलिस के भी जवान है यहां पर तैनात किए गए, विक्रांत वाहन भी यहां पर और बैरिकेडिंग भी यहां पर है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहां पर जो सोनम वांगचुक जो है जिनको डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस ने, जिनको यहां से अपना जंतर मंतर से उठाकर यहां सफदरजंग हॉस्पिटल लाए थे, और सफदरजंग हॉस्पिटल के आधिकारिक सूत्रों का भी ये कहना है कि हां उनको यहां पर एडमिट कराया गया है, उनकी जो निगरानी है वो की जा रही है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन थे जिसको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक्शन लिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि एक मेडिकल डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाए और उनकी जो सेहत है उस पर नजर रखी जाए। सबको देखते हुए जो इस समय सुबह सुबह देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी एक कार्रवाई जंतर मंतर पर की, जहां देखा गया कि 21 दिन जो सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन को थे, जो उनका हंगर स्ट्राइक चल रहा था उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां पर बड़ी कार्रवाई की, और सुरक्षा को देखते हुए कि भीड़ ना यहां पर जुट पाए जो सोनम वांगचुक के समर्थक।
1: अब इलाज उनका चल रहा है और बहुत जल्द आधिकारिक बयान सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
6: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
7: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।
10: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि तिल के दानों के प्रयोग से आप शनि की तमाम समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, तिल के दानों के प्रयोग से आपको किस तरीके से लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम के 6 बजे तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:59 तक, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि तिल के प्रयोग से, तिल के दानों के प्रयोग से आप शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण ऑयल कंटेंट पाया जाता है। तिल के बीज 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं, लेकिन शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक और केश वर्धक होता है। तिल के दाने संतान उत्पत्ति की क्षमता को और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। सामान्यतः पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है।

जाता है, तेल जलाने में भी, दान करने में भी और अर्पित करने में भी। तो जब आप शनि संबंधी समस्याओं का समाधान करने जाते हैं तो आपको काले तिल के दानों की जरूरत पड़ेगी। तिल के ऊपर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का

शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तिल के दानों के प्रयोग पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जानते हैं कि अगर शनि की वजह से आयु की समस्या हो या लंबे समय से बीमारियों से आप परेशान हैं तो क्या उपाय करेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाइएगा, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। इसके बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा या शनि चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद तिल के लड्डुओं का दान करें या काला तिल 250 ग्राम, आधा किलो, एक किलो, जितना संभव हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल का दान करिएगा। अगर ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करें तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तिल के दानों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, काले चने का अगर

उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उमेश कुमार जी ने पूर्वी चंपारण बिहार से लिखा है। 7 अगस्त 1961 का जन्म है। 6 बजे शाम को पूर्वी चंपारण बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं अपने 2 फ्लैट बेचना चाहता हूं और बेच करके एक नया फ्लैट लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा फ्लैट नहीं बिक पा रहा है, तो फ्लैट कब तक बेच पाऊंगा, नया फ्लैट कब तक ले पाऊंगा। उमेश जी, आपकी कुंडली है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। अक्टूबर 2026 के बाद और साल 2027 के मार्च के पहले यानी इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में आप अपने फ्लैट बेच पाएंगे और अगले साल मार्च के बाद नया मकान या नया फ्लैट खरीद पाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय अक्टूबर तक थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा बचिएगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर शनि की वजह से आपकी कुंडली में आपके जीवन में दुर्घटना के योग बन गए हों, मुकदमेबाजी की या बदनामी की, अपयश की स्थिति बन गई हो, तो क्या उपाय करेंगे? एक चुटकी काला तिल जल में डाल करके इस जल से शनिवार को स्नान करिए। एक लोटे में एक चुटकी काला तिल डालिए और इस जल को सूर्य देव को अर्पित करिए। शाम के समय में भोजन में जरा सा तिल छिड़क करके तिल से बनी हुई या तिल मिली हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। और इसके अलावा शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं क्रूराय नमः, ओम शं क्रूराय नमः। किसी भी शनिवार को ये प्रयोग शुरू करिएगा और लगातार 3 शनिवार को करिएगा, दुर्घटना, अपयश और मुकदमेबाजी के मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शनि की खराब स्थिति की वजह से रोजगार की समस्या बन जाती है। अगर रोजगार की समस्या बन गई है, एक एक पैसे को लेकर के कष्ट उठाना पड़ रहा है, न नौकरी चल पा रही है, न व्यापार चल पा रहा है, तो क्या करेंगे? शनिवार की शाम को एक विशेष प्रयोग करिएगा। नीम की या शमी की लकड़ी ले लें, इसको तिल के तेल की सहायता से और कपूर से जला लें। अब काले तिल की
चुटकी चुटकी कर करके 108 बार आहुति डालें, अग्नि में डालिएगा और हर आहुति पर कहिएगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। हर शनिवार को ये प्रयोग करते जाइए और तब तक ये प्रयोग करिए जब तक आपके रोजगार की समस्या पूरी तरह से दूर ना हो जाए। काले तिल के अन्य उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पी।

जी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से विष योग बना है शनि चंद्रमा का, या कोई बुरा योग बना है शनि राहु का, सूर्य शनि का, शनि नीच राशि में निगेटिवली बैठा हुआ है, कोई नकारात्मक योग शनि का है और उसकी वजह से जिंदगी में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएंगे उसमें चुटकी भर काला तिल डालिएगा। हर शनिवार की शाम को बहते हुए जल में एक चुटकी काला तिल डालिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें, जल में तिल डालकर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शनिवार को बहते जल में काला तिल डालें, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली के बुरे योग समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती है और धनु राशि पर, सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, क्या करना चाहिए? रोज सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर काला तिल डालिएगा और इसके बाद इसी जल से स्नान करिएगा। घर से निकलते समय तिल के दो चार दाने चबा करके तब निकलिएगा और हर शनिवार की शाम को या रात के समय में घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो शनि की साढ़े साती या ढैया का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्या किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन अगर आप करते हैं तो इससे किसी तरह का नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, अगर दूसरा व्यक्ति अशुभ संस्कारों वाला है या आपके लिए मन में अच्छे विचार नहीं रखता, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम रुक सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार की स्थितियों में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर।
अगला प्रश्न कपूर सिंह ने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 19 दिसंबर 1990, 9:38 प्रातः, बैजनाथ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। कपूर जी, आपके पुत्र की कुंडली है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु और अंतर दशा बुध की चल रही है। साल 2027 के शुरुआत में अप्रैल के पहले इनके विवाह होने की संभावना बनती है और वर्तमान में इनकी शादी तय हो सकती है, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाएं और आप अपने पुत्र के लिए हर बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके बेटे को लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत

शुभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक वालों के लिए, करियर की समस्या दूर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है, आज

लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुला, अब सरकार को बताया सबसे बेईमान पार्टी, कहा केंद्र के काम पर चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा भी महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव की दो टूक, का जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। और लगातार सातवें दिन अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला जारी, कई शहरों में धमाके, ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, कुवैत बहरीन में अटैक का सायरन, हॉर्मुज में मदद के दो तेल टैंकर। अरब वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का।

तेज दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनशन था। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, हालत स्थिर और वांगचुक होश में। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध, पुलिस ने संभाले हालात। डीसीपी ने कहा, हल्की झड़प के बीच बरती गई पूरी सावधानी। पुलिस का बयान, हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक अस्पताल शिफ्ट किए गए। बिगड़ती तबीयत के चलते मेडिकल सलाह के बाद पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। जंतर मंतर खाली करने की पुलिस की अपील, प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और जगह खाली करने को कहा। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। सोनम वांगचुक के भर्ती होने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। डिम्पल यादव ने सोनम वांगचुक मामले पर उठाए सवाल, कहा, शांतिपूर्ण विरोध को दबाना लोकतंत्र और संविधान पर हमला, ये तानाशाही है। डिम्पल यादव की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अनशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संजय सिंह ने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, कहा, 21 दिन से अनशन कर रहे वांगचुक की बात सुनने की बजाय जबरन गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदित्य ठाकरे ने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, कहा, भारत में लोकतंत्र को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है। ईरान के कई शहरों में धमाके, हॉर्मुज से गुजरने वाले दो टैंकरों में ब्लास्ट के बाद आग लगी। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि ईरान के कलंतरी पोर्ट स्थित यूएवी डिपो पर हवाई हमला किया गया, लगातार सातवें दिन हमला। ईरान ने कहा, बुशहर परमाणु संयंत्र पर कोई हमला नहीं हुआ, मीडिया के दावे बेबुनियाद है। इराक में स्थित ईरानी कुर्द विपक्षी संगठन के एक कैंप पर ड्रोन हमला, हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आईआरजीसी की अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने पर थाई झंडा लगे एक जहाज को निशाना बनाया। आईआरजीसी नौसेना ने दावा किया है कि जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और आईआरजीसी की अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार यजद शहर में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान ने दावा किया कि बुशहर के ऊपर अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। इस कार्रवाई में करीब 3,40,00,000 का अमेरिकी ड्रोन नष्ट। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर एक और खुले युद्ध अपराध का आरोप लगाया, कहा, हमला कर आम लोगों की जान लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है अमेरिका। ईरान के जिम्बाब्वे दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जिसमें अमेरिकी मौजूदगी में टूटे पुलों को पहले से बेहतर बनाने का जिक्र किया। ईरान के विदेश मंत्री बोले, हम अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। ईरान ने कहा, हमने उत्तरी हिंद महासागर में दुश्मन के जहाज पर क्रूज मिसाइल अदा की। रूसी सेना ने ओडिशा पर किया भीषण हमला, 2 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। जवाब में यूक्रेन ने रूस के समुद्री इलाकों से लेकर जमीन पर हमला किया। रूस ने कभी भी अमेरिकी चुनावों में दखल देने के आरोपों को गलत ठहराया। रूसी सरकार ने कहा, रूस ने कभी भी अमेरिका चुनावों में हस्तक्षेप नहीं किया। दक्षिणी नॉर्वे के डाउमन शहर के पास लगी भीषण आग, आग ने 100 से अधिक घरों को जला दिया। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली जिसके चलते सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके, दक्षिणी राज्य चियापास के तट पर आए 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। भूकंप से सुनामी की आशंका को देखते हुए करीब 10,00,000 लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। पेरू में एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, 14 लोगों की मौत, 5 घायल। गाजियाबाद की रैली में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, कहा, 10 साल पहले गुंडागर्दी और गैंगवॉर था यहां की पहचान, ना नीति थी ना नियत थी। सीएम योगी ने बिजनौर को दी 1,003 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात, 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बिजनौर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले, 2017 से पहले के मुख्यमंत्री यहां आने से डरते थे, आज विकास की पहचान बना जिला। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले, बिजनौर को अपशगुन बताने वाले नेता खुद अपशगुनी थे, हमें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन का योगी सरकार पर हमला, बोले, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है बीजेपी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा, राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के सबसे बड़े नेता पंजाब में ईमानदारी का भाषण देकर आए। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया।
राहुल गांधी ने पेपर लीक पर उठाए सवाल, बोले युवाओं का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। सीएम मोहन यादव का यूसीसी पर बड़ा ऐलान, बोले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करेगी सरकार। यूसीसी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा अब एक शादी करने वाले को ही मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। कांवड़ मेले को सुरक्षित सुगम बनाने को लेकर हरिद्वार में इंटर स्टेट बैठक, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी और एनडीआरएफ के आला अधिकारी शामिल। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की पार्टी को मिल सकती है मान्यता, जिसके बाद सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा एनसीपीसीआई। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, मिले जीत के प्रमाण पत्र। मुंबई में खुले दूध की बिक्री पर रोक से परेशान विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर संजय निरुपम एफडीए अधिकारियों से मिले, एफडीए से नियमों के पालन के लिए दो महीने का समय देने की मांग की। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को अस्पतालों की ओडी ओपीडी बंद रहेगी, डोंबिवली में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में आईएमए का ऐलान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना, शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता। महाराष्ट्र में सैयद समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 18 अगस्त को होगा जारी। स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आज उड़ान भरेगा। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 की लॉन्चिंग। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति को भेजा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन से हालत गंभीर, 7 की मौत, 113,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, दिन में अंधेरा छा गया। टेरी गढ़वाल में पुल के अभाव में सोंग नदी पार कर रहे स्कूल जा रहे बच्चे, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में तेज बारिश से दिन में अंधेरा छा गया। उत्तर बंगाल में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दार्जिलिंग कलिम्पोंग में भूस्खलन की चेतावनी जारी की। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कल तक भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नदियों में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर। गोरखपुर में शहर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, सड़कों पर पानी, वाहन चालकों को परेशानी। सूरत में ब्लैकस्टोन कॉरपोरेशन मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने काबू पा लिया। आवड़ा की 15 साल की राइफल शूटर लापता, रथ यात्रा में देखने के बाद नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर में बदमाश और पुलिस से मुठभेड़, पुल से गिरे 5 बदमाश, पिस्टल 1 दर्जन कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बांध में करंट लगने से 2 मासूम भाई बहन की मौत, खेलते समय पंखे से लगा करंट। जालौर में मुस्लिम युवती ने मजहबी दीवारें तोड़, हिंदू प्रेमी से रचाई शादी, वीडियो वायरल कर परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप, सुरक्षा मांगी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल के गुटली बाग इलाके में रिहायशी घरों में लगी भयंकर आग, कई मकान जल गए। अमृतसर में एक होटल में लगी भीषण आग, जनरेटर रूम में उठी लैपटॉप पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से बीड़ जा रही इलेक्ट्रिक बस में आग लगी, सभी सुरक्षित। गुजरात की राजकोट में सोफा फैक्ट्री में आग लगी, दम घुटने से 1 की मौत। गुरुग्राम में कल हुए पानी कारोबारी संघ विवाद में माफिया गैंग पर शिकंजा, गैंगस्टर कौशल चौधरी के 8 गुर्गे गिरफ्तार, 5 स्कॉर्पियो जब्त। टेहरी गढ़वाल में नशे मधुत पिकअप चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिससे कई स्कूटी और कार क्षतिग्रस्त। राजस्थान के पाली में बेकाबू टैंकर ढाबे में घुसा, कर्मचारी की मौत, 1 घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वाराणसी के चौबीपुर थाने में महिला दरोगा ने शिकायत लेकर पहुंची महिला को थप्पड़ जड़ दिए, वीडियो वायरल होते ही महिला एसआई पर जांच शुरू। यूपी के बदायूं में एक अस्पताल में 3 मोबाइल चोरी, वार्ड में घुसे चोर की हरकत, सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिक्षक ने 2 बच्चों संग दी जान, व्हाट्सएप स्टेटस के बाद नदी से कार और तीनों के शव बरामद। अलवर में बाघ रेस्क्यू टीम पर ग्रामीणों का हमला, सरिस्का की गाड़ियों में तोड़फोड़ करती दिखी महिलाएं। यूपी के मऊ में भीषण गर्मी से बचने के लिए युवक का अनोखा जुगाड़, एटीएम रूम के अंदर सोते हुए वीडियो वायरल हुआ।
फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दो बदमाश ढेर, इटावा एसओजी के दो सिपाही घायल। कानपुर देहात में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव, सिपाही और होमगार्ड घायल हुए। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, कार और ई रिक्शा टक्कर में एक की मौत, एक महिला यात्री घायल। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजेश्वर कांवड़ यात्रा, 50 वर्षों से चल रही है परंपरा। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को आ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में कल होगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच, इस मैच पर रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर टिकी सबकी नगर। रोहित के संन्यास को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, बीसीसीआई ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि रोहित शर्मा अभी भी भारतीय वनडे टीम की योजनाओं में हिस्सा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबला रोहित के लिए खास होने वाला है, वहीं टीम इंडिया सीरीज के निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज कर इंग्लैंड दौरे का शानदार अंत करना चाहेगी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, ओकाहारा ने दिया वॉकओवर, अब चीन की चेन युफेई से खेलेंगे मैच। जापान ओपन की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु, इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन की सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेलकर विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। फीफा इस बार देगा इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 5,000 करोड़, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे करीब 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग, जिसके एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 3 जुलाई को फिल्म आवारापन री रिलीज होगी। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस सदा शर्मा सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर काफी चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने किया खास इंतजाम, प्यार भरे अंदाज में कटरीना को बर्थडे विश किया। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 और बेबी डू डाई डू के साथ सहयोग की शुरुआत।

0: और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सौरव वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने बयान जारी किया है। अहम खबर, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनंग वांगचुक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो गए हैं और उन्हें निगरानी इलाज की जरूरत है। फिलहाल सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है लेकिन शारीरिक पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए इलाज जरूरी है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। आज सुबह अचानक जंतर मंतर पर पुलिस का जमावड़ा बढ़ने लगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वांगचुक को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। सूत्र के मुताबिक वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जल्द ही आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात है। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक के समर्थकों से प्रदर्शन स्थल को खाली करने की अपील की। वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया गया है।
1: क्या मेडिकल कंडीशन है, कुछ जानकारी?
2: अभी मेडिकल टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो जैसे भी आगे होगा तो बता दिया जाएगा।
1: और सर, क्या यहाँ से प्रोटेस्टर्स को इस साइट को खाली कराया जा रहा है?
2: अभी सिचुएशन देख रहे हैं, स्थिति
1: किसी को आने जाने से रोक रहे
2: नहीं।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए सुबह से इस खबर पर। हिमांशु, क्या अपडेट है आपके पास?
1: देखिए, लगातार नजर बना करके रखी हुई है पुलिस की टीम भी, जो सोनम वांगचुक के जो मेडिकल बुलेटिन आ रही है उस पर, और साथ साथ जो प्रोटेस्ट साइट है उस पर भी, यहाँ पर भी नजर बना करके पुलिस रखी हुई है। और दूसरी तरफ जैसे कि हमने बात भी की थी डीसीपी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आने जाने से किसी को नहीं रोक रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियर है कि इस प्रोटेस्ट को, यहाँ को, इस जगह को अभी खाली नहीं कराया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसी तरीके से फिलहाल चलता रहेगा।
0: तो पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है और निगरानी रखी जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
9: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: In association with Hind, बड़े आराम से
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
9: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
10: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
11: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर। आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
12: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
10: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
13: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार की एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया।
14: छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम? रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कुछ लेटर शेयर हो रहे हैं।
13: इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सके। इस समय शरद पवार की एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 एमएलसी हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। आलाकमान ने यह भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी।
15: सही है ना दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है।
16: दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासकर जो काफी चर्चा में विवाद।
15: देश की न्याय संस्था ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।
13: ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालात में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में रहेंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
3: परीक्षाओं में हो रही देरी
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: से भूख हड़ताल पर बैठे सौरभ वांगचु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पंजाब पर प्रधानमंत्री मोदी ने आप सरकार पर बोला हमला, कहा सबसे कट्टर बेईमान। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का लगाया आरोप। भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, आज श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की उड़ान, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर। और लगातार सातवें दिन अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में धमाके, ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, कुवैत बहरीन में अटैक का सायरन, हॉर्मुज में धधके दो तेल टैंकर।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश के संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है, बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीज़ों को हम बहुत नज़दीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या। लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या लखनऊ गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था जब मुझे यहां भेजा गया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पे जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया और जो परिणाम सामने आए हैं वे सब आपके सामने हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों मिलकर के काम कर रहे थे लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन ये मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था और सेलेक्ट नहीं होता था क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद

यूपी के अंदर थी। कल्पना करिए, 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे। जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया को माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी, यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनके सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वे प्रश्न, वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था? और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज DBT के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, वह चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पर नहीं आ रहा है, पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है,
कौन कौन राज्य हैं।

0: टॉप थ्री में, यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहाँ है, ओह यूपी तो बॉटम थ्री में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी, ये नया यूपी है, 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डूबो रहे थे ये सब, इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे हैं। इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। कहां चला गया ये पैसा, यानी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 864 करोड़ खर्च हो गए, तब भी अधूरा है। आप यहां आए होंगे, इसके बगल में एक नदी पड़ती है आदि गंगा के रूप में, मां गोमती है, गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर इसका जो कुल PPR बना था वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़ और कार्य अधूरा है। यानी कोई अप्रूवल नहीं, खजाना लुटवाया जा रहा था। एक तरफ गरीब भूख से मर रहा था, गरीब बीमारी से मर रहा था, और दूसरी तरफ खजाने को कैसे लुटवाया जा रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2016 दिसंबर में तत्कालीन CM ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद 15,200 करोड़ रुपए के लिए उसके लिए उसका अलाइनमेंट तय करते हुए तय किया कि 15,200 करोड़ रुपए में यह एक्सप्रेसवे बनेगा। मार्च 2017 में सरकार बदल गई, मई 2017 में मैंने उसकी समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भाई ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस क्या है, लोगों ने कहा साहब जीरो, मैंने कहा जीरो क्यों है, मुझे बताया गया कि साहब जो है लैंड ही नहीं है, तो मैंने कहा बिना लैंड के कैसे सब इसके टेंडर हो गए। आप देखिए कितनी बड़ी बेमानी थी ये। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, एक सामान्य वे में हमने कभी कैंसिल करो, जब है नहीं तो पहले लैंड नहीं है तो पहले लैंड तो अलॉट एक्वायर करो या लैंड खरीदो। लैंड खरीदी गई, हमें 2 वर्ष लगे लैंड खरीदने में। 18 के अंत में लैंड जब हमारे पास आ गई, इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट के लिए 80% लैंड आपके पास होनी चाहिए, लेकिन थी नहीं लैंड, केवल जो ग्राम पंचायतों की राजस्व विभाग की लैंड रही होगी उस लैंड को ही इन्होंने आधार बना करके टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दिए। 2018 में जब हमारे पास लैंड आ गई, लगभग 90% लैंड आ गई, टेंडर हुए, टेंडर के बाद ये हुआ कि अब इसको काम शुरू हो, हमने कहा भी ठीक है काम शुरू होगा, भाई बताओ कितने का टेंडर, कितने का खुला है, मुझे बताया गया कि साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले कितने का था, कहा 15,200 करोड़, मैंने कहा 2 साल के बाद कॉस्ट एक्सलेशन का कोई मुद्दा आया नहीं क्या, कहा नहीं साहब कोई भी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है लोगों ने। मैंने कहा यार देखो ये कॉन्ट्रेक्टर इतने ज़्यादा जो है मेहरबान क्यों है हम लोगों पे कि 2 साल के बाद भी इनका दाम नहीं बढ़ा है। मैंने कहा ये काम करो इसको कैंसिल कर दो और एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाओ। हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई। मित्रों जब इस बार एक साथ मंगाई गई और उसके बाद देखा तो ये मात्र जो 15,200 करोड़ का टेंडर हुआ था वह चल गया इस बार 11,800 करोड़ रुपए में। और उस एक्सप्रेस वे को जो 341 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है, जिसे समाजवादी पार्टी 340 किलोमीटर बनाना चाहती थी, हमने 341 किलोमीटर बनाया। वे 110 मीटर चौड़ा बनाना चाहते थे, हमने उसको 120 मीटर चौड़ा बनाया और उसको मात्र 11,800 करोड़ रुपए में। वही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। एक अन्य उदाहरण इनकी डकैती का मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है यूपी की एक्साइज पॉलिसी का। 2017 में यूपी के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो आती थी वह मात्र आती थी 12,000 करोड़ की, और 12,000 करोड़ रुपया ये मिलता था, हाफ करके मिलता था ये भी। हमने पूरी पॉलिसी चेंज की। मैं जानता था ये सब माफिया जकड़े हुए हैं सत्ता को, पूरे उसको हम लोगों ने किया। मैं मानता था, बहुत कठिन था मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन था। सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, हम लोगों ने तब भी उसको लागू कराया। और करवाने के बाद यूपी की आमदनी क्या है इस समय, एक्साइज से यूपी को मिलता है इस समय 63,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ से आप अनुमान करिए 5 गुना से अधिक एक्साइज ड्यूटी यूपी को आज के दिन पे प्राप्त हो रही है। यह पैसा किसका था? किसी गरीब का, भूख से मरने वाले उस गरीब का पैसा ये समाजवादी डकार जाते थे। किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी वृद्धजन की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा था, और पैसा जाता उसको ये लोग किस रूप में डकार जाते थे और कैसे डकैती डालते थे उसके उदाहरण हैं। और यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्यौहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो, तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्यौहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, वे आज वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? और इसीलिए आज प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे। और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन 2 खानदानों की ही, इन्होंने 2 खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन 2 खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहें, उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है, तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं? और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं, जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
4: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
6: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: Savari.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।
6: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
7: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
8: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
6: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। आज तक वर्टिकल

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी
3: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app, or at TuneIn.com.
4: सवारी जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
6: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
7: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,
1: इन एसोसिएशन विद
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आपका आज तक के इस मंच पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस सेशन का टाइटल है पंडित शंख बजाएगा। इस नारे को पूरा करिए आप अपने अंदाज में।
1: उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। और जहां तक आपने ब्राह्मणों की चर्चा की, हमारी मूल पार्टी है, यही हमारे संस्कारों में शामिल है और हम सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ।
0: माता प्रसाद पांडे जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ अब ब्राह्मण है।
1: अब ये तो बहुत दिन की बात है नहीं, ये सब परिणाम आपको चुनाव में मिल जाएगा, तो आपको सच्चाई का जो सामना है समाजवादी पार्टी को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 100% आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और जन जन का सम्मान, सबको साथ लेकर के हम चलते हैं।
0: भाजपा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: देखिए भारतीय जनता पार्टी
0: 2024 के परिणाम के बाद
1: भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, राउंड द क्लॉक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक जनता के बीच में रहता है। कोरोना महामारी काल एक छोटा सा उदाहरण है, कोरोना महामारी काल विपत्ति का समय था, तब ना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, ना कांग्रेस का, ना विपक्षी दलों का कार्यकर्ता कोई भी सड़क पर हो तो आप देख लीजिए फुटेज निकाल करके,
0: बस आप दिखे,
1: आप खुद अपना चैनल निकाल के देखिए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, आप अपने चैनल के पुराने फुटेज देख लीजिए 19 से 21 तक के।
0: लेकिन तैयारी की बात करिए कि इस 2024 के परिणाम के बाद 2027 में क्या बदल जाएगा, क्योंकि बीच में और अभी कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जो सबसे बड़े राजनीतिक विषय बन गया है पूरे प्रदेश में, वो है राम मंदिर चंदा चोरी। तो इसके वजह से क्या नैरेटिव चेंज होगा?
1: कोई नैरेटिव चेंज नहीं होगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी और कोई बचेगा नहीं, और भविष्य में ना हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है। और ये ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है।
0: लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है, विपक्ष का ये आरोप है कि बड़ी मछलियों को आप बचा रहे हैं।
1: आप अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए,
0: उन्होंने अभी बोला,
1: अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए मेरा, देखिए सनातन संस्कृत पर उंगली उठाना इन्हीं लोगों का काम है, आज से काम नहीं है, हजारों सालों से। सब लोग मुगल हो जाएं, सारे लोग जो है मुसलमान हो जाएं, कितनी बार हमारी संस्कृत पर हमले हुए, कोई कम हुआ है? अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बन जाए, बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद बन जाए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद बन जाए, ये आज की बात है? हमेशा हमले हुए हैं। इन लोगों से पूछिए जो जालीदार टोपी लगा के बैठ के गए हैं कि क्या कभी धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था? हुआ था ना, आप लोग काहे नहीं बताते हो? हुआ था, जो चंदा इकट्ठा हुआ था अखबारों में आए थे, वो चंदा का हिसाब मांगे, जरा हिम्मत है तो उसका भी हिसाब मांगे। जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश में, उसकी फंडिंग कहां से हो रही विदेश से, उसका हिसाब मांगे। हम हिसाब देने को तैयार हैं, हम जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनसे तो पूछो, केवल हमारे ऊपर उंगली उठाओगे? हमारा राम खराब है और तुम्हारे बड़े मियां अच्छे हैं, ये कहां से चलेगा?
0: लेकिन जब आपसे सवाल उठ रहा है ब्रजेश पाठक जी, लेकिन सवाल अगर आपसे उठ रहा है तो आप पूरे पुराने बातें क्यों गिना रहे हैं?
1: पुरानी बात क्यों नहीं, देखिए जहां कैश है, नोट करिए, आप सब समझ लो, जहां रुपया नगद है, जहां रुपया नगद है गड़बड़ी की संभावना है कि नहीं, बताना जरा पीछे आगे तक, और गड़बड़ी पकड़ी गई, हम कार्रवाई किए हैं। तुम बताओ कितने मौलाना पर के FIR दर्ज कराए हो? समाजवादी पार्टी को तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। 2012 में पहली बार सरकार बनी, आतंकवादियों पर मुकदमे वापस क्यों लिए? जवाब दे समाजवादी पार्टी। अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ, बनारस में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ, आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण करेंगे और सनातन संस्कृति की बात करेंगे? क्या बात करते हैं आप? डिबेट कराइए, सामने आमने बैठाइए, एकदम बात कहने लायक हक इनको नहीं है। इनको प्रदेश से देश से माफी मांगनी है। आज तक राम मंदिर का आप दर्शन करने नहीं गए, हिम्मत होती तो जाते, क्योंकि आपके पूर्व की सरकारों ने गोलियां चलवाई थी, कैसे जाओगे? तुम्हारे हाथ तो खून से सने हुए हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक जगह हत्याहरण है, हत्याहरण को नाम सुना आपने? किसी ने हत्याहरण के बारे में सुना है? हत्याहरण हरदोई जनपद में है। अगर कोई पाप हो जाता है तो जाकर के हत्याहरण में कुआं में नहा करके और घर घर भीख मांगनी पड़ती, तब सनातन संस्कृत में माफी मिलेगी। क्या हत्याहरण गए थे समाजवादी पार्टी के लोग? ये समाजवादी पार्टी के लोग केवल वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
0: वो कह रहे हैं कि आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं।
1: आप हो
0: कोई एक पार्टी सनातन के ठेकेदार नहीं
1: है। हम ठेकेदार नहीं है, आप हो, आप आगे आ जाओ, बनवाओ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, आप आगे आओ, हम न्योता देते हैं। चलो आगे बयान दो कि भगवान कृष्ण हमारे हैं, हम मंदिर बनाएंगे, हम दीवार तोड़ेंगे, दे बयान, हिम्मत है तो। ये केवल कुछ नहीं करेंगे, ये सत्ता सुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं, इनका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। पीडीए की बात करते हैं, जब कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का आपने देखा है समाजवादी पार्टी का? आप लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री बोर्ड समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भैया है। उसका पदाधिकारी कौन है? भाभी है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव कौन है? चाचा है। फिर दूसरा भतीजा है। अरे जो जन्म लेने वाला है उसका भी पोस्ट तय हो जाता है समाजवादी पार्टी में। क्या बात करते हैं आप? राम मनोहर लोहिया जी कहीं स्वर्ग में बैठ करके आंसू बहा रहे होंगे कि हमारा तो इन लोगों ने पूरा विचारधारा को किनारे लगा दिया। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी थे कि नहीं थे? रामायण मेला लगवाते थे। कितना रामायण मेला लगवाया इन्होंने, बताएं जरा हमको। नानाजी देशमुख के साथ राम मनोहर लोहिया जी काम करते थे और रामायण लगाने का काम करते थे। असली समाजवादी वो थे। राम और लोहिया कोई घर मकान जानता है दुनिया में कहीं है क्या? आप बताइए सबसे बड़े समाजवादी नेता कौन है जिनकी विचारधारा भी लोग चलते हैं? कौन है
0: जी?
1: कौन है? कोई मकान दुकान बताइए, कहीं है कोई मकान उनका? आप बताइए कहां है मकान
0: जी? बोल रहे हैं
1: कहीं मकान है उनका? दुनिया में उनका कोई मकान नहीं है। नरेंद्र देव जी का कौन सा मकान है? आचार्य नरेंद्र देव जी का। असली सच्चे समाजवादी थे। कहां है मकान बताओ जरा मुझे? कोई बता पाएगा नरेंद्र देव जी का मकान कहीं कोठी है? कोई बंगला है? कोई फॉर्च्यूनर है? कोई पुत्र पुत्री राजनीति में है? आप बताइए, छोड़ दीजिए सबको, लोक बंधु दाद नारायण का मकान बताइए कहाँ? वो असली समाजवादी थे। ये सब पूंजीवादी हैं, माल बटोरू हैं, सत्ता पाएंगे तो घर भर में बांटेंगे और नाम करेंगे पीडीए का। ये केवल जैसे कोई क्या होता है, जैसे कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो गई, सड़क बनाने में कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाती है, समझ गए ना आप? ब्लैकलिस्ट हो गई तो माल वही है, नाम बदल दिया। समाजवादी पार्टी के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? हिम्मत है तो मांगे। समाजवादी पार्टी को लोग जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इनकी गुंडई अराजकता से उब चुके हैं।
0: वो कह रहे हैं कि वो पीडीए पे विश्वास करते हैं और
1: आप एक काम करिए,
0: एक मिनट, वो और आप भाजपा बिरादरी की राजनीति कर रही है।
1: आप बताइए कौन सी बिरादरी है? और समाजवादी पार्टी के जरा पार्लियामेंट्री बोर्ड उठा लीजिए, उनका जरा फेरिस नेताओं को उठा लीजिए और हमारी पार्टी के नेताओं की लिस्ट उठा लीजिए, आपको तय हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, आप तय करो। हम तो आपसे कहते हैं तय करो, आप जज हो जाओ। लेकिन समाजवादी पार्टी का हाल यह है, मनमा राम बगल मा छुरी। गांव कहावत क्या कहते हैं? मनमा राम बगल में मिल जाएंगे तो पीठे मारेंगे, सब मंदिर गिरा देंगे। ये मौलाना लोगों के पक्षधर हैं। क्यों कहे नहीं कहते हैं कि जहां जहां मदरसों में अराजकता हो रही है हम फंडिंग की जांच कराएंगे? और सुनो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भैया सबको घर बनवाया पक्के कि नहीं बनवाया? बोलो बनवाया? भाई कुछ पत्रकार मित्र तो बोल दें, पक्के मकान मिले हैं सबको? मिले हैं दीदी? मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं। अच्छा बताइए इन्होंने क्या किया? हम जिंदा के लिए मकान बना रहे हैं, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा रहे हैं। या क्या भाग जाएंगे वहां से मुर्दे? मुर्दों को भी गाड़ी होती है? मुर्दों को ताले में क्यों बंद किया आपने? समाजवादी पार्टी बताए कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल क्यों कराई, ये बता दे बस। क्या मुर्दे भागेंगे वहां से? अब बताइए, आप जवाब दे दीजिए।
0: नहीं, लेकिन ब्रजेश पांडे
1: आप केवल एक बात बता दीजिए, केवल समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल क्यों कराई? हमने गरीब को पक्के मकान दिया है, क्या मुर्दे भागेंगे कब्रिस्तान से? इसका जवाब दीजिए आप।
0: ब्रजेश पाठक जी, आप एक तरफ कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि विकास पर चुनाव होगा।
1: हाँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो आपने छेड़ा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है राम मंदिर। अरे भैया, जहां रुपया है वहां गड़बड़ी है, हमने तैनाती की है, पुलिस जांच कर रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। अब एको बार नहीं बोले कि मस्जिद में गड़बड़ है, मौलाना ने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ हुआ, मदरसों में गड़बड़ हुआ, अखबार में आया, हमने कार्रवाई की। वक्फ की संपत्तियों में लूट मची हुई है, कोई बोला समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता? खाली वोट लेते हैं, खाली वोटें चाहिए इनका, कुछ नहीं चाहिए।
0: आज तक के इस मंच पर आपके आने
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार,
0: शुक्रिया।
1: भारत माता की।
2: मेरे साथ मंच पर है, हालांकि इन्हें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के भीतर पहचान की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत है। अभी हम लोग अंदर बात कर रहे थे, तभी मैंने भी ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी एक रिकॉर्ड है, पिछले 9 साल से लगातार इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी लॉन्ग टर्म उप मुख्यमंत्री, उनके पार्टनर बदल गए लेकिन केशव जी आप तो नहीं बदल पाए, उसका राज क्या है?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग निर्वाह करने का प्रयास करते हैं, और 2017 में भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार है, आगे अभी 2047 तक रहने वाली है, जब तक विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं।
2: लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें मुझे तो कुछ राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं, और उसके उसमें सबसे बड़ा कारण यह है, एक घोषणा मैंने चुनाव के वक्त सुनी थी, और खास करके बीजेपी के नेता ये घोषणा कई बार देते हैं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा, और ओबीसी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है कल्याण सिंह जी के जमाने से, क्या ये एक सबसे बड़ा कारण है?
3: देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, तंत्र है, और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। यह सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग 55% के लगभग है, और उसमें से सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और जब बाबूजी कल्याण सिंह जी थे तब भी मिलता रहा है, अब इस समय भी जब से देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमको छप्पर फाड़ करके अगड़ा पिछड़ा दलित तीनों की जो त्रिवेणी है वो भाजपा के लिए बह रही है।
2: लेकिन ये बात भी तो सोचनी होगी ना, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो 14-15% के ऊपर तो वो जा नहीं सकेंगे उनकी आबादी। ऐसे में बीजेपी को जो 45% तक वोट शेयर मिलता है उसमें ओबीसी समाज का ही सबसे बड़ा आधार रहा है, और उसी के आधार पर बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में सत्ता पर आई।
3: सैल जी, पहले कहा जाता था कि भाजपा कुछ जातियों की पार्टी है, और कहा रहता ऐसा नहीं था, विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता था तो वो ऐसा कहते थे भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बैनियों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है। लेकिन आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो कार्य है उसको जमीन पर उतारा है। यह सच है कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है, पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है इसे सरकार हमारी है, और आगे भी पिछड़ा वर्ग हमारे साथ रहने वाला है इसे सरकार हमारी फिर से बनने वाली है।
2: यह बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जिसके साथ पिछड़ा वर्ग जाता है उसकी सरकार बनती है, इस थॉट को हम रखेंगे क्योंकि उस पर मुझे आखिर में आपसे एक सवाल पूछना है, आप भी इसे याद रखिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा 2017 में जाना है, आज के चुनाव पर हम बात करें लेकिन 2017 में मुझे जाना है, क्योंकि 2017 जब मैं सोचता हूं तब मैं सोचता हूं केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उस वक्त चुनाव लड़ा गया था, आप उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपको चुनाव से पहले खास अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया था कि आप अध्यक्ष बन के यहां पर चुनाव लड़ाइएगा। उस वक्त प्रदेश में वो पार्टी सत्ता में थी जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति हमेशा की है, मुस्लिम यादव समीकरण के नाम पर उन्होंने अपने चुनाव हमेशा लड़े और लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। कैसे आपने उनको काटा और कैसे उस राजनीति को आपने चुनौती दी थी?
3: देखिए, समाजवादी पार्टी सपा जब सरकार में रहती है, जब वह कुछ जातियों की पार्टी बन जाती है, कुछ समुदायों की पार्टी बन जाती है, कुछ विशेष प्रकार के जो कुकृत्य करने वाले लोग होते हैं उनकी पार्टी बन जाती है। मतलब श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत पीडीए की बात करते हैं और मैं कहता हूं उनका पीडीए फर्जी है। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि श्री अखिलेश जी आप ये बताइए, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए? जब आप सत्ता से बेदखल हो गए तब पिछड़ों की याद आई। अब पिछड़ा जाग चुका है, सपा को बहुत पीछे छोड़ चुका है, भाजपा के साथ बहुत आगे जा चुका है। अब पिछड़ा वर्ग भाजपा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है और सपा को वो अपनाने वाला नहीं।
2: एक आम तौर पर देखा गया था, जब 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर गया था, तो वहां पर लोगों से बातचीत करते समय ये समझ में आया कि यादव समुदाय के अलावा जो समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में कर लिया है। अब इसका तोड़ 2024 में नजर आता है जी, आप पहले बताइए उसके बाद।
3: देखिए, हम लोग जाति की बात तो नहीं करते, लेकिन यादवों में भी बड़ी संख्या में हम लोगों के समर्थक हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, हमको वोट देते हैं। लेकिन यह सच है कि बहुसंख्यक मात्रा में अभी यदुवंशियों को गुमराह करके सपा अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आज जैसे हम मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। सपा को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई भाजपा यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन यादव को भी भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है, सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनाती है, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री बनाती है, छत्री को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ यह काम करते हैं।
2: और यूपी में ठाकुरों को मुख्यमंत्री बना?
3: देखिए, यूपी में तो अभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक साधु हैं, उनको ठाकुर कहने का काम तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। लेकिन अभी वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में, एक संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बागडोर संभाली और 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और उत्तर प्रदेश 9 वर्षों में हम बहुत आगे लेकर के जाने में सफल हुए हैं, गुंडागर्दी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए सफल हुए हैं।
2: 2024 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बदल देती है। आंकड़े बड़े दिलचस्प है, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, उसमें से 25 सांसद ये गैर यादव कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी आज दावा करी है कि हम तो अब पीडीए बन गए हैं।
3: देखिए,
2: चुनौती है आपके सामने?
3: देखिए, हमारे सामने चुनौती नहीं है, इसलिए चुनौती नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में आए थे, उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लिया, झूठ बोला था जनता से कि भाजपा 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, फिर चुनाव ही नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें करने लगे थे। इस दुष्प्रचार के प्रभाव में कुछ लोग आ गए, इसके कारण से सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिए। हमारी लड़ाई मतलब केवल 24 की नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, कमल खिला, बिहार का चुनाव हुआ, कमल खिला, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कमल खिला, आसाम में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी, कमल खिला, मतलब उसके बाद कमल खिल रहा है। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है, ये जो गुमराह करके वोट 2024 में लेकर के कुछ सांसद जरूर ये हमसे अधिक जिताने में कामयाब हो गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नैया डूबने वाली है, सपा का सूर्य अस्त होने वाला है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके अहंकार को उत्तर प्रदेश की जनता चूर चूर कर देगी।
2: आपने कहा था कि ओबीसी समाज का सपोर्ट मिलने के वजह से ही सत्ता में हम यहां पर आ पाते हैं और जो नारा शुरुआत में दिया गया था कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा, ओबीसी कब राज करेगा?
3: देखिए, ओबीसी ही राज कर रहा है। केशव प्रसाद अगर पिछड़े वर्ग का है और उत्तर प्रदेश का, लगातार आप ही अभी सवाल करते हुए बता रहे हैं कि मैं 9 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हूं, मेरे मंत्री मतलब योगी जी के मंत्री परिषद में पिछड़े वर्ग के इतने मंत्री हैं, अनुसूचित वर्ग के इतने मंत्री हैं, कि वह देख करके ही अखिलेश यादव जी का हाजमा खराब रहता है। मैं तो 9 वर्ष से आप ही बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूं, और श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए उन्होंने क्या किसी मौर्य, किसी पटेल, किसी पाल, किसी अन्य हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं उनको क्या उप मुख्यमंत्री बनाया था? क्या नहीं बनाया था, उनको कुचलने का काम किया था, दमन करने का काम किया था। आज भी लाखों मामले होंगे उनके जहां राजनीतिक प्रभाव हैं, वहां लाखों लोग ऐसे होंगे जो सपा सरकार के समय पीड़ित किए गए, उनकी जमीन मकान दुकान कब्जा किए गए, उनकी जांच करा रहे, एक एक करके कार्रवाई कर रहे, सबको न्याय दिला रहे। इसीलिए सपा रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आकाश की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। इसीलिए देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता में है, और जहां नहीं है वहां भी कमल खिलेगा। तीसरी बार तो भाजपा की सरकार बनती ही बनती है, इसे अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। तीसरी बार तो उनकी क्षमता नहीं है कि भाजपा को सरकार बनाने से रोक सके, लेकिन मैं कहता हूं 2047 तक आने वाले चुनावों में भी सपा का भविष्य अंधकार में है। सपा डूबती हुई नाव है, जो उसमें बैठे हैं वो अपने आप को बचा सके बचा ले।
2: कोई टूट फूट की आशंका तो नहीं है डूबने के साथ?
3: ये तोड़ फोड़ करने की हमें जरूरत नहीं है। भाजपा के साथ जनता है, भाजपा के साथ भाजपा में का भविष्य है, और भाजपा की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनने जा रही है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
10: What's up, baby? It's Bretsky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
11: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
12: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
4: After multiple assassination attempts, they can't even get...
5: They're reliable.
6: Always when I need them.
3: To live sports action.
7: One-hand jam by LeBron on the break.
8: That's another three, Steph Curry.
3: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की तो इसे घोड़ों से खींचा जाता था, लेकिन जब भाप इंजन आया तो ट्रेनों ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही डीजल इंजन का दौर आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर है। ना डीजल, ना कोयला, ना बाहर से कोई बिजली। इस ट्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये ट्रेन हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और बाष्प को हवा में ही छोड़ देगी। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में खास है। इसकी पहली खासियत यह है कि डीजल इंजन की तरह इससे धुआं नहीं निकलता और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ जल वाष्प और गर्मी निकलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन है। जहाँ कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें 2 से 4 कोच की हैं, वहीं भारत ने शुरुआत ही 10 कोच और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन से की है। इसका 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में भी शामिल करता है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से बिजली लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने साथ मौजूद हाइड्रोजन से खुद बिजली तैयार करती है। इसलिए जिन रेल मार्गों पर ओवरहेड बिजली नहीं है, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट किया गया है। यानी भविष्य की रेलवे तकनीक में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर मल्टी लेयर सुरक्षा, हाइड्रोजन गैस लीकेज, आग, धुआं और तापमान पर 2400 घंटे नजर रखने वाले सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी तकनीक की शुरुआत है, जिनमें हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है। यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई बल्कि हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव भी रख दी है। आज ये शुरुआत जींद से सोनीपत तक है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकती है। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
1: बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। आज संभल का भी दौरा। सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया।

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोना मांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, कहा अनशन खत्म कराने मंत्री भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस भेजी गई। लॉरेन जस्टर यंग की आमिर खान को धमकी का दावा, सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो सामने आया, धमकी भरे ऑडियो की पुष्टि नहीं है। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम योगी का आज संबल दौरा, 550 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को करेंगे संबोधित, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग समेत कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। संबल में योगी आदित्यनाथ का दौरा, राम और गणेश प्रतिमाओं का करेंगे वर्चुअल अनावरण, विकास कार्यों की देंगे सौगात। ललिता गौतम के परिवार से मिले सीएम योगी, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता। गाजियाबाद में सीएम योगी ने दूधेश्वरनाथ मंदिर में पूजा की, प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। राम मंदिर चंदा कथित गबन मामला, टिन्नू और मनीष यादव पुलिस रिमांड पर, कोर्ट ने 39 घंटे के पुलिस रिमांड मंजूर की, मेडिकल जांच के लिए पुलिस लाइन लाए गए। सहारनपुर अवैध मस्जिद मामले में कार्रवाई का आदेश, कोर्ट ने 6,41,00,000 रुपए जुर्माना लगाया, ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी। वाराणसी में इंडिया गठबंधन में दरार, नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में सपा कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस को मिली हार। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, पंजाब और उत्तराखंड में भी विस्तार की तैयारी, चुनाव अभियान शुरू करने की बात कही। मौलाना के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। चिराग पासवान ने बोले बिहार से यूपी पंजाब तक बढ़ेगा पार्टी का विस्तार, कहा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर देना होगा ध्यान। बिहार में शिक्षकों के तबादले का इंतजार खत्म, 29 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। बेंगलुरु में सीएम डी के शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, सदाशिव नगर आवास पर चर्चा, डिप्टी सीएम जी परमेश्वर मौजूद रहे। ब्रजभूषण सिंह का दावा, हनुमानगढ़ी में कभी नहीं पढ़ी गई नमाज, कहा नमाज की बात उठाने वाले गलत, मंदिर निर्माण में मुस्लिम की भी भूमिका रही। चंदा चोरी बयान पर ब्रजभूषण सिंह का पलटवार, का मोदी और योगी को इससे कोई संबंध नहीं है, भाषा का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कृष्ण भगवान पर मौलाना के बयान को लेकर ब्रजभूषण सिंह का पलटवार, का एक दूसरे को चुभने वाली बातें बोलने की नई प्रथा चल पड़ी है। तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आई तो हिंदू छात्रों के लिए तिलक अनिवार्य, बंदी संजय ने कहा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देंगे। एनसीपी में संभावित टूट पर शरद पवार के जवाब, का अभी इस मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना, शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता। महाराष्ट्र में एसआईआर समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 18 अगस्त को होगा जारी। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी, डोंबिवली में डॉक्टरों पर हमले के लिए विरोध में आईएमए का ऐलान। एससीओ देशों की सीमा प्रमुखों की 12वीं बैठक संपन्न, भारत पाकिस्तान समेत 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए इस्लामाबाद में बैठक में, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान। स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आज उड़ान भरेगा। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 की लॉन्चिंग होगी। कार्बन कंपोजिट में बना लॉन्च व्हीकल है विक्रम 1 रॉकेट, 3D प्रिंटेड इंजन, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से लैस है विक्रम 1। कई भारतीय उपग्रह टेक्नोलॉजी पेलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष, साल 2022 के विक्रम एस के बाद स्काई रूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्टकार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। ईरान के कई शहरों में धमाके, हॉर्मुज से गुजरने वाले दो टैंकरों में ब्लास्ट के बाद आग लगी। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के कलंतरी पोर्ट स्थित यूएवी डिपो पर हवाई हमला किया गया, लगातार 7वें दिन हमला है। ईरान ने कहा पुशर परमाणु संयंत्र पर कोई हमला नहीं हुआ, मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। इराक में स्थित ईरानी कुर्द विपक्षी संगठन के एक कैंप पर ड्रोन हमला, हमले के बाद इलाके में बड़ा तनाव, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार आईआरजीसी की अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाला थाई झंडा लगे एक जहाज को निशाना बनाया। आईआरजीसी नौसेना ने दावा किया कि जहाज ने

चेतावनियों को नजरअंदाज किया और आईआरजीसी की अनुमति के बिना हॉर्मोन्स को जब्तने की कोशिश की। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार यज्द शहर में 5 धमाकों की आवाज सुनाई थी। ईरान ने दावा किया कि बशर के ऊपर अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर एक खुले युद्ध अपराध का आरोप लगाया, कहा हमला कर आम लोगों की जान लेकर अपनी ताकत दिखाने लगा है अमेरिका। ईरान के जिम्बाब्वे दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जिसमें अमेरिका मौजूदगी में टूटे पुलों को पहले से बेहतर बनाने का जिक्र है। ईरान के विदेश मंत्री बोले हम अपनी जमीन की एक एक इंच की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। ईरान ने कहा हमने उत्तरी हिंद महासागर में दुश्मन के जहाज पर क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने ओडिशा पर किया भीषण हमला, 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। जवाब में यूक्रेन ने रूस के समुद्री इलाकों से लेकर जमीन पर हमला किया। रूस ने कभी भी अमेरिकी चुनावों में दखल देने के आरोपों को ठहराया गलत। रूसी सरकार ने कहा रूस ने कभी अमेरिका चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया।

सूरत में ब्लैकस्टोन कॉरपोरेशन मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल ने काबू पाया। हावड़ा की 15 साल की राइफल शूटर लापता, रथ यात्रा में दिखने के बाद नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर में बदमाश और पुलिस मुठभेड़, पुल से गिरे 5 बदमाश, पिस्टल 1 दर्जन कारतूस कार बरामद। उत्तर प्रदेश के बांदा में करंट लगने से 2 भाई बहन की मौत हो गई है, खेलते समय पंखे से करंट लगा। जालौर में मुस्लिम युवती ने मजहबी दीवारें तोड़, हिंदू प्रेमी से रचाई शादी, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के गांधरबल के गुटली बाग इलाके में रिहायशी घरों में लगी भयंकर आग, कई मकान जल गए। अमृतसर में एक होटल में लगी भीषण आग, जनरेटर रूम में उठी लैपटॉप पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर से बीड़ जा रही इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। गुजरात के राजकोट में सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दम घुटने से एक की मौत। गुरुग्राम में कल हुए पानी कारोबारी संघ विवाद में माफिया गैंग पर शिकंजा, गैंगस्टर कौशल चौधरी के 8 गुर्गे गिरफ्तार, 5 स्कॉर्पियो जब्त। टिहरी गढ़वाल में नशे में धुत पिकअप चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी, कई स्कूटी और कार क्षतिग्रस्त। राजस्थान के पाली में बिकाबू टैंकर ढाबे में घुसा कर्मचारी की मौत, एक घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाराणसी के चौबीपुर थाने में महिला दरोगा ने शिकायत लेकर पहुंची, महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए, वीडियो वायरल होते ही महिला एसआई पर जांच शुरू। यूपी के बदायूं में एक अस्पताल से 3 मोबाइल चोरी, वार्ड में घुसे चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिक्षक ने 2 बच्चों संग जान दे दी, व्हाट्सएप स्टेटस के बाद नदी से कार और तीनों के शव बरामद। महाराष्ट्र के कुल्लू में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजराजेश्वर कावड़ यात्रा, 50 वर्षों से परंपरा चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन गुआ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर कल होगा भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा और आखिरी वनडे मुकाबला, इस मैच पर रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर नजरें टिकी हैं। रोहित के संन्यास को लेकर चर्चाएं चल रही थी, बीसीसीआई ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि रोहित शर्मा अभी भी भारतीय वनडे टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला रोहित के लिए खास होने वाला है, वहीं टीम इंडिया सीरीज के निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज कर इंग्लैंड दौरा जीतना चाहेगी। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन से हालत गंभीर, 7 की मौत हो गई, 1,13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। देहरादून में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, दिन में अंधेरा छा गया। टिहरी गढ़वाल में पुल के अभाव में सोंग नदी पार कर रहे स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में तेज बारिश से दिन में अंधेरा छाया। उत्तर बंगाल में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दार्जिलिंग कालिम्पोंग भूस्खलन की चेतावनी दी। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कल तक भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन और प्रशासन अलर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया, प्रशासन अलर्ट पर। गोरखपुर में शहर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरा, वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, ओकुहारा ने दिया वॉक ओवर, अब चीन की चेन सुफई से होगा मैच। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु, 2011 में साइना नेहवाल पहुंची थी। इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेलकर विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। फीफा इस बार देगा इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 5,000 करोड़, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली चीन के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग, जिसके एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 3 जुलाई को रिलीज होगी आवारापन। हिमांशु, कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा के लेकर चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने खास इंतजाम किया, फोटो वायरल हो रहा है। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली में यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 और बेबी डू डाई डू के साथ सहयोग की शुरुआत।

0: सोनम वांगचुक की बात करेंगे। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन से उठा दिया। आज सुबह सुबह पुलिस की टीम जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़प हुई। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा लिया और हवाला दिया हाईकोर्ट के आदेश का। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ थी। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। उनकी मांग पद से हटाने की थी। आज सुबह दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंची, सोनम वांगचुक को लेकर चली गई। जंतर मंतर पर सुबह कैसे क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
1: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
2: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे। तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
3: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
2: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
3: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी।
6: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s। फैमिलियर सॉन्ग्स, इजी मेलोडीज एंड अ साउंड दैट लेट्स यू स्लो डाउन, परफेक्ट फॉर स्टेपिंग बैक एंड कैचिंग योर ब्रेथ। Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
7: Sawari, Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
3: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
2: हैट्रिक का दावा।
3: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
2: विश्वास पूरा।
3: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
2: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: Tune in's how to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: In association with Hind, Bade Aaram Se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
0: Vimal, Bolo Zubaan Kesri.
2: देश में दहशत फैलाने की बारूदी साजिश का बड़ा खुलासा। देश के कई शहरों में धमाकों का प्लान। बम बनाए, कई बार धमाकों का ट्रायल किया। गुजरात समेत कई राज्यों में रेकी की। आतंक वाली प्लानिंग को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बड़ी वारदात से ठीक पहले इन आतंकियों पर एटीएस का शिकंजा कस गया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे और इसके लिए सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश ले रहे थे। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और जांच के बीच इन आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आईं। गिरफ्त में आए 3 आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये तीनों आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे। बड़ी बात यह है कि ये 3 संदिग्ध आतंकी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद जैश फिर से खुद को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी कोशिश के तहत अपने मॉड्यूल के नेटवर्क को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: सबसे पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट की आज हैदराबाद के श्री हरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वंश लॉन्च करेगी। कंपनी ने साल 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम वन 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा तक जाएगा। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है। इसके तहत विक्रम वन रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में ले जाएगा।
5: कंपनी अप इट्स जस्ट पीपल दैट पुशिंग द एंटायर टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड एंड ऑल द हार्ड वर्क। सो वेदही, आफ्टर वर्किंग ऑन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल योरसेल्फ थ्रू आउट दीज इयर्स, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट रियलाइजेशंस इन डिजाइनिंग द रॉकेट?
4: श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और अब से कुछ ही देर बाद भारत की एक बड़ी उड़ान देखने को मिलेगी। निजी स्पेस सेक्टर में ये बड़ी छलांग कही जाएगी और मिशन आगमन इसका नाम रखा गया है। पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन। देखिए, इससे पहले 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया था और इस बार 450 किलोमीटर बताया जा रहा है। शिवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, भारत की एक और बड़ी उड़ान।
6: मानसू, बहुत बड़ा दिन है आज भारत के स्पेस सेक्टर के लिए, क्योंकि ये पहला निजी कंपनी द्वारा बनाया गया ऑर्बिटल रॉकेट है। विक्रम वन इसका नाम है और अब से कुछ ही मिनट की देरी पर ये लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। लोअर और अर्थ ऑर्बिट इसे कहा जाता है, यानी 450 किलोमीटर की वो दूरी होगी अर्थ सर्फेस से जहां तक ये रॉकेट जाएगा। इसके अंदर जो पेलोड है उनको वहां पर प्लेस करके ये डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये अलग अलग 4 चरणों में होता है, लेकिन अहम बात ये है कि अब तक कई दशकों से हमने देखा, लगभग 6 दशक से जो सरकारी एजेंसियां हैं, इसरो है, वो बहुत सारे जो सैटेलाइट्स है, रॉकेट्स है, उनको लॉन्च करती है, लेकिन पहली बार अर्थ की ऑर्बिट में इस तरह से एक निजी कंपनी द्वारा बनाया गया ये रॉकेट है जिसका नाम आगमन रखा गया है। मिशन आगमन यानी कि अराइवल, ये एक अराइवल है जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री है उसके अंदर किस तरह से प्राइवेट कंपनीज का अराइवल हो रहा है और स्पेस को पूरी दुनिया के लिए खोला जा रहा है मानव के विकास के लिए। इस तरह का ये मिशन है, बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्हीकल का लॉन्च किया था 2025 में, जो हैदराबाद कैंपस है स्काई रूट का, वहां पर और अभी ये पूरी तरह से मिशन रेडी है. 2022 में ऐसा ही एक व्हीकल भेजा गया था स्काई रूट द्वारा, उसका सब ऑर्बिटल लॉन्च था वो, यानी कि ऑर्बिट से पहले, और अब ये ऑर्बिट जाने के लिए तैयार है. लिहाजा स्टेप बाय स्टेप भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है, और इसमें 6 अलग अलग पेलोड रखे गए हैं ट्रिब्यूट के तौर पर. इसमें सतीश धवन, सीवी रमन, अब्दुल कलाम की छोटी छोटी आकृतियां हैं जो सोने से बनी हुई है, हीरे इसमें भेजे जा रहे हैं स्पेस में. तो एक ट्रिब्यूट भी माना जा रहा है भारत की तरफ से अंतरिक्ष को, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है. जर्मनी की एक कंपनी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है इस व्हीकल में, अपना एक पेलोड वहां पर भेज रहे हैं, और बहुत अहम इसलिए है क्योंकि भारत के यंग साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई ये कंपनी अब एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान गढ़ रही है.
4: बिल्कुल, इसे कहा जा सकता है कि एक नया कीर्तिमान गढ़ा जा रहा है, और अब से कुछ ही देर में पृथ्वी की कक्षा तक सफर किया जाएगा जो कि 450 किलोमीटर का बताया जा रहा है. भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 है जिसकी बॉडी कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है और 350 किलोग्राम का पेलोड ये बताया जा रहा है इसका, और इंजन 3D प्रिंटेड इंजन इसका होने जा रहा है, और इस पूरे मिशन का नाम आगमन रखा गया है. कितना वक्त और शिवानी अभी लग सकता है अगर इस बारे में और जानकारी अभी तक मिल पाई हो तो?
6: हिमांशु, देखिए 11:30 का वक्त रख गया था, यानी कि अब से 1 मिनट बाद ये लॉन्च शुरू होगा. उसके पहले तमाम टेस्ट होते हैं, कई फेजेस में वो लगातार चल रहे थे कई दिनों से. हमने भी श्रीहरिकोटा से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की थी, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे थे, और अब से कुछ ही सेकेंड्स, अब कह लीजिए क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं, एक लाइव ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं जहां पर उल्टी घड़ी चल रही है, और अब से थोड़ी ही देर बाद ये लॉन्च हो जाएगा. और ये व्हीकल जैसे ही लॉन्च होगा उसके कुछ मिनट्स के बाद ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पृथ्वी की कक्षा से ऊपर जा रहा है, और जो इसका लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसे कहा जाता है हिमांशु, 450 किलोमीटर का वो
4: देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया. शिवानी, आप खुद श्रीहरिकोटा गई थी तो एक रिपोर्ट आपके दिखाते हैं.
7: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशन्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है. स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई. 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया. आप मेरे पीछे देख सकते हैं विक्रम 1 को यहां लॉन्च पैड पर रखा गया है, और ये 7 माले का एक रॉकेट है जो 350 किलोग्राम का पेलोड लेकर मिशन आगमन के तौर पर जाएगा. आगमन यानी कि किस तरह से स्पेस इंडस्ट्री आ रही है और प्राइवेट सेक्टर के लिए संभावनाएं खुल रही हैं, ये इसको दर्शाता है. खास बात यह है कि 450 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पर विक्रम 1 पहुंचेगा, और ये पहली बार होगी कि जब कोई गैर सरकारी कंपनी यहां पर एक ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च कर रही है. यानी संभावनाओं के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर ये एक बेहद बड़ी पहल है, और 2020 के बाद जो शुरुआत सरकार की द्वारा की गई ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा आज तक.
4: तो देखिए वो वक्त अब आ गया है जब विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. अब से कुछ ही देर में किसी भी पल इस रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है. ऐतिहासिक उड़ान कही जा रही है. देखिए जैसा अभी शिवानी भी बता रही थी कि पहला अपने पहले सफल मिशन, मिशन आगमन में इसने 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों को स्थापित किया. जो खास बात है इसकी हम आपको बता रहे हैं, और शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. शिवानी, आप मौके पर पहुंची थी, आपने रिपोर्ट भी तैयार की है, और क्या है जो विक्रम 1 को खास बनाता है?
6: देखिए बहुत कुछ है जो विक्रम 1 को खास बनाता है. पहली बार इस तरह का एक उपक्रम जो भारत में बनाया गया 2020 में, राष्ट्रीय को प्राइवेटाइज किया गया. इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर और इसरो, इनकी मदद इस तरह के जो कंपनीज हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि आप स्पेस सेक्टर में काम कीजिए. और स्काई रूट ने भी इसी तरह का काम किया। 2018 में इसकी स्थापना हो गई थी। 2022 में पहला इसका जो रॉकेट था, जो सब ऑर्बिटल रॉकेट था विक्रम एस, वो लॉन्च हुआ। और अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च के पैड पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट लॉन्च पैड किस कहा जाता है इसको हिमांशु, जिस जगह पे इसको रखा गया है, इसको प्लेस किया गया है। और लगातार 1000 लोगों ने कई महीने तक इस पर काम किया है। इसके क्रायोजेनिक इंजन हैं, पूरी तरह से कार्बन एमिशन वाले इंजन हैं और 3D प्रिंटेड इंजन हैं। पूरी कोशिश की गई है कि इसको खास बनाया जाए। और आप देखिए, सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप श्रीहरिकोटा से जो तस्वीरें देख रहे हैं लॉन्च की, तमाम मेहमान वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। लॉन्च की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त हम देखेंगे कि ये लिफ्ट होगा। और ये भी अहम बात है कि
4: शिवानी, ये बताया जा रहा है कि काउंटडाउन को अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोका गया है। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी आ पाई है कि इसके पीछे की क्या वजह हो पा रही है?
6: देखिए, मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हूँ। 11:30 का वक्त रखा गया था। बहुत सारी चीजें इसमें चेक की जाती हैं और कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत होती है। काफी वक्त तक लगातार लोगों ने काम किया है इस पे, कई महीनों से काम किया है। और बहुत सारी नोटैम्स जारी होते हैं इसके लॉन्च से पहले। कोशिश की जाती है कि जो इसमें सैकड़ों सिस्टम्स हैं, हर एक को चेक कर लिया जाए लॉन्च के लिए। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी होल्ड पर रखा गया है इस पूरे मिशन को। अभी ये अपडेट अभी अभी मिला है हमें कि अभी इसको होल्ड किया गया है और अपडेट जल्द ही मिलेगा। जो ये पूरा मिशन है 11:30 बजे के लिए निर्धारित था, इसको होल्ड किया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है सोर्सेज के जरिए कि ये प्लान अभी होल्ड पर है और इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा उसको जल्द दिया जाएगा। क्योंकि बहुत अहम होता है कि कोई भी चूक ना हो, कोई भी रिस्क ना ली जाए हिमांशु। उसकी वजह से पूरी कोशिश की जाती है कि अगर कुछ भी त्रुटि दिखाई दे रही है या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से मिशन नाकामयाब हो सकता है, तो उसको ठीक किया जाता है और उसके बाद ही इसको लॉन्च किया जाता है।
4: बिल्कुल, सारे मापदंड 100% बिल्कुल सटीक बैठने चाहिए। और देखिए, वो अभी छात्र छात्राएं यहाँ पर भारी संख्या में, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं, जो कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो श्री हरिकोटा में इस लॉन्चिंग को देखने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि सब कुछ जब जो फाइनल टेस्टिंग होती है उसके बाद अगर सब कुछ एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट होता है, उसके बाद ही लॉन्चिंग होती है। तो एक बात बिल्कुल तय कही जा रही है कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में, अंतरिक्ष बाजार में भारत का दबदबा बढ़ने जा रहा है। वर्तमान में देखिए, दुनिया भर में बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। अब विक्रम 1 के आने से भारत दुनिया के लिए एक बड़ा और सस्ता कमर्शियल हब भी बन जाएगा और इसके साथ ही कमर्शियल लोड भी इसरो पर कम होगा। अभी तक भारत में सैटेलाइट लॉन्च करने का जो सारा जिम्मा, वो अकेले इसरो पर था। प्राइवेट कंपनी के आने से इसरो कमर्शियल लॉन्चिंग के काम से मुक्त हो सकेगा और बड़े मिशन पर फोकस कर सकेगा। मेक इन इंडिया और नई तकनीक का विकास, 3D प्रिंटिंग और कार्बन तकनीक। देखिए, फिर से अब ये बात आपको समझनी होगी कि इस मिशन से ये साबित हो गया कि भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप्स 3D प्रिंटेड इंजन और हल्के कार्बन कंपोजिट जैसे बेहद जटिल तकनीक खुद से देश में बना सकते हैं। अब जब हल्के कार्बन कंपोजिट की बात की जाती है तो स्टील से ज्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विक्रम 1 का अभी काउंटडाउन रोका गया है और हर तकनीकी पहलू पर, हर मापदंड पर बिल्कुल सटीक आने के बाद ही इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग का काउंटडाउन अभी फिलहाल रोका गया, 11:30 बजे का पहले वक्त तय किया गया था। 11:30 बजे का वक्त पहले तय किया गया था लेकिन अभी फिलहाल इसे कुछ वक्त के लिए रोका गया है और इस बारे में बहुत ही जल्द अपडेट भी सामने आएगा। हालांकि विक्रम 1 की बात की जा रही है और विक्रम 1 जो आने वाले वक्त में भारत के स्पेस सेक्टर और पूरी अर्थव्यवस्था को कई बड़े फायदे देने वाला है, कई बड़े फायदे हासिल होंगे। भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक नया मोड़ आप इसे मान सकते हैं, लेकिन अभी इसकी लॉन्चिंग का काउंटडाउन फिलहाल रोक दिया गया है। यानी जो 11:30 बजे विक्रम 1 लॉन्च होना था उसमें अभी कुछ वक्त और लग सकता है। हर एक एस्पेक्ट पर, हर एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है और जब सब कुछ सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा, उसके बाद ही इसकी लॉन्चिंग होगी। क्योंकि अभी जैसे शिवानी बता भी रही थी कि एक इंसान की मेहनत नहीं होती है, ये पूरी टीम की मेहनत होती है, पूरी टीम की आशा, उम्मीद इस लॉन्चिंग से जुटी होती है और भारत की उम्मीद भी इस लॉन्चिंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत के लिए, भारत के स्पेस सेक्टर के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह विक्रम-1 की लॉन्चिंग बहुत अहम साबित हो रही है। अंतरिक्ष बाजार में भारत का दबदबा इससे आने वाले वक्त में बढ़ेगा। विक्रम-1 के आने से भारत दुनिया के लिए एक बड़ा और अहम कमर्शियल हब बन सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस का लक्ष्य से अंतरिक्ष की कैब बनाना है ताकि दुनिया के किसी भी देश या कंपनी को जब भी जरूरत हो वो तुरंत और सस्ते में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सके, और इसरो का बोझ तो कम होगा ही। तो ऐसे में विक्रम-1 का काउंटडाउन देखिए, कितने लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कितने छात्र छात्राएं, ये बच्चे जो भविष्य के वैज्ञानिक हो, एस्ट्रोनॉट हो, कोई मैं सुभांशु बनना चाहता हो,
8: दानशु
4: शुक्ला बनना चाहता हो, तो ऐसे में यहां पर देखिए कितने लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
8: एंड दे आर ईगरली वेटिंग द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मेंशनड अर्लियर, इट्स अ टेस्ट फ्लाइट एंड वी विल बी डूइंग अ फ्यू ऑफ दीज बिफोर वी मूव इनटू रूटीन commercial operations. We are in a state of hold for now. For the viewers who've just joined us, we have successfully initiated the automatic launch sequence at T-minus 11 minutes.
4: Shivani, hamare saath is waqt judi hai. Shivani, abhi isko hold par rakha gaya hai. Kya aapke paas kuch update aa paya?
6: देखिए, ये प्रिकॉशनरी होल्ड बताया जा रहा है। इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए किसी भी तरह की चूक ना हो, कोई रिस्क ना लिया जाए, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ये लॉन्च होगा। अभी इसको प्लान्ड होल्ड बताया जा रहा है, यानी कि जानबूझकर इसको होल्ड किया गया है। प्रिकॉशनरी चेक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। जब सब कुछ मुफीद होता है हिमांशु, उसी वक्त लिफ्ट होता है और उसी टाइम इसे लॉन्च किया जाता है। तो जो खबर हमें मिल रही है इस एजेंसी की तरफ से वो ये कि ये अभी प्लान्ड होल्ड है, यानी 11:30 का जो वक्त था अभी उसको थोड़ा सा होल्ड किया गया है और अभी अपडेट का इंतजार भी किया जा रहा है।
4: जब ऐसी खबर आती है तो उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या वजह रही होगी इस होल्ड की, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि न जाने कितने ही छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे हुए हैं दूर दूर से इस विक्रम-1 की लॉन्चिंग के लिए, उसको अपनी आंखों से देखने के लिए, इस पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग पहुंचे, और जब उनको सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, हालांकि टेक्निकल पहलू भी रहते हैं, लेकिन ये उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर वजह क्या रही होगी।
6: बिल्कुल हिमांशु, उत्सुकता बिल्कुल लाजमी है क्योंकि सबको इंतजार है। ऐसे जब बड़े पल होते हैं तो हर किसी को उत्सुकता होती है, इंतजार होती है, और बहुत सारे डिग्नेटरीज वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं, सुभांशु शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, सैकड़ों छात्र छात्राएं वहां मौजूद हैं, इसरो के इंजीनियर्स हैं, तो सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह की उत्सुकता है, कौतूहल है। और 11:30 का वो वक्त था जब इसको लॉन्च होना था, इसको लिफ्ट अप होना था, लेकिन अभी जो हमें खबर मिली है वो ये कि इसे प्लान्ड होल्ड बताया जा रहा है, यानी कि कोई भी शक शुबा ना रहे।
8: मिशन टीम्स बिलो दैट वी आर रेडी टू रीस्टार्ट द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शॉर्टली। एंड जस्ट टू रीकैप वंस अगेन, विक्रम-1 इज ऑन द लॉन्च पैड, इट्स रेडी एंड ईगरली अवेटिंग इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। We've had the initiation of the automatic launch sequence, and through that we've completed the internal power switchover, which means the vehicle is now powering itself using its own batteries. We've also had the null checks been completed.
4: तो देखिए, टेस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, और एक बार फिर से जो बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग के लिए विक्रम-1 तैयार है और अब उसको किसी भी पल लॉन्च किया जा सकता है। जो होल्ड रखा गया था अब वो खत्म हो गया है और अब वक्त है विक्रम-1 के लॉन्च होने का, और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि किसी भी वक्त उसे लॉन्च किया जा सकता है। सारी तैयारियां हो गई हैं, सब पैरामीटर्स पर पूरी तरह से खरा उतरा है, और ये वो तस्वीर है जहां पर अभी आपको कुछ ही देर में विक्रम-1 लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और इस पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए हजारों छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रॉकेट लॉन्च होगा। शिवानी बनी हुई हमारे साथ। शिवानी, तैयारी दोबारा से हो चुकी है लॉन्चिंग की?
6: बिल्कुल हिमांशु, देखिए जो अभी अपडेट मिला है वो ये कि जो ऑटोमेटेड लॉन्च सिस्टम होता है, जिसमें सिस्टम की बैटरी, रॉकेट की बैटरी अपने आप मिशन के लिए रेडी हो जाती है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है और अब ये जो मिशन कुछ मिनट्स के लिए होल्ड पर रखा गया था, प्लान्ड होल्ड था, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इतने सारे इंजीनियर्स की इसमें मेहनत जुड़ी हुई है, पूरे देश की आशाएं हैं, तो इसीलिए पूरी सावधानी के साथ इसको लॉन्च किया जाए। इस वजह से कुछ मिनट्स की देरी जरूर हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो स्टार्टिंग जो ऑटोमेटेड लॉन्च सिस्टम है जिससे अपने आप ये रॉकेट तैयार होता है, पृथ्वी की जो सतह है उससे ऊपर उठता है, कंबशन इंजन इसके शुरू होते हैं, वो अब एक बार फिर शुरू हो गया है और काउंटडाउन जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका सबको इंतजार था, वो शुरू हो गया है। यानी कुछ ही मिनट्स में अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो लिफ्ट ऑफ जिसे कहा जाता है, जो रॉकेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, 7 फ्लोर का रॉकेट है, ये बड़ा रॉकेट है और 350 किलोग्राम इसका वजन है, तो जब इसे ग्रेविटी से ऊपर उठाना होता है, इसमें तमाम तरह के सिस्टम्स लगे होते हैं हिमांशु, और बैटरी से इस सिस्टम को शुरू किया जाता है, स्वचालित बैटरी सिस्टम्स होते हैं, बाद में इसका इंजन जो होता है वो चालू होता है और फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने के लिए जो 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको ये पूरा करता है। तो ये कुछ मिनट्स की पूरी प्रोसेस होता है और जो सबसे अहम पल होता है जब ये रॉकेट दिखाई देता है, जब आपको उसमें कंबशन दिखाई देने लगता है और जो लपटे होती हैं फ्यूल की वो दिखती हैं, और जब वो कक्षा को छोड़ता है, पृथ्वी से ऊपर उठता है, तो वो बहुत ही रोमांचित करने वाला पल होता है। और उससे पहले ही काउंटडाउन शुरू किए जाते हैं, जब भी कोई ऐसा मिशन होता है आपने देखा होगा तालियों की गड़गड़ाहट होती है और कोई रुका होता है बिल्कुल रोमांच के साथ कि कितनी देर में ये रॉकेट अब उड़ेगा, कैसा रहेगा ये मिशन। और यही हुआ जब थोड़ी देर पहले इसको होल्ड पे रखा गया था, हर कोई कौतूहल से भरा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सिस्टम अपडेट होके और अब ये शुरू हो चुका है।
9: चलिए शिवानी, वो तस्वीरें तो हम जरूर दिखाएंगे, वो तो सभी इंतजार कर रहे हैं, जो आपने बताया वो जो पल होता है जब अचानक से धुआं निकलता है और उसके बाद रॉकेट हवा में उड़ता है और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन शिवानी, एक बात बताइए, आप उस जगह पर पहुंची जहां से रॉकेट लॉन्च होने वाला है और आपने वहां से रिपोर्ट भी भेजी है, अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में भारत का दबदबा कितना बढ़ने वाला है, कितने लोगों की उम्मीद थी, कितनी अपेक्षाएं थी और कितनी मेहनत थी जो आप वहां पर महसूस कर पाए मौके पर?
6: देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो इसरो ने स्पेस साइंस में अपनी पूरी स्किल, अपना पूरा टैलेंट और किस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में अलग अलग जाके कई प्रोजेक्ट्स किए हैं वो एक बार फिर साबित किया है। और यही जो स्किल है वो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट, यानी भारत के तरफ जो रुचि है पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की, खासतौर पर स्पेस इंडस्ट्री जो है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं ग्रो करने की, और ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा मार्केट हो सकता है स्पेस का, जो ये मार्केट है भारत में, क्योंकि यहाँ पे आप इंजीनियर्स की स्किल्स देखिए, इनके ज्ञान को देखिए, इनके पूरे साइंस के प्रोजेक्ट्स को देखिए।
9: और देखिए, अब ये फुल स्क्रीन हम ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। शिवानी, कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काउंटडाउन दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं 19 मिनट 50 सेकेंड, 49 सेकेंड, 48, 47, 46, 45, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये लगभग लगभग तय हो गया कि करीब 19 मिनट के बाद ये रॉकेट लॉन्च होते हुए आपको दिखाई देगा। उस पल को कैद करने के लिए अपनी आंखों में बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं, तो ठीक 19 मिनट बाद वो पल आने वाला है जिसका इंतजार किया जा रहा है। अंतरिक्ष बाजार में भारत के दबदबे की एक नई उड़ान जिसे कहा जा सकता है और एक बड़ी उपलब्धि ग्लोबल स्पेस मार्केट में जिसे कहा जा सकता है। 19 मिनट का वक्त शिवानी
8: शॉर्टली एज वेल मिनट्स
9: जुड़ेंगे दोबारा हमारी सहयोगी शिवानी से। लेकिन आप समझिए कि जब बात की जा रही है विक्रम 1 की, मिशन आगमन की, पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, सभी तैयारियों के बाद अब लॉन्च होने को तैयार, वक्त बेहद कम बचा हुआ है और 18 मिनट अब यहां पर बचे हुए हैं। शिवानी, टाइमर शुरू हो चुका है और वक्त 18 मिनट 41 सेकेंड, 40, 39, अब यह कम होता जा रहा है धीरे धीरे, 18 मिनट लगभग।
6: बिल्कुल, यानी कि इस मिशन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, जो इसको 11:30 बजे का निर्धारित समय था उससे थोड़ा सा आगे इसको प्लान्ड वे में रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मानसून, जब इस तरह का कोई लॉन्च हो रहा होता है मौसम का ख्याल रखना पड़ता है, हवा की जो दिशा है उसका ख्याल रखना पड़ता है, धूप का ख्याल, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं,
9: तो हर एक पहलू को बहुत सावधानी से यहाँ पर समझना होता है, उसके बाद ही ये रॉकेट लॉन्च होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों की मेहनत उम्मीद अपेक्षाएं इस रॉकेट से जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जल्दी लौटेंगे हम, ये लॉन्चिंग आपको दिखाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
13: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
14: After multiple assassination attempts, they can't even get...
15: They're reliable.
16: Always when I need them.
13: To live sports action.
17: One-hit jam by LeBron on the break.
18: That's another three, Steph Curry.
13: And your favorite music.
19: Well, the dawn begins to crack.
13: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
20: Sokudo,

0: नमस्कार
1: संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि राहुल के आंदोलन के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक अनशन चल रहा है, जिनमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल वाले मंच पर बारी बारी से विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल, तो समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल, तो सीपीएम की ओर से सुभाषिनी अली, उद्धव ठाकरे की ओर से अरविंद सावंत, तो टीएमसी की ओर से कीर्ति झा सोनम वांगचुक से मिलकर आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: College hona chahiye, khasra number 148/149. अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं. लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है. लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीजें होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे सिवाय जमीन के और उन जमीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा.
7: इसी खाली मैदान के बगल में बगला मुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है. यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगला मुखी कॉलेज दर्ज है. लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई. 5 साल से कॉलेज बंद. आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगला मुखी कॉलेज के भीतर भी गए. सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला. इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे. यहाँ सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला. ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है.
6: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है. और ये पूरा कॉलेज का प्रीमिसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमिसिस नहीं है. और साथ ही में इसी प्रीमिसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है. बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था.
8: क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे
9: है? नहीं, दे दी गई है. जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है.
7: असल में एक खेल है. बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले. बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया. सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही. केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है. फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है, तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की उड़ान, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर। बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जनता

0: सीमित नहीं है, भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने व्यापार करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और ये देखिए अब एक मिनट का वक्त बचा हुआ, एक मिनट आठ सेकेंड, सात छ पांच चार तीन दो एक, अब एक मिनट से भी कम वक्त बचा हुआ है। और एक मिनट से कम वक्त यानी आप समझिए अब यह तय कर दिया जाएगा कि भारत की प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में कुछ भी कर सकती हैं, तिरंगा लहरा सकती है, व्यापार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। भविष्य में और भी कई नए मिशन की राह खुल जाएगी।
1: -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds.
2: Real time programs activated.
1: -25 seconds. -20 seconds.
3: -20 seconds is the call out now.
1: -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
4: That's very true, Suyashan Akhil. I am awestruck at the sheer power that stage one is producing.
0: और विक्रम 1 ने उड़ान भर ली है अंतरिक्ष में, भारत की नई उड़ान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पल पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करा रहा है और ये तय कर दिया है कि भारत की कंपनियां भी अंतरिक्ष में अब अपने मिशन को कंप्लीट करने में सक्षम हैं, व्यापार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अंतरिक्ष जगत में तिरंगा लहराने को पूरी तरह से तैयार है। तो मेक इन इंडिया और नई तकनीकों का विकास होगा, इसरो पर बोझ कम होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा होगा, अंतरिक्ष बाजार में भारत का दबदबा, पृथ्वी की कक्षा तक सफर यानी 450 किलोमीटर की दूरी, और सब कुछ शुरुआत में नॉर्मल नजर आया जब विक्रम 1 ने उड़ान भरी।
3: पार कर लिया है और दल
1: का
0: ये देखिए वो प्रोजेक्टरी दिखाई जा रही है,
3: काफी उत्साहित है इस समय। और विक्रम 1
0: और जो क्रू लॉन्च क्रू है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और टाइम कितना हुआ ये देखिए, टाइम बताया जा रहा है 70 सेकंड हो चुके हैं, 71 सेकंड हो चुके हैं, रेंज भी बताई जा रही है, एटीट्यूड बताया जा रहा है, ये टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जब लॉन्च हुआ उसके उस वक्त ये देखिए कितनी खुशी यहाँ पर चेहरों पर देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखा जा सकता है। और ये जो विक्रम 1 पर जो रॉकेट लगा हुआ है वहां से ये तस्वीरें आ रही है। ये देखिए मिशन टाइम 1 मिनट 32 सेकंड 33 सेकंड 34 सेकंड, ये मिशन टाइम बताया जा रहा है, यानी विक्रम 1 ने जब उड़ान भरी तो इतना वक्त उसे हो चुका है। और खुशी देखिए इन चेहरों पर, क्योंकि हर एक सदस्य की मेहनत थी।
3: प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
0: तो देखिए पहली मंजिल पार करके अब दूसरे चरण पर पहुंच गया है विक्रम 1, और यहां सभी लोग उत्साहित हैं, तालियां बजाकर इस उपलब्धि की, इस कामयाबी की। अब देखिए सुधांशु शुक्ला भी वहां पर मौजूद है और लॉन्चिंग के वक्त अब जोश जस्ट देखा जा रहा है, ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे हैं उस क्रू का, उस टीम का जिसने दिन रात की मेहनत की और उसके बाद ये सपना, ये मिशन साकार हुआ।
3: 2.6 किलोमीटर पर सेकंड, ऑफ कोर्स आवर टारगेट वेलोसिटी फॉर टुडे इज 7.6।
5: S2 परफॉर्मेंस नॉर्मल,
3: वी हैव जस्ट हर्ड कॉल आउट दैट
0: सभी परफॉर्मेंस नॉर्मल नजर आ रही है,
3: स्टेज 2 परफॉर्मेंस इज नॉमिनल।
0: और ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है,
3: ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत,
0: जो सोचा था वो हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है ये ऐतिहासिक क्षण है, ये उपलब्धि जो भारत ने हासिल की है आने वाले वक्त में दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल साबित होगी और दुनिया के लिए मदद भारत करेगा
3: अंतरिक्ष पहुंचने में। And we've had call outs of separation of the payload carrying.
0: भारतीय तिरंगा जो ये बता रहा है कि अब अंतरिक्ष जगत में भारत की लंबी उड़ान होने जा रही है।
4: And the प्रोटेक्टिव फेयरिंग इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड हैज बीन क्लीनली सेपरेटेड फ्रॉम द लॉन्च
0: फेज.
3: यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण
0: सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है.
3: चरण का प्रज्वलन भी
0: सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है विक्रम वन का.

0: Had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, S3 the telemetry will normal. Switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor.
1: अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस
2: की
1: प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है
0: एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स वी हैव नियर एग्जैक्ट फॉलोइंग ऑफ द इंटेंडेड प्रोजेक्ट
3: तो देखिए जो तय किया गया था बिल्कुल ठीक उसी ट्रेजेक्टरी पर विक्रम 1 अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है और इसीलिए लोगों के अंदर उत्साह है जो वैज्ञानिक हैं, जो पूरी क्रू है लॉन्चिंग क्रू है वो सभी लोग खुश हैं क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था जैसा उन्होंने तैयार किया था जैसे उन्होंने प्लानिंग की थी वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हो रही है वो जो कहते हैं गुणा गणित बिल्कुल सही हुआ और ऐसा ही हो रहा है अभी तक जो भी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं कोई परेशानी या फिर चिंता की बात नहीं है लॉन्चिंग के बाद ये देखिए जोश है
0: That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal.
3: देखिए स्टेज 3 की बात की जा रही थी स्टेज 3 में एंटर कर चुका है और स्टेज 3 तब एक्टिव होती है जब रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष के शून्य यानी वैक्यूम में पहुंच जाता है वहां हुआ है इसे खास तौर पर वैक्यूम में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया और अब देखिए ये उम्मीदें कई लोग भावुक भी हैं और भावुक हो भी क्यों ना क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं होती है कई सालों की मेहनत होती है लगन होती है त्याग होता है बलिदान होता है और उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का अब दबदबा होने वाला है ये पूरी दुनिया अब जान रही है
0: 140 स्टेज 3 इज नॉट प्रोड्यूसिंग थ्रस्ट बट इट्स कनेक्टेड टू द व्हीकल एंड इट्स गोना कोस्ट एज अ सिंगल बॉडी All of this is done to manage.
3: तो मिशन टाइम देखिए 5 मिनट 50 सेकंड हो चुका है और अब वैक्यूम जिसके बारे में बात की जा रही थी अब वहां पर ये पहुंच चुका है यानी पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष के शून्य में पहुंच चुका है और इसीलिए देखिए जब हर पैरामीटर्स पर विक्रम 1 खरा साबित हो रहा है बिल्कुल सही साबित हो रहा है तो लोगों का उत्साह आप देखिए खुशियां देखिए
1: सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है और यहां पर जो प्रसंग है वो
3: देखिए कहा जा रहा है कि सभी
1: एक ऐतिहासिक
3: जो दल है वो प्रसन्न है और प्रसन्न हो भी क्यों ना
1: अंतरिक्ष उड़ान
3: देखिए कुछ लोग तो मेज पर चढ़ गए कुछ लोग तो टेबल पर चढ़ गए अति उत्साहित और हो भी क्यों ना क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है सालों की मेहनत और पूरी टीम की मेहनत थी और जब पूरी टीम की मेहनत सफल होती है तो पूरी टीम खुशियां मनाती है पूरी टीम उसके अंदर जोश और उत्साह भर जाता है और वो यहाँ पर दिख भी रहा है मिशन आगमन नाम दिया गया है अंतरिक्ष में भारतीय तिरंगा लहराया है जय भारत जय
4: राइट नाउ इट्स रियली
3: और ये विज्ञान की उपलब्धि है ये भारत की उपलब्धि है अंतरिक्ष में भारत का दम है जो भारत अब पूरी दुनिया को दिखाएगा
4: our plots are really overlapping the predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching and aren't you guys speechless right now
1: I mean yeah mere paas shabd hi nahi hai matlab ye main nishabd ho chuka hu
0: that's right We are approaching
3: अब आप सोचिए कि जब शब्द कम पड़ जाएं, तो उस वक्त इंसान की भावनाओं को आप समझ सकते हैं और ऐसे ही वहां की टीम
1: प्रतिकरण भी हो चुका है
0: एंड यू सी वंडरफुल व्यूज ऑफ S3 सेपरेटिंग एंड नाउ वी हैव कंबाइंड कोस्टिंग हैज एंडेड एंड स्टेज 4 विल नाउ कोस्ट ऑन इट्स
3: देखिए स्टेज 3 भी कंप्लीट हो गई और स्टेज 4 पर अब पहुंच चुका है विक्रम 1
0: सो स्टेज 4 विल नाउ फ्लाई ऑन इट्स ओन Essentially,
3: और ये जैसे जैसे एक स्टेज पार हो रही है सफलता के साथ वैसे वैसे देखिए खुशियां कैसी बढ़ती जा रही हैं खुशियां बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर इस ट्रैजेक्टरी को देखिए कि जो उम्मीद की जा रही थी बिल्कुल ठीक वैसे ही टाइम वर्सेस एटीट्यूड ऑल्टीट्यूड दिखाया जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर दिखाई जा रही है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ 450 किलोमीटर का सफर तय करना था अब यहाँ पर आप जो सेकंड ट्रेजेक्टरी आप जो देख रहे हैं वो विक्रम 1 की है जो सेकंड वाली आप देख रहे हैं 450 किलोमीटर की बात कही गई थी और अभी आप देखेंगे तो 375 से ऊपर निकल चुका है और वक्त तेजी के साथ बीत रहा है। अब आप देखिए 12 मिनट 14 सेकंड।
1: अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड पर आधारित है। उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए जिसे कंट्रोल
3: देखिए मिशन आगमन नाम दिया गया है, जिसके तहत ये रॉकेट पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अपने पेलोड्स को छोड़ता है। अब आप समझिए 375 किलोमीटर तक का सफर ये तय कर चुका है, यानी कुछ वक्त और कुछ सेकंड कह सकते हैं आप, कुछ मिनट कह सकते हैं, फिर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये अपने पेलोड्स को छोड़ेगा। मुख्य रूप से विक्रम 1 की जब बात की जाती है तो ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर उपग्रह और तकनीकी पेलोड्स को पृथ्वी की निचली कक्षा ऑर्बिट लियो में स्थापित करेगा और ये देखिए हर कोई खुश है। लॉन्चिंग के बाद जस्ट है, जस्ट जैसा आपको बताया ये पूरा टीम एफर्ट था और टीम एफर्ट के बाद अब जब सब कुछ सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद अब लोगों में खुशी है। एक बार फिर से वो ट्रेजेक्टरी भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर इस वक्त विक्रम पहुंचा हुआ है और कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। देखिए कमर्शियल रॉकेट जिसका मुख्य काम ग्राहकों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना, अब कई देश भी इसका इसका जो सहारा ले सकते हैं और इस उड़ान में इस उड़ान से बहुत से लोगों को उम्मीद थी और ये देखिए गर्व का माहौल इन चेहरों पर, इन आंखों में वो साफ देखा जा सकता है। जोश हर एक क्रू मेंबर के मन में है जिनकी मेहनत दिन रात जिन्होंने एक कर दिया इस सपने को साकार करने के लिए। श्री हरिकोटा से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब विक्रम 1 ने उड़ान भरी,
1: उनका एक चित्र यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित है।
3: देखिए विक्रम 1 अपने साथ में एक खास रोबोटिक आर्म भी लेकर गया है जो रॉकेट के ऊपरी हिस्से में जुड़े रहकर काम करेगी।
0: नाउ वी आर रिसीविंग स्ट्रॉन्ग टेलीमेट्री फ्रॉम द बोगोर एज वेल एज द यथार्गा स्टेशंस इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। द करंट एल्टीट्यूड ऑफ द व्हीकल इज 426 किलोमीटर्स, आवर टारगेट इज नियर 450।
3: देखिए 426 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, 426 और 450 का टारगेट है, 450 का टारगेट है, यानी कुछ पल और जो अपने टारगेट पर विक्रम 1 पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दिया, वंदे मातरम अंकित किया, एक पोस्टकार्ड भी भेजा है अपने हाथों से लिखा जिस पर वंदे मातरम अंकित है।
4: Suyash, it must be a really amazing feeling, right? I mean, you and your team worked on this engine to get it going and it is finally taking us to space.
0: Yeah, it's a feeling that's really hard to describe.
3: देखिए करीब 430 किलोमीटर का सफर विक्रम तय कर चुका है, 20 किलोमीटर का सफर बचा है जो मंजिल 450 किलोमीटर यहाँ पर बताई गई थी और अब इंतजार किया जा रहा है फाइनल आउटपुट का। पृथ्वी की कक्षा तक का जो सफर है वो लगभग ये देखिए 375 था, 375 को पार करके जो सेकंड लाइन आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां विक्रम है। लॉन्चिंग के बाद जो जोश और उसको मॉनिटर किया जा रहा है टीम की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से, तो वो भी यहां पर देखा जा रहा है
0: इन सिंक टू डिलीवर दिस फिनोमिनल आउटकम। सो आई एम काइंड ऑफ,
3: और ये वो छात्र छात्राएं दूर दूर से आए थे यहाँ पर इस मिशन को सफल होता हुआ देखने के लिए, इस मिशन को सफल होता हुआ देखने पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं
0: एंड लुक एट दैट डेटा इन अ लिटिल व्हाइल।
3: और देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दें विक्रम 1 विज्ञान के साथ साथ भारत की कला संस्कृति को भी अंतरिक्ष में प्रदर्शित करेगा। जैसे आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा कॉस्मिक ब्लूम के बारे में जब बात की जाती है, लैब में तैयार किए गए हीरे जो हैं उनसे बनी एक बेहद खूबसूरत फूल के आकार की कलाकृति को अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाया गया है। माइक्रो आर्ट इंसुलेशन की जब बात की जाती है, सुई के छेद के आकार के भीतर 18 कैरेट सोने के एक छोटा रॉकेट बनाया गया है और इसके अंदर भारत के महान वैज्ञानिकों डॉक्टर विक्रम साराभाई, सर वीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अंतरिक्ष में भारत के विज्ञान के इतिहास को ट्रिब्यूट देंगी।
0: So, to make all of this work, we employ something known as regenerative cooling.
5: Performance normal.
0: Yeah, and we've gotten call out that the...
3: So, सभी performance यहाँ पर पूरी तरह से normal हैं, जो लक्ष्य साधा गया था, उस लक्ष्य तक विक्रम पहुँचा है, सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं, और एक संतुष्टि का भाव चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दबदबा साफ दिखेगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहें आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद भारत की अप।
7: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music... Want to stay in the know with top news?
9: Continue to face political pressure to reach a peace deal.
8: Or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
10: The Electric Savari.
11: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
4: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
5: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
6: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
4: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टीबैगर्स मिलेंगे. सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है. और 2036 तक 3 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा.
3: स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन द वर्ल्ड. सी देयर आर ओनली टू थिंग्स, प्राइस एंड वैल्यू. बफेट साहब ने एक सबसे बड़ी चीज सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड. एक का हजार दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं. बाजार आपको डराएगा रोज आके, एक टका नीचे दो टका नीचे, तू आ ना भाई हमारा तो पार्टी चालू हो जाएगा. हम वही के वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वैसे ही अभी भी.
4: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल. अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत. अब देखिए आज तक वर्टिकल.
5: पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. एक तरफ पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है, सेना की तैनाती के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है. दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं. बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है. बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तूंग जिले के खटकोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया. संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि कई घायल हुए हैं. बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया जिसके निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसें, उनके सुरक्षा स्क्वाड और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थी. बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमले तेज कर रहा है. इससे पहले बीएलए की ओर से 1 से 14 जुलाई के बीच 48 हमलों का दावा किया गया था जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. इन हमलों के बीच पाकिस्तान की मुश्किल ये भी है कि बलूचिस्तान में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सबसे बड़ा कारण पानी का गंभीर संकट और लोगों की गुमशुदगी है जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं. बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में रहा है लेकिन हाल के दिनों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस बीच बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाले हैं. आज तक ब्यूरो.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: भारत के अंतरिक्ष मिशन के ऐतिहासिक दिन, श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर। बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचो को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने ललिता गौतम के परिवार से की मुलाकात, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आज संभल का भी दौरा। सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया। और लगातार सातवें दिन अमेरिका का ईरान पर हमला जारी, कई शहरों में धमाके, ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, कुवैत बहरीन में अचानक का सायरन, हॉर्मुज में धक्के, 2 तेल टैंकर। और अब आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विक्रम 1 को लेकर बधाई संदेश दे रहे हैं।
1: एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचू लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी, ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं, आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेलो
2: हेलो हेलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस एंड आर टीम, एंटायर टीम ऑफ स्काईरूट, मोर देन 1000 पीपल आर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड लिसनिंग टू यू, our hearts are swelling with pride and this means a lot to us.
1: Dekhiye ye mission agman hai, ab agman ko to aur aage badhte hi jana hai.
2: sure sir aur sir aapka card jo aap bheje the, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
1: देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखो, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
2: थैंक यू सर।
1: मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं।
2: थैंक यू सर। we are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really, really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector. And now we see historically, you know, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India. And this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India. And I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years.
1: देखिए समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ है और आपने उस समर्थन को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है।
2: थैंक यू सर।
1: आज तो आपकी टीम खुशियां मनाने में लग रहेगी।
2: जरूर सर। एंड इन फैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देर वॉज नो फंडिंग एनवायरमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट द गवर्नमेंट इज एनेबल्ड अस एंड ओपन अप द सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड नाउ वी स्टैंड एज इंडियाज फर्स्ट private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone all from India with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a vision, big vision for 50 launches in 2030. Definitely I don't see it as a challenge, sir. Thanks a lot for your encouragement and looking forward to meet you, sir, in person.
0: देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात थी जो हौसला अफजाई कर रहे थे उस टीम की जिस टीम ने इस मिशन को सफल बनाने में अपना सब कुछ दिया। और अब आपको सुनवाते हैं पंचायत आज तक यूपी में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, धर्मेंद्र यादव ने।

0: आज तक के मंच पर आपका स्वागत है, पंचायत आज तक में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, लखनऊ में जरूर हम हैं और चर्चा लखनऊ की सियासत की होगी, उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, लेकिन क्योंकि आप सांसद हैं और सपा के चेहरा हैं दिल्ली में खास करके, तो इसलिए मेरा पहला सवाल होगा मॉनसून सत्र पर। एनसीपी शरद पवार गुट अब डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करेगा। जो स्पेशल सेशन हुआ था, इंडिया ब्लॉक एक साथ जुट करके आप लोगों ने उसको पारित नहीं होने दिया था। इस बार क्या इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ दिख रहा है?
1: सबसे पहले मारिया जी, आपको और पूरे आज तक परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की ऐतिहासिक सरजमी पर हमें अपनी पार्टी का पक्ष रखने का आपने मौका दिया। जिस सवाल से आप शुरुआत कर रही हैं, मैंने भी मीडिया में कुछ देखा सुना, और जिस तरह की एनसीपी ने कंडीशन रखी है, मैं समझता हूं वो कंडीशन कभी सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। और जो विपक्ष है, जैसा आपने 16-17 अप्रैल को देश की संसद में देखा था, संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस बिल को, जो तानाशाही लाने का डिलिमिटेशन बिल षड्यंत्र है, उसको हम लोग रोकेंगे। और जो आपने मुझे मंच दिया, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश के जनमानस को महिला बिल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। महिला बिल 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ, संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष की सारी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन उस महिला बिल में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीति और नियत है, जो नियत में खोट है, जो महिलाओं को मुद्दा बना के या महिलाओं को आगे करके डिलिमिटेशन बिल पास करना चाहते हैं, इसका पूरा का पूरा विपक्ष पुरजोर विरोध पहले भी किया था, और आने वाले जब कभी भी ये दोबारा संसद में आएगा, मुझे तो उम्मीद है कि शायद बीजेपी के लोग अब ऐसे दोबारा गलती नहीं करेंगे, और अगर वो लाएंगे तो हम लोग उतने ही मजबूती के साथ विरोध करेंगे।
0: लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एनडीए का कुंभा बढ़ गया है और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, एनसीपी शरद पवार अब इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि डीएमके भी शायद सपोर्ट कर सकता है, जो 2/3 जो चाहिए
1: मैं मारिया जी, इस बात
0: वो शायद मिल जाए।
1: मैं इस बात के लिए इतना ही कहूंगा, अभी से पूर्वानुमान लगाना किसी भी दल के प्रति आप पूर्व नियोजित कोई बात कहें, वो बात गलत होगी। अगर संसद में ये बिल आएगा तो स्वाभाविक है सबका पक्ष सामने होगा, कौन दल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, पूरा देश उसको देखेगा, और मैं समझता हूँ संसद के सत्र का आने का हम सबको इंतजार करना चाहिए इस मुद्दे पर।
0: चलिए, कुछ दिनों में ही शुरुआत होने वाली जी, है जी। तो हम इंतजार करते हैं। अब चर्चा यूपी की सियासत की, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने बहुत आरोप लगाया है आप पर, समाजवादी पार्टी पर और आपकी राजनीति पर। उनका कहना है, और मैं उनकी बातों को कोट करूंगी, उनका कहना है, जो राम को नकारने वाले लोग क्या आस्था की बात करेंगे, ये राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर उन्होंने कहा। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि विदेश घूमने वाले क्या यूपी को जानेंगे।
1: अगर हमारे नेता कुछ जाते हैं विदेश में, कुछ आइडिया लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे नेता से कम 20 गुना ज्यादा देश के प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं, क्या उनके बारे में वो यही राय रखते हैं? लेकिन ये सवाल हो सकता है आज तक से आप ना पूछ पाए या मीडिया के लोग ना पूछ पाए, लेकिन हम समाजवादियों को चिंता नहीं है। अगर वो हमारे नेता पर आरोप विदेश यात्रा पर लगाते हैं तो स्पष्ट जवाब दें, क्या ये आरोप वो अपने प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? ये क्या बात होती है, ड्यूल पॉलिसी चलाएंगे? हमारे नेता अगर विदेश में कुछ अच्छी योजनाएं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो डायल 100 स्कीम देख रहे हैं, जिसको 102 में बदलने का तबलीग किया है, ये न्यूयॉर्क की पुलिसिंग थी, सिंगापुर की पुलिसिंग थी, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर उतार के दिखाया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। जब कोविड आया नहीं था, कोई कल्पना की नहीं की थी किसी ने कि कोविड जैसी बीमारी आएगी 2019 में, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 12 से ही लैपटॉप बांटना शुरू किया और 17 तक लगातार बांटे, जो कोविड में मैं समझता हूँ बच्चों की ऑनलाइन क्लास के सबसे ज्यादा काम आए, तो वो काम आए। हमारे नेता की दृष्टि बहुत आगे चलती, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश देश का ही नहीं दुनिया का सबसे विकसित प्रांत बने, ये हमारे नेता की सोच है। हमारे नेता कभी भी बेवजह की रूढ़िवादिता में नहीं फंसाते, वो चाहते हैं प्रदेश के नौजवान आगे बढ़े, तरक्की करें। और आज हम लोग विपक्ष में हैं पिछले लगभग 9.5 साल से, जो भी उत्तर प्रदेश का नौजवान बच्चा शिक्षक छात्र या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई बेहतर काम करता है तो विपक्ष में रहने के बावजूद अपने पार्टी के कोष से उस व्यक्ति का, उस छात्र का, उस नौजवान का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो ये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट लेके नहीं कर सकते।
0: लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने उस पर बोला और बहुत ही प्रमुखता से उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन सवाल ये है कि जब अब SIT की रिपोर्ट शायद आज फाइनल सबमिट होने वाली है तो अखिलेश यादव नहीं है।
1: देखिए SIT
0: की सवाल अभी उठाने का वक्त आया है तो अयोध्या जाकर
1: आप गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। SIT की रिपोर्ट क्या सबमिट आदरणीय अखिलेश जी को होनी है?
0: नहीं, उनको नहीं करनी है,
1: क्या उनको होनी
0: है के तौर पर
1: जो उनका होना जरूरी है। ये बेवजह के सवालों में आप लोग सवाल उलझाना चाहते हैं। देश के अंदर, देश के ही हमारा एक प्रांत है मणिपुर, सालों साल जलता रहा, क्या एक बार देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री झांकने गए वहां? लेकिन आप लोग ये सवाल उनसे नहीं कर पाएंगे, क्या सबमिट रिपोर्ट उनको होनी है क्या? और मीडिया के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में जो भी रिपोर्ट आएगी, आप सब जो न्यूज देंगे, और मैं समझता हूँ सबसे पहली उस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी, सबसे पहले किसी का विचार आएगा वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का आएगा, ये मुझे विश्वास है।
0: तो आप मानते हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होगा?
1: देखिए सवाल चुनाव का नहीं अकेले, ये चुनाव का मुद्दा तो बीजेपी के लिए था। मैं तो देख रहा हूं 1990 से जब सदे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उस समय से और अब तक मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के रुखों को बदलते हुए देखा है। उस समय सदे नेताजी ने कहा था कि या तो ये फैसला सर्वसम्मति से आपस में बातचीत से हो या माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करें, और अंत तो गत्वा वही हुआ, माननीय न्यायालय का जब 19 में फैसला आया उसके बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता सुगम हुआ और रास्ता खुला। लेकिन मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों से, 1990 से लेके आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया है क्या उसका कोई भी हिसाब किताब दोगे? राम मंदिर के जो जगह है, जिस जगह पर मंदिर बना है, निर्मोही अखाड़े के पास, उसके पक्ष में निर्मोही अखाड़े के पक्ष में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, और उसी निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने जो 90 के दशक में लोगों ने दिया था, सहयोग दिया था भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ, वो चोरी हुआ। 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है। एक ही दिन में जमीन की कीमत आप सोचिए 12-12 गुने बढ़ी है, और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने, उस जज्बात से पैसे दिए थे, और वो पैसे किसी और ने नहीं लूटे, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मेयर ने खुद लिए हैं, ये है सच्चाई।
0: पंचायत आज तक में आपने सारे सवाल लिए और जम करके जवाब दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं यूपी विधानसभा के, और यूपी की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं। अखिलेश यादव की साइकिल पर बहुत जमाने से साथ में हैं। 1980 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और 7 बार के विधायक हैं। माता प्रसाद जी, पंचायत आज तक में आपका स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके आने से पहले योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने चंदा चोरी मामले पर यह कहा है कि डकैती करने वाले चोरी की बात करते हैं, आप इस आरोप को कैसे देखते हैं?
2: मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बार तो आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक समाजवादी पर, पार्टी पर आरोप लगाने की बात है, ये उनका प्रारंभिक अधिकार है। जब कभी वो बोलते हैं, चाहे जनता के भाषण बोलें चाहे विधानसभा में बोलें, वो हम समाजवादी पार्टी को अपराधी और गुंडों की पार्टी बताते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में जो काम किया, जो उसका विजन था, उस विजन तक अभी ये नहीं पहुंच पाए। हमारा विजन था गरीबों को ऊपर लाने का, गरीबों को सहायता पहुंचाने का। हमारा विजन था कि गरीब आदमी अस्पताल पहुंच जाए, इसलिए 102 और 108 एम्बुलेंस चलाया। हमारा अभियान था कि गरीब आदमी अगर अस्पताल थाने पर नहीं जा सकता है, वो नहीं पहुंच सकता किसी तरह से, उसके ऊपर दबाव है, तो हमारा विजन था 100 नंबर कि वहीं से बोले वहाँ चले आओ। ये विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा ये बातें रहती, मैं इसका बहुत जवाब दे चुका हूँ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक अच्छे और सब बुद्धिमान लोगों और विचारधारा के लोगों की पार्टी है। मैं आपसे कहूँ कि भाजपा में कितने विचारधारा के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो विश्व हिंदू परिषद चलाते थे, जो भाजपा के लोग चुनाव लड़ते थे तो उनको हरवा देते थे। ये खुद भाजपा में नहीं है, ये तो विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं, इसलिए वो जो मन में आता बोलते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक जो चरित्र है वो सामने नहीं आ पाता है।
0: क्योंकि हम लखनऊ में हैं, हाँ। और अभी यूपी की राजनीति गर्म है क्योंकि कुछ महीने में चुनाव होने वाला है, और चुनाव में एक अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है। उस चोरी के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, उसके जवाब में मुख्यमंत्री ये कह करके गए हैं कि जो आस्था को नकारते थे वो अब आस्था की क्या बात करेंगे।
2: हम लोग आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी हैं क्या, वो तो नाथ संप्रदाय के हैं। और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी। उनके पास एलआई था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अखिले मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे और वो अंसारी साहब के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती थी, उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया और उनको जो आबदारी कराई, यह सवाल है। वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया मंदिर के। अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है।
0: पर आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है, और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा?
2: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसे समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
0: आप मानते हैं?
2: हाँ मानते हैं।
0: लेकिन 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है, हाँ। आप नहीं मानते?
2: हम बाप को बता दें, रुख बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है, भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं। उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया, जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमते रहते थे, कहते रहते थे अयोध्या, अयोध्या के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करते थे, उस कोशिश को प्रभु राम श्री राम ने नकार दिया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहाँ से जिता दिया। अभी इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहाँ जा रहा है।
0: लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव भी हुआ।
2: मिल्कीपुर उपचुनाव अगर देखी होती तो चुनाव नहीं था, वो डाका था। और जो सीओ वहाँ डकैती डाल रहा था उसको फिर इसी मंदिर पर लगाए थे, तो पता लगाओ कैसे चोरी हुई, क्या हुई चोरी। वहाँ मैं गया था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, पुलिस वाले रास्ते में खड़े हो जाते थे, कुदरकी में गया था। इलेक्शन जो वहाँ से ऑब्जर्वर थे उनसे मैं कहता था ऐसा हो रहा है, वो कहते थे ठीक है देख लें, हुआ कुछ नहीं, ये चुनाव फिर से करा लें, अपना इस्तीफा दिला के फिर से करा लें, अगर मिल्कीपुर जीत जाए तो हम बतावें।
0: नहीं तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव फेयर नहीं था तो आपको लगता है 2027 का चुनाव फेयर हो?
2: अरे फेयर होने नहीं देंगे, ये तो बंगाल में किए,
0: अनफेयर होने नहीं देंगे।
2: सुनिए, ये होने नहीं देंगे, या ये चाहते होंगे, लेकिन हम इतना तैयार हैं कि हम फेयर चुनाव कराने के लिए इनको बाध्य करेंगे और हम अपने वोटरों को पोलिंग तक पहुंचाकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे।
0: आप ये चाहेंगे कि 2027 में भी गठबंधन हो?
2: हाँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए।
0: तो लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को आप सोचेंगे कि उनको उनकी भूमिका बढ़े?
2: देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कैसी सीट किसको मिलेगी, लेकिन गठबंधन होगा मैं ये कहता हूँ। और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा।
0: छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ करके चली गई उधर,
2: छोटी पार्टियां चली गई क्योंकि उनको आशा लगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब सरकार नहीं है, माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ गए।
0: माता प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तुम मेरे बेटी के समान हो, तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कुछ पूछा मैंने आपको बताया, क्या गलत है क्या सही है ये समाज तय करेगा कि हमने कहा है कितना सही है कितना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
4: Bharat Ki Apni Electric Sawari.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. day or night. Today's Hits keeps the energy going. Start listening now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn.
4: Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काईरूट को दी बधाई। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आज संभल का भी दौरा। सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो आया सामने, लव जिहाद का लगाया आरोप। और लगातार 7वें दिन अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में धमाके, ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, कुवैत बहरीन में अटैक का सायरन, हॉर्मुज में धधके 2 तेल टैंकर।

0: आज उत्तर प्रदेश चुनावों के इस मंच पे चिराग पासवान का स्वागत करते हुए मुझे 1985 का उत्तर प्रदेश याद आता है, बिजनौर, जब रामविलास जी ने चुनाव वहां से लड़ा, मीरा कुमार से मुकाबला उनका था, मायावती शायद निर्दलीय उस समय चुनाव लड़ रही थी और रामविलास जी दूसरे नंबर पर रहे थे। पर चिराग आज उत्तर प्रदेश में किस नंबर पर रहने के लिए आए हैं? आप यूपी में चिराग पासवान क्यों?
1: देखिए, मैं चिराग पासवान किस नंबर पर रहता है नहीं रहता है वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि उत्तर प्रदेश आगे रहे, मेरा देश। जब मेरे प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना करते हैं, ऐसे में देश के हर राज्य का आगे बढ़ना जरूरी है और बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पे देश की एक बड़ी आबादी रहती है और ऐसे में अगर उस आबादी के एक हिस्से के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्ग विशेष से आते हैं, वो वंचित है, उनके पास आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए,

0: सेड दैट ये जरूर है कि अलग अलग जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कई दल हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का अनुभव किया कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति से आता है, उनको लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा, और जब मैं विपक्षियों का जिक्र कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके द्वारा उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सीटें जीती लोकसभा में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा जो झूठ इन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव में बोला, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कि आज 2 साल हो गए मेरी सरकार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए, इन 2 सालों में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया, या किस संविधान की हत्या कर दी गई? झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट हासिल किया और आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज के उसी वर्ग को करने का काम करते हैं, इन्हीं के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोग जाना भी जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, तो यकीनन ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की आवाज मजबूती से बनना चाहता हूं जिस वर्ग से मैं खुद आता हूं। हम लोगों ने पासी पासवान अनुसूचित जाति से आने वाले हर एक वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तो आवाज बनना ही बनना।
1: क्या ललिता गौतम जब केस पूरा जो अभी सुर्खियों में है, आप वहां पर गए हैं?
0: बिल्कुल, मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिस दिन ये घटना घटी, तुरंत उसके बाद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 17 मई को ही पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ना सिर्फ हम लोग वहां पर गए, बल्कि हम लोगों ने विस्तार में इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने देने का काम किया। यकीनन कतई हम लोग इस पे राजनीति करने की सोच के साथ नहीं, परिवार को न्याय मिले इस सोच के साथ हम लोगों ने उस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। और ये उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसका जिक्र मैंने किया, जहां पे विपक्षी दलों ने चुनाव में इन लोगों को भ्रमित कर वोट तो लेने का काम किया, पर आज जब उनको इनकी जरूरत है तो ये लोग उपस्थिति तक भी दर्ज कराना जरूरी नहीं समझते, उल्टा परिवार को और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इनकी आवाज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से बने, इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पर आए।
1: पर उत्तर प्रदेश में जब हम दलित विचारों वाली पार्टी की बात करते हैं, दलित हितों की बात करने वाली पार्टी की बात करते हैं, तो शायद बहन मायावती का सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है। हालांकि अब चंद्रशेखर भी, जो कि लोकसभा चुनावों में भी एक सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, सीट निकाली थी, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा दिखाते हैं, फिर चिराग पासवान की जगह कहाँ है?
0: देखिए, मैं चेहरा दिखाने, चेहरा चमकाने, जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस सोच के साथ नहीं आया हूँ। मेरा समर्पण है समाज के वंचित वर्ग के प्रति, और उस वंचित वर्ग के जब मैं बात करता हूँ, मैं हर वर्ग की बात करता हूँ, हर जाति हर धर्म से आने वाले लोगों के समावेश की मैं बात करता हूँ। मेरे नेता के विचारों को आगे लेकर चलने की मैं सोच रखता हूँ। यकीनन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर अनुसूचित जाति की प्रमुखता से आवाज बनने का उन्होंने काम किया। इसी श्रृंखला में मैं इस बात को भी उतनी ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं कि आदरणीय बहन मायावती जी ने भी समाज के उत्थान के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए, उनके संघर्षों के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ने का काम किया। आज की तारीख में सक्रियता उतनी नहीं दिखती है, कई बार इस बात का अभाव भी कारण बनता है कि समाज के उस वर्ग अनुसूचित जाति के साथ हो रही प्रताड़नाएं उतनी मजबूती से सुनाई नहीं देती हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज के हर वर्ग और खास तौर पर अनुसूचित जाति, जिनकी आवाज आज की तारीख में शायद उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाने वाले नाम ना के बराबर रह गए, वो बनने का प्रयास जरूर कर रहा हूं।
1: ऐसे में मायावती जी की तरफ से जब बयान दिया गया, पहले तो जब चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गए, काफी हंगामा हुआ, कई कई चीजों को लेकर सवाल खड़े हुए, उसमें मायावती जी की तरफ से

0: कहा गया कि मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकती हूं जो समाज को बरगला के और उनके हितों से अलग कर रहे हैं। जिस पर चंद्रशेखर जी का जवाब भी ये था कि वो मायावती जी का भले सम्मान करते हैं पर वो इस चीज में बिल्कुल नहीं उनसे सहमत हैं कि ये उग्र था या आक्रामक था, और वो चाहते हैं कि लोग पूरी आक्रामकता के साथ विरोध प्रदर्शन करें। दोनों की राजनीति एक दिशा में हो रही है पर बिल्कुल अलग अंदाज में हो रही है। चिराग पासवान, इन दोनों तरह की राजनीति पर क्या कहें?
1: अनुसूचित जाति समाज का ना सबसे ज्यादा अहित इसी राजनीति ने किया है, जहां पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से एक घटना का आंकलन करता है। ये गलत सोच है। वो घटना घटी है, वो आपके लिए कोई केस स्टडी नहीं है कि आप उस पर अपनी राजनीति कैसे चमकाएं। एक पार्टी ये बयान दे रही है, दूसरी पार्टी वो बयान दे रही है, तो इसमें वो परिवार कहां गया जिसके साथ अन्याय हुआ? उसकी आवाज कौन बन रहा है? आप अपने अपने दलों की आवाज बन रहे हैं। मैं एस्टैब्लिश करना मैं चाहता हूं, मैं पार्टी की आवाज, पार्टी का चेहरा, खुद का चेहरा चमकाने की सोच के साथ नहीं आया हूं। मैं उन लोगों की आवाज बनने की सोच के साथ आया हूं जिनकी आवाज शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से उनको न्याय मिले, और इसीलिए उनकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री तक, केंद्र सरकार तक, केंद्रीय गृह मंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
0: तो आपके लिए, एक अनुसूचित जाति के नौजवान के लिए, एक नवयुवती के लिए क्या भविष्य है? क्या चाहते हैं आप? क्या रास्ता वो अपनाएं? वो तो कंफ्यूज होंगे इस तरह की दो राजनीतिक बयान सुन सुन के।
1: देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले जात पात धर्म मजहब की बंदिशों से अपने आप को निकाले। कई बार अनुसूचित जाति कह कह कर आपको मेंटली आपको तोड़ा जाता है, कई बार आपको इंफीरियर होने का एहसास दिलाया जाता है। आज की तारीख में चिराग पासवान, मैं भले अनुसूचित जाति समाज से आता हूं बट मैं कहीं पीछे नहीं रहा, भले अपर कास्ट के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, पिछड़ा वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, मैं हर जगह मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज बनके, उन्हीं के परिवार का बनके। तो ऐसे में दलित समाज समुदाय से आने वाले जितने भी युवा हैं, बस सिर्फ इतना आग्रह है कि पढ़ लिख कर अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि आप अपनी आवाज खुद बने, कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़े, ये परिस्थिति ही ना आए।
0: ये एक नारा था, है आपकी पार्टी का, न जात न पात करेंगे सबकी बात, पर अब ज्यादा जोर से दूसरा सुन रहा है कि गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। क्या दोनों में से कौन से पे, किस विकल्प पे टिक मारना है?
1: देखिए, मैं दोहराता हूं कि मैं समावेश की सोच रखता हूं, बट समाज के अगर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके बीच राजनीतिक दृष्टि से मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ये उसी समावेश की सोच को बल देने की बात करता है। समाज का एक सबसे अगड़ा वर्ग, जिसको कहा जाता है कि पूरी तरीके से सक्षम है, क्या वो वर्ग को न्याय मिल रहा है? आज मेरे बिहार में ही एक एनकाउंटर हुआ, वो पंडित परिवार से ही वो आता था, उसकी भी मैंने निंदा उतनी ही प्रमुखता से की जितने यहाँ पे किसी पासी समाज के साथ हो रहे।
0: आप भरत तिवारी केस की बात कर रहे हैं? भरत तिवारी
1: जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। उसकी भी मैंने उतनी ही प्रमुखता से आवाज बनने का प्रयास किया। ये दो छोर हैं जिनको अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक को इस बात का एहसास दिला के कि भाई तुम तो सबसे ज्यादा सक्षम हो, बट आज उसके घर में भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और दूसरा वर्ग जिसको कि तुम अछूत रहे हो, तुम गांव से बाहर रहे हो, तुम तो अनुसूचित जाति के हो, उनको भी अलग रखा जा रहा है। ये वही समावेश है जिसको मैं A to Z में कहता हूं। ए जिनको सबसे आगे दिखा के अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है, दूसरे को जेड बता के पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा करके अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है। बट इस पंडित पासी पासवान के बीच में समाज का हर एक वर्ग है जिसकी मैं आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूँ।
0: ये इनमें से दो वोट ऐसे हैं जो अयोध्या में हरा दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए पूरे समय, अब तो संसद में आपके सामने वो कटाक्ष होते रहते थे जो अखिलेश यादव करते थे।
1: नहीं बिल्कुल, और ये मैंने उसी का मैंने जिक्र किया, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया।
0: नहीं तो विधानसभा में आप मदद कर सकते हैं अपने सहयोगी की।
1: देखिए मैं जरूर, अगर मैं गठबंधन किसी, मुझे नहीं पता कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में मैंने 2020 में बिहार का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा। इसकी सोच कहाँ से आई, क्योंकि 2005 में मेरे नेता ने बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2002 में मेरे नेता ने अकेले चुनाव लड़कर 2 विधायक जिताकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मुझे नहीं पता कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, होगा नहीं होगा, मैं राजनीतिक दृष्टि से इन तमाम मूल्यांकनों को कम, बट हाँ मैं उस समाज को एकत्रित करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ जिसको लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, और आज जब उनको जरूरत पड़ रही है तो उनके साथ खड़े होना भी वो लोग जरूरी नहीं समझ रहे, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़कर विकास की राह पर आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ।
0: ये 10 सीटें शायद आपको मिल रही हैं यूपी में लड़ने के लिए या नहीं?
1: नहीं, गठबंधन के तहत नहीं, हम लोग अकेले 2002 में हम लोग चुनाव लड़े थे।
0: हाँ।
1: और उसके बाद गठबंधन
0: नहीं, इस बार तो इस तरह की खबरें कुछ आ रही थी।
1: कितनी
0: खाने?
1: कितनी
0: 10 सीटें?
1: हाँ? दहाई का आंकड़ा आपने कहा। श्वेता जी, यू बीन वेरी काइंड टू मी एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसको सार्वजनिक मंचों पे हमेशा कमतर आका गया। मुझे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 1 सीट मिल जाएगी, 2 सीट मिल जाएगी, और ये मैं श्रेय मेरे गठबंधन के सहयोगी और खास तौर पे मेरे प्रधानमंत्री जी को जरूर दूंगा कि एक अकेले सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीट, मैंने 5 सीट 5-5 जीत कर दी, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये कि ये विश्वास उनका मुझ पे होना कि चिराग 5 सीटें जिता के ला सकता है, गठबंधन में अकेले सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया। कमिंग टू बिहार विधानसभा चुनाव, वहां पे कहा जा रहा था कि मुश्किल से 10-12 सीटें, अब तो 10 आप उत्तर प्रदेश में कह रही हैं, बिहार में हमें 10-12 सीटों पे सीमित किया जा रहा था, 29 सीटें दी, जिसमें से यकीनन डिफिकल्ट सीटें भी थी, 26 हारी हुई सीटें थी, पर उनमें से हम लोग 19 सीटें हम लोग जीत कर आए। मैं दोहराऊंगा, मुझे अंक गणित नहीं पता कि क्या रहेगा, कितनी सीटें गठबंधन में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, गठबंधन का स्वरूप होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मेरी तैयारी 403 सीटों पर है, ताकि अगर मैं गठबंधन में भी चुनाव लड़ूं तो मेरे गठबंधन के सहयोगियों को भी अपनी हर उस विधानसभा पे मेरे समर्थकों का साथ मिलना चाहिए, गठबंधन की सोच ही यही होती है। तो आज मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें कई प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए, जिसमें संगठन का विस्तार भी है, और आज ये फैसला लिया गया कि हमारे संगठन के साथ ही 403 विधानसभा पे अपनी तैयारी करने जा रहे हैं।
0: नहीं, क्योंकि आपकी आपकी बातों को आपके साथी सीरियसली भी बहुत लेते हैं, क्योंकि इकलौते नेता मुझे लगता है कि नहीं, साथ भी नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई गठबंधन अपनी पार्टी में पूरी तरीके से संघर्ष मचा हुआ है, उसके बीच में मैं मोदी का हनुमान हूं बोलते हुए अपनी बातों को रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और एक ट्रेजेडी से जब आप गुजर रहे हैं, तो आपकी बात को हल्के में तो लेंगे नहीं वो, कि अगर ये सीट इतनी सीटों की तैयारी कर रहा है उससे अच्छा गठबंधन कर लो इसके साथ। पर आपको लगता है, आपको लगता है कि चिराग
1: आपने मेरे बिहाफ पे एडवोकेट कर ही दिया है, तो मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
0: क्या चिराग पासवान वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं? आपको लगता है कि आप एनडीए में यूपी में एक्स फैक्टर लेकर आ सकते हैं?
1: देखिए मैं दोहराता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या फैक्टर हूँ नहीं हूँ, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि मैं उस परिवार के लिए एक फैक्टर जरूर बनना चाहता हूं जो आज भी अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, उस परिवार का फैक्टर बनूं, उस माँ का फैक्टर बनूं, उस भाई बहन का फैक्टर बनूं, ये सोच मेरी जरूर है चुनावी दृष्टि से। एंड आई थिंक श्वेता जी, इज टू अर्ली, फिलहाल मैं अपने संगठन पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पूंजी एकत्रित कर रहा हूँ, अपने लोग समान विचारधारा वाले साथियों को साथ लेकर चल रहा हूँ, ये जनाधार हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जब ये विस्तार इसी तरीके से होता रहेगा तभी गठबंधन भी आपको आगे अहमियत देगा या पूछेगा। तो फिलहाल मैं गठबंधन का हिस्सा बनूं नहीं बनूं कतई मेरी प्राथमिकता ये नहीं है। मैं खुद का इतना विस्तार कर लूं कि कल को आए आपके पास गठबंधन करने के लिए, इतना रेलेवेंट जरूर बनाऊंगा।
0: आप लोग सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि शायद उत्तराखंड, पंजाब सबकी तैयारियां कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं 19 तारीख को मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेंपल में माथा टेक के विधिवत तरीके से वहाँ की भी प्रचार की शुरुआत करूँगा। दो दिन पहले मैं उत्तराखंड में भी था। इतना ज़रूर तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में तीनों जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी।
0: बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और साथ में देश भर में विस्तार।
1: देखिए बिहारी हूँ तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो सोच को मजबूती से बल देने का प्रयास करता रहा हूँ, पर हाँ भारतीय हूँ उससे पहले। ऐसे में भारत का हर राज्य और ख़ास तौर पर ऐसे राज्य जहाँ पे मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले, आज पापा को गए 6 साल हो गए हैं पर उसके बाद भी इतनी मजबूती से लोग उनको याद करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, ऐसे में मैं मानता हूँ कि मेरा उत्तरदायित्व तो एक पुत्र होने के नाते और उनकी इस लेगेसी को आगे लेकर चलने के नाते उन लोगों के प्रति भी मेरी जवाबदेही है जो आज भी उनके जाने के बाद उनको याद करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
0: अच्छा, उत्तर प्रदेश में जाति की एक और राजनीति चल रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, बंटेंगे नहीं। वहीं पर समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर आती है जिसमें पी से भी कई अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, पिछड़े भी हैं, पंडित भी हैं, डी से आपके दलित भी हैं, आपका ए से औरत भी कभी कहते हैं, कभी आदिवासी कहते हैं, तो ये बहुत सारी अगड़े भी आ जाते हैं उसमें। तो ये वाली राजनीति उनकी भी चल रही है कि वो अपने साथ लाना चाहते हैं।
1: क्यों नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक साथ जोड़कर देखते हैं? क्यों जरूरत है हमें कि उसको पिछड़ा में देखें, अगड़ा में देखें, अलग अलग जाति में देखें, अलग अलग धर्म में देखें? जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ, जब मैं यहाँ की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ के हर एक व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, और ये करनी होगी। आप मुझे बताइए, जब महामारी आई थी और जब सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग आने के लिए मजबूर थे, तो क्या उसमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग के थे, सिर्फ अगड़ा वर्ग के थे, सिर्फ इस जाति के थे, सिर्फ उस धर्म के थे? हर व्यक्ति था उसमें।
0: कार्यकारिणी में आपके जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनका क्या फीडबैक रहा कि LJP की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में कितनी है, कितनी जगह है आपकी पॉलिटिक्स के लिए?
1: अब मैं इसको अपने शब्दों में बोलूंगा तो स्वाभाविक है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं अपने बारे में अच्छी बात बोलूंगा, बट ये फीडबैक मैं चाहता हूं कि आप लेकर मुझे दे, मीडिया से ज्यादा निष्पक्ष और कोई नहीं हो सकता। मेरी स्वीकार्यता का मूल्यांकन आप करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर।
1: थैंक यू।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: In association with Hind, बड़े आराम से
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबां केसरी।
13: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
14: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
13: हैट्रिक का दावा।
14: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
13: विश्वास पूरा।
14: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
13: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
0: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
9: आप यहां देखेंगे तो देखिए, लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का, वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
8: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से, उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

दिन श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान। पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। बीस दिनों से

मिट्टी में मिला दिया। शाम को संभल के दौरा। बंगाल में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। और सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो आया सामने। लव जिहाद का लगाया आरोप।

0: रवि किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पर जैसे ही योगी जी अगर मंच पर हो और साथ में अगर रवि किशन जी नजर आ जाएं, तो उसके बाद जनता के चेहरे खिल जाते हैं, नहीं? अब योगी जी की स्पीच हो रही थी, आप उसी समय बीच में आए, बड़ी तल्लीनता से आपने सुना है योगी जी को।
1: आपका, मैं श्वेता जी का बहुत फैन हूं, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इनके लिए कि भाई 25 मिनट में इनको कि 30 मिनट में 25 सवाल पूछने होते हैं, उसके लिए भी आपको प्रणाम है। आज मैं, मेरी एंट्री गलत हो गई थी। मैं चूंकि गोरखपुर से बाय रोड आ रहा था और महाराज जी मंच पर थे, और मैं दरवाजा खुला तो समझ ही नहीं आया कि मैं वापस जाऊं कि अंदर आऊं। अंदर आ चुका था तो मैं पूरा अंदर आ गया। उन्होंने भी देखा मेरी पीली धोती को और ये रूप में, तो उनके भी चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई, तो उनको, उन्होंने भी कंट्रोल किया कि कहीं वो हंस ना दें। तो वो माहौल में हम सामने आके एकदम शांत बैठे। फिर जो भी अभी छोड़ते हुए जो बात हुई कि हमको बोले आप, हम बोले बस आपके बाद हम तो यहाँ पर हम बोलेंगे, तो बड़ा आनंद लिए।
0: नहीं, लुक अच्छा है।
1: ओह थैंक यू, थैंक यू।
0: और मतलब चुनावी माहौल में तो सुपर हिट हो सकता है। नहीं, पर लोग,
1: आप पंडित की ओर इशारा कर रही है क्या, ब्राह्मण की ओर?
0: बिल्कुल। बड़ा सम्मेलन चल रहा है हर जगह, सामने आपके जितने विरोधी हैं वो सब लगे हुए हैं कि ब्राह्मण वोट ले जाएं। कितने हिस्सों में बटेगा ब्राह्मण वोट?
1: ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। ब्राह्मण को पता है कि मेरा सनातन, मेरी घर की माँ बहन, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा गांव सुरक्षित है, अन्याय नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, माफिया लोग जिला नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण वहां जाएगा। ये बात मैं आपको जमीन पर लिख के देता हूं।
0: नहीं, पर देखिए ना, सामने समाजवादी पार्टी ने पूरी गिनती दी कि कैसे कोई अपराधी अगर छोटा अपराध भी कर देगा, ब्राह्मण होगा, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, लेकिन दूसरी जाति की तरफ नहीं जाएगी। ब्राह्मणों को बहुत बताया गया है ये चीज।
1: देखिए, ये सब बातें चुनावी हैं, ब्राह्मण भी जान रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी जान रहा है। ब्राह्मण समाज बहुत विद्वान समाज है, पैसे हैं उसके पास, पैसे नहीं हो बात अलग, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ समाज है, वो सब समझता है, और चुनाव को और राजनीति को तो कुछ ज्यादा ही समझता है। तो ब्राह्मण को क्या लालच या लॉलीपॉप देने का कोई भी प्रयास विरोधी पक्ष जो भी कर रहा है, ब्राह्मण कभी किसी लालच में नहीं आता, वो तो देने के लिए पैदा हुआ है, वो धरती पर आता है, वो सिर्फ उसको दे रहा है। लेता हुआ ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं होता, वो देने आया, वो किसी लालच में कभी नहीं जाएगा। मेरा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र सुरक्षित बा हो, हमारा भारत बढ़िया बा, हमारे नेता बढ़िया, कोनो भ्रष्टाचार नहीं किए होत, कोनो स्कैम नहीं किया, अखबार खोलत ही पढ़त है, बढ़िया बम बम बा, तब हम चुटिया मारेगा, जनेऊ को साधेगा, हा चल चल देगा। वो ऐसे ही है, वो आशीर्वाद देने के लिए खाली ऐसे रहता है, ओके कुछ ना, एकदम कोई कंफ्यूजन में ना रहे विरोधी। ब्राह्मण कत्तो नहीं खे जात, ब्राह्मण ना जाई, ब्राह्मण अपने भारत के साथ खड़ा रहा ला, जो ने धरती के बा वह ब्राह्मण रही, जम के रही और त्रिशूल गाड़ के रही, वो कहीं ना भटकी हो।
0: पीडीए का एक पी पंडित भी होता है, पी अलग अलग होते हैं ना, पिछड़ा।
1: देखिए लोग, ये लोग उल्टा पेड़ से भी लटक जाए इस बार सब लोग, तब वो चुनाव ना जीत भैया। जान ला श्वेता जी, जान ला मार बात।
0: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब?
1: अयोध्या
0: वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
1: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ, एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे ईष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत SIT गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसे दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए, ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए। मैं ये चाहता हूं, ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
0: योगी जी, पर इसीलिए क्या लोगों को ज्यादा भरोसा होगा कि लॉ ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में वो एक बेंचमार्क एक सेट करते हैं, वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो माफिया उसके बाद खात्मा शुरू होता है, जब उनका जो बुलडोजर बाबा की जो उनकी उपाधि है, कई राज्यों में अब हम देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उनके ऐसे ही कठोर प्रशासक होने के नाते लोग चाहते हैं कि चाहे किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई तो होकर रहे।
1: पद तो मायने नहीं रखता ना, जुर्म किया है तो जुर्म किया है, पाप किया है तो पाप किया है, पद का क्या लेना देना। पापी का पद से कोई, अगर कोई भी पद पर हो, अगर उसने पाप किया तो सजा तो वो उसको लागू होती है, वो कोई भी होगा, वो पद का कहां से इसमें क्या कोई संबंध ही नहीं है।
0: अच्छा, आप कहते हैं कि आप ग्राउंड के आदमी हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पे लोग, कुछ शिकायत भी तो बता रहे होंगे ना।
1: देखिए, शिकायत तो मनुष्य आदमी, मनुष्य आत्मा जो है ना कभी तृप्त नहीं होती, कभी नहीं तृप्त, कुछ ना कुछ मांगती रहती है, कुछ और दे दो, अभी सड़कियां मिल गई, 6 लेन दे दो, फ्लाई दो, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, बिजनेस, एवरी जिले में मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम, हाईटेक, एवरीथिंग, उत्तर प्रदेश चेंज फ्रंट ऑफ मी, ये उत्तर प्रदेश ऐसा टेक ऑफ मारा है हमारी आंखों के सामने, उसके बाद भी ये मनुष्य है, उसको अपग्रेड होना है, वो मांगता रहेगा, उसकी मांगे चलती रहेंगी, उसके साथ सरकार चलती रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज वो है, सब जो टच करती है वोटर को, कि मेरा नेता, मेरे लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे लीडर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे यहाँ पर कोई बड़ा स्कैम, करप्शन, पाप, इस तरह से घृणित अपराध, ये नहीं हुआ, हुआ किसी छोटा मोटा भी किसी ने जुर्म किया या हिम्मत की, तुरंत दंडित किया गया, तुरंत दान महाकल्याण। सो एक है कि निरंतर काम करें, 14 के बाद, 14 से लेके 26 तक का भारत, और ये उत्तर प्रदेश 17 के बाद से अब तक जो गति में आगे बढ़ा है, जनता अपनी आंखों से देख रही है, जेन जी क्राउड आर वेरी हैप्पी, जेन जी आर लविंग मोदी जी, ये बीजेपी के साथ जेन जी बहुत कनेक्ट हो गए हैं, यंगस्टर्स और बेटियां जो आधी आबादी हैं वो तो कंप्लीटली भाजपा के प्रति आकर्षित हैं। मैं आपको दावे के साथ, जितनी महिलाएं हैं इस आधी आबादी की, और महादेव चाहेंगे अब रिजर्वेशन का बिल भी पारित हो जाएगा तो फिर तो बम बम है, कोई चिंता नहीं, महिलाओं की आवाज बन के मोदी जी उठे।
0: पर ये बच्चे, ये युवा नौकरी की बात नहीं पूछते हैं आपसे,
1: जॉब्स आर देयर, 9 लाख से ज्यादा तो नौकरी, सरकारी नौकरी यहाँ पर मिली, 2 लाख से ज्यादा तो पुलिस में भर्ती हुई बिना खर्ची, बिना पर्ची, ये कभी हुआ नहीं था, ये कभी सुनाई नहीं गया, वो सुनाई नहीं दिया गया था, इस उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, यहाँ कभी पुरानी बंद मिले शुरू नहीं हुई, कभी पलायन यहाँ पर रुकता नहीं था जो बंद हो गया, कोविड में पूरे उत्तर प्रदेश को बचा लिया गया, अनबिलीवेबल काम हुआ, 26 करोड़ की आबादी है, अपने आप में एक देश है ये, और जहां अपराध, जहां पे लोग आने डरते थे, फिल्मों में शूटिंग के लिए लोग आने डरते थे, हीरोइंस आने डरती थी, यहां नो नो नो भी कहा, फिल्में बनती थी उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर पहले, वो बंद हो गई, क्या जगह थी, डरावनी जगह थी, लोग भाग, महिलाएं
2: बेटियां 5 बजे के बाद जाती नहीं थी, लोग अगवा हो जाते, व्यापारी अगवा हो जाते थे, सब दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे थे।
0: रवि जी, क्या होता है ना कि जब एक रिश्ता लंबा चलता है तो जो शुरू शुरू में बहुत मोहब्बत रहती है, आपको उसके बाद कमियां दिखना शुरू भी होती हैं, ये तो मानेंगे ना, ये तो मनुष्य प्रवृत्ति ये भी है। 10 साल हो जाएंगे अगले साल, कमियां तो दिखेंगी। आपको लगता है वो युवा आपसे नीट पेपर लीक के बारे में नहीं पूछ रहा है?
2: देखिए, वो जो भी पाप किया है वो दंडित हुआ, वो अपराध है। मैंने कहा अपराध हुआ, उसमें दंडित हुआ, उसको कैसे रिकवर करना, कैसे वो रिपीट ना हो, उस पर पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा बारीकी से ध्यान है। ये नहीं, युवा ये भी जानता है कि ये मोदी जी ने नहीं किया, ये भाजपा ने नहीं किया, सरकार 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश को चला रही है, जहां पर बाहर भी आतंकवादी हैं, घर के अंदर भी आतंकवादी हैं, बाहर भी गद्दार हैं, घर के अंदर भी गद्दार हैं, अनगिनत समस्याओं के साथ चलना, जहां पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा, ये 20 तारीख के बाद फिर देखिएगा तूफान मचाएंगे, ये मानसून सेशन को भी प्लान चल रहा है कि इसमें भी अवरोध लाएं।
0: अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहती हूं जिस पर मैं चाहती हूं कि आप एक शब्द, और उसके बाद आगे आप चाहें तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर एक शब्द में बताएं पहले।
2: अरे कहां फंसा रहे हैं आप, हम अभी तुरंत वायरल हो जाएंगे 15 मिनट में।
0: 15 मिनट शायद ज्यादा समय बोल रहे
2: हैं। अभी तुरंत हो जाएंगे।
0: अच्छा, पहला तो आसान है, योगी आदित्यनाथ।
2: निडर लीडर,
0: ये उनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है आपको?
2: निडर होना जरूरी है, भय आपको खत्म करता है। हमार का हुई, का हुई बोलब तो का हुई, अरे बर्बाद हो जाए, खोने का डर नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, तब आप ऐसे बनते। संत हैं वो, पीठाधीश्वर हैं, निस्वार्थ हैं, तब वो ऐसे हैं।
0: मतलब कभी सेटबैक भी होता है तो भी वैसे ही रहते हैं?
2: बिकॉज अध्यात्म की शक्ति है ना, उनको पता है ना, गोरक्षनाथ की कृपा है उन पर, उनके ऊपर शक्ति, उनको पता है, उन पर कृपा है कि जिसने वो देख लिया ना, वहां इंसान दो पैर वालों को देखते रहोगे तो डरे रहोगे, वहां पा लिए तो फिर नीचे का भय खत्म हो जाता है।
0: अगला नाम नरेंद्र मोदी।
2: निस्वार्थ संत, दूरदृष्टा, बहुत दूर देखते हैं। 50 साल बाद का भारत बन रहा है, याद रखिएगा आप, मेरी जुबान ऑन रिकॉर्ड, 50 साल बाद का भारत की तैयारी है ये, 50 साल बाद, उतना दूर देखते हैं, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं, यहां महाराज जी के साथ रहता हूं गोरखपुर में, फिर 20 तारीख से वहां प्रधानमंत्री जी के साथ, तो मैं बड़े और कलाकार हूं तो बड़े बारीकी से पढ़ता हूं, मेरा काम है फेस रीडिंग करना, माइंड रीडिंग करना।
0: दोनों में से सुझाव कौन सुनता है? सुझाव देते होंगे ना आप, मतलब सबसे
2: हम
0: नहीं देते।
2: प्रधानमंत्री जी एक दिन हमको बुलाए, 9 मिनट की मीटिंग में 8 मिनट हम बोलते रहे, 1 मिनट उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे पूछा, सुने कितने अच्छे लिसनर हैं, मुझसे सोचिए, मैं तो एक धूल भी नहीं उनके सामने, ये हैं प्रधान। मैं अपनी बात, मुझे सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, सब लोगों के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हैं, क्या विचारधारा है, क्या सोच है उनकी, 8 मिनट मैं बोलता रहा, 1 मिनट उन्होंने सिर्फ बोला, ये प्रधानमंत्री।
0: अच्छा, अगला नाम अखिलेश यादव।
2: पांडे जी बैठे यहां, प्रणाम पांडे जी, हर हर महादेव। अखिलेश यादव जी
0: साथी भी रहे हैं पहले आपके?
2: नहीं, हमारे
0: नेतृत्व
2: हमारे मित्र हैं, हमारे पार्लियामेंट के साथी हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यह कब कि इनका टाइम कब आई, अब वो तो भगवान है जनिया, लेकिन E27 में तो टाइम नहीं आई।
0: राहुल गांधी।
2: लापता लेडीज हम फिल्म किए थे तो लापता युवराज हैं, अब कहाँ हैं, पूरा देश उनको खोज रहा है। सदन में देखिए आए, आप आए तो शायद यूरोप का या जहां भी हैं भगवान जाने, इंतजार रहेगा उनका।
0: 2024 को लेकर बार बार आप लोग कहते हैं कि उस समय तो नैरेटिव फैला दिया गया था, इस वजह से जो भी स्थिति रही वो रही। इस बार आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पर जनता ने 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुना, वो मुद्दों को आप लोगों ने एड्रेस किया है?
2: देखिए, संविधान का झूठ तो राहुल जी भी वो लेके आते थे, संविधान बदल जाएगा ये शब्द कभी नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी नहीं। सबसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संविधान के साथ चलने वाले, वो उन्हीं पर बिलीव करते हैं, उसको वो बोलेंगे कि इसको बदलेंगे, ये होगा, ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड षड्यंत्र था जिसको लोगों ने, और थोड़ा हम लोगों से गलती होगी कि हम लोग भांप नहीं पाए, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के लिए राय नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा। वेल अलर्ट यू हैव टू दी, सपा की तैयारी रही हो, लोग गांव गांव घूमते रहे, साइलेंटली लोगों ने काम किया और पता भनक नहीं लगी।
0: इस बार पूरा भनक है आप लोगों को, कहां क्या कितना काम करना है
2: भाई। 24 का बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत बड़ा झटका था, मतलब मैं जीता गोरखपुर से, लेकिन वो जीत का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो शॉकिंग था, ऑफ कोर्स यस, वो आंख खोलने वाला था कि नहीं, आप भाजपा भले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको झटका लग सकता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप वेल अलर्ट नहीं हो, अगर आप जमीन पे धरातल पे मूवमेंट को वॉच नहीं कर रहे हो, एहसास नहीं कर रहे हो कि माहौल क्या हो रहा है, आपको देखते रहना, आप किसी झांसे में ना रहें, ये तो बड़ा बारीकी से यू हैव टू, ये चुनाव है भाई, युद्ध की तरह होता है।
0: अब सब बम बम बा,
1: हर हर महादेव।
0: क्या होगा अगले साल 27 का नतीजा?
1: 17 से बड़ा चुनाव होगा, 17 से बड़ा रिजल्ट आएगा।
0: नारा नहीं देना चाहते हैं आप, 24 वाली गलती हो जाएगी?
1: नहीं नहीं, हम वो नारा नहीं दिए थे।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बड़ा अच्छा लगा श्वेता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एक दिन श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान। पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बुलंदशहर में कहा पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया। शाम को संभल का दौरा। बंगाल में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। और सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो मैसेज सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और बुलेटिन की शुरुआत 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत में 4 बड़ी खबरों से करते हैं। बीते 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर चुकी है। सोनम वांगचुक को लेकर हुए इस एक्शन पर सियासत भी गर्मा गई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर। सलमान खान के बाद अब अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस गैंग की धमकी मिली। इसके साथ बात उत्तर प्रदेश की सियासत की भी करेंगे। चुनाव नजदीक है तो सियासत चरम पर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की। हम बात करेंगे रॉकेट विक्रम 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई। पीएम मोदी ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए बुलडोजर कार्रवाई हुई, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के नोटिस पर अभिषेक ने जवाब नहीं दिया था, जवाब नहीं दिया तो उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने। तापस सिंह गुप्ता जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। तापस, क्या खबर है?
1: जी देखिए, दक्षिण 24 परगना के आमतला में अभिषेक बनर्जी का जो पार्टी ऑफिस रहा है वो पार्टी ऑफिस में आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है सुबह से। और वो पार्टी ऑफिस में 3 जो मालिक है उनको पहले ही 20 जून को नोटिस दिया गया था अवैध निर्माण को लेकर, लेकिन उनके तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं मिलने पर आज अधिकारी पहुंचे थे। सुबह जाकर मुआयना करने के बाद 3 बुलडोजर को बुलाया गया और फिलहाल बुलडोजर इस बिल्डिंग को तोड़ने पर लगी हुई है। जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि 5 मंजिला जो ये इमारत है इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा या फिर जिन फ्लोर्स को अवैध कहा जा रहा है उन्हें तोड़ा जाएगा, लेकिन बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि ये एक साजिश है और राजनीतिक साजिश है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। राज्य सरकार अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रही है ताकि अभिषेक बनर्जी को कॉर्नर किया जाए, लेकिन दूसरे छोर पर बीजेपी ने साफ बोला इसके साथ पार्टी या राजनीति का कोई लेन देन नहीं है। अवैध रूप से निर्माण किया गया था इसीलिए अवैध रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से बुलडोजर वहां पर भेजा गया। लगातार ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अलग अलग हिस्सों को इस समय तोड़ा जा रहा है। हिमांशु,
0: और बिल्कुल इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन इस वक्त भी जारी है और ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आप जो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा अधिकारी मौजूद है उनसे आपकी कुछ बात हो पाई है? आगे क्या कुछ और भी चिन्हित किया गया है?

0: वो बम बरामद किए जाते हैं। और धमाके के बाद की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर धमाका हुआ था और धमाके के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा। एक देसी बम धमाका जब हुआ, आपको छोटी छोटी कीलें दिखाई दे रही होंगी जो आमतौर पर देसी बम में लगाई जाती है बम बनाते वक्त, और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी। तापस, इस धमाकों से जुड़ी क्या जानकारी है?
1: जी देखिए, ये न्यू टाउन के इलाके में ये धमाका हुआ। एक रिहायशी इलाके में एक इमारत में ये धमाका कल देर रात को हुआ, और एक शख्स कल उस बिल्डिंग में रहने के लिए आया था और किराए पे वो एक कमरा लिया था, और वो उत्तर 24 परगना का रहने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी में भी साफ दिखा है, वो हाथ में एक बैग लेकर अपने कमरे में दाखिल होता है, और उसके बाद कमरे के अंदर से जब वो बाहर आता है, उसी उसके कुछ ही सेकंड के बाद जबरदस्त धमाका होता है। और इस धमाके में अभी एक शख्स घायल है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज चल रहा है। दूसरे छोर पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उस घर को बारीकी से छाना जा रहा है, कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। सीआईडी के जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो मौके पर पहुंची थी, और दो
0: जांच बहुत जरूरी भी है ये पता लगाने की कि आखिर ये कहां से आए, कौन बना रहा था, कहां तक पहुंचाए जा रहे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात आज करते हैं अब सोनम वांगचुक की। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन से उठा दिया। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की टीम जंतर मंतर पहुंचती है, सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। इस दौरान जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने सोनम वांगचुक को मौके से वो ले गई थी सफदरजंग अस्पताल। इससे पहले 13 तारीख को राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से भी कहा गया था कि उनको अस्पताल की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। वजन उनका लगातार कम होता जा रहा था, बीपी की भी दिक्कत थी, और भी परेशानियां उनको बढ़ रही थी। तो ऐसे में आज उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है सफदरजंग अस्पताल में। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। आज सुबह दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंची, सोनम वांगचुक को लेकर चली गई जंतर मंतर पर। सुबह कैसे क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
2: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
3: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथी प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
4: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी, और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
3: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
4: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
3: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम

0: मोंगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
1: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
0: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 स्तरीय तैयारी की थी। सूत्रों के मुताबिक नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई थी। 3 स्तरीय ऑपरेशन को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले स्तर पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने मंच को अपने नियंत्रण में लिया। वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर वहां से हटाया गया। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोके रखा ताकि किसी तरह का टकराव न हो। तीसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बने कंट्रोल पॉइंट से पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जैसे ही वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने उनके लिए रास्ता पूरी तरह साफ कराया और एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सीधे पहुंची सफदरजंग अस्पताल।
2: श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमजोर है, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है।
3: मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं?
2: हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए।
3: मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस?
2: ही इज फुली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर्स स्टेबल है।
3: कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा?
2: अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस हैं उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे।
3: मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
2: नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में है, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम।
0: और इसी बीच सोनम वांगचुक के परिवार ने सवाल किया कि आखिर उन्हें मोबाइल फोन रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। साथ ही उनकी पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी देने की मांग की है।
4: पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का, उनके बारे में बात करें मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर।
0: हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई तो विपक्ष ने सवाल किया है कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर वांगचुक अनशन पर थे, सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है।
5: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे, 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। दुखद है, बहुत दुखद है।
6: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।
7: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
8: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: और इसी बीच एक खबर आती है अभिनेता आमिर खान से जुड़ी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने आमिर खान को धमकी दी। आरजू बिश्नोई ने लव जिहाद का आरोप लगाया, अभिनेता आमिर खान को धमकाया। धमकी में लॉरेंस गैंग की ओर से कहा गया है कि आमिर खान लव जिहाद को बढ़ावा देकर लॉरेंस हिंदू संस्कृति से, ऐसा आरोप लगाया गया कि लव जिहाद को बढ़ावा देकर हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। लॉरेंस गैंग की धमकी से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया, हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता।
9: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको, इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: यूपी के बुलंदशहर की सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के पास जनता से मिलने की फुर्सत ही नहीं थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि उनके पास जनता से मिलने की फुर्सत ही नहीं थी।
10: पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके।
0: एक और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार अंदरूनी दबाव से जूझ रही है। सियासी गलियारों में एनसीपी पवार के एनडीए के साथ आने की अटकलें लग रही हैं, और इसी बीच शरद पवार की चुप्पी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बारामती दौरे पर पहुंचे शरद पवार से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

0: भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी का विक्रम 1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। ये भारत की निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग है। ये लॉन्च सिर्फ स्काईरूट के लिए ही नहीं बल्कि भारत के पूरे सेक्टर के लिए भी बड़ा मौका है। साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े बदलाव किए थे। इसके बाद निजी कंपनियों को भी रॉकेट सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस पर काम करने की अनुमति मिली थी।
1: विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ किया। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
0: देखिए पृथ्वी की कक्षा तक सफर किया, 450 किलोमीटर की दूरी को तय किया और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब भारत का दबदबा पूरी दुनिया देखेगी। अब इसरो पर हर चीज के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसरो ऐसे में अपने जो गगनयान और भी कई जो प्रोजेक्ट हैं उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर
1: पाएगा।
2: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचू लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी, ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे वैसे करोगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है, मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मिशन आगमन है, अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
9: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and
8: to live sports talk radio to keep you in the game in between games.
10: Because people who all watch games, they hear the voice.
8: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
11: Sokudo. जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
12: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो इनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल।
7: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं,
6: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहाँ सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
1: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे, वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
2: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई।
1: एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ ऑफ विक्रम 1 इंडिया।
0: 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, बुलंदशहर में कहा पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया, शाम को संभल का दौरा। बंगाल में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। और सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया।

0: नमस्कार, आज तक पंचायत उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं, अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और उर्वरक और रसायन, तो काफी लंबा चौड़ा प्रभार भी है इनके पास और इस वक्त आज तक पंचायत में। स्वागत है मैडम आपका।
1: थैंक यू।
0: कैसा है चुनाव 2027 कैसा है, क्योंकि 2024 तो बहुत दुःस्वप्न की तरह रहा आप लोगों के लिए, 2027 कुछ वैसा ही दिख रहा है या सचमुच बहुत कुछ बदल गया है?
1: 2017-2022 से भी और बेहतर 2027 होगा। 2024 में थोड़ी सी समस्या जरूर हुई थी, एक अफवाह के कारण हमें नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, आपने देखा कि कहीं बीजेपी या कहीं एनडीए की सरकारें बनी, तो एक अफवाह का छोटा सा दौर था लेकिन उसने चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब मैं समझती हूं उस भ्रम से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पहले बाहर आ चुकी है, और 2027 इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि 2017 और 22 से भी जबरदस्त 2027 में एनडीए की जीत सुनिश्चित होने जा रही है।
0: लेकिन जब 2024 आप हारी, यानी कि आप एनडीए हारी पिछड़ी, तो जो वोट बैंक आपसे खिसका, जिसमें ओबीसी में बहुत बड़ा डेंट लगा, और अगर हम नाम लेकर के कहें तो कुर्मी बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी, दलितों में अगर आप देखें तो जो पासी बिरादरी, ऐसी तमाम जातियों ने साथ छोड़ा, बड़ी तादाद में छोड़ा, पूर्वांचल बहुत बुरी स्थिति में आप रहीं, तो ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया है कि आपको लगता है कि 27 बेहतर होगा?
1: देखिए, वैसे तो आप लोगों के अपने अपने तर्क हैं, आपने अलग अलग बिरादरी गिना दी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मोटे तौर पर जो हमारा नुकसान हुआ, जो एक संविधान और आरक्षण को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई, चुनाव के पहले का जो कुछ दिन का समय होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उस दौरान अगर कोई अफवाह जोर पकड़ ले तो उसका वोटर पर, आम वोटर पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वेरिफिकेशन का समय तो होता नहीं है, पुष्टि तो हो नहीं पाती है, और हम कहीं ना कहीं पिछड़े क्योंकि हम समय रहते उस अफवाह की काट नहीं कर पाए। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 2027 बेहतर होगा, तो उसके पीछे जो हमारा 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल का केंद्र सरकार का काम रहा, राज्य सरकार को भी अब 9 साल हो गए, आप देखिए कि ये तमाम जो हमारी दबी कुचली जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वंचित समुदाय है, एक एक एक करके जो हमारे काम रहे हमारी सरकार के, और उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ अगर पहुंचा है तो हमारी जो पिछड़ा वंचित वर्ग है उसमें जो सबसे ज्यादा, मैं कहूंगी जो सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज रहा है उनको सबसे ज्यादा इसका लाभ पहुंचा है, और इसके साथ ही बड़े बड़े ऐसे फैसले हुए जिससे कहीं ना कहीं हमारे लिए जो दबा कुचला वर्ग है वो महत्वपूर्ण है, उसकी शासन सत्ता में भागीदारी हो, इसका संदेश भी हमारी सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अगर आप देखिए, पुरानी जितनी भी सरकारों के कैबिनेट से आप कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर आपको ओबीसी एससी का प्रतिनिधित्व मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में ही मिलेगा। कास्ट सेंसस, ये किसकी मांग रही है?
0: ये बड़ा सवाल।
1: प्रमुख रूप से जो दबी कुचली जातियां रही हैं, जिनको रहा कि आजादी के इतने साल हो गए, उसके बाद भी हमें अभी भी अस्तित्व और पहचान का संकट है। अपना दल, हमारी पार्टी ने हमेशा से जातीय जनगणना का समर्थन किया, उसकी मांग उठाई। अब ये कास्ट सेंसस हमारी सरकार ने जो फैसला किया है, इससे पहले किसी सरकार ने कभी हिम्मत दिखाई कास्ट सेंसस की घोषणा करने की? तो आपको नहीं लगता इन फैसलों का व्यापक असर होने जा रहा है? एनडीए ने एक बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर दिया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उस लोकतंत्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अगर कोई देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो देश के आदिवासी समुदाय का व्यक्ति करेगा। यह संदेश किसने दिया? यह संदेश एनडीए ने दिया है। इससे पहले कि तमाम सरकारों को उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा ना कोई निर्णय कर पाया, जो इतना साहसिक निर्णय हो वो हमारी सरकार ने किया। तो ये एक एक करके जो तमाम फैसले हैं, जो हमारे एक हमने मसला और उठाया था हमारी पार्टी ने, मैंने खुद उठाया था प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारी जो नीट की परीक्षा होती है उसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, तो इसको भी मैंने जब प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया, इसको लागू करने में 10 दिन का समय लगा। ये जो फैसले हैं इनका बहुत व्यापक असर है। एक छोटे से भ्रम और अफवाह के आधार पे इतना लंबा जो हमारा 12 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 9 सालों का जो काम है, वो खत्म नहीं हो जाता। एक बड़े वर्ग पे जब प्रभाव पड़ता है, सरकार की एक छवि बनती है, क्या हमारी सोच है लोगों के बीच में जाती है, तो बदलाव आता है।
0: चलिए अब एक दो सवाल आखिर में। आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में एम्स को लेकर के भी बहुत चर्चा हुई है, बताइए कि आपका कौन सा ऐसा काम है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो लगता है कि हाँ आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वास्थ्य के रहते हुए आपने किया है।
1: देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य को लेकर भूमिका है, इसको समझना जरूरी है। भारत सरकार एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन देती है, टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, और स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है। जो एग्जीक्यूशन होता है हमारी स्कीम्स का, वो राज्य सरकारों के हाथ में होता है। तो अगर मैं भारत सरकार की तमाम योजनाओं की बात करूं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंची है, पहले तो देश भर में पहुंची है। स्वास्थ्य का परिदृश्य पिछले 12 सालों में बहुत बदला है, और इसलिए बदला है क्योंकि हमने जो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, यानी हर व्यक्ति के पास क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर की एक्सेस होनी चाहिए। ये कागज पर नहीं रहेगा, ये रियलिटी बनेगा, और इसको रियलिटी बनाने के लिए हर जरूरी कदम हमने उठाया है। भारत सरकार का लगातार स्वास्थ्य के ऊपर बजट बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही। अभी आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जिक्र किया, देश में हमारी सरकार आने से पहले कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे? 7। लेकिन 12 साल के अंदर हमने 16 नए एम्स खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास एक नहीं, दो दो एम्स है। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहां PPP मोड पर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो किडनी के रोगी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस के बाद अगला जो असर आता है वो किडनीज के ऊपर आता है, आज फ्री डायलिसिस की सुविधा उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को मिल रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की योजना के अंदर करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान कार्ड होल्डर बन गए, और करोड़ों लोगों के अंदर बहुत सारे लोग इसमें इलाज करवा चुके हैं, मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। और आप जाइए देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं ये नहीं कहती कि हमने 100% आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदल दिए हैं, लेकिन आप देखिए कि आज एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे पहले केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य की कुछ सेवाएं मिल जाती हैं, आज हमने वहां पे 12 सर्विसेज का पैकेज शुरू कर दिया है। यानी दांत की जांच करानी है तो हो जाएगी, वहां पे आप जाएंगे तो आपकी BP और शुगर की जांच हो जाएगी, वहां पर आप जाएंगे आपको आंख की जांच करानी है तो वो हो जाएगी, आपको योगा और वेलनेस की काउंसलिंग भी मिल जाएगी, आपको मेटर्नल हेल्थ की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर की सुविधा भी मिल जाएगी। तो हम एक पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जो एक आम आदमी के लिए सबसे नजदीक है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें कैसे उसे पहले स्तर की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो मिल जाए, जिससे कि जो हमारे सेकेंडरी या टर्शरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, या उससे बड़े हमारे टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, उन पर कैसे दबाव कम हो, इसके लिए हमने काम किया है। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी योजनाएं आज पहुंच रही हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और उस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बस ये कहना चाहूंगा।
0: चलिए अब बिल्कुल आखिरी सवाल, 2027 चुनाव में आप सीटें कितनी देख रही हैं? क्या सचमुच जो बात कह रही हैं कि 2024 को आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, सीटों के तौर पर NDA कैसी जीत दर्ज करेगा?
1: देखिए, सीटों की संख्या पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष पहले भी साफ था और अब तो बिल्कुल जीरो होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा 2027 में NDA गठबंधन में जो हमारे पांचों दल शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, RLD, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी, आप देखिएगा जबरदस्त हमारा ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर हमारे गठबंधन का जो ये मुट्ठी है, ये जो 5 झंडे लहराते हुए नजर आएंगे।
0: तो आप तीसरे नंबर पर रहेंगे या दूसरे पे आ जाएंगे इस बार?
1: तय करने दीजिए, ये तो मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको ये कहकर जा रही हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है अपना दल का इस बार स्ट्राइक रेट 100% होने जा रहा है।
0: 100% होगा,
1: 100%।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, हम भी उसको देखेंगे। तो हमारे साथ थी अनुप्रिया पटेल, और आज पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश के मंच पर आपने इनको सुना।
2: आज तक पंचायत उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, और इस मंच पर इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, मुखर हैं, लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, BJP के वो सहयोगी जो लॉयल बने हुए हैं। लेकिन अब कुछ महीनों के बाद चुनाव है और चुनाव में संजय निषाद और उनकी पार्टी क्या करेगी, क्या सोचती है, आज इस पर ही चर्चा। तो स्वागत है संजय जी।
3: बधाई आपके चैनल और आपके श्रोताओं को, आपको भी।
2: तो बहुत चर्चा यही है कि इस बार का चुनाव बहुत टफ है, बहुत 2027 बहुत आसान नहीं है आपके लिए।
3: चुनाव ऐसे भी चुनौती होती है, जो चुनौती स्वीकार करे चुनाव में आए और चुनौती में विजय प्राप्त करे उसे विजेता कहते हैं। और ये तो सदियों से रहा, चाहे अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, निषाद तो हमेशा ये आंधी तूफान समुद्र में लड़ते हैं, उन्हें कौन सा। हम तो कहते हैं आज के दिन में, जब से मैं आया हूँ तब से देखो कांग्रेस कहाँ चली गई, सपा कहाँ चली गई, बसपा कहाँ चली गई, भारत की राजनीति कहाँ चली गई।
2: आप जब से बीजेपी के साथ आए हैं तब से इनकी स्थिति खराब है
3: राजनीति में। जब से राजनीति में आए, बीजेपी भी साथ नहीं थी। मैं 2017 में अलग से चुनाव लड़ा था, हम पीस पार्टी, तो अब देख लो सपा बसपा कहाँ गई, बीजेपी भी। अब मैं जब चुनाव गोरखपुर और फूलपुर कहानपुर का हुआ तो 4 सीटें बीजेपी भी हार गई। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ हैं। तो ये पूरे देश में निषाद हैं और पूरे देश के निषादों को ठगा गया। पूरे देश के निषादों ने मिलकर अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था, अंग्रेजों में डुबो डुबो के मारा था, क्रिमिनल कास्ट घोषित जाति है, उजड़ा जाति है, मार्शल कॉम है, पॉलिटिकल जाति है, निषाद राज का वंशज है। ये इतने गुड़ लेकर इसको झगुआ भरोट को पौआ पिला रहे थे इतना दिन से, अब कहते हम पौआ नहीं पिएंगे बल्कि पावर में आएंगे। और पावर में आने के लिए मोदी तक अपनी आवाज पहुंचा दिया। 6 सालों के आप तो समझे, 7 साल बेमिसाल, 7 साल में इतना काम किया कि आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा मंच नहीं हो। एक बार मोदी जी जरूर हालचाल लेते हैं।
2: नहीं, आप कह रहे हैं बहुत काम किया, लेकिन देखिए आपको सिर्फ एक मत्स्य विभाग मिला तो आप खुश हैं? आपको लगता है कि जो दूसरे लोग जो खूब बोलते रहे, अब राजभर जी के पास कई कई विभाग हैं।
3: अब तो जाते हैं ज्यादा जो कोश है, जान ही रहे कुछ ज्यादा कुछ बोलता उसको शांत करने के लिए बहुत कुछ दिया जाता। तो हमको लगता है भैया गए थे फिर आए तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको तय करे होगा। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा हैं, हम मर्यादित रहे हैं और मर्यादित रहेंगे। हम लोग मर्यादा की राजनीति करके इस भारत को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और फिर राम के उस राम राज को लाने की परिकल्पना करते हैं, जिसमें सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग बराबर हों और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी।
2: लेकिन आप संजय जी कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा पा गए,
3: और देखने में आ रहा है ना, जो आते और जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही पाते हैं, और जो एक साथ रहते हैं वो शांत रहते हैं, और शांति का एक परिणाम है उसका जो मॉरल, जो सम्मान मोदी हमें देते हैं, जो सम्मान योगी जी हमें देते हैं, और समाज और राजनीति में जो सम्मान हमें है, हमको लगता है हम लोग कुछ संतुष्ट हैं। और जो क्योंकि हम लोग एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम अपने उस निर्बल समुदाय जो उजड़ा हुआ है उसको विकास की मुधारा में लाना चाहते हैं। उसका नतीजा मेरे 2 सरकारी वकील हैं आज के दिन में, चंद्र निषाद यहाँ, 3 आयोग के सदस्य हैं, 1.5 दर्जन हमारे जो आज के दिन में सभासद बनाए हूँ, 3 आयोग के सदस्य हैं हमारे जो है। तो ये इतने कम समय मैं दोनों सदनों
2: का। आप कहते हैं कि बहुत आप मर्यादा की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति करते हैं, लेकिन आरोप तो आप पर भी परिवार की ही राजनीति का लगता है। बेटा सांसद, बेटा विधायक, आप मंत्री, MLC होगा तो आप जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो आपके लोगों के लिए कितनी जगह है इस पार्टी में?
3: देखिए, जो वकील होगा उसी को वकालत की जगह दी जाएगी। ये अच्छा। राजनीति है, ये एक ही सीट लोकसभा की थी तो प्रवीण जी को कमेटी ने तय किया लड़ेंगे, एक ही सीट MLC राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया, वकील है, सबसे बड़े मास्टर हैं तो ये वकील भी हैं, जाके चिल्लाएंगे विधानसभा लोकसभा में तो वकालत करेंगे मोदी योगी तक। हम किसी को भेज देते तो उसको चिट्ठी लेके पहुंचाते हो गेट पर खड़ा रहता, लेकिन जब मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीधे मोदी योगी कैबिनेट में जाकर इसकी बात करता हूं। उसका नतीजा हुआ मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, 61,500 करोड़ रुपए आया, मछुआरों के हितों के लिए पॉलिसी बनी, उनकी बेटी की शादी के लिए, उनके शिक्षा के लिए पैसा आ गया, हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BM 30,000, उसे 50,000 लेके पढ़ा है, इनके इलाज के लिए पैसा लाग दिया, 61,500 करोड़ रुपया आज निषादों के लिए पूरे देश के मछुआरों के लिए, जहां पिछली सरकार ने लिखे। ये तभी संभव था कि जब मैंने 13 किताबें लिखी, फिर बाद में 14 लिखी, 14 किताबें लिखी, उसका नतीजा था कि जब किताब हम लिखे हैं, जानकारी हमें है और किताब लिखने में सहायता करने वाले प्रवीण जी हैं, तो आज के दिन में लड़ाई हमारे घर भर के लोग कफन बात कर निकले हैं, तो हमारे लोग पूरा एक्सपीरियंस हैं और वो कहते हैं संघर्षों का बेटा है, अभी जब हम आंदोलन किए थे रेल आंदोलन, तो जितने लोग फेसबुक पर आते हैं, एक न रुपया चंदा लाते हैं, न एक रुपया कहीं से लाते हैं, खाली फेसबुक चलाते हैं। जब रेल पर बैठना था तो भाग गए, था कौन, गरीब आदमी खड़ा था, मेरे घर के मेरी बहन और भाई मेरा बेटा खड़ा था। तो आज के दिन में वो जो भागने वाले रण छोड़कर भागने वाले हैं, वो भले फोटो खिंचाने वाले हैं, वो तो कभी यहाँ लाएंगे वो भी भाग जाएंगे, तो भागने वाले को कभी थोड़ी दिया जाएगा। जो सीना तान के लड़ाई में खड़ा रहे उसको हक मिलता है। तो लोगों ने हत किया कि नहीं, प्रवीण जी नौकरी छोड़ के आए हैं, सरवन जी नौकरी छोड़ के आए हैं, ये सेवा करने के लिए आए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, इनका डिक्टेंशन मार्क 80% पढ़ने में तेज था। तो तेज तर्रार भाड़े एक वकील नहीं, अखाड़े एक वकील चाहिए।
2: ये विचारधारा क्या है, क्या आप भी हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रेरित?
3: हमारी विचारधारा है कि जो देश को आजाद किए हैं, कानून से उजड़े हैं, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते उजड़े हैं, उनकी भूमि जमीन जायदाद छीन ली गई, रोजी रोटी छीन ली गई, तो 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुखधारा में लाने।
2: आप खुद भी खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं?
3: नहीं, मैं हमारा संविधानवादी, हम विचारधारा के हैं जो संविधान लागू कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। भाई देखो, पहले समाज कहता था कि
2: इसलिए क्योंकि आप मुद्दे उठा रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जो निषाद राज के किले पर जो मस्जिद है, जो मजार है, उसको हटाया जाए। आप भी सालार गाजी मसूद की को हटाने की बात करते हैं, तो आप क्या खुद को भी बीजेपी की ही लाइन पर मानते हैं?
3: अरे मैं तो कहता हूँ, जिसने भी हमें लूटा है, हमें अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, अब किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आज मालामाल हैं, जो अंग्रेजों के साथ गद्दारी कर रहे देश के मालामाल हैं, जो देश के लिए लड़ रहे थे वो गरीब हैं, जो देश के लिए लड़ रहे थे उनके साथ निषाद पार्टी है, हम लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ रह के लड़ रहे थे रेजिमेंट में, हम बताए महार रेजिमेंट है। महार रेजिमेंट में कौन थे भाई? महार रेजिमेंट में लेदरमैन भर्ती थे, वो बंदूक चला रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, हम देश के लिए लड़ रहे थे। आज के दिन में तब भी बंदूक चला रहे थे, अब कलम चला रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। तो मेरा एक लाइन का है कि निषाद पार्टी का एक ही है कि पहले था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, अमीर कमाएंगे, गरीब खाएंगे। संविधान आ गया कि अमीर लोग कमाएंगे और गरीब के बेटे को केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां दीवार बेकार लेदरमैन वाशरमैन के बेटे को पढ़ाएंगे, लेकिन लेदरमैन लायक है, थोड़ा चालाक है, इसलिए लागू है। वाशरमैन हमारे लोग थोड़ा सा पौआ चौआ भरोट पौआ पी के
2: चलिए,
3: इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये संविधान में अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार सबको मिले। भारतीय जनता पार्टी अगर 14 लाख नौकरी में 7.5 लाख हाथ साइकिल को खिला रही है, 6.5 लाख हाथी खिला रही है, तो किस मुंह से वोट पाएगी? मैं चाहता हूँ जो हाथी वाले खा रहे हैं अदर मैन को दिया जाए, जो साइकिल वाले खा रहे हैं वो सबको दिया जाए, इनका जितना हिस्सा बनता है उतना दिया जाए, बाकी का हिस्सा सबको दिया जाए। मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित में प्रमाण पत्र जारी हो, हम संविधान बनवाए हैं, संविधान में मिला हुआ हिस्सा लिखा हुआ है मजवार, तो हम कहते 24 नंबर पर चमार भाई लागू है, 30 नंबर पर धोबी भाई लागू है, 53 नंबर पर मजवार, हम केवट मल्ला माजी मजवार हैं, राष्ट्रपति लिखा है, उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार जो राज्यपाल हैं वो भी 31 दिसंबर 2016 को हमें कह रखा है कि केवट मल्ला पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है, तो हम कहते राष्ट्रपति और राज्यपाल की उस अधिसूचना को लागू होना चाहिए, लागू सरकार करेगी, इसलिए हमारी सरकार, हम लोग सरकार के साथ हैं।
2: बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। तो संजय निषाद आज तक पंचायत के मंच पर थे और उन्होंने खुलकर चुनाव को लेकर अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Presented by... पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: भारत के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी का विक्रम 1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और ये भारत के निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग है। ये लॉन्च सिर्फ स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मौका है। साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े बदलाव किए थे। इसके बाद निजी कंपनीज को भी रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस पर काम करने की अनुमति मिली। सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने स्काई रूट की पूरी टीम को फोन पर बधाई दी।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
12: You're listening to CNBC.
13: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
14: Keep it on smooth jazz.
15: This is Roots Reggae.
16: Exclusively on TuneIn.
17: This is classic hip-hop.
18: Exclusively on TuneIn.
11: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
19: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
20: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भारत के अंतरिक्ष मिशन के ऐतिहासिक दिन श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान। पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बुलंदशहर में कहा, पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया। शाम को संभल का दौरा। बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। और सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया।

मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 100 शहर 100 खबर। अंतरिक्ष में भारत का नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम वन लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम वन पहली टेस्ट फ्लाइट, मिशन आगमन लॉन्च, 24 मीटर लंबाई कार्बन फाइबर रॉकेट, 350 किलो वजन तक पेलोड, 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में सक्षम। विक्रम वन की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने हास्य लक्षित वंदे मातरम पुरस्कार भी अंतरिक्ष में, 18 कैरेट सोने से बने सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। 2020 के स्पेस रिफॉर्म का बड़ा असर, इन स्पेस के मुताबिक 5 से 6 स्टार्टअप से बढ़कर अब देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं। 3D प्रिंटेड इंजन और ऑल कार्बन फाइबर तकनीक से लैस विक्रम वन भारत को दिला सकता है ग्लोबल पहचान, स्पेस सेक्टर में भारत का कद बढ़ा। 20 दिन के भूख हड़ताल के बाद से दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में ले गए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनशन था। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, हालात स्थिर, वांगचुक होश में है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध, पुलिस ने हालात संभाले हैं और डीसीपी ने कहा कि हल्की झड़प के बीच बढ़ती गई पूरी सावधानी। पुलिस का बयान, हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक अस्पताल शिफ्ट किए गए, बिगड़ती तबियत के चलते मेडिकल सलाह के बाद पुलिस ने पहुंचाया हॉस्पिटल। जंतर मंतर खाली करने की पुलिस की अपील, प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और जगह खाली करने को कहा गया। सफदरजंग अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल, सोनम वांगचुक के भर्ती होने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक मामले पर उठाए सवाल, कहा शांतिपूर्ण विरोध को दबाना लोकतंत्र और संविधान पर हमला, ये तानाशाही है। संजय सिंह ने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, चाहिए 21 दिन से अनशन कर रहे, वांगचुक की बात सुनी नहीं गई और जबरन गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कर दिया। आदित्य ठाकरे ने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, कहा कि भारत में लोकतंत्र को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है। डीसीपी सचिन शर्मा बोले कि लंबे उपवास से वांगचुक कमजोर और डिहाइड्रेशन के शिकार, कहा कि डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती, आगे की जांच जारी है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के अनिश्चितकालीन अभंशन शुरू, सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद से खुद ही भूख हड़ताल का ऐलान किया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू ने अस्पताल प्रशासन से दस्तावेज मांगे, परिवार का आरोप है कि फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सोनम वांगचुक मामले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला सरकार पर, कहा कि बेहद निंदनीय है, अभी भी सरकार अनशन खत्म करवाए, उनके पास समय। जंतर मंतर प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, अनुच्छेद 370 की बहाली और राजनीतिक बंदियों की रिहाई एजेंडे में हो तो पीडीपी शामिल होगी। ललिता गौतम के परिवार से मिले सीएम योगी, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन। गाजियाबाद में सीएम योगी ने दूधेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, सुरक्षा के इंतजाम। राम मंदिर चंदा कथित गबन मामला, टिनू और मनीष यादव पुलिस रिमांड पर, कोर्ट ने 39 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की, मेडिकल जांच के लिए पुलिस लाइन लाए गए। सहारनपुर अवैध मस्जिद मामले में कार्रवाई का आदेश, 6,41,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, ध्वस्तीकरण का निर्देश। वाराणसी में इंडिया गठबंधन में दरार, नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में सपा कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस को मिली हार। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार को घेरा, अनशन खत्म कराने के लिए मंत्री भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस भेज दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आमिर खान को बड़ी धमकी का दावा, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो सामने आने के बाद से हड़कंप, धमकी भरे ऑडियो की पुष्टि नहीं। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम योगी का आज संभल का दौरा, 550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग समेत कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मिशन प्रश्न में यूपी पर मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बुलंदशहर में कहा कि पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया। बुलंदशहर में सीएम योगी का कार्यक्रम, लाभार्थियों को बांटे लैपटॉप, सहायता सामग्री, 6 का आयुष्मान कार्ड, टूल किट समेत कई योजनाओं का लाभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सीईओ चयन पर अमिताभ ठाकुर ने दिया सुझाव। कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन नीति हो। राम मंदिर चढ़ावा गणना की कड़ी निगरानी, दो स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लागू। चोरी की घटना के बाद गणना कक्ष में पुलिस और एसआईएस जवान तैनात। राम जन्मभूमि मंदिर में 9 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर अभिवाद। संत दिलीप दास बोले कि केवल अनुष्ठान से पाप समाप्त नहीं होगा। जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर कार्रवाई को लेकर गरमाई। सियासत, सपा सांसद ने सरकार को घेरा, मुलायम अखिलेश के योगदान का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर जल भराव को लेकर सरकार को घेरा, स्मार्ट सिटी योजना पर उठाए सवाल, फंड के इस्तेमाल पर मांगा जवाब। गोरखपुर में जल संकट पर सपा प्रमुख की मांग, कहा कि प्रभावित लोगों को भोजन, दवा, राहत और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गोरखपुर जल भराव पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कि क्या आप शहर का नाम बदलकर जल नगरी रखने वाले हैं आप। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में बीएसएफ पोस्ट का किया दौरा, बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कंगना रनौत महानानी केस में अगली सुनवाई 3 अगस्त को। बठिंडा कोर्ट में महेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह को जारी किया गया समन। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। पंजाब और उत्तराखंड में भी विस्तार की तैयारी, चुनाव अभियान शुरू करने की बात कही। मौलाना के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं। चिराग पासवान बोले कि बिहार से यूपी पंजाब तक बढ़ेगा पार्टी का विस्तार। कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर देना होगा ध्यान। बिहार में शिक्षकों के तबादले का इंतजार खत्म, 29 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। बेंगलुरु में सीएम डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, सदाशिव नगर आवास पर चर्चा, डिप्टी सीएम जी परमेश्वर भी मौजूद। ब्रजभूषण चरण सिंह का बड़ा दावा, हनुमानगढ़ी में कभी भी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। नमाज की बात उठाने वाले गलत हैं, उन्हें इतिहास नहीं पता, मंदिर निर्माण में मुस्लिम की भूमिका रही है। चंदा चोरी पर ब्रजभूषण चरण सिंह का बयान, कहा कि मोदी और योगी का इससे कोई संबंध नहीं, भाषा का इस्तेमाल सही से होना चाहिए। कृष्ण भगवान पर मौलाना के बयान को लेकर ब्रजभूषण चरण सिंह का पलटवार, कहा कि एक दूसरे को चुभने वाली बातें बोलने की ये नई प्रथा चल पड़ी। तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आई तो हिंदू छात्रों के लिए तिलक अनिवार्य। बंदी संजय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देंगे। दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी के कथित अवैध पार्टी कार्यालय पर कार्रवाई, मौके पर बुलडोजर, निर्माण ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी। एनसीपी में संभावित टूट पर शरद पवार का जवाब, कहा कि अभी इस मुद्दे पर बात करने का समय नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की जल्द ही जारी हो सकती है अधिसूचना। शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता। महाराष्ट्र में एसआईआर समय सीमा 10 दिन के लिए बढ़ाए गए, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 18 अगस्त को जारी होगा। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को अस्पतालों की ओपीडी रहेगी बंद। डोंबिवली में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में आईएमए का ऐलान। एससीओ देशों की सीमा प्रमुखों से 12वीं बैठक संपन्न हुई, भारत पाकिस्तान समेत 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल। इस्लामाबाद में हुई बैठक में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान। ईरान के कई शहरों में धमाके, होर्मुज से गुजरने वाले दो टैंकरों में ब्लास्ट के बाद लग गई आग। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो किया जारी जिसमें दावा किया गया कि ईरान के कलंतरी पोर्ट स्थित यूएवी डिपो पर हवाई हमला किया गया, लगातार 7वें दिन हमला। ईरान ने कहा कि बुशहर परमाणु संयंत्र पर कोई हमला नहीं हुआ, मीडिया के दावे बेबुनियाद। इराक में स्थित ईरानी कुर्द विपक्षी संगठन के एक कैंप पर ड्रोन से हमला, हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ा। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आईआरजीसी की अनुमति के बिना होर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले थाई झंडा लगे एक जहाज को निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस के दो गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में थी पुलिस, कार्रवाई तेज। मुंबई के मालाड में लिफ्ट के अंदर कुत्ते का हमला, बच्चियां बाल बाल बच के हटा, सीसीटीवी में कैद, महिला ने समय रहते कुत्ते को काबू में कर लिया था। आसनसोल में रफ्तार का कहर, सीसीटीवी में कैद खौफनाक हादसा, मिनी बस ने राहगीर को कुचल दिया, फिर स्कूल वैन से टकराई, कई बच्चे इसमें घायल। जौनपुर में लापरवाही की हद, क्लासरूम में 1.5 घंटे बंद रहा मासूम, कक्षा 1 के छात्र की चीख नहीं सुन पाया पूरा का पूरा स्कूल, खिड़की से निकाला गया बाहर।
रोहतास में हादसा, पुलिस वाहन की चपेट में आने से 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत।

0: चेनारे बाजार की घटना, चालक सिपाही धर्मेंद्र कुमार हिरासत में। लखनऊ में जमे तो उलेमाए हिंद के हिंदू मुस्लिम इतिहाद कॉन्फ्रेंस, सैयद अरशद मदनी बोले कि कांग्रेस का गठन हिंदू मुस्लिम खाई रोकने के लिए हुआ था। भरतपुर में मदरसा में सफाई के दौरान बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में गिरी 13 छात्राएं, एक छात्रा की मौत, अन्य छात्राओं का अस्पताल में इलाज। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा, स्कूल वैन की स्कॉर्पियो से टक्कर, हादसे में शिक्षिका समेत छात्र समेत 3 लोग इसमें घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। सूरत में सांप के हमले का खौफनाक सीसीटीवी वायरल, घर से निकलते ही युवक को सांप ने डसा, घटना कैमरे में कैद हो गई। नवादा शहर सदर अस्पताल में कैदी फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, इलाज के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर आरोपी भाग निकला। बंगाल के न्यू टाउन में संदिग्ध क्रूड बम धमाका, सीसीटीवी में घटना कैद। राजार हाट में धमाके के बाद एक शख्स भी घायल है, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। गिरवाड़ा पर सड़क पार करते देखा शेरों का परिवार, बस भी रुकी रही, यात्रियों ने अपने में कैमरे में इस रोमांचक पल को कैद किया। आंध्र प्रदेश के जंगल में छोड़े गए किंग कोबरा के 24 बचे, स्थानीय लोग और वन विभाग के संरक्षण प्रयास से सफल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के बवाना में दिन दहाड़े हत्या, जोगिंदर उर्फ काला को मारे गए ताबड़तोड़ गोलियां, गैंग वॉर में आपसी रंजिश के एंगल पर पुलिस कर रही जांच। अमृतसर में होटल में भीषण आग, जनरेटर रूम से उठी लपटे, दमकल ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। सूरत में ब्लैकस्टोन कॉरपोरेशन मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। हावड़ा के 15 साल के राइफल शूटर लापता, रथ यात्रा में दिखने के बाद नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला किया दर्ज। श्रीगंगानगर में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, पुल से गिरे 5 बदमाश, पिस्टल 1 दर्जन, कारतूस कार बरामद। उत्तर प्रदेश के बांदा में करंट लगने से 2 मासूम भाई बहन की मौत, खेलते समय पंखे से करंट लग गया। जालन में मुस्लिम युवती ने मजहबी दीवारें तोड़कर हिंदू प्रेमी से मचाई शादी, वीडियो वायरल करके परिजनों पर गंभीर आरोप भी लगाए, सुरक्षा भी मांगी। मानसून का केदारनाथ यात्रा पर इंपैक्ट, यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट वीरान, स्थानीय कारोबारियों का रोजगार भी प्रभावित। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद, धारचूला के गर्भाधार में भूस्खलन से सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, यात्री फंस गए। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा वाहन हादसे में शिकार 5 घायल हुए हैं, संगूर चौक के पास में इनोवा ने डंपर को मारी टक्कर, जीएमसी अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज के गंगा यमुना उफान पर है दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां, अब डूब गए, बढ़ते जल स्तर से तीर्थ पुरोहित तख्त पर उनके जलमग्न हो गए हैं, पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सीतापुर में जल भराव से लोग परेशान, अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर भरे पानी में धान की रोपाई कर दी, प्रशासन के खिलाफ विरोध। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और ओकुहारा ने वॉकओवर दिया, अब चीन की युफेई से होगा मैच। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु, इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। रोहित के संन्यास को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, बीसीसीआई ने इन अटकलों को खारिज किया, कहा कि रोहित शर्मा अभी भी भारतीय वनडे टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं। फीफा इस बार देगा इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन को मिलेंगे लगभग 5,000 करोड़, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे लगभग 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग, जिसकी एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 3 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से होगी रिलीज। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल, रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज हुआ, 7 तारीख को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। मराठी सिनेमा में कदम रख रहे एक्ट्रेस अदा शर्मा सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर काफी चर्चा में। कैटरीना कैफ 43वीं अपने बर्थडे पर, विक्की कौशल ने खास इंतजाम किया, प्यार भरे अंदाज में कैटरीना को किया बर्थडे विश, फोटो वायरल। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 और बेबी डू इन डू डाई डू के साथ सहयोग की शुरुआत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का।
0: अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव की। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं, जिससे ईरान में बड़ी तबाही हुई है। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले तेज हो गए हैं। कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। दोनों ओर से तेज होते जा रहे हमलों के बीच में युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार सातवें दिन, यानी कि पहले समझौता हुआ और उसके बाद फिर से जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके फिर सात दिन बीत चुके हैं और ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान के शहरों पर यह हमला किया है। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए हैं और अमेरिकी बेसिस को जो कुवैत में, जॉर्डन में है, जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको ईरान ने निशाना बनाया है। इस बीच में एक बड़ी खबर तेहरान से मिल रही है, जहां पर 20वें राउंड के हमले शुरू कर दिए गए हैं। 20वें राउंड में ईरान ने जॉर्डन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान इसे ऑपरेशन नसर 2 कह रहा है, जिससे जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन से ईरान के द्वारा यह हमला किया गया है और ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो 20वें राउंड में इसे ऑपरेशन नसर 2 ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो जॉर्डन में है। अल अजराक अमेरिकी बेस को इस बार टारगेट किया गया। और अब जल्दी से युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। नंबर 1, ईरान पर सातवें दिन भी यूएस के हमले जारी हैं। नंबर 2, यस द फार्स एवास प्रांत में बड़े बड़े हमले किए गए हैं, बड़ा अटैक हुआ है। दोनों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। ये वो इंपॉर्टेंट प्रांत है जहां पर हमला हुआ। फिर बुशहर में 5 धमाके हुए, खुजिस्तान में भी बड़ा धमाका किया गया। खुजिस्तान, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जगह ईरान के लिए। ईरान का दूसरी तरफ जवाबी हमला भी जारी है, हमारे सामने तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। बुशहर में यूएस MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। यूएस का लगभग ये 3,40,00,000 डॉलर का ड्रोन था जो कि तबाह कर दिया गया है। होर्मुज में 2 जहाज बारूदी सुरंगों की चपेट में आए और उनको अलग से नुकसान पहुंचा। इधर ईरान ने कहा है कि यूएस के हमलों के बाद से होर्मुज बेहद असुरक्षित हो गया है। यूएस हमलों ने इस युद्ध को फिर से भड़का दिया है, ईरान की तरफ से टिप्पणी है। और जमीन की 1-1 इंच के लिए ईरान लड़ता रहेगा, हम लड़ेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ये वो 10 बड़े अपडेट हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, युद्ध का सातवां दिन, मतलब एक बार तो संधि होने के बाद फिर से युद्ध चल रहा है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कितना लंबा चलेगा, लेकिन अब कौन किसको कितना नुकसान किस किस हिस्से को पहुंचा रहा है वो बताएं।
2: राजीव, दरअसल अगर देखा जाए तो ये युद्ध बिल्कुल उसी स्थिति में पहुंच गया है जिस अंदाज से 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमने देखा कि अब एक ही चीज बची थी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं कर रहे थे दोनों देश, ना अमेरिका की तरफ से ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा था और ना ही ईरान की तरफ से खाड़ी के देशों में अमरीकी बेसों के सिवा कुछ टारगेट किया जाता था। लेकिन बीती रात जो है अमरीका की तरफ से डिसिलिटेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान से खबरें आ रही हैं कि करीब 10,000 लोगों की जो पीने की पानी की सप्लाई है वो काट दी गई है, क्योंकि वहां पर जो है एक डिसिलिटेशन प्लांट पर जो है अमेरिका की तरफ से हमला हुआ। अमेरिका ने कल से ही सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया था। अमेरिका का कहना था कि वो ईरान में जो IRGC है उसकी कैपेबिलिटी और उसकी ताकत कम करना चाहता है, लेकिन इसको वार क्राइम माना है ईरान ने। और जवाबी कार्रवाई में कुवैत में उन्होंने एक डिसिलिटेशन प्लांट को और एक पावर जनरेटर हाउस को जो है उसको निशाना बनाया। कुवैत में ज्यादा तबाही है इस युद्ध की, जहां पर एक तरफ ईरान की तरफ से यूएस की बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर साथ ही साथ जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया गया IRGC की तरफ से। यहां तक कि दायरा भी अब बढ़ गया है। अब पहले हम देख रहे थे कि 3 ही जगहों पर, ज्यादातर 3 देशों में, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में हमले कर रहा था ईरान, लेकिन आज सऊदी अरब में भी सुबह कुछ रॉकेट गिरे हैं जिनको विफल किया है सऊदी फोर्सेस ने। उसके साथ साथ कल सीरिया में भी जो है ईरान की तरफ से हमले हुए थे और आज अब जो है जॉर्डन पर एक बार नहीं और बहरीन पर 2 बार जो है मिसाइलों से जो है ईरान की तरफ से हमला हुआ है।
0: बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो युद्ध लगातार चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। बढ़ते तनाव के बीच में तेहरान ने कई बड़े दावे किए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से दावा है कि उन्होंने बुशहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी कीमत लगभग $3.5 crore बताए जा रहे हैं। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के एक ठिकाने को निशाना बनाने और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का भी दावा किया। इसके अलावा इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों और कुर्द अलगाववादी समूहों के खिलाफ भी हमले की बात कही गई है। तो MQ-9 एक इम्पॉर्टेंट ड्रोन है, ये इसको मार गिराने का दावा किया गया है और बुशहर में हमलों के दौरान ये ड्रोन दावा किया जा रहा है कि तबाह हुआ है। ये MQ-9 ड्रोन जिसकी कीमत लगभग $3.5 crore है और इसको ध्वस्त करने का दावा किया गया। IRGC ने इस बीच में दावा किया है कि बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के ठिकानों को हमने निशाना बनाया। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के ड्रोन से भी हमलों का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन MQ-9 ड्रोन अमेरिका का जो ध्वस्त हुआ है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और IRGC की तरफ से दावा है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से
8: शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
10: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
11: मीडिया, 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
12: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
10: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: इन एसोसिएशन विद हिंड, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, बुलंदशहर में कहा पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिलाया, शाम को संभल का दौरा। बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, दक्षिण 24 परगना में उनके एक पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति। सलमान खान के बाद फिल्म एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो सामने आया, लव जिहाद का आरोप लगाया।

0: दोपहर 3:30 बजे के इस बुलेटिन में 4 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। बीते 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक को पुलिस वहां से उठाकर अब सफदरजंग अस्पताल में ले जा चुके हैं, भर्ती करवा दिया है। उधर सोनम वांगचुक को लेकर इस पूरे एक्शन पर सियासत गरमाए हुए है। इसके साथ बुलेटिन में हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। सलमान खान के बाद अब मशहूर एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली है। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी की सियासत की। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात भी की है। साथ ही हम बात करेंगे रॉकेट विक्रम 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन से उठा दिया है। अब आज सुबह दिल्ली पुलिस पहुंचे, जंतर मंतर गई और सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। इस दौरान जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई, भारी हंगामा हुआ। इसी बीच में पुलिस ने सोनम वांगचुक को मौके से उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान और उनके पद से उनको हटाया जाए। आज सुबह दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंच गए और सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। जंतर मंतर पर सुबह क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
2: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
3: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहां पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
2: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
3: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
2: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
1: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
2: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब सोनम वांगचू को जंतर मंथर से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तीन स्तरीय तैयारियां की थी। सूत्रों के मुताबिक नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार कर ली गई थी। तीन स्तरीय ऑपरेशन को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले स्तर पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के द्वारा मंच को अपने नियंत्रण पर लिया गया और वांगचू को सफेद चादर में लपेटकर वहां से हटाया गया। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोके रखा ताकि किसी भी तरह का टकराव ना हो। तीसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बने हुए कंट्रोल पॉइंट से पूरे कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जैसे ही वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने उनके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कराया और एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सीधे सफदरजंग अस्पताल में पहुंच गए।
4: श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमजोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है।
5: मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं?
4: हमारे दो डिपार्टमेंट, पहले जब आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए।
5: मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस?
4: ही इज फुली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल।
5: कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा?
4: अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे।
5: मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
4: नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में है, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: इस बीच सोनम वांगचू के परिवार ने सवाल किया कि आखिर उन्हें मोबाइल फोन रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी देने की मांग भी की है।
6: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir, Article 32 as a free individual? So please be professional. This is a fundamental right.
7: आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज
6: का।
8: Why are we not allowed to take a phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report?
7: मेरा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ।
8: Then for this you're compelling us or क्या कर सकते
7: हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में।
0: हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस सोनम वांगचू को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले गए, तो विपक्ष के सवाल अब सामने आए हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर सोनम वांगचू अनशन पर बैठे हुए थे, सरकार उन पर चर्चा तक क्यों नहीं कर रही है।
9: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे, 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है।
10: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।
11: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
12: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही अभी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको देते हैं। एक्टर आमिर खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिनको धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने आमिर खान को धमकी दी है। सलमान खान के बाद अब आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के क्या निशाने पर आ गए हैं, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। आरजू बिश्नोई ने लव जिहाद का आरोप लगाकर एक्टर आमिर खान को धमकाया है, जिन्होंने हाल ही में तीसरी शादी की है। धमकी में लॉरेंस गैंग की ओर से कहा गया कि आमिर खान लव जिहाद को बढ़ावा देकर हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग की धमकी से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है, हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, जो जिन्होंने विवाह किया आमिर से वो बालिग है और उन्होंने सोच समझ कर विवाह किया। बहरहाल ये धमकी जरूर है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसको बड़े सीरियसली पुलिस दे रही है धमकी को।
13: बिश्नोई का छोटा भाई, ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको, इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: तो ये गैंगस्टर जो लोगों का कत्लेआम करते हैं, लोगों के खून बहाने में पीछे नहीं छूटते, इन्होंने देश की संस्कृति का ठेका ले रखा है। लेकिन हैरत ये होती है कि ये फरार होने के बाद भी देश में बड़े बड़े स्टार्स को धमकाते कैसे हैं, पुलिस क्या कर रही होती है, खुफिया तंत्र क्या कर रहा होता। आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच के बीच में अब गणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की सुरक्षा दो लेयर में की जा रही है। सुरक्षा के लिए अब यहां पर पुलिस के साथ साथ निजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को भी लगाया गया है। अब दो स्तर की सुरक्षा जांच के बाद ही किसी भी कर्मचारी को गणना कक्ष में एंट्री मिल रही है। वहीं काउंटिंग रूम से बाहर निकलने से पहले भी कर्मचारियों की पूरी तलाशी ली जा रही है। गणना कक्ष में किसी तरह का सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। हर शिफ्ट में 6 से ज्यादा सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई और इस समय चढ़ावे की गिनती के लिए लगभग 23 कर्मचारियों को एक ही शिफ्ट में काम पर लगाया गया। गणना पूरी होने के बाद फिर रूम को लॉक किया जाता है, जिसके बाद ही कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। यूपी में चुनावी समर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ का खास फोकस है। आज सीएम योगी बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर हैं। इस दौरे से पहले सीएम योगी गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जांच पर जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया गया। दोनों एक एक आवास मिलेगा। और आपको बता दें कि मई के महीने में हुई ललिता गौतम की मौत के मामले में यूपी में जबरदस्त सियासत चल रही थी। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर। यूपी के बुलंदशहर की सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के पास जनता से मिलने की फुर्सत ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है।
14: बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी? पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके।
0: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, आजम खान मामले में बड़ी खबर है। कोर्ट की तरफ से आजम खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका आजम खान को लगा है। आजम खान की जो टिप्पणी थी तनखैया वाली, जिसमें उन्होंने बयान दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और भोट थाना इलाके में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी मतलब डीएम को और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और इसी मामले में आजम खान को झटका लगा है। उन्होंने अधिकारियों को तनखैया यानी कि सैलरी पर काम करने वाला कहा था और चुनाव जीतने के बाद जूते साफ कराने की धमकी भी दी थी। इस मामले में आपको बता दें कि सजा भी उनको सुनाई गई थी और अब बहुत बड़ा झटका आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से इस मामले में लगा है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने भी जो सजा उनको मिली थी वो बरकरार रखी थी, और तो 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माण था जिस पर प्रशासन का यह एक्शन हुआ और उसे ध्वस्त किया गया। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार के एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया।
3: छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम? रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कुछ लेटर्स शेयर हो रहे हैं।
4: मैम,
3: एक छोटा सा अगर।
2: इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सके। इस समय शरद पवार के एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 एमएलसी हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। आलाकमान ने यह भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी।
5: सही है ना, दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है।
6: दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासकर जो काफी चर्चा में
5: हुई। देश की न्याय संस्था ने, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ।
2: ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालात में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोल भाव करने की स्थिति में रहेंगे।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक दिन, श्री हरिकोटा में देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान, प्रधानमंत्री मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई।

0: हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी को भी घेरा। बुलंदशहर में कहा, पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया, शाम को संभल का भी है दौरा। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिणी 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण भी बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। फिल्म एक्टर सलमान खान के बाद आमिर खान को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का ऑडियो आया सामने, लव जहाद का लगाया आरोप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 7 दिन और करीब 500 से ज्यादा टारगेट। अमेरिका के हमले लगातार ईरान पर ना सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और घातक होते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, चिंता में डाल दिया है। क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक अमेरिका ने संपूर्ण और बड़े हमले नहीं किए हैं, यानी अभी अमेरिका के पूरे हमले और बड़े हमले होने बाकी है। यानी इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये माना जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सर्वनाश होना लगभग तय है। आज रणभूमि में बात करेंगे इन तमाम खबरों की, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि रणभूमि में आपके लिए क्या कुछ 5 बड़ी खबरें खास होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी दुनिया में इसके प्रतिकूल असर की भी। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर, हम आपको बताएंगे कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने इशारा कर दिया है कि वो तेहरान के एटमी अड्डों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले कर सकता है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि ईरान पर बड़े और भीषण हमले के बीच ट्रंप और उनका प्लान क्या है और इसकी तैयारियां कैसी चल रही। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको बताएंगे ईरान के उस दावे की जिसमें ईरान ने कहा है कि वो बाब अल मंदाब समुद्री स्टेट को भी बंद कर सकता है, यानी रेड सी को भी बंद कर सकता है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान में उसकी नापाक साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। रणभूमि स्पेशल में हमारी आखिरी खबर आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता की तस्वीर, जिसमें आज श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर होंगे और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी होंगे। दोनों से जानेंगे इन तमाम खबरों के संपूर्ण विश्लेषण को, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान और अमेरिकी युद्ध को लेकर। जैसा हमने आपको बताया कि 7वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी हुई है और उसमें पोर्ट सिटी से लेकर रिहायशी इलाकों को शामिल किया जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि इन हमलों में उसने ईरान को कई सैन्य उपकरणों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने कतर बहरीन जॉर्डन में बने अमेरिकी बेसिस पर बड़े नुकसान पहुंचाए। हर बीतते दिन के साथ ईरान और अमेरिका के बीच जंग तेज होती जा रही है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में इस पूरे रीजन के अंदर क्या कुछ घटा है।

0: अमेरिका ईरान के बीच बमबारी जारी, रात भर गर्जी मिसाइलें तबाही भारी, ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले, ईरान का पलटवार, अमेरिकी सैन्य बेस को भारी नुकसान। अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
1: ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि पिछले 24 घंटे में इस पूरे रीजन में क्या कुछ घटा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मिडल ईस्ट से जहां पर बहरीन में अमेरिकी बेस और कई पुलों को ईरान ने भी अपने ड्रोन और हमलों से निशाना बनाया। कुछ घंटे पहले ईरान ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 15वें चरण में ड्रोन से बहरीन के शेख ईसा बीस बेस को, अमेरिकी सेना के विमानों के हैंगर और पार्किंग एरिया को और फ्यूल टैंकरों को बहरीन में निशाना बनाया। इसके अलावा बहरीन के कई पुलों को भी निशाना बनाया गया। दरअसल ईरान अब रेसिप्रोकल अटैक कर रहा है। ईरान का मानना है कि जैसे जैसे अमेरिका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पुलों को, उसके पावर सप्लाई को बाधित करेगा, वैसे ही अटैक अब ईरान बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, इन इलाकों में करेगा। और शायद इसी वजह से बहरीन पे सबसे ज्यादा

और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर ठिकानों और जमीन के नीचे बनी पिक एक्स माउंटेन साइट्स को पर हमला करने का विचार कर रहे हैं। दरअसल पिक एक्स माउंटेन्स एक निकनेम है जो अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगातार ईरान के उन माउंटेन्स को दिया हुआ है जो सेंट्रल और साउथ तेहरान में मौजूद हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, ट्रंप कोई घातक फैसला ले सकते हैं। दरअसल ये वो साइट है जहां पर अमेरिका इससे पहले भी दो चरणों में 2025 और 2026 में कई बार अटैक करने की कोशिश कर चुका, लेकिन अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक बार फिर से उन्हीं माउंटेन्स को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अब अमेरिका अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और एक और जानकारी मिल रही है, अमेरिकी यूरोप से मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स को वापस पहुंचा रहा है। आपको याद होगा कि जब जुलाई के अंदर कि मई के बाद से ही लगातार अमेरिका ने कई फाइटर प्लेन्स, अपने कई रिफ्यूलर्स को वापस यूरोप के इलाकों में भेज दिया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप से अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में वापस तैनात कर रहा है। साथ ही अमेरिका के कई C-17A ग्लोब मास्टर सऊदी अरब की ओर जाते हुए भी इंटरसेप्ट किए गए, जिसमें भारी हथियारों की खेप मौजूद थी। यानी अब मिडिल ईस्ट के अपने बेसिस को दोबारा से अमेरिका मजबूत कर रहा है और वहां पर नए हथियारों की खेप भी लगातार भेज रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अपने फाइटर प्लेन्स की तादाद लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। इसके अलावा रिफ्यूलर्स हो, उसके जो दूसरे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, वो लगातार मिडिल ईस्ट के इन स्काइज में, इन एयर में देखे जा रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि अमेरिका अपने मुस्तैदी, अपने हथियारों की सप्लाई लगातार इन इलाकों में बढ़ाता जा रहा है। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इस समय अमेरिका की तैनाती मिडिल ईस्ट में जारी है। आइए बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हथियारों की खेप कहां कहां पर इंटरसेप्ट के, पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हैं जो आपको समझाएंगे कि आखिरकार देखें कहां कहां पर अमेरिका की मौजूदगी। अगर आप देखें यूरोप में जितने अमेरिका के बेसिस हैं वहां से C-17 ग्लोब मास्टर कहां कहां से होते हुए इंटरसेप्ट किए गए, और ये सारी तैयारी, सारी डिप्लॉयमेंट खासतौर पर सऊदी अरब, बहरीन के अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और जानकार मान रहे हैं कि देखिए ऐसा एक एयरक्राफ्ट नहीं, कई एयरक्राफ्ट हैं जो मिडिल ईस्ट से में पहुंच रहे हैं यूरोप के अलग अलग इलाकों में। आपने, हम आपको ये स्पॉट जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये अमेरिका के वो बेसिस हैं जहां से ये C-17 ग्लोब मास्टर इंटरसेप्ट किए गए, और पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के साथ साथ अपने ट्रांसपोर्टर, हैवी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी लगातार मिडिल ईस्ट की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि अब अमेरिका और बड़े घातक हमले लगातार ईरान पर कर सकता है, और शायद इसी वजह से ईरान के इन इलाकों में ज्यादा फोकस रहेगा। यानी मिडिल ईस्ट में अगर तैनाती की जा रही है, जो सेंट्रल, जो तेहरान का इलाका है, साउथ तेहरान का इलाका है, वहां पर ज्यादा बम्बारमेंट करने की कोशिश अब अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका ने यह समझ लिया है कि वो अगर ईरान को ना सिर्फ कोस्टल एरियाज में कमजोर करना पड़ेगा, बल्कि एक बार फिर से उसके जो ऊपरी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, और तेहरान का जो इलाका है, सेंट्रल तेहरान का, उसको एक बार फिर से कमजोर करने की जरूरत है। शायद इसी वजह से यह पूरी तैनाती एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के इन देशों में की जा रही है। यानी अब अमेरिका एक और बड़े विध्वंसक अटैक की तैयारी कर रहा है, और शायद ये वाला फेज अमेरिका का बहुत बड़ा हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर चाबहार पोर्ट को अमेरिकी हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें लगातार कल से, पिछले 24 घंटे से आ रही है। दरअसल चाबहार के अलग अलग पोर्ट्स पर अमेरिका निशाना बना रहा है, और चाबहार के कई सर्वेलेंस टावर्स को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। चाबहार पोर्ट का एक टावर अमेरिका के हमलों में पूरी तरीके से तबाह हो गया, और उसकी बर्बादी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी। तो चाबहार पोर्ट के ऊपर जिसको निशाना बनाया गया, जिन वॉच टावर्स को निशाना बनाया गया, आइए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यह था वो सबसे पहला वॉच टावर। अमेरिका का कहना था कि यहां से IRGC वहां पर आ रहे शिप्स को लगातार सर्वेलेंस कर रहा है, स्पॉट कर रहा है, और उसके बाद IRGC उनको पिन पॉइंटेड लोकेशन पर अटैक कर रहा है। अमेरिका ने इस पूरे इलाके में इन वॉच टावर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया। पहले ये ऐसा था, अब फिर पहले हमले, और इसमें तीन बड़े स्ट्राइक्स की गए। जी हाँ, तीन लगातार अटैक्स किए गए और इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पहले अगर आप देखें

0: स्ट्राइक में इसका पहले ऊपरी हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ था। पहली अटैक किया गया 24 घंटे पहले, उसके पहले इसका एक हिस्सा डैमेज हुआ था, उसके बाद इसके दूसरे इलाकों को भी यानी दूसरे पार्ट्स को भी बड़े अटैक्स किए गए। ये हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं पहले कैसा था, उसके बाद पहले अटैक में कैसा हुआ और फिर दूसरे अटैक में इसके हिस्से को, इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नुकसान पहुंचा। ये तीसरी तस्वीर आप देख के समझेंगे कि देखिए अब बड़े स्ट्राइक्स किए गए। फिर चौथी तस्वीर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये है तीसरी स्ट्राइक्स में इसका हाल। ये टावर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, खत्म हो गया। और अगर आप देखें कि पहले कैसा था, पहले स्ट्राइक में फिर कैसा हुआ, उसके बाद इसके कुछ हिस्सों के आसपास फिर टारगेट किया गया और जब लगातार अटैक किए गए उसके बाद आलम यह था कि पूरा वॉच टावर बर्बाद हो चुका है। यानी ये जो सर्वेलेंस की क्षमता थी ईरान की, खासतौर पर बंदरबास के इलाकों में, चाबार के इलाकों में, इसको अमेरिका खत्म करना चाहता है। अब आपको हम लगातार ये खबरें बता रहे हैं लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। संजय कुलकर्णी सर, अभी के हालात में जो हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब तो अमेरिका ने ये लोकेशंस को पिनपॉइंटेड किया है कि सदर्न इलाकों के अंदर यानी जो उसका कोस्टल इलाके हैं वहीं पर स्पेसिफिक टारगेट किए जा रहे हैं और उनके सर्विलेंस की, उनके अटैक की और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की सारी क्षमताएं खत्म की जा रही हैं।
1: सुमेक बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि किस प्रकार से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया जाए और वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करते करते उसके साथ साथ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जो उनके आउटपुट प्लांट्स हैं और किस प्रकार से ब्रिजेस को बर्बाद किया जाए, यानी कि मकसद एक कि ईरान को मिलिट्रीली और अब धीरे धीरे करके सातवें दिन के हमले तक आने तक सिविल डिग्रेडेशन इस प्रकार से किया जाए। यहां से पानी की किल्लत अब ईरान में शुरू हो जाएगी, हॉर्मुज़गान जो सिटी है वहां पे पानी की किल्लत शुरू हो गई है। अब इसके बाद जिस प्रकार से कोस्टल बेल्ट पे ईरान पे हमला किया गया है, अब धीरे धीरे करके इंटीरियर पे जैसे आप बता रहे थे पिकैक्स माउंटेन यानी कि ज़ोरूस माउंटेन्स में नतांज का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बर्बाद करना, इसके बाद तेहरान, धीरे धीरे करके सेंट्रल ईरान। तो कहीं ना कहीं मकसद एक कि किस प्रकार से ईरान को घुटनों पे लाया जाए, किस प्रकार से ईरान को डिग्रेड मिलिटरली किया जाए, किस प्रकार से लॉजिस्टिकली ईरान को बर्बाद किया जाए, अब उसके ऊपर है। मकसद एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के यूएसए का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्डियन अमेरिका है और अगर आईआरसीटीसी उसमें दखलअंदाजी देता है और अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में आईआरसीटीसी अपनी मनमानी करता है तो ये यूएसए को पसंद नहीं आएगा।
0: लेकिन सर अमेरिका भी क्या ऐसी तैयारी थी, क्योंकि तो हमारे साथ रोबिंदर सचदेव सर भी हैं। रोबिंदर सर, ऐसा लग रहा है कि एमओयू तो सिर्फ एक खेल था, छलावा था, दोनों ही तरफ से तैयारियां की जा रही थी और अमेरिका इस कोशिश में था कि देखिए जैसे ही 4 जुलाई निकलेगा हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे और इसराइल को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये सारी तैयारियां, सारी स्ट्राइक्स तो ऐसी बता रही हैं कि अमेरिका ने अपने सर्वेलेंस को, अपनी इंटेलिजेंस को पीछे नहीं छोड़ा था, वो लगातार ईरान के ऊपर काम कर रहा था।
2: और जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट, कुछ नहीं छोड़ा था और अपनी फोर्सेस को रीइन्फोर्स कर रहा था इस सारे दौरान में, उसका कोई डाउट नहीं है। बट एमओयू जहां तक करा उसमें मेरे ख्याल से शायद कुछ होप थी, इनका हिसाब था। असल में ये दोनों साइड्स आपस में मिस अंडरस्टैंड कर रही हैं वेरी क्लियरली। अमेरिका से सोचा ये जो एमओयू है इसके चलते हम ईरान का थोड़ा थोड़ा दे भी देंगे, फिर इसका हाथ मरोड़ लेंगे और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होगा। ईरान उस चीज को लेकर बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा है और खासकर अब जो हुआ है ना, आई थिंक खामेनेई के जो फ्यूनरल वगैरह के बाद, इस समय ईरान ऑब्वियसली पहले उसको आइडिया था कि उसका अपर हैंड है और था भी, दिखता था, इट सीन, हॉर्मुज रोकी भी है उसने। बट ये जो पूरा प्रोसेशंस हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग वगैरह आए, उसके चलते जो फिलहाल की रेजीम है या कहें हार्डलाइनर्स है उनके अंदर जो भी कुछ, उनकी हिम्मत और बड़ी है कि हमें ये कायम रखना है। और जहां तक बात रही हॉर्मुज की, उन्होंने ये ठान लिया है कि इस हॉर्मुज को हम कभी नहीं देंगे। और मेरे विचार से अगर आज हम भी, मतलब मैं, आप ईरानियन होते, आप हालात देखते, आपको भी लगता कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों दे दूंगी, तो हॉर्मुज ही पंजा बन गया है ईरान को। अब ये है कि अगले 1-2 साल हम इकोनॉमी का नुकसान सह लेंगे, बॉम्बार्डमेंट सह लेंगे, बट अल्टीमेटली अगर ये पंजा कंप्लीट हमारे कंट्रोल में रहा तो आने वाले दसियों सेंचुरीज तक ये हमारा डोमिनेंस बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
2: ईरान इसको नहीं खोलने वाला। और उधर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जनरल कुलकर्णी सिंह आप भी कह रहे हैं, अमेरिका इससे पहले टारगेट कर रहा है कोस्ट पर, कोस्टल एरियाज पे जो सर्वेलेंस टावर्स हैं, जो कम्युनिकेशन और जिनसे रडार्स हैं, जिनसे इनको पता चलता है कौन सी शिप्स आ रही हैं। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 24-48 घंटे में, अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये सर्वेलेंस टावर्स को टारगेट कर रही हैं, सीधे खड़े हुए टारगेट हैं और उनको उड़ा रही है। उसके अलावा और भी फैसिलिटीज उड़ाएंगी। एंड यस, आप जो रीएनफोर्समेंट्स की बात कर रहे हो उसमें ये जो अमेरिका अपने एयरप्लेन्स ला रहा है, इनफैक्ट इसराइल में ला रहा है ज्यादा वो, क्योंकि वो
0: इसराइल का
2: यहां
0: रुख
2: पर
0: भी
2: इन
0: करेंगे, इसराइल की खबरों के बारे में भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को सबसे पहले वो बता देते हैं, क्योंकि एक चौंकाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई है जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए गए अमेरिकी लूकस ल्यूटनिंग म्यूटेशन को दिखाया गया है। ड्रोन को और अमेरिकी लूकस को समंदर में गिरा हुआ दिखाया जा रहा है, तस्वीरें सामने भेजी गई और ये कहा जा रहा है कि देखिए ईरान भी अब लगातार अमेरिका के ड्रोन को ना सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको मार गिराया गया। और ऐसी तस्वीरें बंदर अब्बास के कई इलाकों में या फिर आप कैसे कोस्टल इलाकों में सार्वजनिक की गई। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आखिरकार वो तस्वीरें कौन सी थी जो अमेरिका के लिए भी बड़ा कंसर्न बन गई है, क्योंकि अमेरिका ने ना सिर्फ अपने हथियार इसमें खोए हैं बल्कि अपनी साख भी खोई है हथियारों की, क्योंकि अमेरिका के प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन हो, लुकस ड्रोन हो, ये सारे ड्रोन जो हैं वो ईरान ने ना सिर्फ इंटरसेप्ट किए बल्कि मार गिराए गए। और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि जब वो ईरान पर अटैक करने जाता है तब अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम हो, उसके एयरक्राफ्ट हो, उसके ड्रोन हो, ये सारी बर्बादी, ये सारा प्रेशर जो है अमेरिका को इस समय झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हैं, उनका एक बार फिर से रुख करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। कुलकर्णी सर, अमेरिका को भी नुकसान तो हो रहा है, जॉर्डन के अंदर भी देखा, बहरेन के अंदर भी देखा, हमने कुवैत में भी देखा, कतर में भी देखा, अमेरिका की साख भी खराब हो रही है, क्या अमेरिका के लिए इसको रिवाइव कर पाना इतना आसान होगा?
1: देखिए, कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पलटवार ईरान कर रहा है, ईरान भी इतने दिन अपने आप को सोते हुए नहीं पाया है, उसने अपने आप को और मजबूत बनाया है। उसने वो जानता था कि कहीं ना कहीं MOU को लेकर के और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जरूर मनमानी या झगड़ा होगा, इसलिए ईरान की जो पूरी तैयारी थी, आप कुवैत पे देख लो जिस प्रकार से एयरबेस पे स्ट्राइक किया जा रहा है, फिफ्थ फ्लीट पे देख लो, बहरेन पे किस तरह से स्ट्राइक किया जा रहा है, कतर देख लो, जॉर्डन देख लो, यानी कि जितने भी खाड़ी के देशों में अमेरिकन बेसिस है उसको ईरान टारगेट करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं कि कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज बंद है, तो ये क्या दर्शाता है, ये ईरान साफ मैसेज दे रहा है, अगर आप हमारे पे बम बरसाओगे तो हम आपके एयर बेसिस को नहीं छोड़ेंगे। ये तो शुरुआत है, अभी भी ईरान के पास काफी तादाद में मिसाइल और ड्रोन हैं जो अब धीरे धीरे करके हो सकता है इसराइल की तरफ डायरेक्ट हो जाए, हो सकता है बाकी देशों में हो, तो ईरान छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि जैसे बिल्कुल रविंद्र साहब कह रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसकी पकड़ ढीली पड़ गए तो समझ लो कि ईरान ने घुटने टेक दिए।
0: बिल्कुल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सर इसी वजह से ईरान अपनी पकड़ को ढीला भी नहीं करना चाहता, ईरान को पता लग गया कि यूरेनियम आए ना आए, एनरिच न्यूक्लियर वेपन बने ना बने, लेकिन ये तो आपके पास एक नेचुरल वेपन ऐसा होगा जिसमें ना सिर्फ अमेरिका पूरी दुनिया झुकेगी। मैं रविंद्र सचदेव सर का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं जिसमें अमेरिका ड्रोन भी मार गिराया गया, ये खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन ईरान के बंदर अब्बास और रोदान मार्ग पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले किए गए थे। बंदर अब्बास और रोदान संचार मार्ग को पूरी तरीके से दो पुलों पर हमले के बाद ये मार्ग बर्बाद हो गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कुछ रिपोर्ट भी दिखाई है, तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बंदर अब्बास जो उनके कोस्टल एरियाज के इलाके हैं उसको जोड़ने वाले मुख्य मार्ग, कम्युनिकेशन सेंटर्स हो, उनके जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े पुल हो, उनको नुकसान पहुंचा, वहां से ये सारी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां का आलम क्या होगा। रविंद्र सचदेव सर, अभी आलम यह है कि देखिए IRGC भले ही अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रही हो, भले ही देखिए आने आने वाले वक्त में यह तय है कि इस युद्ध का अंत बातचीत से ही होगा, लेकिन उसके बाद ईरान का क्या हालत होगी, क्योंकि ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके पुल हो, उसके रोड्स हो, उनके उनकी जो बड़े बाकी पावर प्लांट्स हो, ये सभी तो बड़े डैमेजेस, और वो भी तब जब ईरान पर इतने ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं।
2: एक आंकड़ा आई थिंक फिलहाल तक जो डैमेज हुआ है करीब $270 बिलियन का हुआ है ईरान को नुकसान। पैसे का भी छोड़िए, आप पैसा भी लगा देंगे, आई थिंक आज एक और एस्टिमेट था कि पैसा भी आप चाहे जितना लगा लो दसियों साल लगेंगे ईरान को वापस कंस्ट्रक्शन में लाने में, जितना भी डैमेज हो चुका है कुछ जगहों में, तो डैमेज तो बहुत ही भयानक हो रहा है। बट बेसिक बात वो है, ईरान को अभी की अब की बार अगर हम छूट गए और हॉर्मोन्स को हमने गिव अप कर दिया तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, हम टोटल डोमिनेट हो जाएंगे। तो ये बहुत चल रहा है ना। जस्ट फॉर अ मिनट, आपके दर्शकों हमारे सबके लिए भी, अभी जो बात हो रही कि ईरान भी कुछ ना कुछ डैमेज कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं है।
0: जी
2: ओके, अमेरिकन बेसिस को उनकी खबरें नहीं आती हैं बाय द वे, बट स्टिल देर हैव बिन डिटेल्ड रिपोर्ट्स इन वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहती हैं कि अमेरिका के यहाँ 25 अगर बेस हैं तो उनमें 20 में डैमेज हुए हैं और कुछ में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। एक आंकड़ा है मोटा मोटा, जैसे अभी जॉर्डन कह रहा है कि 10 मिसाइल आए हमने सारे मार दिए, नहीं, 10% ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स डू गेट थ्रू। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इसराइल के भी और जितने भी अमेरिकन, ये 90% एवरेज कर रहे हैं फिलहाल।
0: बिल्कुल
2: तो जो रोज रिपोर्ट्स आती है ना कि इतने ड्रोन गए कुछ नहीं हुआ ये वो, तो मैं मोटा मोटा एस्टिमेट लगाता हूँ अगर 10 ड्रोन मारे तो कम से कम एक तो कहीं ना कहीं गिरा होगा, ठीक या गलत डैमेज क्या होगा। तो हमें की 90% जो एयर डिफेंसिस कर पा रही है तो कुछ 10% या नहीं 10 में
0: और सर
2: एक तो
0: देखिए
2: निकल जा रहा है।
0: रविंद्र सर, अमेरिका ने रिलोकेट भी कर लिया, जॉर्डन में हमने रिपोर्ट देखी थी, उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिलोकेट किया, कुवैत में किया, कई जगहों पर किया, लेकिन वो अब भी ईरान की मिसाइल्स की रेंज में। शायद ये भी असेसमेंट जो था अमेरिका का गलत साबित हुआ, उसको लगा कि रिलोकेट कर नई जगहों पर भेजकर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बचा सकते हैं, और शायद यही अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा सवाल है। सर आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से वक्त ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन तमाम बेनकाब होती साजिशों की जो दुनिया के सामने साबित हो रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
6: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
7: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आज दिन श्री हरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान। पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई।
1: विक्रम 1 इंडिया फर्स्ट प्राइवेट।
2: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ यह एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को भी कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी को भी घेरा। बुलंदशहर में कहा, पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया। शाम को संभल में भी दौरा।

कोर्ट ने खारिज की अपील, 2 साल की सजा बरकरार। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, दक्षिण

ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईरान में चारों ओर तबाही का मंजर है। अमेरिका कई मोर्चों पर एक साथ उसे मात देने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक तरफ ईरान की तेल की ताकत कम की जा रही है तो दूसरी तरफ उसके हमले अब पानी का संकट भी खड़ा कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लान अमेरिका का है वो है उसके परमाणु संयंत्रों और ऊर्जा केंद्रों को तबाह करना। लेकिन अब भी अमेरिका की तैयारियां पूरी नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में और ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा।

0: अब न्यूक्लियर ठिकानों पर होगा घमासान। अमेरिका की तैयारी पूरी, ईरान बोला गलती की तो पड़ेगा भारी। पहले अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकाबंदी की और ईरान के तेल निर्यात का पूरा सिस्टम ही चौपट कर दिया। जिद पर अड़े ईरान ने भी उसके तय रूट न मानने और चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले जहाजों पर लगातार हमला किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हॉर्मुज पर हर हाल में उसका ही नियंत्रण रहेगा। सीज़फ़ायर टूटने के बाद से हॉर्मुज में खतरा और बढ़ गया है और जहाजों की आवाजाही पिछले 3 दिनों से कम हो गई है। हॉर्मुज में फंसे 2 तेल टैंकर धमाकों की चपेट में आ गए और उनमें आग लग गई। IRGC के मुताबिक 2 तेल टैंकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बहकावे में आकर हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से गुजर रहे थे, जहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, उनसे टकराते ही भयंकर विस्फोट हो गया। वैसे पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका ने ईरान के तटीय शहरों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब अमेरिका ये चाहता है कि तेल उत्पादन और सप्लाई चेन को बर्बाद कर ईरान की अर्थव्यवस्था को करारी चोट पहुंचाई जाए। अमेरिकी सेना ने एक ताजा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के कलंतरी पोर्ट स्थित UAV डिपो पर हवाई हमला किया गया। इससे पहले अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैन्य और आर्थिक नजरिए से ये पोर्ट ईरान के सबसे अहम पोर्ट्स में से एक है। तटीय शहरों पर हमले के साथ साथ अमेरिका ने ईरान के जस्क शहर के बुंजी गांव में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले सिस्टम को निशाना बनाया है। हमले में समुद्र से पानी खींचने वाला पंपिंग स्टेशन और बुंजी के डिसेलिनेशन प्लांट का पावर ट्रांसफार्मर पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे 20 गांवों के करीब 10,000 लोगों के सामने पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। लेकिन अमेरिका हमलों के इस सिलसिले को और घातक मोड़ की ओर ले जाने की तैयारियों में जुटा है। अब अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की मुहिम में जुट गया है। ईरान बेशक कितना ही मना करे, लेकिन बुशहर परमाणु संयंत्र पर हफ्ते भर पहले हुए हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। अमेरिका तेल और पानी जंग के बाद अब सारा ध्यान उन शहरों पर हमले तेज करने पर लगाना चाहता है, जहां ईरान अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ताजा हमलों से बौखला ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसे हर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो जमीनी सेना उतारने की गलती करेगा तो ईरानी सेना कतर और बाकी देशों में घुस जाएगी। वैसे अमेरिका के ताजा हमलों में ईरान को काफी नुकसान हुआ है और अब वो संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका पर ईरान के रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में हुई मौतों और बाकी नुकसान के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार है। आज तक ब्यूरो।
1: आपने देखा कि कैसे अमेरिका ने अपनी वॉर स्ट्रेटजीज में, अपनी अटैक स्ट्रेटजीज में बदलाव किए, लेकिन अब भी जो सबसे बड़ा संकट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी दुनिया के सामने बरकरार है। आपको बड़ी वॉल पे लिए चलता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कैसी परिस्थितियां बनी हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है, ये बड़ा अपडेट है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 16 जुलाई को हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर 3 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान सिर्फ 8 जहाजों के गुजरने की पुष्टि की गई। ज्यादातर जहाजों में ईरानी रास्ते का इस्तेमाल किया, जबकि किसी भी जहाज ने ओमान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। ये आप जो ग्राफिक्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या, और इसको एलाबरेट करना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये है बंदर अब्बास का वो स्ट्रेट जो अगर आप पीछे देख रहे हो, ये है पानी का वो रास्ता जहां से ये लगातार टैंकर गुजर रहे थे। ये ग्रे एरिया अगर आप देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच का करीबन 30 से 35 किलोमीटर का वो छोटा सा गलियारा है। अगर आप देखें तो जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे होंगे, ये है कार्गो वेसल्स, यानी बड़े कार्गो वेसल्स जो इधर से सिर्फ इस तरफ पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टैंकर्स, यानी जो ऑरेंज कलर के आप, ये रेड कलर के ऑरेंज कलर के आप जो मार्क्स देख रहे होंगे, ये हैं वो ऑयल टैंकर्स। पिछले इतने दिनों के अंदर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत चल रही थी, सबसे ज्यादा कमी 15 और 16 जुलाई से आनी शुरू हुई। मात्र 8 टैंकर जो थे वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सके, और ये वो टैंकर्स हैं जिन्होंने रास्ता लिया था ईरान की तरफ से, परमिशन ली थी और उसके बाद ही ये वहां से गुजर सके। दरअसल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर आप देखें तो अब ईरान ने और ओमान ने उसको बांट दिया है। जो नॉर्थ वाला इलाका है यानी ऊपरी इलाका जो है वो है ईरान का पैसेज, जिसको ईरान अपनी मर्जी से अपने अधिकार से लगातार वहां से टैंकर्स को गुजरने देता है। और अगर कोई टैंकर साउथ के एरिया से गुजरने की कोशिश करता है यानी यहां से, तो ये है वो अमेरिका का रूट जिसे अमेरिका ने कहा था कि टैंकर्स यहां से जा सकते हैं। लेकिन कोई भी टैंकर अगर यहां से गुजरने की कोशिश करता है, ईरान उसे कहता है कि वो वहां से नहीं गुजर सकता और उन पर अटैक कर दिया जाता है। शायद इसी वजह से इन नए ऑपरेशंस की शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, और यहां पर एक स्टॉपवॉच भी है जो आपको दिखाएगी 16 जुलाई को कितने बजे तक कितने टैंकर्स गुजर रहे थे, उनका पूरा आकलन, उनका पूरा आंकड़ा है। 15 और 16 जुलाई को क्या हुआ, 15 जुलाई को 15 टैंकर्स निकले थे, उसके बाद 16 जुलाई की अगर आप बात करें मात्र 8 टैंकर यहां से गुजर सके। यानी आप देखिए, और ये माना जा रहा है कि यहां पर परिस्थिति अगले एक दो दिन में और ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि अब टैंकर्स का गुजरना और ज्यादा कम हो चुका है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय सबसे ज्यादा अभी भी कंसर्न वाला इशू दोनों देशों में पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जिसमें दक्षिणी पूर्वी ईरान में बोंजी डिस्टिलेशन प्लांट पर हुए हमले में 20 गांवों के पानी को की सप्लाई इससे बाधित हुई है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। दरअसल ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान की तरफ से जारी की गई है, और ईरान का मानना है कि दरअसल जो पीने के पानी की सप्लाई होती है अमेरिका उनको भी टारगेट कर रहा है। ऐसे ही बोंजी के एक वाटर प्लांट पर इस तरीके के अमेरिका ने हमले किए और वहां पर करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के पीने के पानी को प्रभावित कर दिया है। 20 से ज्यादा गांव में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से ईरान ने भी बहरीन के ऐसे वाटर सप्लाई टैंकर्स पर या प्लांट पर अटैक करने फिर शुरू कर दिए। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान बने हुए संजय कुलकर्णी। सर, खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, पीने का पानी, बिजली की सप्लाई, और ऐसा लग रहा है कि देखिए अब तक तो ये लड़ाई थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, अब तक ये लड़ाई थी रिजिम को लेकर, अब तक ये लड़ाई थी कि IRGC बहुत ज्यादा पावरफुल है जो ईरान के लिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अब तो आम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोगों की मूलभूत चीजों को निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होता जा रहा है पूरा घटनाक्रम।
2: सुमित, मकसद ही अमेरिका का ये है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री टारगेट प्रिसिजन बॉम्बिंग से बर्बाद किए, अब उन्हें लगता है कि धीरे धीरे करके IRGC और लोगों के बीच का जो फासला और किया जाए जिससे कि लोग परेशान हो जाए, लोगों को पानी की किल्लत हो, बिजली की किल्लत हो, खाना पीना ना मिले, बहुत जबरदस्त तकलीफ पे पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग है वहां पे ईरान अमेरिका को लगता है इम्प्लोर करेगा कि क्या IRGC की जो पकड़ मानी जाती है ईरान के ऊपर, अगर वो पकड़ ढीली पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ईरान घुटने टेकने में ये मजबूर हो जाएगा। इसी को लेकर के अब अमेरिका जिस प्रकार से, चाहे वो बोंजी हो, चाहे हर्मुज़गान हो, सब जितने भी शहरी इलाके हैं, अब उनको जितने भी लॉजिस्टिकल स्ट्रक्चर्स है, चाहे बिजली घर है, डिसैलिनेशन प्लांट्स है, ब्रिजेस है, लॉजिस्टिकल सेंटर्स है, रिफाइनरी है, अब उनको बर्बाद करने में लगा हुआ है। और ये सातवां दिन है, हो सकता है आने वाले दिनों में अब तेहरान के इर्द गिर्द धीरे धीरे करके अब वो शहरों में अब बम्बार्डमेंट और जबरदस्त
1: खींचना है ये वाला।
2: कहीं पे मुझे लगता है ईरान को अब सोचना पड़ेगा कि अब किस प्रकार से IRGC को खासकर अगर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, या लोगों के बीच अगर पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, खाने पीने का सामान नहीं उनको उपलब्ध हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ब्रिजेस के टूटने के बाद जो लॉजिस्टिक्स ईरान को चीन से आ रहे थे, रूस से आ रहे थे, वो भी बंद हो जाएंगे। और ये जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि पूरी घेराबंदी कर रखी है ईरान की, तो ईरान में कोई ना आ सकता है ना ईरान से कोई जा सकता है, तो ऐसे हालात ईरान के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यही कारण है कि अब अमेरिका जानता है बहुत मुश्किल है, अगर ईरान को इस तरीके से ना दबोचा जाए तो ईरान मानने वाला
1: नहीं होगा। सर, हमारे साथ रविंदर सर एक बात बताइए, पहले हम जब जंग देख रहे थे, जब हम वॉर देख रहे थे, तब अटैक इसराइल पर भी हो रहे थे, लेकिन अभी के जो दायरा आप देखेंगे जंग का, उसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि जंग ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट है, क्योंकि अटैक तो मिडिल ईस्ट पे हो रहे हैं, सिर्फ ईरान इसराइल पर हो नहीं रहे, और नुकसान भी मिडिल ईस्ट के देश भरपाई कर रहे हैं या फिर ईरान कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और इसराइल पीछे बैठकर सिर्फ अपने इस आग के ऊपर हाथ सेकते हुए नजर नहीं आ रहे।
3: वेरी मच सो, इसराइल पीछे बैठा हुआ है। ईरान इसराइल पे इसलिए अटैक नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिकन अटैक से सफर इतना कर रहा है, उसमें इसराइल ने भी ऐड कर दिया तो नुकसान तो ईरान का ही ज्यादा होगा शायद, राइट। और ईरान जो मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक कर रहा है टेक्निकली, तो वो कह रहा है मैं अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहा हूँ जो कि तुम्हारी टेरिटरी पर है, वो मेरा दुश्मन है इसलिए मैं तुम पे अटैक कर रहा हूँ। बट यस, अभी इसराइल का भी जंग में आना बिल्कुल बनता है, हो सकता है। एक चीज और, मैं बाय द वे जो अमेरिका की रणनीति चल रही है उसमें एक चीज हम शायद थोड़ी सी मिस किए हैं हम सब। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों से फिर से ये कहना शुरू करा है कि हम अगर ग्राउंड फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे तो कुछ देश हैं जो हमारे साथ आएंगे। अब वो कौन देश हैं आएंगे अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालता है, और बूट्स कहाँ डालता है? इजरायली सोल्जर्स ना हो सकता है, या फिर आपके ये एमिरेट्स या सऊदी, या इनमें से कोई एक दो देश भी एमिरेट्स हो सकता है
1: बिल्कुल
3: क्योंकि एमिरेट्स ने फर्स्ट फेज में अटैक भी किए थे। पर एमिरेट्स अगर अपनी फोर्सेस देता है तो एमिरेट्स के भी वाटर प्लांट्स जाने के सारे जो
1: सर
3: पीने
1: देखे
3: के हाहाकार मच जाएगा।
1: कमाल की बात रविंदर सर, माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कमाल की बात तो यही है कि देखिए नुकसान ना तो अमेरिका को इतना ज्यादा, हाँ अमेरिका की साख पे सवाल खड़े हुए, अमेरिका के कई बेसिस को टारगेट किया गया, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां इसराइल को भी अब ऐसा विध्वंसक अटैक झेलने नहीं पड़ रहे, तो फिर इसका खामियाजा सिर्फ मिडिल ईस्ट के और ईरान के देश ही भुगत रहे, और शायद मुझे लगता है दोनों देश भी यही चाहते हैं कि ये सीमित रहे मिडिल ईस्ट और ईरान तक ही। लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच अब अगली खबर का रुख करते हैं। हर मोर्चे पर पिटता रहा पाकिस्तान, एक तरह से कैसे गृह युद्ध जैसे हालातों का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलएन की फौज ने नाक में, पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है। जगह जगह आजादी को लेकर हो रहे प्रदर्शन से पाकिस्तान में सबक सीख रहा है। सीखा होता तो अब गिलगित बलूचिस्तान में पांचवा राज्य बनाने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई होती। खैर, भारत ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा पूरा इलाका भारत का था और हमेशा भारत का ही रहेगा।
4: पीओजे के सुलग रहा है, बलूचिस्तान उबल रहा है, खैबर में खतरा बढ़ रहा है, बढ़ती जा रही हैं मुनीर की मुश्किलें। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के ताजा हालात पर यह पूरी तरह फिट बैठती है। हर जगह अपनी फौज के जुल्म की इबारत लिख रहे मुनीर अब अपने ही खोदे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। शहर शहर उनकी फौज और पाकिस्तान के शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उनकी गिरफ्त से आजादी के नारे लगा रहे हैं। पहले मुनीर की फौज ने पुलिस के साथ मिलकर खैबर में जुल्म ढाए तो वहां रहने वाले लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। बलूचिस्तान में तो बीएलए ने आजादी का अभियान ही छेड़ रखा है। अभी मुनीर की फौज ने जब संगीनों के साए में वहां की आवाज दबाने की साजिश रची तो जवाब में बीएलए ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तानी सेना सालों तक इसे याद रखेगी। बीएलए के पलटवार में 45 सैनिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उधर पीओके को लेकर पहले ही मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सेना को कई बार हिंसक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बुनियादी सुविधाएं वहां है नहीं, और गुजर बसर करने वाले स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाना आम बात हो गई है। इन बदतर हालात के बावजूद पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए, अब उसने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का पांचवां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके इस इलाके को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। खैर, कहने को वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच यही है कि लोग मुनीर की फौज और शहबाज की सरकार से आजादी चाहते हैं। वैसे भारत का रुख तो इस पर आईने की तरह बिल्कुल साफ है।
5: कश्मीर को लेके है तो मैं ये कहना चाहूंगा, और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में।
4: नियत न नीति, पाकिस्तान तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ईरान युद्ध को खत्म कराने की उसकी कोशिशें तार तार हो चुकी हैं। नतीजा ये हुआ है कि कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई से वहां आवाम परेशान है। पाकिस्तान सरकार के नए फैसले से लोग ताहिमाम करने लगे हैं। पहले से ही अच्छे खासे महंगे पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब 316.15 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 354.35 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहा है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि अब पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें हर रोज तय की जाएंगी। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिन श्रीहरिकोटा से देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की ऊंची उड़ान। पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई।
1: विक्रम 1 इंडिया फर्स्ट प्राइवेट।
2: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने को कहा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बुलंदशहर में कहा, पहले माफिया राज था, हमने मिट्टी में मिला दिया। शाम को संभल का दौरा। तनखैया बयान मामले में आजम खान को झटका। रामपुर सेशंस कोर्ट ने खारिज की अपील, 2 साल की सजा बरकरार। बंगाल में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब सिर्फ सोनम वांगचूत की नहीं रह गई है, बल्कि सरकार और विपक्ष की, साथ ही उनकी जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर रही है। हुआ यह है कि आज सुबह सुबह 21 दिन से आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचूक को दिल्ली पुलिस उठा ले गई और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सियासी गलियारे में बहस छिड़ गई। क्या यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर लोकतांत्रिक विरोध के बीच प्रशासनिक दखल? दिल्ली पुलिस कह रही है कि सोनम वांगचूक की बिगड़ी सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाना जरूरी था और उसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट का भी यही आदेश था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर संवाद समय रहते शुरू होता तो क्या यह नौबत आती? वही विपक्ष लगातार इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल उससे भी है कि क्या यह छात्रों के भविष्य के लड़ाई में भागीदारी थी या फिर सरकार को घेरने का एक और राजनीतिक अवसर? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के दिन दिल्ली में एक और आंदोलन की तार छिड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि शनिवार सुबह सुबह जंतर मंतर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अनशन, बीच में एक ऐसा चेहरा जो पिछले 21 दिनों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, और कुछ ही मिनटों में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया मेडिकल इमरजेंसी, हाईकोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह।
2: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
1: हालांकि परिवार इसे सिर्फ मेडिकल फैसला नहीं मानता। सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
3: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, article 32 is a free individual. So please be professional. This is a fundamental right.
4: आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन यहाँ रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब, ठीक है? पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लड़ाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का, वो मैं
3: रखूंगा।
4: तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। एक तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
5: ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। दुखद है, बहुत दुखद है।
6: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।
7: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
8: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
9: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में चला जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
0: तो दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन हो रहा है और वही चर्चा छिड़ी है जो 2011 और 2013 में पूरे देश में छिड़ चुकी थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रही है। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका इसमें रखेंगे। रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। सूर्या मैथिली भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने, क्योंकि जिस तरीके से यह घटनाक्रम रहा है वो देखते हुए बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि पहले तो दिल्ली पुलिस को कहा गया था कि हम एक मॉक ड्रिल करना चाहते हैं क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होगी, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, और अचानक उन्हें जंतर मंतर ले जाया जाता है, एक सफेद कपड़ा डाला जाता है और उसके बाद सोनम वांगचुक को सुबह सुबह वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तो तीन सवाल इस पैनल के सामने मेरे रहेंगे। पहला सवाल, सोनम वांगचुक पर पुलिस की कार्रवाई क्या जरूरी थी? जिस तरीके से कार्रवाई हुई क्या वो भी जरूरी थी? दूसरा सवाल, क्या जंतर मंतर पर आंदोलन राजनीतिक अब मंच बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता वहां पर जाकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं और बयानबाजी चल रही, तो क्या एक राजनीतिक मंच बन गया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि राजनीतिक मंच बना हुआ है। तीसरा सवाल, क्या सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल यहां पर रहता है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष नेता राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सोनम वांगचुक पर आई हुई है और वहां से शुरुआत हम करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया उनकी आई हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाना गलत है, वो अहिंसक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक, शिक्षा और उसके साथ साथ शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किया गया, सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, यह उनका आरोप है सरकार पर। और उसके साथ साथ राहुल गांधी का यह भी कहना है कि असत्य और हिंसा के आधार पर सरकार की यह कार्रवाई है, यह भी राहुल गांधी का कहना है।

0: आंदोलन था जिसको उठा करके एकाएक राव के भाग पकड़ने के लिए सारी पुलिस जो है वहां पर लगा दी गई थी, और किस प्रकार से हुआ था कि बाबा रामदेव के साथ अपमानित किया गया था उनको, ये बताने की जरूरत है। वो क्या हिंसक आंदोलन था। तो कांग्रेस पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दो मुंह ही बात कर रही है। अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में बड़ी चिंता है। 25 दिन से तो विदेश की यात्रा पर थे और पहली बार है, ये हमेशा होता रहता है। नहीं नहीं, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ, अन्ना को लेकर के भी बोलूंगा। 25 दिन से कोई विदेश विपक्ष का नेता विदेश में जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके कोई पता नहीं हो कि किस अंधेरे के गर्त में वह बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, अति गोपनीय ऐसी कौन सी चीज है जगह पर है जहां पर उसका पार्टी का अध्यक्ष नहीं जानता हो, पार्टी के नेता नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता हो।
1: आंदोलन पर बात करेंगे, 25 दिन आप प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स का आंदोलन वहां पर चल रहा है। संगीत रागी जी मुद्दे पर आएंगे अभी, चलिए राहुल गांधी के पर आप जो बोलना है वो बोल लीजिएगा, आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं।
0: तीसरी बात,
1: अन्ना हजारे का कहना है कि कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी, और हमारे सवालों में भी यही बात है कि क्या बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरीके से उन्हें वहां से उठाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से हुआ?
0: देखिए, दो दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मैं सरकार के तरफ से कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई उनके तबीयत खराब हो रही है, तो सरकार के वकील ने कहा था कि उनको मॉनिटरिंग चल रही है। और इत्तेफाक देखिए, कल मैंने कहा था, मेरे मन में अंतरात्मा में आई थी कि आज सुबह सोनम वांगचू को उठा लिया जाएगा, और ये स्वाभाविक भी था। ये कल जाकर के ये आंदोलनकारी यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर भी ये गिद्ध राजनीति करते। हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, किस वैचारिक ग्रुप के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो कोई तटस्थ विद्यार्थी हैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन लोग उनके साथ आकर के खड़े हैं ये भी सबको समझ में आती है बात। तो उनको तबीयत खराब होती तो उनको राजनीति करने में ज्यादा आसानी होती।
1: अन्ना हजारे 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे की उम्र देखिए, अन्ना हजारे की उम्र देखिए, वो भी 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे, तब भी यही सवाल उठाए गए थे, तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। क्या तब भी आपको लगता है कि गिद्ध राजनीति चल रही थी, कि लोग कोई इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक पार्लियामेंट के भीतर आकर कह रहे थे कि हमारा पूरा समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को?
0: साहिल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए लोग हैं, एक बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ क्या किया? सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। वो सब के सब राजनीति में अपने अपने कद बड़े करने के लिए काम करने चले गए। एक भ्रष्ट बेईमान मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से चलाने जा रहे हैं, लोकपाल
1: जोड़ के देखा जा रहा है अभी तक, और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई, संगीत रागी, कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मेरे पास है, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि रेगुलरली मॉनिटर डेली बेसिस पे होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स व्हाट एवर मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल ऑल्सो बी टेकन। यह उनका यह आदेश हम यहां पर चला रहे हैं, उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करो, इस तरीके का कोई भी आदेश इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका में नहीं दिया गया। प्रियंका कक्कड़ आप जवाब दीजिए।
2: साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा। इनफैक्ट SCBA सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कल या परसों की बात है चिट्ठी को रिलीज करके कहा था कि ये बहुत आरोगेंट रवैया है गवर्नमेंट का और जाकर बात करनी चाहिए, और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का लोकतंत्र चाहती है भाजपा, कि सिर्फ मन की बात होगी, जन की ना बात होगी ना जन से बात होगी। आप अगर पेपर लीक पर, आप परीक्षा पे इतनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके शो पे आज एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिल्कुल उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इस बात की कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी। थोड़ा सा उनके पेरेंट्स के बारे सोचिए सर, कि वो किस तरह क्या सोच रहे होंगे कि क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे क्या करके गए साहिल जी, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा एक महीना पहले चलेंगे तो आपको बता रहे थे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स प्लीज प्रमोट कीजिए, अपने खाने में तेल कम डालिए, अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डाल दीजिए और कुछ हर जगह बचत कीजिए, और खुद वो विदेश चले गए, विदेश से

0: वापस आते हैं इंडिया थोड़े टाइम के लिए और जाके पंजाब में वो प्रचार कर रहे हैं, करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो बच्चे मर रहे हैं आपके खराब सिस्टम की वजह से, क्या वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते कि आप जाके सोनम मांगचुक जी से मिल लेते? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सर, और आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा, तो आप जाइए, आप सोनम मांगचुक जी से बात कर लीजिए, आप ले लीजिए वोट। क्या मांग रहे हैं आप? हर बात को ऐसा मुद्दा बना देते हैं। डायलॉग इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है आपके सेशन में? इतनी प्रॉब्लम क्या है? आप, अब मैं आपको, आपका क्योंकि शो बहुत पॉपुलर है साहिल जी, मैं आपके शो के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, इस देश के हर एक इंसान को ये कहूंगी कि हमें सोनम मांगचुक जी की इस फाइट में साथ देना है, पीसफुली साथ देना है, कोई प्रोटेस्ट, कोई इलेजिटिमेट काम नहीं करना,
1: जवाब दीजिए,
0: पीसफुली उनकी भूख हड़ताल में साथ देना है, और मंडे को डेफिनेटली पार्लियामेंट चल के जाना है उनके साथ। और आपके शो के माध्यम से ये भी बता दूं कि सोनम मांगचुक जी ने आईवी लगवाने से भी मना कर दिया है, वो हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू कर रहे हैं।
1: ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए।
2: साहिल, दो बातें उन्होंने उठाया, एक तो कि शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं बहुत बात साफ पहले भी बहुत कह चुका हूँ, शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है जो सारे प्रदेशों में काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर के अपना केंद्र पंजाब में ही चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ घपले और करप्शन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर चुनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में दूसरी जगह चुनते हैं। तो ये माफियाओं का क्या, जब गहलोत की सरकार थी तो राजस्थान में नहीं हुआ था क्या? अखिलेश यादव की सरकार थी तब नहीं हुआ था क्या? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो घपले नहीं हुए थे? हुए थे, सभी राज्यों में।
1: सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे,
2: बिल्कुल नहीं कर रहा,
1: मांग गलत थी, इसके लिए सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, यही कहना है आपका?
2: दो चीजें मैं बार बार ये करता हूं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी डिसीजन करना, और जो ऑपरेशनलाइज करने का काम होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मैं मानता हूं कि चाहे वो CBSE का चेयरमैन हो, चाहे वो NIFT का चेयरमैन हो, इन सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो सेंटर अलॉट कर रहे हों तो ये सुनिश्चित करें कि इन माफियाओं के से उसको इंसुलेट।
1: स्पेसिफिक सवाल है, इसमें घुमा फिरा कर क्यों आ रहे हैं? मेरा स्पेसिफिक सवाल,
2: यदि आप स्पेसिफिक सवाल प्रधान,
1: जो अनशन हो रहा था वो एक मांग को लेकर हो रहा था। एक मिनट, संगीत रागी जी, नहीं प्लीज, एक मिनट, एक स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन चल रहा था वो एक स्पेसिफिक मांग को लेकर चल रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आशुतोष के पास जाना है।
2: मुझे लगता है कि ये मांग ही अपने आप में राजनीतिक मांग थी। यदि उनका जेन्युइन एजुकेशन से संबंधित यदि कोई कंसर्न होता तो वो शिक्षा व्यवस्था
1: यही बात,
2: में
1: आशुतोष,
2: इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते,
1: हर आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मांग को लेकर ही उसे देखा जाता है। आपको याद होगा कि जब अन्ना प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी, उस वक्त भी कांग्रेस सरकार के तरफ से स्टेटेड लाइन ये कही गई थी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश चल रही है, इसके लिए हम अन्ना हजारे का आंदोलन सही नहीं मानते, ये सरकार की तरफ से भूमिका रखी गई थी। इस आंदोलन में भी करीब करीब यही भूमिका रखी जा रही है, हालांकि अन्ना हजारे अब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से बातचीत होनी चाहिए थी।
3: देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी डिबेट में क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर वो आपकी टीवी डिबेट में आते और आप उनसे सवाल पूछते और अगर एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जवाबदेह सरकार होती या पार्टी होती तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ता। क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं इसलिए वो आपकी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असल कारण ये है, अन्यथा उनको डिबेट में शामिल होने में क्या, आप आके बोल दीजिए कि भाई सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिए ना आके, क्यों नहीं बोलते? तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। अब संगीत रागी जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, आप बहुत समझदार आदमी है, मुझे बोलने दीजिए उसको। आपको
2: बोला कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई,
3: तो अब ये जो है कि अगर एक जवाबदेह पार्टी होती, सरकार अगर जवाबदेह होती तो वो आपके सवालों के जवाब देती है, स्पष्ट तौर पर आकर कहती है कि सोनम वांगचुक और ये पूरा का पूरा काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और हम इसलिए इनकी मांगों को नहीं मान रहे। तो यह असल सवाल। दूसरी बात क्या है कि बार बार कांग्रेस से तुलना की जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जंतर मंतर में जब पहली बार अन्ना हजारे बैठे थे तो तीन दिन के अंदर तीसरी दिन की रात में सरकार से संपर्क हो गया, सरकार ने बातचीत शुरू कर दी, पांचवें दिन उनकी डिमांड को मान लिया और उसके बाद बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ लोकपाल कमेटी बनी जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे। रामलीला मैदान के बाद पार्लियामेंट बाकायदा बैठी, उसने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया। यहां 19 दिन से आदमी बैठे हुए हैं। बोलिए
1: हाँ, मैं छोटा, आपने जिक्र किया है कि तीन दिन के भीतर कमेटी बनी और उसके बाद वो अन्ना आंदोलन में बात कर रहे थे, रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग थे उनके साथ बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी मांग स्पेसिफिकली पार्लियामेंट को लेकर थी कि उनको एक बिल बनाना था, उनको एक कानून चाहिए था, उनको एक लोकपाल का कानून बनाकर उस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना था। यहां पर ये जो मांग लेकर बैठे हुए वो किसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सरकार किस तरीके से उनसे बात करे, इस पर क्या भूमिका है? कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि ऐसी मांग कर रहे हैं कि इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या बातचीत करें इनके साथ?
3: साहिल, अभी रामदेव का जिक्र किया गया कि रामदेव को तो उठा लिया गया वहां से। शायद संगीत जी को पता नहीं होगा कि रामदेव जब अनशन करने के लिए आए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए सरकार की तरफ से प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर मिनिस्टर को भेजा गया था। ये एक लोकतांत्रिक सरकार का लोकतांत्रिक इंपल्स है। यहां 19 दिन से एक आदमी बैठा हुआ, उनकी तबीयत खराब हो रही, क्या सरकार की तरफ से एक भी बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, उनकी मांगों को समझने की कोशिश की गई? भाई आप उनकी मांगों को ना मानिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन क्या एक संवेदनशील सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल सरकार जो जनता के प्रति है, क्या वो किसी अनशनकारी से ये भी नहीं पूछने की कोशिश करेगी कि अरे भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, आपकी ये मांग है, ठीक है हम आपकी मांग से सहमत नहीं है, लेकिन एक सहृदयता का, एक कॉर्डियलिटी का एक रिश्ता तो होता है ना। यहां तो सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली वही
1: प्लेबुक है, घुमा फिरा कर मुद्दा यहीं पर आता है, जो आशुतोष भी उठा रहे हैं,
3: वही प्लेबुक है जो किसानों को सवा साल तक धरने पे बैठे रहना पड़ा। सवा साल तक 700 किसानों की मौत हुई थी। आप सोचिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर जवाबदेह सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार होती, तो सोनम वांगचुक से पहले दिन संपर्क करती, दूसरे दिन संपर्क करती और कहती कि हम आपकी मांगों को नहीं मानते।
1: 18 दिन रुकना नहीं पड़ता, 20 दिन तक रुकना नहीं पड़ता। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके सोनम वांगचुक को इस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराना नहीं पड़ता। अगर 20 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले सरकार की तरफ से कोई उनको अप्रोच करता। मोहित सिंह, एक मिनट संगीत रागी जी, एक मैं आता हूं आपके पास, बाकी लोगों से भी एक बार पूछ लेते हैं। एक मिनट संगीत रागी जी, आता हूं आपके पास। रोहित सिंह बोले के, रोहित सिंह
4: देखिए, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील राजनेता हैं। विपक्ष में बैठे साथियों को पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान के माध्यम से यह अधिकार है कि जनहित के विषय में जब उनको लगेगा विरोध करना तो वो विरोध कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के मित्र अगर आज सत्ता में होते तो शायद इस प्रकार का जन आंदोलन वो पांव से कुचल देते। रामदेव जी के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को मालूम है, किस प्रकार से उनको कपड़ा बदलकर भागने के लिए बाध्य कर दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और उनके साथ किस प्रकार का एक्सटॉर्शन हुआ था। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया है कि इमीडिएट अविलंब चिकित्सकों के परामर्श में रखते हुए सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखना होगा, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश की सरकार ने हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शंस का आदर करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। अब आइए आप मुद्दों के ऊपर।
1: रोहित सिंह जी,
4: आप राहुल गांधी जी के ट्वीट पर चर्चा कर रहे हैं।
1: एक मिनट, हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया। एक मुद्दा निपटा लेते हैं, एक मुद्दा आपका निपटा लेते हैं, आप ही को सवाल पूछ रहा हूं मैं। आपने एक मुद्दा उपस्थित किया हाईकोर्ट के ऑर्डर का, देखिए क्या एक्शन किस तरीके से हुआ है। देखिए वो जरा तस्वीरें चलाइए जंतर मंतर की, जहां से सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया। 11 बजे रात को एक दिन पहले दिल्ली पुलिस का ऑर्डर आता है, पूरी फोर्स को इकट्ठा किया जाता है ये कहते हुए कि हम मॉकड्रिल करना चाहते हैं, इसीलिए सबको बुलाया जाता है। शनिवार तड़के 3 बजे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने जाने के करीब 4 घंटे पहले सारे पुलिस के जवानों को इकट्ठा कर लिया जाता है कि सिक्योरिटी ड्रिल की जाएगी। सुबह 6:30 बजे जब वहां से कुछ छात्र निकलकर बाहर निकल आते हैं, उसके बाद तुरंत वहां पर एक सफेद कपड़ा लगाया जाता है पूरे मंच पर जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, और पीछे से उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश में यह सब तो नहीं कहा गया है कहीं भी, हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग की बात कही थी, और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह दमन की क्या जरूरत थी।
4: साहिल जी, अब मैं नहीं बातचीत की गई, ये सवाल यहां पर उठता है। अब आइए, उत्तर दूं
1: जी,
4: मैं उत्तर दूं। देखिए, आज विपक्ष में वह राजनीतिक दल बैठा है जिसने सिखों का सरेआम देश की राजधानी में कत्लेआम कराया था। सरकार इस बात को बहुत संजीदगी से समझ रही है कि सोनम वांगचुक जी की आड़ में विपक्ष इस देश में कोई गृह युद्ध न करा दे। अगर सोनम वांगचुक जी को सेफली वहां से नहीं निकाला जाता और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे उन्माद फैलाने वाले प्रतीक राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी को टारगेट करके कोई हमला कर देते तो सरकार क्या जवाब देती देश की जनता को? सोनम वांगचुक जी का शरीर, सोनम वांगचुक जी का प्राण और सोनम वांगचुक जी का समाज में प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार ने उनको बहुत सुरक्षित तरीके से
1: अनुराग भदौरिया
4: निकाला। जिस प्रकार से
1: यानी ये आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष के नेता वहां पर दिखाई दिए जिसपे प्रकाश अंबेडकर, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, अरविंद सावंत, चंद्रशेखर आजाद, आतिश, कुलदीप कुमार, शैली ओबेरॉय, केके शैलजा, जॉन ब्रिटास, वृंदा करात, टीएम थॉमस, ये सारे लोग वहां पर गए और इसी के वजह से गृह युद्ध की कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था और इसी के वजह से कार्रवाई करनी पड़ी।
4: अनुराग भदौरिया,
1: ये सीधा विपक्ष पर आरोप है।
5: देखिए साहिल जी,
4: साहिल जी,
1: रोहित सिंह दोबारा आपके पास आऊंगा, क्या बोल रहे भदौरिया सुन लीजिए, उसका जवाब देने के लिए आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग जी,
5: साहिल, देखिए साहिल जी, जिस गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और जिस तरह से सत्यवादी तरीके से जब वहां पे शिक्षा के जिस तरह का आपने देखा पर्चा लीक को लेके वहां अनशन चल रहा था, लोग अपनी बात कह रहे थे, छात्र नेता, छात्र लोग वहां पे थे, और आपने एक अनशन को नहीं आपने तोड़ा है जबरदस्ती पुलिस का रवैया से, आपने एक, आपको लगता है कि आप सोनम वांगचुक को लेके चले गए तो क्या अनशन खत्म हो गया? भारतीय, हर भारतीय के दिल में अनशन चल रहा है क्योंकि आपने लोकतंत्र का अपमान किया है, लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से आपने वहां पे पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, क्या वो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि इतने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल जाके उनसे मिल नहीं सकता था? क्या उनसे बात नहीं कर सकता था? सब आधे किलोमीटर की दूर पे तो रहते हैं, सब जितने भी बड़े मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं केंद्र सरकार के, सब तो उसी जगह अगल बगल में रहते हैं। 2 कदम जाके अगर उनसे बात कर लेते, समस्या का समाधान, उनकी समस्या पूछ लेते, समस्या का समाधान निकाल लेते, तो इस नौबत क्यों आती है? तानाशाही क्यों अपनाना चाहती है? ये सफेद कपड़ा लाके आप चाहते हो सफेद कपड़ा को ढक के देश की आजादी, बोलने की आजादी और विचारों पर आप कफन डाल देंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। देश लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलेगा, गांधीवादी तरीके से चलेगा, और गांधीवादी तरीके से सोनम वांगचुक वहां पे उपवास कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि किस तरह से पर्चा लीक हुआ है, किस तरह से लोगों का यहां पे बच्चों की मौतें हुई हैं। हर घर में जिस घर का बच्चा जाता है तकलीफ, उससे पूछिए ना, आप किससे तकलीफ पूछ रहे हैं? एक प्रोफेसर से जिसको यही नहीं पता है प्रोफेसर क्या होता है, उसे यही नहीं पता है कि बच्चों की मौत का दर्द क्या होता है, वो दर्द ही नहीं समझ पा रहे, राजनीति खोज रहे हैं उसके अंदर में कि कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय ऐसा हुआ तो आज भी वैसा ही होगा, कांग्रेस के समय वैसा हुआ था तो कांग्रेस सरकार इस देश की जनता ने और जैन जी ने, युवाओं ने हटा के फेंक दी थी, और आपकी सरकार में ऐसा हुआ है तो आपकी सरकार को भी इसी तरह से हटा के फेंक
1: दी।
5: सवाल उठता है,
1: विपक्ष वहां पर गया था, विपक्ष का कहना है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो जाना उनका काम है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन को सपोर्ट किया था उसी के तर्ज पर आज विपक्ष के लोग वहां पर गए थे, उसमें क्या गलत है विपक्ष का सवाल? रोहित सिंह,
4: अरे सुनिए बात, साहिल जी मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ,
6: मुझे भी थोड़ा ज्यादा दीजिए, ऐसे नहीं
4: मैं बोलूं साहिल जी,
6: विपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो कैसे
1: जी? बोलिए बोलिए
4: साहिल जी, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए,
1: पहले आप जवाब दीजिए।
4: देखिए ऑपोजिशन के लोग,
6: सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, नहीं नहीं जवाब नहीं,
4: विपक्ष के राजनेताओं से, अरे मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के राजनेताओं से,
6: कोई श्रेय नहीं
4: है, नहीं मैं विपक्ष के राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी कहाँ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहाँ हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहाँ हैं? ये सभी लोग यूरोप घूम रहे हैं और सोनम वांगचुक को देश की धरती पर अकेला छोड़ दिया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का। आज देश की जनता अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है। गांधी के समर्थक मोदी जी का अभिवादन करते हैं कि सोनम वांगचुक के जान को बचाने के लिए मोदी जी ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। कहाँ अखिलेश यादव? खाली ट्वीट करेंगे और यूरोप घूमेंगे। कहाँ तेजस्वी यादव? यूरोप घूमेंगे। और कहाँ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी? यूरोप घूमेंगे। ये विदेश घूमने वाले लोग सोनम वांगचुक की आड़ में देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लोगों को।
1: प्रियंका कक्कड़ इसका जवाब देंगी, लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान आया हुआ है। रामविलास पासवान जो आंदोलन की आग से यहां पर राजनीति में आए थे, चिराग पासवान आज कह रहे हैं, चिराग पासवान का बयान देख लीजिएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस तरह अनशन करने से चीजें नहीं बदलती। उन्होंने कहा है कि ऐसी अराजक परिस्थिति बनाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उनका यह बयान है कि क्या इस तरह से अनशन करने से चीजें बदल जाएंगी?
7: अनशन करने से, इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा, क्या है पार्टी की सोच, क्या है पार्टी का विजन? आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जनता के सामने रखिए, दिखाइए, सरकार को बोलिए कि देखिए ये पांच चीजें हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव हो, इन चीजों को आप बदलेंगे सिस्टम पारदर्शी होगा, एनटीए में हम लोग ये बदलाव चाहते हैं ताकि अगली बार पेपर लीक के ऐसे मामले नहीं सामने आए। आप सुझाव दीजिए, बट ऐसे अराजक परिस्थिति को उत्पन्न करना ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार नहीं है।
1: सूर्या मैथिल कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अनशन करने से अराजक फैल जाएगा।
5: धन्यवाद साहिल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, मैंने पूरी डिबेट को सुना और इस डिबेट को सुनकर मुझे ये लगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ लोग हैं वो महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन असलियत में हमें इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का मंच सजा, उस मंच को सजाने के पीछे किसने फंडिंग की? और दूसरा, लद्दाख के कांग्रेस के पूर्व एमएलए और जेएंडके सरकार में पूर्व मंत्री सोनम वांग्याल के बेटे सोनम वांगचुक आखिर किस कारण से आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं? केवल और केवल यदि पेपर लीक का ही मामला था और पेपर लीक का ही विषय था तो उनको इस बात का भी चर्चा करनी चाहिए थी, इस बात का धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का करना चाहिए था कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इसी 10 साल के कार्यकाल में हो गया। 2025 में दो लगातार पेपर लीक के मामलों में कठोर सजा हुई, जुर्माना हुआ, ये एक ऐसा कदम था जिससे कि पेपर लीक के मामलों में कमी आएगी।
1: सूर्य मैथिल, कितने लोगों को सजा हुई है पेपर लीक के मामले में? कितने लोगों को सजा
5: हुई? मैं बता देता हूं आपको,
1: 2014 से जरा आंकड़े बता दीजिएगा, कितने लोगों को सजा हुई?
5: मैं साहिल भाई, थोड़ा सा समय आप मुझे देंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा।
1: इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को सजा हुई है?
5: देखिए पीएमटी 2011 का एक मामला था जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्री मेडिकल टेस्ट था, उसमें 12 लोगों को सजा हुई है 8-8 साल की। उसके अलावा जो रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाला था उसमें सजा हुई है 10 लोगों को। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं 2025 के अंदर, और ये तब हुआ जब 2024 में प्रधानमंत्री जी ने
1: पेपर लीक के मामले कितने हुए हैं पिछले 5 साल में? पिछले साल शिक्षा मंत्री ने क्या वादा किया था कि अब इसके आगे पेपर लीक नहीं होगा? उसके बाद
5: साहिल भाई ये बताइए ना शिक्षा मंत्री के घोटाले आप मांग रहे हैं इस्तीफा, उससे पहले क्या 60 साल तक जो लोग आज मंच पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी सरकारें रही, उन्होंने क्या पेपर लीक के मामलों पे कोई कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया? कोई ऐसा कानून बनाने की सोची जिससे कि पेपर लीक के मामले रुके? लेकिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर पूरा फोकस किया, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए की सजा है।
8: इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए थी अगर ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था। और
1: तो
8: अभी आपका कहना है कि चिल्ला रहे थे,
1: तो आपका कहना है कि इस तरीके से आंदोलन करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आपका कहना है कि आंदोलन करना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से।
8: नहीं नहीं, आंदोलन तो अधिकार है जी, आंदोलन तो अधिकार है। आंदोलन में किसी को कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन अभी आशुतोष जी ने किसानों की याद दिलाई, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कर्नाटक के अंदर बिदादी के अंदर इस समय में जो 450 दिन से ज्यादा हो गए, वहां पर किसान जो है पेड़ों से चुपके हुए हैं कि अपने पेड़ नहीं कटने देना चाहते, अपनी उपजाऊ जमीन को वो लैंड डेवलपमेंट के लिए नहीं देना चाहते। उस पर भी कुछ बोल लो भैया, या मीठा मीठा गप और गप और कड़वा कड़वा तू तू, ए वन साइडेड जो पॉलिटिक्स आप लोग चला रहे हैं, यही बताती है कि आपकी जो सारी कार्य है, धरना है, प्रदर्शन है, वो राजनीति से प्रेरित है। एक बात और, जो
1: राजनीति से प्रेरित है आशुतोष, और इसीलिए सरकार उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर जो सारे लब्बो लुबाब इसका यही निकलता है, ये कहने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्यों नहीं बात करती, क्योंकि या तो वहां पर विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद प्रियंका का आशुतोष।
3: आपके पैनल में तीन राजनीतिक विचार राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये तीन राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरीके से तटस्थ हैं, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करते, ये हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते। ये तटस्थता है इन लोगों की, ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। और ये लोग जो आरएसएस के शाखा से निकले हुए लोग हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। जो सुबह से शाम तक देवकांत बरुआ बने हुए हैं, सुबह से शाम तक श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब एक हंसी हंसी आती इन सब चीजों को लेकर। देखिए साहिल, एक बात समझिए इस बारे में, ये सरकार अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जैसे जंतर मंतर पर, जैसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे से संपर्क किया गया, जैसे रामदेव से संपर्क किया गया, और रामदेव इतने डरपोक आदमी साबित हुए कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़े हुए। अन्ना हजारे तो नहीं भागे, अरविंद केजरीवाल तो नहीं भागे, प्रशांत भूषण तो नहीं भागे, रामदेव क्यों भागे कपड़े बदल के, महिला का वस्त्र पहन के? क्योंकि वो डरपोक लोग।
1: लेकिन आरोप यह लग रहा है कि अगर ये आंदोलन में विपक्ष के नेता नहीं जाते तो उसको राजनीतिक रंग नहीं मिलता और सरकार शायद उनसे बातचीत कर लेती। जिस तरीके से संगीत रागी कह रहे हैं, सूर्या मैथिल कह रहे हैं, रोहित सिंह कह रहे हैं, उनका एनालिसिस है कि अगर विपक्ष के नेता नहीं दिखते तो शायद बातचीत होती, यही कहने की कोशिश है
3: साहिल। आपको इस बारे में यकीन है? अगर मैं फिर कह रहा हूं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सोनम वांगचू से संपर्क करती? आज आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं है और बीजेपी की जगह पे ये डमी प्रवक्ता क्यों बैठे हुए हैं? तीन क्यों नहीं बीजेपी के लोग आके यहाँ पे जवाब देते? क्यों नहीं आरएसएस के लोग आके जवाब देते?
8: अभी कोई प्रवक्ता नहीं है, है? आम आदमी पार्टी के
3: क्यों नहीं होते सरकार?
8: मैंने
3: आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ये गलत बात है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सभ्यता से बात करें।
8: ये आप बताइए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता है इस डिबेट में, आप बताइए।
3: सूर्या मैथिल जी, साहिल पहली बात तो सूर्या मैथिल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है, संगीत रागी को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है, रोहित सिंह को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता, फिर आके वो यहाँ बात करें।
8: वो
3: सब लोग डमी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं और ये खामखा अपने आप को राजनीतिक विशेषक कहते हैं। इनकी पोल खुलनी बहुत जरूरी है,
1: व्यक्तिगत नहीं करते हैं,
8: क्या परेशानी है?
1: ठीक है ठीक, एक मिनट प्रियंका कक्कड़, पहले आप, उसके बाद अनुराग भदौरिया। क्या राजनीतिक पार्टियों का उस मंच पर जाना यह राजनीतिक करार देता है जो आंदोलन वहां पर चल रहा था? क्योंकि आपको आमंत्रण देकर तो आपको बुलाया नहीं गया था, आप वहां पर गई, आपके पार्टी के नेता वहां पर गए, अनुराग भदौरिया आपके पार्टी के नेता भी वहां पर गए, तो क्या इसके वजह से सरकार को मौका मिला कि यह राजनीतिक प्रोटेस्ट चल रहा है? जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के समय भी हमने देखा था, पार्लियामेंट के भीतर लालू यादव कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था।
0: बट साहिल जी, आपने कभी भी इस सरकार को, इस इनसेंसिटिव सरकार को जनता के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने इनको जीडी अग्रवाल जी के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने स्टैन स्वामी के साथ खड़े हुए देखा? ये वो सरकार है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की 15 दिन इंसुलिन बंद कर दी और कोशिश की वो जेल के अंदर मर जाए, ये वैसी सरकार है। ये अब जो भी बहाने बनाते रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अरेस्ट को लेकर, इस बार एक दिनेश बेनीवाल बीजेपी का एक छुटभैया नेता पकड़ा गया था और उसने पकड़ जब वो अरेस्ट हो रहा था उसने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो। ये पूरी भाजपा कम पढ़े लिखों की पार्टी है जो गोडसे भक्त है, जो चला रहे हैं ये पेपर लीक का धंधा, इसलिए ये इस डिबेट से भी दूर है, इसलिए सोनम वांगचुक जी से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। ये कायर लोग, आपको याद है इनकी एंट्री कैसे हुई थी? इनकी एंट्री हुई थी व्यापम स्कैम से। व्यापम स्कैम की एसआईटी रिपोर्ट में क्या आया था साहिल जी, मैं याद दिलाती हूं आपको कि सीएम इन्वॉल्व्ड है पेपर लीक में। आपको याद है कि शायद मेरे ख्याल से आज तक का भी एक प्रवक्ता था जिसकी डेथ हुई थी उस व्यापम स्कैम में। उसमें क्या क्या आया था कि गवर्नर इन्वॉल्व्ड है पेपर लीक में, गवर्नर का बेटा इन्वॉल्व्ड है पेपर लीक में, सीएम इन्वॉल्व्ड है पेपर लीक में। उन्होंने 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने क्या किया, इस सिस्टम को और इवॉल्व कर लिया। अब छोटे छोटे प्यादे होते हैं वो उनका नाम आता है और वो छोटे प्यादे जब पकड़े जाते हैं वो कहते हैं बड़े चोरों को पकड़ो, उनको पकड़ा नहीं।
1: आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है इसके लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। देखिए 2011 की आपको वो नहीं, एक मिनट प्रियंका एक मिनट, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई इसके लिए आपको सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 2011 के आंदोलन में जिसका जिक्र संगीत रागी भी कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे रामलीला मैदान पर, वाटर कैनन वहां पर लगाए गए थे, तो सरकार हमेशा आंदोलन दबाने की कोशिश करती है, बात तो पहले से लोग उस पर सवाल उठाते आए हैं, पहली बार तो नहीं है इस पूरे मामले पर अगर आपका यह आरोप है तो।
0: देखिए सोनम वांगचुक जी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, he is an educationist, he is a reformist, he is somebody, he is a scientist, he is a person with scientific temper, we all look up to him.
8: unhone ek proper minister of Jammu Kashmir government from Congress,
0: main iska bhi jawab deti hu aapko, aap thoda aur padhenge, aap thoda aur padhenge, suniye na,
8: ye Congress ke neta ke bete hain,
0: aap pehle inke pita mantri mein baat kar lijiye, aapki angrezi kharab hai, suniye na,
8: main bata raha hu,
0: aap hindi mein baat karne ki mujhe jaldi samajh aati hai, suniye to। उन्होंने अपने
8: लद्दाख
0: उन्होंने अपने आईआईएम के इंटरव्यू के टाइम अपने पिताजी का नाम तक छुपाया और कहा कि मेरे पिताजी फार्मर हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो जो भी है अपने बल बूते पे हैं, आपकी तरह आपकी पार्टी के नेपोटिज्म की वजह से लोग नहीं भरे हुए जगह।
8: आप अगर
0: आपको सिर्फ लोगों को बदनाम करना होता है, आपके यहाँ पर
8: एक कांग्रेस के मंत्री का बेटा आपको पसंद आएगा ही आएगा क्योंकि आपके हीरो है
0: सर, आप चंपत राय की पूजा कीजिए जाइए।
8: अरे भैया आप चंपत राय को ले आए, आप जवाब नहीं है आपके पास कि ये कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे को आप इतना प्यार क्यों कर रहे हैं,
0: आप चोरों
8: कांग्रेस के मिनिस्टर को बेटे को आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपने धन्यवाद नहीं किया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने इतना बड़ा एक
0: आप जाके मिल बनाया पेपर लीक मामले पे चंपत राय के
8: आपने खुद बैठा लिया दीप के
0: बात करनी है आपको। दिनेश बेनीवाल ने क्या कहा, दिनेश बेनीवाल कह रहा है
1: ठीक है जरा अनुराग भदौरिया जरा प्लीज दोनों को शांत करिएगा। प्रियंका जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछा गया था, राजनीतिक पार्टी के नेता उस मंच पर नहीं दिखाई देते तो इससे पूरे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाता जो आरोप बार बार यहां पर पैनल में कुछ लोग लगा रहे हैं?
5: देखिए राजनीति कहीं इन्वर्स में तो होती नहीं है, हवा में होती है कहीं, क्या जमीन पे जनता के भले के लिए होती है ना। हम लोग राजनीति करते हैं किसके साथ करते हैं, जनता के साथ ही करते हैं ना। हमारे आपके बच्चे तो गए ना, जो जिन बच्चों की मौतें हुई है नीट के पर्चा लीक में, जिन बच्चों की मौतें हुई हमारे आपके बच्चे ना, इसी समाज के बच्चे हैं ना। अगर उनका दर्द तकलीफ या जो लोग वहां मंच पे बैठे हैं जो छात्र हमारे आपके घर के हैं ना, तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम उनके अधिकार की अगर बात नहीं उठाएंगे, उनके मंच पे जाकर उनकी तकलीफ को अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो हम क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के अंदर में कोई पीड़ित है अगर परेशान है तो हमें उसके साथ जाके खड़ा होना है, उसकी आवाज बनना है, उसको न्याय दिलाना है, यही तो हमारा काम है ना। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां जाके पूछना कि भाई आपने ही हो, आपने ही हिंदुस्तानी हो, अपना ही खून हो, आप इतने दर्द में हो, इतने दिन से उपवास में बैठे हो, आपकी जान जा सकती है, आपको क्या तकलीफ है, आइए हम मिल बैठ के इसके समस्या का समाधान करते हैं। आप नहीं जाओगे तो हम जाएं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, हम तो जाएंगे क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं, हमारे भारतीय हैं और भारतीय अगर कोई तकलीफ में है दर्द में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ आवाज मिलाना। अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो राजनीति समझिए आप इसको, अगर अधिकार की किसी को अधिकार दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गांधीवाद तरीके से, अगर इसको आप सरकार राजनीति कहती है तो उसको राजनीति समझ लीजिए आप। यहां इस तरह से आपको हर चीज में राजनीति जाएगी, जब यहां किसान बैठेगा किसान की मौतें हो जाए और हम उनके साथ खड़े नहीं हो, चढ़ावा चोरी हो जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, बच्चों की यहां पे आत्महत्या कर लें हम उसकी आवाज ना उठाएं,
9: तो हम किस लिए इस समाज के अंदर में, क्यों हम इस समाज के अंदर में, क्यों राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में, जब समाज की हम आवाज नहीं उठा सकते? हम समाज की आवाज उठाते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कहीं भी अगर प्रभु राम की चोरी हुई है तो आवाज उठाई, अगर किसान परेशान था तो आवाज उठाई, अगर महिलाओं ने यहाँ पे जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने आवाज उठाई, अगर बच्चे परेशान उनका पर्चा लीक हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, बच्चे आत्महत्या करेंगे उनको अधिकार दिलाने के लिए हम आवाज उठाएंगे, सोनम बागचू जी अगर वहां उपवास में बैठे हैं उनकी जान खतरे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमने अगर आवाज उठाई तब तो जगेगी ना सरकार। ये सरकार क्या इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि इसको आवाज सुनाई दे देती है? अपने हिंदुस्तानी
10: क्या तरीका है?
9: ये अपने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारा आपका खून है, ये
10: हमारा आपका खून है, और
9: हम अपनी पूरी आवाज नहीं सुन रहे। इस
10: आपका
9: मेरे हो चुके हैं, हमें सत्ता के सामने कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रही है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रहा है।
1: रोहित सिंह, अगर मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है,
9: बीजेपी के प्रवक्ता को आने की बताने की कि सरकार की क्या मंशा है।
1: संगीत रागी, रोहित सिंह को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं,
11: यादव कहाँ हैं? यूरोप में घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ? कहाँ अखिलेश यादव यूरोप में घूम रहे हैं? तेजस्वी यादव यूरोप में हैं, राहुल गांधी विदेश में हैं, तीनों मिलकर आईएएस खोल रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और दो प्रदेश बनाकर अखिलेश यादव तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करे विपक्ष के लोग, नरेंद्र मोदी जनता के साथ है, जन सरोकार की नीतियों पर देश की लोकप्रिय सरकार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। विपक्ष के देश तोड़ो एजेंडा को देश का नौजवान सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी झूठी, कांग्रेस पार्टी झूठी, राष्ट्रीय जनता दल करप्ट, करप्शन और झूठे लोगों को देश की जनता अलाउ नहीं करेगी।
1: दोनों को शांत करिएगा प्लीज, दोनों को शांत करिए। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कमेंट किया, जरा बताइए एक बार फिर क्या बोला आपने?
10: मैंने आपको ये कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? लगातार आप अनुराग भदौरिया का भाषण सुन रहे
1: हैं, करना एजेंडा होता है,
10: बाकी किसी और को आप बोलने के लिए
1: आपका भाषण सुना था, एजेंडा नहीं था।
10: नहीं नहीं, एजेंडा ही चला रहे हैं,
1: आपका भाषण सुना था, एजेंडा नहीं था,
10: चला रहे हैं
1: आपने तो पूरा का पूरा। आपने 10 मिनट तक जो भाषण दिया वो एजेंडा नहीं था।
10: नहीं, जब एक
1: मतलब आपको आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है,
10: एजेंडा ही चला रहे हैं।
1: नहीं नहीं, आपके आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है,
10: एजेंडा ही चला रहे हैं।
1: एजेंडा का आरोप मत लगाइएगा, आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा, व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था और शुरुआत आपसे की गई थी। कृपया करके आप बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। वहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए और प्रोफेसर यहाँ पर रह के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं।
10: नहीं,
1: आपका एजेंडा नहीं चलेगा,
10: आप बिल्कुल
1: आपका एजेंडा नहीं चलेगा। संगीत रागी जी, आपका एजेंडा नहीं चलेगा, आपको भाषण करने नहीं दिया जाएगा। सवाल उनको भी पूछा गया था, आपको भी सवाल पूछा जाएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा, कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा,
10: बिल्कुल
1: सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर।
10: एक व्यक्ति को यदि तीन
1: आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की किसी को।
10: लेकिन मैं आपके जरूर ये बोलूंगा,
1: यही होता है आशुतोष
10: भाई, आप एक व्यक्ति से
1: यही होता है आशुतोष, यही होता है हमेशा,
10: भी नहीं बोलने का मौका।
1: ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सवाल आप लिख कर दीजिए, फिर आप सवाल लिख कर दीजिए।
10: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: तो आप सवाल लिख कर दीजिए, फिर आप कहेंगे कि आपकी वाहवाही करेंगे तभी यह चलेगा क्या?
10: कि एक व्यक्ति के पास आप चार,
1: आप ईमानदारी से बात करिएगा, ईमानदारी से बात करिएगा,
10: आपको
1: आप ईमानदारी से बात करिएगा,
10: आप ईमानदारी नहीं,
1: ये कोई दूसरे चैनल के लोग नहीं है जहां पर आपके मर्जी से यहां पर चलेगी डिबेट।
10: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं कोई नहीं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति के पास यदि चार बार आप जाएंगे
3: साहिल, देखिए
10: व्यक्ति के पास एक बार,
3: यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तीन प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। इसमें क्यों सरकार ने सोनम वांगचू से संपर्क क्यों नहीं किया, असल सवाल इस बात को लेकर यह है। कोई यूरोप की बात कर रहा है, कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा, ये पूरे मुद्दे को को जो है वो डिरेल करना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एक जवाब दे, ईमानदार सरकार की जरूरत थी जो जाके सोनम बांगचू से बात करता, छात्रों से बात करता और एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को सैक करता। लेकिन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर बने हुए हैं और यहां पर आके ये सारे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते हैं। ये दिक्कत है उनके साथ। अगर आप उनका एजेंडा चलाने लगेंगे तो ये आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये तो असल सवाल यह कि सोनम बांगचू से सरकार ने संपर्क क्यों नहीं किया इस 20 दिन के अंदर। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जरूर संपर्क।
1: संगीत रागी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए संगीत रागी।
10: ये वो पत्रकार बोल रहे हैं, ईमानदार पत्रकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए टेप एयर नहीं करते हैं। ये ऐसे नैतिक पत्रकार हैं। दूसरी बार मैं बार बार ये कह रहा हूं, आशुतोष ने मेरा नाम लेकर के बोला, कांग्रेस पार्टी का भी तो प्रवक्ता यहां पर नहीं है, तो क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस मनमोहन सिंह तो कोयला मंत्री का भी काम देख रहे थे, कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगे थे क्या आशुतोष? नहीं मांगा था। उसी शीला दीक्षित जिसके खिलाफ तुम काम करते थे, सड़कों पर उतर करके आए थे, उसी शीला दीक्षित के सहारे सरकार बना रहे थे। कौन सी ईमानदारी थी तुम्हारी जब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बड़े बनकर के प्रवक्ता के तौर पर यहां आते हैं। आज आप कहते हैं कि भारत की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो बात, अरे सोनम बांगचून जिसके बारे में बहुत पहले से बात तय है कि वो आदमी बात करने के लिए आता क्या? जो व्यक्ति पहले से यहां हट धर्मिता के साथ आया हो कि हम आंदोलन करने के लिए आता है, उससे बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अच्छा किया भारत सरकार ने बात नहीं किया, क्योंकि उनकी मनसा ही बात करने की नहीं थी। यदि बात करने की मंशा होती
1: जब तो शुरुआत में पूछा गया तब संगीत रागी घुमा रहे थे,
10: और एक
1: तब संगीत रागी घुमा रहे थे, आप जाके बोल रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी।
3: अब रंगे हाथों
1: बात करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर।
10: साहिल
1: कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी।
10: साहिल एक बात और कार सेवक पर निहत्थे कार सेवक पर गोलियां चलाने वाला पार्टी, हत्यारी पार्टी कहती है कि निर्दोषों पर निर्दोष को ऐसे क्यों? और हिंसक आंदोलन तो नहीं था? जो राजनाथ जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय उन्होंने कठोर बिल लाया था।
1: अनुराग जी की आवाज नहीं आ
10: रही, किसके लिए? कॉपी करने के खिलाफ।
3: साहिल 10 सेकंड।
10: मुलायम सिंह ने कहा बच्चे हैं तो नहीं कर सकते,
3: बेशर्म,
10: शर्म नहीं आती है
3: नैतिकता की? साहिल
1: एक इंपॉर्टेंट बात, अनुराग भदौरिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आशुतोष आपके पास आता हूं।
9: झूठा आरोप लगा रहे हैं
1: जी अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड।
9: देखिए ये बोलो
1: एजेंडा भी हो गया, अभी आप जवाब दीजिए।
9: चोरी में हम पकड़ा किसने? समाजवादियों ने, हम सनातनी ने। मैं जवाब दे रहा हूं, इन्होंने बोला कि प्रभु राम के मंदिर की बात की, प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो पकड़ा समाजवादियों ने, क्योंकि हम सनातनी है, पकड़ लिया वहां पे, आप फर्जी थे, वहां चढ़ावा चोरी हो रहा था, तब तो नहीं भारतीय जनता पार्टी पकड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दोनों जगह, ट्रस्ट में भी उनके अपने सहयोगी थे, क्यों नहीं आपने पकड़ा? और आप यहाँ कार सेवक की बात करते हो, नीपेन मिश्रा जी ने क्या बोला था? कि नीपेन मिश्रा जी ने साफ साफ बोला है कि वहां पे मुख्यमंत्री जी के चलान बोलने से, आदेश से नहीं गोली चली है, गोली चली है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप नीपेन मिश्रा जी को तो आपने वहां निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है।
1: ये झूठे लोग हैं, राम मंदिर, राम मंदिर की नहीं है डिबेट, आज बाबरी मस्जिद वाली नहीं है। जंतर मंतर पे सोनम बांगचूक वहां पर अनशन के लिए बैठे थे, उन्हें से हटा दिया गया है, जिनकी तारीफ की गई थी एक वक्त पे और सरकार द्वारा ही तारीफ की गई थी। संगीत रागी को शायद वो याद होगा, याद नहीं होगा तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, लेकिन तब तारीफ की गई थी उनकी। आज उन्हीं के अनशन के प्रोटेस्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं।
10: आशुतोष
1: जी आखिर में 20 सेकंड है मेरे पास, आप कुछ कहना चाहते
3: हैं? बट साहिल एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबर ने तो राम मंदिर को लूटा था, अब राम भक्त होने का जो स्वांग रच रहे उन्होंने राम मंदिर को लूट लिया है, इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? बाबर ने लूटा, उसके बाद जो चंपत राय जैसे लोग थे, प्रच्छन्न थे, इन्हें राम भक्तों ने लूटा,
12: तिरुपति बालाजी लूटा पे आवाज लूटा आपकी,
3: लूटे नहीं लूटा
12: राम मंदिर पे।
10: अरे वाले इस देश को कितना लूट रहे हैं,
12: कार्रवाई चल रही है।
3: इनकी इनकी बातें में क्या करते हैं? ये तो दो साल राम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, ये लोग 2 साल राम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, वहां लूटने पहुंच गए।
1: मानसून सत्र शुरू होगा लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर एक्शन बढ़ रहा है और इसी बात को लेकर यहां पर चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि आज अनशन को लेकर एक्शन हुआ है। अब एक नया अनशन वहां पर शुरू हुआ है, उस बात को लेकर भी क्या एक्शन होता है उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। सोनम वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
3: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
2: हैट्रिक का दावा।
3: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
2: विश्वास पूरा।
3: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
2: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
4: अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
5: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

संभल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी का इशारों में अखिलेश परवार, कहा जो रामनवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद हो सकती है, उन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। बीस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने करवाया अस्पताल में भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, राहुल ने सरकार पर उठाए सवाल। बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, दक्षिण 24 परगना में उनके पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया तो टीएमसी ने एक्शन को बदले की राजनीति बताया। अंतरिक्ष मिशन में भारत की आत्मनिर्भरता का दम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से अब तक 8 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

0: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने SIT का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उसकी SIT गठित की। SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 स्थिति और हुई। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्रा उनके आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे, इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं।
1: अयोध्या नगरी से निकलता हुआ एक नारा पूरे देश में एक राजनीतिक रूप में भी दोहराया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज राम जी के सभी भक्तों के मन जितने व्यथित हैं उतनी ही ज्यादा सियासत के प्रश्नों के उत्तर भी तलाशे जा रहे हैं, और उसके बीच हम जिन महापुरुषों के साथ इस समय अपने मंच पर जुड़े हैं उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ महंत धर्मदास जी हैं, मुख्य निर्वाणी अखाड़ा की ओर से महंत दीनेन्द्र दास जी हमारे साथ हैं, ट्रस्टी हैं श्री राम लला का जो मंदिर है उसके, महंत राजू दास हैं हनुमानगढ़ी के महंत हैं, और स्वामी करपत्री जी महाराज हैं धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है कि अब उतना प्रासंगिक रह नहीं गया कि मन कितना व्यथित है, क्योंकि सबने अपनी व्यथा बताई, पर मैं एक एक करके आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि ये विवाद जो चढ़ावा का शुरू हुआ, आप सोचते हैं कि दूर किया जा सकता है समाज से, लोगों के मन से वो आशंकाएं शंकाएं सारी निकाली जाती हैं जा सकती हैं। मंजी अगर मैं आपसे शुरू करूं।
2: श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको जय सीताराम और धन्यवाद कि आपने इस मंच पर ये अवसर दिया। ये करोड़ों राम भक्तों का की आस्था और श्रद्धा का विषय है, ये समूचे संत समाज का विषय है, ये 500 वर्षों की तपस्या साधना और बलिदान का विषय है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति, किसी संस्था और किसी व्यक्तिगत साधन को हम राम जन्मभूमि, रामलला के अस्तित्व से जोड़ नहीं सकते। पहले तो इस बात से हमें पीछे हटना पड़ेगा। भगवान रामलला और राम जन्मोत्सव, राम जन्मभूमि और ये मंदिर, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और केवल किसी संस्था, किसी सामान्य व्यवस्था, किसी व्यक्ति के आधार पर ना तो श्रद्धा में कोई कमी हो सकती है और ना ही किसी भी स्थिति में राम भक्तों के हृदय में परमात्मा राघवेंद्र सरकार की भक्ति में कोई कमी आ सकती है। तो मुझे लगता सबसे पहले तो ये

0: लेकिन नाम तो सियासी रूप से और राजनीतिक रूप से जुड़ा है। राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी भी भूमिका में जुड़ती रही हैं। आज अगर राम भक्तों के आहत होने की बात होती है तो उसके साथ ही एक और विषय प्रारंभ हो जाता है कि अब किसको नुकसान, ये हो रहा है ना, ये सियासत में हो रहा है कि कौन किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको क्या होगा। राम जी की किस के मंदिर में जो हुआ वो कितना गौण रह जाता है अगर ऐसी बात हो जाती है।
1: राम मंदिर के जो चोरी भया
0: जी,
1: तो ये चंदा चोरी तो एक बहुत छोटी सी वस्तु है। चंदा चोरी तो एक छोटी सी विषय, आप विचारधारा, आप साधु के विचारधारा नहीं है। जिस विचारधारा से राम जन्मभूमि पर रखना चाहिए, जिस विचारधारा के व्यक्ति को मंदिर में रखना चाहिए, वो नरक रख करके। अब आप बताइए कि वहाँ पर एक बिजनेस पॉइंट खोल दिया गया, अयोध्या के सैकड़ों जमीन, सैकड़ों मंदिर विवादित जितने हो सब दिया जाए चंपत राय को, या आरएसएस को, चाहे विश्व हिंदू परिषद को, या किसी को, या चाहे सपा वाले को। देखिए, अयोध्या कोई पार्टी के नहीं है, किसी को, कोई देश किसी पार्टी में नहीं बिका है। पब्लिक बिकता है कर्म पर। कर्म आपके, एक व्यक्ति कर्म करेगा वो पार्टी बदनाम होगा, एक गांव में एक आदमी बद कहता है गांव वाले सब बदमाशे हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहां पर जमीन खरीद भया, जिस प्रकार से झगड़े वाला जमीन भी लिया गया, हमने 2024 में आपके पास कागज पे भेजे हैं, 2020 में हमने एक चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, वो आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा। तो वो चिट्ठी के विषय में कोई जवाब नहीं देता किसी को। आप यहाँ पर डीएम को दरखास्त दे दीजिए, डीएम ले लेगा जरूर, आपके पक्ष में बतिया देगा, दूठो चाय पिला देगा, पकौड़ी खिला देगा, लेकिन वह काम इसलिए नहीं करेगा कि एक आदमी कहते ऊपर से आदेश है, डीएम कहेगा ऊपर से, अरे ऊपर का होता है पहले बताइए, ऊपर कुछ नहीं है। आपको आदमी सेट नहीं किए कि कैसे कैसे चोरी, चोरों नहीं पूरा रहे लोग।
0: मतलब ये शिकायत आप लोग कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था।
1: हाँ,
0: आपने पत्र तक लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था।
1: कोई सुना नहीं, ना सुनेगा, ये भी बता दे।
0: अभी भी नहीं,
1: अभी जैसे कि गया है, व्यवस्था है, सुनेगा, सब चीज करेगा। सत्यता के विपर्प कोई नहीं आएगा। जैसे कि मंदिर पुजारी व्यवस्था करता है अखाड़ा पर, अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा के बहन जी है, निर्वाणी अखाड़ा के है, दिगंबर है, ये सब साधु समाज मिल करके मंदिर के व्यवस्था करते थे। हर मंदिर पर लड़ाई लड़े, पूरा विश्व में ये स्थान धर्म की स्थापना की, मुसलमान से लड़े, चाहे हिंदू से लड़े, चाहे जे विरोध किया उकरे से लड़े। आज उन लोगों का काट करके अलग कर दो, केवल वहां पर एक जमीन खरीदने का अभियान चला दो, ये पार्टी कर नहीं कर रहा है। व्यक्ति वहां व्यक्ति रखा है, व्यक्ति है वो पार्टी से संबंधित है, पार्टी बदनाम है, और इसमें क्या रखा है? कोई हम कोनो किसी के, हम बीजेपी के हैं कि हम कांग्रेस के हैं कि हम सपा के हैं? साधु किसी पार्टी के, वो साधु नहीं है।
0: सही बात।
1: हाँ,
0: करपत्री महाराज जी, आरोप लग रहे थे, शिकायत हो रही थी, सब हो रहा था। आपको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द इतना सब कुछ रह गया, उस सुनना ही नहीं चाह रहे थे किसी की?
2: आप तो बहुत पहले से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। 30 साल हो गया मुझे मात 18 करोड़ खाते हुए, जो मैंने संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि में रामला आ जाएंगे तो मैं व्रत तोड़ूंगा। स्वर्णिम इतिहास इसको नहीं कहा जाता श्वेता जी, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलकती मांग है यह भी, अभागिन माओं बहनों के उन्हीं बिछोड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्म भूमि है तू, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई। इन लोगों ने, अगर मुझसे कल किसी पत्रकार ने प्रश्न किया कि राम मंदिर में जितने भी लोग हैं सब

0: सनातनी हैं, तो इन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? हमने कहा राम मंदिर में 1% को छोड़ करके जितने भी लोग ट्रस्ट में हैं, इसमें से कोई व्यक्ति सनातनी नहीं है। सेवरल पर्सन आर सीनातनी, सीनातनी नॉट सनातनी बट यू कैन से सीनातनी। इन सब लोगों ने सीनातनी का काम किया। मैं बहुत व्यथित हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो, घर बांटना चाहते हो चंदा चोरो तो मरने पर मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। राम राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट आल्दो यू कैन से राम इन राष्ट्र माम इन मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम है। राम किसी पार्टी की बपौती नहीं है, राम किसी समाज की पुत्री नहीं है, राम सब में है, राम राम सबकी धारा में चलते हैं। ये स्वभाव संत का होता है मेरे बाप। अयोध्या में कितनी घटनाएं हो रही है, मुझसे पूछिए, एक भी वैष्णव धर्म एक भी रामानंदी संप्रदाय का कोई साधु उस ट्रस्ट में कायदे से नहीं रखा गया है महाराज। नित गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे हैं, वो कोई बोल नहीं सकते, दिनेन्द्र दास महाराज के कोई सुनने वाला नहीं है, लाख बोले कोई सुनने वाला नहीं है। दिनेन्द्र दास मंदिर में गए, लोगों से कहा, पुजारी से कहा कि मुझे तुलसी का पत्ता दे दीजिए, लोगों ने कहा गोपाल राव ने तुलसी का पत्ता बंद करवा दिया महाराज जी, ये डंठल से काम चलता है, ये महाराज जी की स्टेटमेंट है। घंटा घंटा बजाना भी वहां बंद करवा दिया गया था। बाप किसकी बात आप करते हैं बाप? अब आवश्यकता है सारे ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, और ये जो तीन शिरोमणि हैं, पापा है पापा पापा पापा है पापा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लोग कहते हैं करपाते नाम ले लिया करो, हम कहते पापियों को नाम लेने से पाप लग जाता है, इस नाते नाम नहीं लेता हूँ, इस नाते कहता हूँ पापा है पापा हो पापा। इन तीनों को जेल के सिकंजे में होना चाहिए बाप, और मुझे विश्वास है अगर पापा है पापा हो पापा अगर बच गए तो सरकार को बचा पाना बड़ा कठिन काम है। अगर ये तीनों नहीं बचे तो सरकार को हटाना बड़ा कठिन काम है मेरे बाप। खुले मन से बोलता हूं, मैं साधु हूं, जम्मू कश्मीर का रामबन ठंडा पानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाकर के एक धोती पहन करके कचला पहन करके चावल खा करके 1 रुपया मैंने ला के ट्रस्ट को दिया है। प्रातः स्मरणी वंदनीय पूज्य पाद राम डॉक्टर रामलास वेदांती नेपाल में 3 दिन तक दातून नहीं किया, एक मायावादी के घर में फंस गए, रात में आया कहा निकल जाओ महाराज जी नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात में 1 बजे हम लोग वहां से भगे, किसी तरीके से गंदे नाले से बच करके अयोध्या में आए। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अवैधनाथ जी महाराज 3 पीढ़ी ने शहादत दिया है, माननीय दिग्विजयनाथ जी ने शहादत दिया है राम जन्मभूमि के लिए, अवैधनाथ जी ने दिया है, जोगी आदना दे रहे हैं। शंकाओं का समाधान बता सकता हूं, कोई बचेगा नहीं। कल मुझसे एक पत्रकार पूछ रहा था कि जोगी आदनाथ एक्शन लेंगे, हमने किसकी बात कर रहे हो, मेरा भाई है, मैं बचाव पक्ष की बात नहीं करता हूं, इतिहास साक्षी है। जब उसके पिता की डेड बॉडी उत्तराखंड में जल रही थी तो विधानसभा में खड़ा होकर रो रहा था कि 24 करोड़ लोगों में से तमाम पिताजी मेरे लोग हैं जिनका मैं पुत्र हूं, पिताजी नित्य दाह संस्कार करना पड़ रहा है, मैं आपका दाह संस्कार नहीं कर सकता हूं, वहां नहीं आ सकता हूं, क्योंकि विधानसभा में रो रहा था। ऐसा मुख्यमंत्री पाना बहुत कठिन काम है, और मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद बहुत आवश्यक नहीं है मेरे भाई, अगर मुख्यमंत्री के पद का प्रत्याग करना पड़े तो प्रत्याग कर जाओ, तुम प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन जाओगे, लेकिन एक भी चंदा चोरों को यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चित है अयोध्या के साधु अयोध्या के संत अयोध्या के सनातनी कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं, कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं। श्वेता जी मेरे दिल में दर्द है, आज भी मैं 18 सुबह आया हूं, 18 और भी नहीं पाया, रास्ते में चाय भी नहीं पाया, इनसे कहा बाप जान मैं क्या करूं, इन्होंने कहा अभी खिलवाता हूं अभी खिलाता हूं, जिंदगी मर जाऊंगा निश्चित हो जाऊंगा शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ मेरी आवाज उठती रहेगी। आपका बल चाहिए, आपका साहस चाहिए, आपका हिम्मत चाहिए। संसार में उनको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत संतों ने त्याग किया है, बहुत संतों ने बलिदान दिया है, और अगर आज ऐसी व्यथा ऐसा आक्रोश सुनाई देता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और ये आवाज ये स्वर सुनना पड़ेगा सबको। लेकिन महंत दीनेन्द्र दास जी, चूंकि अभी करपत्री महाराज ये कह रहे हैं कि, और ये आरोप सब लगा रहे हैं कि अगर सच्चे सनातनी राम भक्त सब ट्रस्ट में होते तो दिक्कत नहीं होती, आप जैसे लोग हैं पर आपके पास अधिकार नहीं है, क्या ये सच है?
2: जय सीताराम।
1: जय श्री
2: रामलला के यहाँ हमारे संप्रदाय में इसे निर्माण दिगंबर जो परंपरा उसको बनाए रखना जरूरी है। अगर चोरी चल रही है तो हमारी परंपरा अगर मानेंगे तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगा। हमारे वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा मानेंगे तभी आस्थान का विकास होगा, पैसे में अगर दिख जाएंगे तो उचित नहीं है। इसे योगी जी आए तो उसमें जो चोरी पाए उसको पहुंचा दियो, जेल में पहुंच गए, धीरे धीरे अगर सहयोग करेंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। हम लोगों को वैष्णव संप्रदाय की परंपरा जैसे निर्मोही निर्वाण दिगंबर है, अखाड़ी की परंपरा फिर रामला का है, अगर इनकी परंपरा बनाएंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। इसमें सन्यासी कुछ भी नहीं है, सन्यासी कोई जानकारी नहीं क्या करना चाहिए, जहाँ जिसकी परंपरा उसको परंपरा बनाए रखना जरूरी है ना। तो रामला जो चाहेंगे वो सब ठीक चल रहा है और विकास होगा।
1: जैसे, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका दायित्व क्या था, आपको क्या काम उसमें, क्या आपको पता था कि पैसा कैसे काउंट हो रहा है, कहां जा रहा है, उसका निरीक्षण कौन कर रहा था?
2: नहीं, जब अखाड़ा बना महात्माओं की सुरक्षा के लिए अखाड़ा बना निर्मोह निर्वाणी दिगंबर, तो उसमें निर्मोह को राम जन्मभूमि मिला था, निर्वाणी वाले उसमें सहयोग किए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया निर्मोही अखाड़े को कोई केवल नाम आया, कोई पद नहीं दिया गया। बात हम केवल सुनते रहे, उसमें कौन चोर है कौन उधर, हमको कोई जानकारी नहीं दी।
1: मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आपको भी दायित्व मिलता था या केवल एक व्यक्ति के आसपास ये सब कुछ घूम रहा था?
2: नहीं, केवल नाम है, कोई पद नहीं मिला है।
1: जी,
2: ये अखाड़े को पूरा उचित देना, सुप्रीम कोर्ट से मिला है लेकिन एक तरह से कुछ भी नहीं मिला है। 3 महीने में बुलाते हैं, हाजिरी में पहुँच जाते हैं। मुख्य अखाड़ा जो परंपरा बना है उसको परंपरा हमको बनाना जरूरी है
1: जी।
2: रामलला के यहाँ चाहे जो चोरी करे रामलला स्वयं दंड दे देंगे, उज्जैन पहुँच जाएगा।
1: महंत राजू दास जी, ये बड़ा मतलब हम सब एक बहुत ही सकारात्मक रूप से कहते रहे कोई है सोही जो राम रची राखा, अब राम जी ने कौन सा चक्र यहां पर रचा, ये चीज हुई कैसे, और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ट्रस्ट में जो सच्चे सनातनी जिन्हें हम कह रहे हैं, जो राम भक्त कह रहे हैं, जिन्हें राम में भरोसा है, जो एक चोरी करते हुए सैकड़ों बार सोच जाए कि उनके साथ राम जी क्या न्याय करेंगे, वैसे लोग हों तो इस तरह की चीज नहीं होगी?
3: पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जा सुरदयगार बसे राम सरचापधर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल बजरंगबली की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आभार व्यक्त करता हूं। अभी यहां सभी दल के लोग बैठे हैं, सबके प्रति राम के लिए आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है, अनुराग है, प्यार है, प्रेम है। सभी पूज्य संतों ने शुरू से ही कहा है भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संगठन के नहीं, किसी के लिए कॉपीराइट नहीं है। सत्य कहा है, सही कहा है, लेकिन सवाल मेरा है, जब हमको जरूरत थी तब मेरे साथ कौन कौन था? उस वक्त मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कौन चल रहा था?
4: उस समय में अगर नाम ले लेते थे तो टाइगर दब जाती थी, उस समय में जब नाम ले लेते थे 84 कोसी परिक्रमा से, मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, कई बार डिबेट में रहे हैं, कभी किसी को तकलीफ मुसलमानों को हुई नहीं, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही थी? इस विषय पे हम आएंगे बोलने का, आप मुझको मौका दीजिएगा। लेकिन राम मंदिर में जिस प्रकार से कुछ कालनेमी रूप धारण करके जिन लोगों ने ऐसा महापाप किया, घृणित पाप किया, एक तरफ से सभी संतों ने, सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया, निंदा किया, कोई ये नहीं कहा कि बचना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सबने यही कहा कि उसको बंद करो, रिकवरी करो, फांसी पे चढ़ा दो, हटाओ, व्यवस्था को ठीक करो। अभी पूज्य हमारे काका गुरु हैं पूज्य धर्मदास जी महाराज, 1949 में हनुमानगढ़ी से पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति रखी। लगातार इनके बड़े गुरु भाई पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज वहां पूजा करते थे। लगातार पूज्य महान धर्मदास जी ने मुकदमा लड़ी, लगातार अपने जमीन बेचकर जो पेड़ पे चढ़ावा मिलती थी उससे लगातार इन्होंने संघर्ष किया, लड़े मुकदमा। लेकिन जब आई राम मंदिर की बात, जब आया कि नहीं ये शांति पूर्वक हल हो जाए, मंदिर निर्माण होना चाहिए, तत्काल ये शांत हो गए, चुप हो गए, बोले कोई दिक्कत नहीं, अब ट्रस्ट बनाओ, कोर्ट का आदेश अगर इस सुलह से आना चाहता है कि सारे लोग, जितने लोग हिंदू पक्षकार लड़ना चाहते हैं, सब एक मंच पे आ जाए, तत्काल ही एक मंच पे आ गए। इन्होंने कभी ने आपत्ति नहीं किया कि हमको महंत बना दो, क्योंकि वैष्णव परंपरा की जगह थी। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा आप ट्रस्ट से हैं, हम लोग तो कहीं दूर दूर से नहीं है, पूज्य महाराज जी ट्रस्ट से हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर यह व्यवस्था अखाड़ों को दी जाती, संतों को दी जाती, महामंडलेश्वरों को दी जाती, तो ऐसी गड़बड़ियां वहां पर नहीं होती। सभी लोगों ने एक सुर से कहा। आप देखो ना, हनुमानगढ़ी में पंचायती व्यवस्था है, 5 प्रमुख महंत हैं, उनके नीचे एक एक पट्टी में हमारे जैसे 100-100, 150-150 महंत हैं, और 15 दिन में वहां की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, 20 दिन में व्यवस्था बदल जाता है, कई हजार वर्षों से वहां पूजा कर रहे हैं, कोई गड़बड़ियां आई? ऐसा किसी ने बताया कि राजू दास ने चुरा लिया, धर्मदास जी ने चुरा लिया, फलादास ने चुरा लिया, कभी ये मामला आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया? क्योंकि वहां पर संत परंपरा की व्यवस्था है, संत परंपरा में ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा व्यवसाय नहीं होता है, आस्था के बस होता है, आस्था से लोग पूजा करते हैं, आस्था से लोग सेवा करते हैं। तो सभी पंचों का, पूज संतों का एक सुर से, एक मत से यही भाव और भावना है कि अगर संत परंपरा की व्यवस्था होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने शुरू में ही कहा धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, SIT उन्होंने गठित की, SIT जैसे गठित हुआ, चोर पकड़े गए, डाकू पकड़े गए, जेल गए, रिकवरी भी हो रही है, और भी लोग पकड़े जाएंगे, नैतिकता के आधार पर एक दो लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, और भी लोगों को इस्तीफा देने की जरूरत है, नृपेंद्र मिश्रा को भी इस्तीफा देना चाहिए, यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग कहते हैं कि नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, बैठे हैं समाजवादी भाई, इन्होंने कहा मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलाया, नृपेंद्र मिश्रा ने चलाया, आज नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट में, तो तत्काल पहले नृपेंद्र मिश्रा को हटाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, नृपेंद्र मिश्रा ने चलाया, तो नृपेंद्र मिश्रा का कौन काम, हटाना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक अपील, एक आह्वान और भी करेंगे, फिर मैं दोहराता हूं, जब मुझको जरूरत थी, जब राम जी को जरूरत थी, तब लोग कहां थे जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आइए कृष्ण जन्मभूमि हम चलते हैं। जो जो लोग आज चंदे पे सवाल उठा रहे हो, सबसे आगे चलो, मेरे साथ आओ, बोलो कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोली डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई नहीं बोलेगा, बोल दे मैं उठकर अभी यहां से चला जाऊंगा। जितने लोग अभी पक्ष ले रहे थे, एक लोग बोलकर दिखा दो कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बस राजनीति शुरू हो गई। देख लीजिए ये प्रमाण, देख लीजिए ये प्रमाण, देख लीजिए राजनीति क्या होती है, ये देख सकते हैं। ये लोग कभी राम के नहीं हैं, ये सबके सब सौदागर हैं। इन लोगों ने राजनीति की, राजनीति और राजनीति को इन्होंने अपने अखाड़ा बनाया है। आस्था से कोई लेना देना नहीं है।
1: सीईओ क्या इस पूरे मामले का समाधान लेकर आ सकता है?
5: देखिए राम जो है ना, वो उनको ऑफिसर नहीं चाहिए, उन्हें दास चाहिए। दासता में आनंद है। हम सब दास हैं। आप देखो हमारे हमारे बीच का अनुमान है और पूरे विश्व में फेमस है, नाम बताइए अपना, राजू दास नाम है। हमारे यहाँ दासता से जीवन चलता है। हमारे यहाँ दासत्व जब तक आप में नहीं आए, जब तक आप में दैन्यता नहीं हो, सीईओ क्या करेगा? हमें चार्टेड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, हमें चीफ ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी नहीं चाहिए, हमको दास चाहिए। हमें अखाड़ा परंपरा से, हमारे रामानंदी संप्रदाय से अगर कोई साधु हो, कोई शिक्षित साक्षर और विद्वान, धर्म को समझने वाला, धर्म को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्मो रक्षति रक्षताहा, धर्म की रक्षा धर्म कर सकता है। अब इसको आप किसी भी तरह से, जब तक आपको जिस विषय का भान नहीं होगा, विल और स्किल दो लेंगे ना, तो आप विल से स्किल को कहां से जीत पाएंगे? पहले तो आपको स्किल चाहिए ना, वो ज्ञान तो चाहिए, कैसे चलेगा, किस प्रकार चलता कैसे है, चलाया जाता कैसे है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। जब तक आप वो सारा नहीं समझते, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राम यहां के रग रग में व्याप्त है। ये जितने लोग बैठे हैं इसमें 99.9% लोगों के जीवन में राम है। क्या तुम राम राम नहीं करते क्या? हाँ, क्या तुम राम राम, और जिस दिन तुम में से कोई भी मरेगा तो राम राम कहकर मरना पड़ेगा। जब तुम चार कंधों पर जाओगे तो राम राम कहा जाएगा। ये देश राम से चलता है, ये देश राम की परंपरा से चलता है, राघवेंद्र सरकार की कृपा से चलता है, राम कृष्ण की धरती है। यहां धर्म चाहिए, यहां धर्म की रक्षा। देखो और राजाओं के शीश के ऊपर कपास का दंड रखकर आशीर्वाद दिया जाता था, तुम नीति करना, तुम राज्य करना, लेकिन धर्म से करना,
1: धर्म से करना,
5: धर्म से नीति हो, धर्म से
1: राज्य। 5 मिनट हैं तो मैं एक एक करके सबसे राय ले लेती हूँ। मंजी आपसे भी ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक सीईओ के आने से, अगर ट्रस्ट को एक सीईओ दिया जाएगा,
6: सीईओ के हिंदी समझाओ हमको,
1: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
6: विशेषाधिकार, प्रशासनिक अधिकारी की वहाँ जरूरत नहीं है, प्रशासन मुख्य प्रशासन अधिकारी को वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है कि भगवान राम वहाँ बैठे हैं। राम के प्रति भक्त होना चाहिए, राम के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उस संस्था के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा बिनु भक्ति नहीं हुई, मही बिनु गंध की पावे कोई, बिना पृथ्वी के गंध नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से श्रद्धा बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती है, पूजा पाठ नहीं हो सकता है, योग जत नहीं हो सकता है, माता पिता के सेवा नहीं हो सकता है, औरत को सेवा नहीं हो सकता है, पुत्र के सेवा नहीं हो सकता है। श्रद्धा के एक बहुत बड़ा जरूरी है। जो बताई है सीईओ की ओ नहीं चाहिए है, इसलिए कोई भी चीज को एक इतना, जैसे कि अभी लोग भाई लोग है, ये लोग जो भी बिगड़ रहे है, हल्ला कर रहे है, ये बात समझते नहीं जानते कि भी सपा के या कांग्रेस के, अभी बीजेपी के इलेक्शन हो रहा है। अरे यह हो रहा है, अगर योगी जी नहीं होते, सुनिए, तो आज इतना जितना लोग पकड़ाए हैं, इतना जो हुआ चोरी चोरी गते सर रख देते तो क्या करते हो? तो ये जोगी जी ने पकड़ाया, जोगी जी के जैसे टाइटी ने पकड़ाया, चाहे जो भी कोई पकड़ाया, वो अच्छा आदमी है। अखिलेश कहे, सुनिए, अखिलेश जी कहे तो अखिलेशो जी का कोई वही बताया
1: ठीक है मान जी।
6: तू अब हल्ला न करो यार।
1: ठीक अब कर्पतरी महाराज जी आपसे भी
6: यह आप... कोई भी काम है शांति से हो हाँ। यहाँ पर योगी जी हैं तो कोई प्रकार के अन्याय होने के जरूरत नहीं।
1: महाराज जी ये बताइए, आप बोल रहे थे कि किसी को बचाया नहीं जाए, पर आपको क्या लग रहा है कि कौन बचा रहा है फिर और किसको बचा रहा है?
0: हमारी मर्यादा है, हम साधु हैं, इस नाते नहीं चिल्ला पा रहे हैं। अभी महाराज जी के बात मैं समर्थन करता हूं, CEO ये राम के ऊपर कोई प्रशासक नहीं हो सकता है, इसका नाम बदल करके प्रधान राम सेवक रखा जाए, प्रधान राम भक्त रखा जाए। CEO मीन्स नॉट बट प्रधान सेवक जिन्होंने, और जो प्रधान भक्त होगा वो रामानंदी संप्रदाय का होगा, वैष्णों का होगा, जिसको परंपरा याद है। मैं निष्पक्ष बोलता हूं, मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, जब बॉर्डर पर गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मैं पक्षधर हूं, लेकिन अगर विदेश का कोई मुसलमान बोलेगा मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। बताया गया कर्पात्री जी पाकिस्तान से एक मैसेज आ रहा है कि धुआं धुआं जो जा कर दूंगा, आप क्या बात कर सकते हैं, वहां के लोग उर्दू में बोलेंगे। हमने कहा बोलिए, वहां के देश लेवल का व्यक्ति मुझसे कहा कर्पात्री जी आप उर्दू जानते हैं, हमने कहा जानता हूँ, सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरी दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन नीलाम अब्बल महासनी इट मीन्स पर ही तरी से धर्म नहीं भाई और पर पीरा सम नहीं है धमाई। आप लोग शांति का योगदान दे, राम जन्मभूमि बन गया, किस जन्मभूमि बनेगी, मुसलमान भाई मेरे साथ आएंगे, सारे पार्टी लेने आएंगे, लेकिन ये काम एक समझौते से होगा, एक विचारधारा से होगा, एक सद्भावना से होगा, निश्चित तौर से होगा, हम आपको वादा करते हैं। और कोई नहीं बचा रहा है श्वेता जी, इन चंदा चोरों को कोई नहीं बचा रहा है संसार में, और न बच सकते हैं, क्योंकि राम जी का कैमरा से नहीं कोई बच पाएगा, प्रभु के कैमरा से नहीं कोई बच पाएगा। यहाँ के कैमरा से भले कोई बच जाए, लेकिन ठाकुर जी का कैमरा है, इन संतों की कुर्बानी, ये इनको देख रहे हैं ना, घड़ी तक बेच देते थे, पैसा बेच देते थे, कर्पात्री जी दिल्ली जाना है, मुकदमा है, पेट्रोल कहाँ से आएगा, महाराज मथुरा भरा देंगे, आगरा भरा देंगे, लेकिन एक बात भी इन्होंने पद की जिज्ञासा नहीं रखा कि मुझे वहां पद चाहिए। हमारे लिए हमारे हमारे लिए हमारे राम ही बैठ गए, उस सबसे बड़ा मुझे सहानुभूति मिल गई। इसी तरीके से अगर वहां किस भगवान बैठ जाएंगे वो मेरे लिए होगा, और आपके सहयोग से बैठेगा, आपके विचारधारा से बैठेगी, हम लोग सब लोग मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे, समझौता से हो जाएगा, हम लोग संत हैं महात्मा हैं। लेकिन जब यज्ञशाला हो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जब यज्ञशाला हो तो घर में बैठ करके कहिए ओम शांति मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के ऊपर कोई आंख उठावे, राम के ऊपर कोई आंख उठावे, धर्म के ऊपर कोई आंख उठावे, तो वहां ओम शांति वहां शांति छोड़ करके आप लोग उठिए, आवाज लगाइए कि ओम क्रांति की आवश्यकता है। जब देश के ऊपर कोई आवाज आवे तो एक हाथ में माला हो, एक हाथ में भाला हो, देश रहेगा, राम रहेंगे, देश रहेगा, कृष्ण रहेंगे, देश रहेगा, मर्यादा रहेगी, देश रहेगा, धर्म गुरु बनेंगे। अगर आपस में मतभेद रहेगा, हमें ना आया यहां के रहेंगे ना वहां कहेंगे, हाथ जोर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दास आपके साथ है, ये खून भी दे देगा, आओ मेरे साथ, हम सब काम करेंगे, बस अति समझौता के साथ करेंगे, विचारधारा के साथ करेंगे, आत्मीयता के साथ करेंगे, सद्भावना के साथ करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, नीति के साथ करेंगे, कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमारा समाप्त हुआ है, धन्यवाद। अब बहुत सारे ऐसे क्षण यहाँ पर आए हैं जब भावनाएं लोगों की उमड़ी हैं, लेकिन यही कुछ इस समय देश में हो भी रहा है, उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राम जी ने जो रचा है वो सुंदर रूप में अयोध्या नगरी में, उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण भारत में दिखता रहे।
6: जो मंदिर बन गया, भगवान की प्रतिष्ठा हो गया, तो वहाँ पर भगवान रहने हैं, कोई उठा करके भगवान के या वहाँ के धरती उठा कर लेके जाने वाला कोई पृथ्वी में पैदा नहीं भया है कि नहीं। इसलिए आप लोग आपस में शांति रखिए, और पार्टी पोटिशन अलग चीज है, पार्टी में क्या करा कि किसको जिताना है किसको हराना है वो कर्म उन लोगों को बता देगा कि जीते के कम कर्म कर रहे कि हारे के कर्म कर रहे। और ये इसे किसी को जिसको बनेगा हम लोगों के देश में जे आया तो मुसलमान आया तो वो भी शासन किया, कौन अंग्रेज आया वो शासन किया, और कांग्रेस आया वो शासन किया। कांग्रेस के समय में इमरजेंसी हमने लोगों ने देखा, बाबा अभिराम दास को 19 महीना जेल में रहे एक का नाम है एक शासन में इमरजेंसी लगाया।
1: मान जी अच्छा अच्छी बात आपने कह दी कि पार्टी पोजीशन एक तरफ और पर्सनल पोजीशन सबका एक तरफ।
6: तो प्रजा है, प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक होता है। ये नहीं कि राजा कोई मालिक नहीं होता है। आज हम लोगों के बुद्धि कम होने के नाते सत्य बोलने के अभ्यास छूट देने से आत्मा कमजोर हो जाने के नाते आप सत्य बोलते ही नहीं है, तो सत्य असत्य बोलते बोलते आदमी का आत्मा छूट हो जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप लोग सबका यहाँ पर मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।
7: अब बड़ी खबर आपको देते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार उनको इसके लिए दिया जाएगा। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कार्तिक आर्यन के साथ साथ दक्षिण के सुपरस्टार मम्मूटी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड साझा तौर पर दिया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो मम्मूटी को ब्रह्म युगम के लिए यह अवार्ड मिला है। तो कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए। यामी गौतम को मिला है बेस्ट फिल्म क्रिटिक के लिए 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड। संजीव श्रीवास्तव को हिंदी सिनेमा की गहरी समझ के लिए दिया गया है। अगर हम रीजनल सिनेमा की बात कर लें तो बेस्ट रीजनल फिल्म बेस्ट तेलुगु फिल्म कमिटी कुल्लू बनी है। बेस्ट तमिल फिल्म रायन। बेस्ट मराठी फिल्म मुकाम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी। बेस्ट ओडिया फिल्म लहरी। बेस्ट मलयालम फिल्म फेमिनिची फातिमा। बेस्ट कन्नड़ फिल्म मिथिया। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म श्रीकांत जिसका हमने जिक्र किया। मारान बनी है बेस्ट गुजराती फिल्म। बेस्ट गढ़वाली फिल्म ढोली। बेस्ट बंगाली फिल्म चलचित्र एखॉन। बेस्ट असम फिल्म जुई फूल। और बेस्ट मणिपुरी फिल्म बनी है सुनीता। तो ये वो नाम है, स्पेशल मेंशन भी यहां पर किए गए हैं। चोला डोरा और सुई हिंदी की है। भद्रकाली नाटकम जो कि मलयालम है। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म चुनी गई है मराठी है जिसका नाम है हम सफर। तो इंडियन सिनेमा का ये सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स जिसका ऐलान हो गया है। और आज इसका ऐलान होना था, इंतजार खत्म हुआ। इसमें चंदू चैंपियन के लिए फिल्म उतनी शायद नहीं चली लेकिन जो उसमें काम कार्तिक आर्यन का था वो बहुत ज्यादा चर्चित रहा। स्पेशली उन्होंने अपनी एक्टिंग अपने लुक्स को लेकर मतलब बहुत बदलाव लेकर आए। तो उनको इसके लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड मिला है। और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
10: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
11: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
12: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
10: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
13: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
15: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एक बड़ी खबर आपको देते हैं, सत्र की शुरुआत होने वाली है मानसून, लेकिन उससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में सबसे दिलचस्प है एनसीपीआई को निमंत्रण दिया गया है। एनसीपीआई वो दल जो हाल ही में चर्चा में आया था, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के वो सांसद थे जो बागी थे और वो एनसीपीआई का हिस्सा बन गए थे। 28 में से जो बाकी बागी सांसद थे वो इस एनसीपीआई के साथ जुड़े और उसके बाद उन्होंने एनडीए को समर्थन का भी ऐलान कर दिया। टीएमसी हालांकि दूसरी तरफ इस मामले में अभी भी लड़ रही है और कह रहे हैं कि इनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इनको न्योता भेज दिया गया है। सर्वदलीय बैठक के लिए एनसीपीआई को निमंत्रण दिया गया है, ये अपने आप में संकेत बिल्कुल क्लियर है एनसीपीआई को लेकर सरकार की दृष्टि क्या है, क्योंकि एनडीए को तो उन्होंने समर्थन दिया ही है। हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, एक तरफ टीएमसी की नाराजगी, उनकी आपत्तियां, लेकिन सरकार ने एनसीपीआई को बुलाया है, मतलब सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई को बुलाया है, इसके मायने क्या है?
3: जी बिल्कुल राजीव, कुछ दिनों पहले एनसीपीआई के नेताओं की मुलाकात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक पत्र सौंपा था स्पीकर को कि एनसीपीआई को मान्यता दी जाए, उनको बैठने के लिए एक अलग से जगह संसद के अंदर नियुक्त की जाए। उसके बाद जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दी गई है, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि एनसीपीआई के सांसदों को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जाए, उसके क्योंकि उनकी जो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनको मान्यता दी जाए, वो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के पास है और वो उस पर जल्द फैसला ले सकते हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि आज ही वो फैसला हो भी सकता है। इसीलिए सरकार ने माना है कि जहां एक तरफ एक गुट बन के निकल के सामने आ गया है जिसमें 20 सांसद एक साथ है, तो इनको सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया जाए। इसीलिए सुधीर बंदोपाध्याय को नेता के तौर पर यानी एनसीपीआई के नेता के तौर पर और काकुली घोष को चीफ व्हिप के तौर पर कल सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया है और एक पत्र लिखा गया है केंद्रीय यूनियन पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आपकी जो पिटिशन है जिसमें आपने मांग की है कि आपको रिकग्निशन मिले, वो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के पास है, तो आप जो है कल ऑल पार्टी मीटिंग में आ सकते हैं। और सुधीर बंदोपाध्याय को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उनको नेता के तौर पर कहा गया, साक्षात काकुली घोष को चीफ व्हिप के तौर पर कल आमंत्रण दिया गया।
2: लोकसभा स्पीकर को लेना है, उनकी तरफ से कब तक फैसला हो सकता है, अधिसूचना कब तक जारी हो सकती है?
3: बिल्कुल राजीव, आज दिन भर संसद भवन के अंदर कई बैठकें हुई है और इसी को लेकर चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है, कभी भी ये फैसला आ सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि आज ही ये फैसला आएगा और आज फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद एनसीपीआई को मान्यता मिल जाएगी, उनको जगह भी मिल जाएगी संसद के अंदर बैठने की। तो इन बैठकों के दौर के बाद आज ही लोकसभा स्पीकर फैसला ले भी लेंगे और उसके बाद कल सर्वदलीय बैठक।
2: पीयूष, अब लोकसभा स्पीकर का क्या फैसला होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो सर्वदलीय बैठक में उनको एक तरीके से मान्यता तो दिखाई जा रही है कि हाँ, वो सरकार तो कम से कम मान्यता उनको देती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की तो इसे घोड़ों से खींचा जाता था, लेकिन जब भाप इंजन आया तो ट्रेनों ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही डीजल इंजन का दौर आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर है। ना डीजल, ना कोयला, ना बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये ट्रेन हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और वाष्प को हवा में ही छोड़ देगी। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में खास है। इसकी पहली खासियत यह है कि डीजल इंजन की तरह इससे धुआं नहीं निकलता और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ जल वाष्प और गर्मी निकलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन है। जहां कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें 2 से 4 कोच की हैं, वहीं भारत ने शुरुआत ही 10 कोच और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन से की है। इसका 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में भी शामिल करता है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से बिजली लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने साथ मौजूद हाइड्रोजन से खुद बिजली तैयार करती है। इसलिए जिन रेल मार्गों पर ओवरहेड बिजली नहीं है, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट किया गया है, यानी भविष्य की रेलवे तकनीक में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर मल्टी लेयर सुरक्षा, हाइड्रोजन गैस लीकेज, आग, धुआं और तापमान पर 2400 घंटे नजर रखने वाले सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी तकनीक की शुरुआत है। जींद में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है। यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई बल्कि हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव भी रख दी है। आज ये शुरुआत जींद से सोनीपत तक है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकती है। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को कल सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता मिला। सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने भेजा आमंत्रण, स्पीकर आज ही जारी कर सकते हैं अधिसूचना। संभल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी का इशारों में अखिलेश पर फिर वार कहा, जो रामनवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद हो सकती है, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सब। अंतरिक्ष मिशन में भारत की आत्मनिर्भरता का दम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम, पीएम मोदी ने जताई संवेदना। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर है जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और इसमें 8 लोगों की जान चले गए, 10 लोग इसमें घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बताया जा रहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यानी कि अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। जब लाइसेंस रद्द हो गया था और उसके बावजूद भी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो ये सवालिया निशान सिस्टम पर भी खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। इस समय 10 घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। यहां पर जोरदार धमाका हुआ, एक पटाखा जो फैक्ट्री है वो चल रही थी और इसमें 8 लोगों की जान चली गई। अब बात करते हैं जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के अनशन के, जिन्हें आज स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के राष्ट्रपति।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
4: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
5: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
6: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
7: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
8: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
9: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
10: सोनम वांगचुक ये उपोषण और बसलेट आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय हरकत।
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया, तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
0: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग बिल्कुल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद से हटाया जाना चाहिए। और आज सुबह दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंची और सोनम वांगचुक को लेकर चली गई हॉस्पिटल में, उनको भर्ती करवाया गया। जंतर मंतर पर सुबह क्या क्या हुआ है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
12: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथी प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
13: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
12: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
13: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
0: अब बात करते हैं यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं तो कहीं पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं।
14: देखो देखो कौन आया।
1: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
15: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचाता?

0: पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के इस दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
1: তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছে বলে আর যারা বলছেন অবৈধ, 15 তারিখ হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে দুদিন আগে, আজকে 18 তারিখ, সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতি যিনি ওএসডি রয়েছেন তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
0: अब बात अंतरिक्ष में भारत के दम की, जहां आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ है, जिसके बाद हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने ये कारनामा किया है।
2: 1-0
3: एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ।
4: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
5: So well authorized by space, which is an authorizing voting agency, the regulator for space in India.
4: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
6: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
7: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स, द डिले, द टुक आवर हार्ट्स।
4: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
8: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
4: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
9: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
10: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
4: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश में फर्जी बीएड कॉलेजों पर केंद्र सरकार ने अब सख्त एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए, एक स्वतंत्र और सत्यापन समिति का गठन किया है। दरअसल ये आज तक की ही खबर का इंतजार है, ये आज तक की खबर का असर है जिसमें आज

0: तक ने दिखाया था कि कैसे कागजों पर भविष्य के शिक्षक तैयार करने वाले बीएड डीएड कराने वाले फर्जी कॉलेज मौजूद हैं। आज तक की पड़ताल में ऐसे कॉलेज भी मिले थे। तो कागजों पर तो हैं, लेकिन जमीन पर है ही नहीं। जहां इमारत तो है वहां छात्र हैं ही नहीं। कहीं नियमों का पूरा पालन नहीं हो रहा है। और इसी खबर के बाद से एनसीटीई ने एक आदेश में कहा है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एचसीएस राठौर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति दस्तावेजों और वीडियोग्राफिक साक्ष्यों के साथ एक जांच रिपोर्ट तैयार करेगी बनाएगी और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर गड़बड़ियों को उजागर करने वाले रिपोर्ट के बाद समिति का गठन किया गया था। 17 जुलाई से जांच शुरू कर दी गई। अब आज मेरठ से आई एक चौंका देने वाली खबर की, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इस साजिश में एक सांप का इस्तेमाल किया गया जिसके काटने से पति की मौत हुई।
1: तस्वीरों में पति के साथ खुश नजर आ रही दामिनी के दिल में क्या था, इसका भरोसा अब तक परिवार को नहीं हो रहा है। दामिनी ने अपने पति की हत्या के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पत्नी ने अपने प्रेमी और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल किया। दामिनी ने पति को सांप के काटने की सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों को शक न हो इसके लिए अतुल के बिस्तर में सांप भी छिपा दिया।
2: तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाही होता है, उसको लेकर कुछ चीजें मैच नहीं खा रही थी।
1: पुलिस ने दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। इसमें स्कूल के ड्राइवर तुषार से उसके लगातार संपर्क सामने आए। पूछताछ में तुषार ने बताया कि उसका दामिनी से प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर इसकी साजिश रची। इसके लिए एक सांप को खरीदा गया, वहीं 2 और लोगों को साजिश में शामिल किया गया। रात को दूध में दामिनी ने नींद की हैवी गोलियां दी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो गया, जिसके बाद जहरीले सांप को कमरे में लाकर उसके कंबल में छोड़ दिया गया, जिससे सांप ने अतुल को डस लिया और उसकी मौत हो गई।
2: तो इनकी पत्नी जो है दामिनी, इनके इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला।
1: पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि अतुल के नाम करीब 20 लाख रुपए का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने प्लान बनाया कि यह अपने पति को मरवा देगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और दोनों ही शादी करके पैसे से आगे चलकर रहना सहना करेंगे। इससे पहले तुषार ने अतुल को अर्टिगा कार से टक्कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन हेलमेट पहने होने के कारण वो बच गया था। ऐसे में इस बार उन्होंने अतुल को सांप से कटवाने का पूरा प्लान तैयार किया। आज तक ब्यूरो।
0: एक बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है लोकसभा स्पीकर की तरफ से। शिवसेना यूपीटी की तरफ से जो 6 सांसद जो है शिंदे गुट में शामिल हुए थे उनको मान्यता दे दी गई है। यूपीटी के 6 बागी सांसदों को लेकर बहुत बड़ी खबर है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ ये लोग गए थे और अब इनको मान्यता मिल गई है। शिंदे गुट में शामिल होने पर ये मान्यता मिल गई है, बहुत बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना यूपीटी की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा था कि इनको अलग समूह या विलय के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मूल राजनीतिक दल का विलय नहीं हुआ। तो मूल राजनीतिक दल के विलय के बिना सिर्फ संसदीय दल का विलय मान्य नहीं हो सकता। तो यानी कि जो दलीलें शिवसेना यूपीटी ने दी थी या संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही थी, वो सब मान्य नहीं गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, मान्यता दे दी गई है लेकिन हिमांशु बताएं।
3: देखिए, जो मान्यता दी गई है, जो यूबीटी के 6 सांसदों ने अपना पाला बदला था और वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप में गए और उसके बाद स्पीकर ने, क्योंकि एक सुभाष देसाई वर्सेस महाराष्ट्र के राज्यपाल का केस का जजमेंट है, उसको लेकर यूबीटी के जो संसदीय दल के नेता है अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय राउत, इन्होंने मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद जो है वहां पे ये कहा गया था कि इस पे ध्यान रखा जाए, हमारी बात को भी सुना जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर ने आज ये मान्यता दे दी है। सारे कानूनी जो सलाह मशवरा है उसके बाद ये फैसला हुआ है, क्योंकि सोमवार 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होना है, तो उससे पहले ये फैसला लेना था। इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला और है, जो 20 टीएमसी के बागी सांसद थे उन्होंने भी जो है अपनी एक अलग दल एनसीपीआई के लिए ये कहा था कि वो अलग दल बना रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, उसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो सीटें हैं वो टीएमसी से हटकर सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी की तरफ जो है उनकी तरफ वो बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा था स्पीकर को कि वो रूलिंग पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं एनडीए में शामिल होने।
0: जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवसेना बेटे के 6 बागी सांसदों को जिन्होंने शिंदे गुट ज्वाइन किया था उनको मान्यता मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। कार्तिक ग्यारन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कार्तिक आर्यन के साथ साथ ही दक्षिण के सुपरस्टार मम्मूटी को भी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड साझा तौर पर मिलना है, उनको दिया जाएगा। वहीं हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है श्रीकांत, और ये राष्ट्रीय सम्मान इस फिल्म को मिला। अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पर आज एक दुखद खबर आई। क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

0: सर गारफील्ड सोबर्स नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हो सकता है कि आज की पीढ़ी उनके बारे में ना जानती हो, लेकिन क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की बादशाहत के बारे में जरा भी जानकारी रखने वालों को बखूबी पता है कि क्रिकेट के इतिहास में सर सोबर्स अपने आप में एक पूरा अध्याय थे। एक कंप्लीट क्रिकेटर, एक बेहतरीन बल्लेबाज, पराक्रमी मीडियम पेसर, साहसी स्पिनर और चुस्त फील्डर। तभी तो डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें 5-in-1 क्रिकेटर कहा था। सर गारफील्ड सोबर्स ने 17 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 के औसत से 8,032 रन बनाए। इनमें 26 शतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 235 विकेट अपने नाम किए। टेस्ट करियर में अपने पहले ही शतक को 13 शतक में बदलने वाले इस शख्स के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के जमाने का रिकॉर्ड। दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
1: One of the finest cricketer for people like us, all-rounder who want to bat, bowl and field. I think he, nobody can come close to him. What a finest cricketer.
0: सचिन तेंदुलकर ने उन्हें याद करते हुए लिखा, मैं उनके साथ साझा किए गए पलों को याद कर रहा हूँ। मुझे 2003 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड देने से लेकर मेरे शतकों का शतक मारने की कामयाबी पर उनकी बातें ताजा हो गई। वो हमेशा शानदार थे। मैं बार बार कुछ साल पहले लंदन में हुई हमारी मुलाकात के बारे में सोच रहा हूँ। हम दोनों क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे। इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो हमारी आखिरी मुलाकात बन गए। आज तक ब्यूरो। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
6: I mean, they were frustrated.
4: The Daily.
7: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
7: गहरी सफाई।
6: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
7: गहरी खुशबू
6: और प्यार भरी भी।
7: कैसे?
6: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
8: इसीलिए फेना ही लेना।
9: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.

0: ना मुनीर के जनरलों की चल सके, ना पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब हो सकी। पीओके के लोगों की बगावत के आगे पाकिस्तान की हर तरकीब पूरी तरह फेल हो गई। पूरे पीओके में सबसे बड़ी बगावत की ऐसी लहर उठी है कि मानो एक बार फिर से पाकिस्तान के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुजफ्फराबाद से उठी विरोध की आंधी से पाकिस्तान की सत्ता का तख्त डोल रहा है। यही वजह है कि अब इस विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान अपनी आर्मी के सहारे साजिश का प्लान बना रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान दमन के जरिए पीओके के लोगों की बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए 8,000 अतिरिक्त रेंजर्स को तैनात किया है। ये रेंजर्स भारी हथियारों से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल जंग के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। मुजफ्फराबाद में गुस्से की आग के बीच पहले ही हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। अब तक पीओके में पुलिस फायरिंग में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल है। लेकिन इस जुल्म के बाद भी जब पीओके के लोगों के जुबान से आजादी की गूंज नहीं जा रही है, तो अब फिर से आवाम के खिलाफ हिंसा की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी योजना के तहत बड़ी संख्या में यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी रेंजर्स का डर मुजफ्फराबाद में धधकी इस आग को शांत कर पाएगा, या पाकिस्तान का ये दांव इस बार उल्टा पड़ जाएगा। जब किसी आवाम का सब्र टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्त ताज इतिहास की कूड़ेदान में बह जाते हैं। पाकिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन अपने चरम पर है। अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पीओके में लोगों के इकट्ठा होने और रैली करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके कई सदस्य हिरासत में हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए। ये सारे कदम साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन विरोध प्रदर्शन से कितना डरा हुआ है। पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की इस आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओके की सड़कों पर उतरी है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है, जिसे लेकर पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था खौफजदा है, क्योंकि पीओके की आवाम ने अब आजादी की पूरी तैयारी कर ली है। आज तक पेरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
3: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके गैंग की जद में अब एक्टर आमिर खान आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आमिर खान को धमकी दी गई है, जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: देश राजा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या। अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहा है या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करें और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड है। अलग अलग मुद्दों पर वो धमकी देता रहता है। सलमान खान से शुरू हुआ ये सिलसिला अब आमिर खान तक पहुंच गया है।
0: कभी मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, कभी कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ गोलियां, बाबा सिद्दीकी का कत्ल या फिर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी करना, शाहरुख खान को धमकी हो या फिर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार बॉलीवुड रहा है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में कैद हो लेकिन उनके गैंग की गोलियों की गूंज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही है। दायरा बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पंजाबी गायक तक लॉरेंस के निशाने पर हैं। पी प्रॉक, रोहित शेट्टी से लेकर एपी ढिल्लो, दीप्ती ग्रेवाल, बादशाह तक एक लंबी लिस्ट बन चुकी है।
10: सभी भाइयों को मैं हरी बोल, टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइब्रेट नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ के लिए।
0: धमकियां आम होती जा रही हैं और हमले बढ़ते जा रहे हैं। सलमान खान से शुरू ही इस लड़ाई की जद में धीरे धीरे फिल्मी हस्तियां आने लगी। ये मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, हमले किए गए और फिर उसकी जिम्मेदारी ली गई। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सलमान की ओर से केस दर्ज किया गया, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी।
11: 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज सुनी। सुबह के 4:55 बजे थे जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए दो लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी।
0: सलमान से दुश्मनी की वजह काला हिरण केस था, जिसे लेकर लॉरेंस ने खुलकर धमकी दी थी।
12: करेंगे तो पता लग ही जाएगा सलमान खान।
0: लेकिन वक्त के साथ दायरा बढ़ा, मुद्दे बढ़े, लॉरेंस फिरौती के इस खेल को देश धर्म से जोड़ने लगा। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों का वीडियो भी गैंग की ओर से जारी किया गया, जिसकी जिम्मेदारी गैंग ने ली।
11: श्री राम सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। आज जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के सरे स्थित कैप्स कैफे पर, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने फोन किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा। अगर अब भी जवाब नहीं मिला तो अगला एक्शन जल्द मुंबई में होगा।
0: इतना ही नहीं, गैंग की पॉलिटिकल एंट्री भी हुई। पप्पू यादव से लेकर तेज प्रताप के मामलों में लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के आरोप लगे। आज तक ब्यूरो।
9: लॉरेंस गैंग पर एफबीआई की नजर भी है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस समय चला रहे, जहां पर अलग अलग देशों में लॉरेंस के गुर्गों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
0: कुख्यात सरगना लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा नहीं, बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप और कनाडा की पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती के जेल में कैद है, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का दावा है कि लॉरेंस गैंग अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई मुल्कों में संगठित अपराध को अंजाम दे रहा है। आरोप यही है कि लॉरेंस गैंग ने ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में लॉरेंस के इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय जांच एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अमेरिका समेत तमाम मुल्कों में लॉरेंस गैंग के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरअसल ड्रग्स तस्करी से लेकर रंगदारी के कई मामलों में अमेरिकी पुलिस की फाइलों में लॉरेंस गैंग का नाम दर्ज था, लेकिन कनाडा में साल 2023 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग अमेरिकी जांच एजेंसियों की हिट लिस्ट पर गया, क्योंकि कनाडा पुलिस ने निज्जर केस से जुड़े आरोपियों के अमेरिकी कनेक्शन के सबूत एफबीआई को सौंपे थे। एफबीआई की जांच में निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम खुलकर सामने आ गया।
13: अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके आरोप लगाया है कि कनाडा में 8 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार शामिल थे। न सिर्फ इतना ही, बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की जेल में बैठकर फोन के जरिए इस हत्याकांड की साजिश रची। लॉरेंस और गोल्डी बरार ने शूटरों को फोटो भेजे थे, हरदीप निज्जर का एड्रेस भेजा था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
0: निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस गैंग के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में कई बड़े आरोप लगाए गए। चार्जशीट में कहा गया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई। लॉरेंस गैंग ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हत्या को अंजाम दिया था। आरोप के मुताबिक जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ने शूटरों को निज्जर की तस्वीरें और कई पते उपलब्ध करवाए थे। दावा ये भी है कि जेल में कैद होने के बावजूद लॉरेंस मोबाइल फोन के जरिए शूटरों के संपर्क में था। लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसियों की पड़ताल यही बताती है कि जेल में बंद रहने के बावजूद बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए कई देशों में आपराधिक गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। जेल में होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बरकरार रखे हुए है। लिहाजा हत्या, रंगदारी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में उसके नेटवर्क की भूमिका की जाँच की जा रही है।
13: अमेरिका की एजेंसी और कनाडा की एजेंसी ने बकायदा बयान जारी करके कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, उसका करीबी गोल्डी बरार और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ है। ये लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और ड्रग का बड़ा व्यापार कर रहे हैं, इसलिए इन पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही गोल्डी बरार पर अमेरिका की एजेंसी ने $50,000 का इनाम भी रख दिया है।
9: विशेष में अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: As world soccer hits the big stage, Fanatic Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
17: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
18: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
3: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
7: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है।
8: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
3: अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि शनिवार सुबह सुबह जंतर मंतर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अनशन, बीच में कैसा चेहरा जो पिछले 21 दिनों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, और कुछ ही मिनटों में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया मेडिकल इमरजेंसी, हाईकोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह।
4: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
3: हालांकि परिवार इसे सिर्फ मेडिकल फैसला नहीं मानता। सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
5: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual? So please be professional. This is a fundamental right.
6: आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है, ठीक है? पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का, वो मैं रखूंगा। तो आपसे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करें,
3: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। एक तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा, नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में चला जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।

0: विशेष के बाद अब आगे देखिए अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को कल सर्वदलीय बैठक के लिए मिला निमंत्रण। किरण रिजिजू ने भेजा आमंत्रण, स्पीकर आज ही जारी कर सकते हैं अधिसूचना। संभल के दौरे पर सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो रामनवमी यात्रा को रोकते रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद हो सकती है, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। अंतरिक्ष मिशन में भारत की आत्मनिर्भरता कदम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की उड़ान, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को दी बधाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म।

0: कितनी ही सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन एक हृदय जो कभी नष्ट नहीं हुआ,
1: श्री कृष्ण का वो हृदय जो कभी समाप्त नहीं हुआ।
0: उस हृदय के संरक्षक उसे देखने वाले क्यों कभी उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते?
2: उसके अंदर में पूरा अंधकार रहते हैं, एक दीप जलता है,
0: पर किसी से बोल नहीं सकते हैं।
2: वो तो गुप्त कथा है, उसको बोलना नहीं है।
0: समूचे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे देखने वाले केवल 4 लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो कहते हैं आज भी जीवित हैं भगवान कृष्ण।
1: पृथ्वी पर केवल 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।
2: ये कलयुग में जीवित भगवान है।

0: जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मथुरा वृंदावन गोवर्धन पर्वत से लेकर द्वारका नगरी तक, लेकिन द्वारका नगरी से आगे कहाँ? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में ब्रह्मांड का वो रहस्य है जिसके उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, वो ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का वो दिल, श्री कृष्ण का वो हृदय जो कभी समाप्त नहीं हुआ। उनकी जीवन लीला के बाद भी इस संसार में उनकी लीला समाप्त नहीं हुई और आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको वही अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें बताएंगे जो कि आज भी अद्भुत बन के हम सबके बीच जीवित है।
1: छंदांसि यस्य परनाशि यस्तं वेद स वेदवीत् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य

0: सबसे बड़ी अद्भुत धार्मिक रथ यात्रा है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है,
2: अद्भुत
1: है। यहाँ पे आके तो कुछ अलग सी भावना हो जाती है।
0: ये दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली रथ यात्रा है। श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनने दुनिया के तमाम देशों से आते हैं।
3: जगन्नाथ का डियर लॉर्ड जगन्नाथ, प्लीज
4: हम भगवान जगन्नाथ से ये मांगते हैं कि वो हमारी प्रार्थना पूरी करें और हमें सेवा करने का मौका दें। मुझे पहली बार ये मौका मिला है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का।
0: अद्भुत हैं भगवान के रथ जो कई मंजिला ऊंचे होते हैं, लेकिन कभी इनके निर्माण में लोहे की एक कील तक नहीं लगी। सब कुछ हाथ से बनता है।
5: हाँ, सब कुछ हाथ से बनता है। मशीन से कुछ नहीं है कि जो मशीन टेबल कुछ नहीं, एक हाथ का लकड़ी है, उसी हाथ के अंगूठी के ये सब नाप लेके ही रथ बनता है।
0: अच्छा, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है?
5: हमेशा ही ऐसे ही, हम जैसे हम तो जब से जन्म हुए तब से देख रहे हैं, हमारे पापा जी जब से जन्म हुए, हम जैसे ही सब हाथ से होता है। कुछ मशीन कुछ भी टेप वेप कुछ सब यूज नहीं होता, सब हाथ पे ही होता।
0: अविश्वसनीय है वो श्रद्धा जिसमें रथ के यात्रा पथ को पुरी के राजा सोने की झाड़ू से स्वयं साफ करने आते हैं। अकल्पनीय है वो विश्वास जो भक्तों को ये भरोसा दिलाता है कि भगवान खुद मंदिर छोड़कर उनसे मिलने चले आए हैं।
6: ये हमारा जो भगवान है वो ओरिजिनल पूरा मूला भगवान आते हैं रथ का ऊपर में। वो भगवान भक्त के लिए ये जगत की दर्शन के लिए जगन्नाथ है। उसकी नाम जो है जगन्नाथ, वो जगत का नाथ है।
0: मान्यता है कि जिसने रथ की रस्सी खींची उसका जीवन धन्य हुआ।
6: जिसी का ऊपर में कृपा हो तो जाकर उसको रथ को छुपाते हैं, उसको रस्सी को खींचते हैं, जो खींचते हैं जो उसका मन में जो भावना है वो जरूर पूरा होता है।
0: कहते हैं कि जिसकी दृष्टि भी रथ पर पड़ गई उसका बेड़ा पार हुआ।
7: महाप्रभु के रथ में दर्शन मात्र से ही भक्तों को मुक्ति मिल जाता है। तो आज सभी भक्त आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से काफी बारिश हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना भीड़ है, लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। जस्ट भगवान का एक दर्शन के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं।
0: और सबसे अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय भक्ति भाव ये है कि लोगों को ये महसूस होता है कि भगवान जागृत है, जीवित है और उनका हृदय युगों युगों से आज भी धड़क रहा है। क्या ये केवल मान्यता है, क्या ये केवल एहसास है, या फिर इसमें कोई अनसुना अबूझा रहस्य है? मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अंदर जो हृदय धड़क रहा है वो भगवान कृष्ण का हृदय है। पर ये कैसे संभव है? क्या है भगवान जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण की

0: बंद
1: बंद हो जाता है,
0: कुछ दिखाई देता है कुछ कोई
1: बाहर आदमी को कोई नहीं देखेगा, वो सेवक जो है वो अंदर सब काम करेगा ना।
0: हाँ,
1: अब बाहर लोग कोई नहीं देखेगा,
0: सब कुछ बंद रहता है,
1: सब कुछ बंद रहता है,
0: कोई ऐसा नहीं होता है कि उत्सुकता में कोई आता है,
1: ऐसा नहीं होता,
0: सब चुपचाप,
1: सब साइलेंस।
2: सनातन मान्यताओं में भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना गया है, क्योंकि उनकी कथा सतयुग से शुरू होती है, त्रेता युग की यात्रा करती है, द्वापर में पूर्ण लीलाओं में बदलती है और कलयुग में भी जारी मानी गई है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ही भगवान कृष्ण हैं, जो कलयुग में आज भी जीवित रूप में साक्षात उपस्थित हैं।
3: ये कलयुग में जीवित भगवान है, आदमी जैसे बात करते हैं, आदमी जैसे खाते हैं, आदमी जैसे लोक की कथा सुनते हैं, वो भगवान भी ऐसे हैं।

0: पूरे साल में केवल 15 दिन, केवल 15 दिन जब भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान नहीं होते हैं, उनको बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है क्योंकि स्नान एकादशी के बाद मौसम बदल रहा है और उनका तापमान बढ़ जाता है। बुखार होने के कारण यहाँ पर मंदिर में निवास नहीं करते हैं, यहाँ से दूर। अब आप भगवान अलारनाथ को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी प्रतिमा देख रहे हैं और उनके रूप में आप भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यानी भगवान जगन्नाथ की जो यह मानव लीला है उसका पल पल अद्भुत है।
1: जगन्नाथ भगवान रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भक्तों के लिए ये भावना और भावुकता दोनों का संगम है।
2: कोई को दर्शन करने का बिल्कुल लाभ मिलता है और इस बार बहुत अच्छे से हम सबका दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सवेरे 4 बजे से निकले थे भुवनेश्वर से और यहाँ आके बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। पूरे परिवार के साथ हम लोग आए थे और बहुत खुशी लग रहा है।
3: तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।

0: यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ ने स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशों के जल से स्नान किया था। मानव लीला का ये सुंदर रूप देखिए कि बदलते मौसम में इस स्नान के कारण वो बीमार पड़ गए और 15 दिनों के लिए भक्तों को उनके दर्शन प्रतिबंधित हो गए। अब ठीक हुए हैं तो रत्न जड़ित सिंहासन छोड़कर खुद भक्तों से मिलने आए हैं।
1: स्कंद पुराण में है भगवान जी का आविर्भाव देवस्नान पूर्णिमा, उसकी जन्म तिथि उसको बोलते हैं जन्म उत्सव, उसी दिन हुए थे स्नान पूर्णिमा में। स्नान पूर्णिमा में जन्म होकर वो जब नहा लिए है ज्यादा, जैसे आदमी ज्यादा नहाने के बाद उसको बुखार होता है, भगवान जगन्नाथ जी को भी बुखार है।
0: संयोग कहिए या कुछ और, जब कोविड-19 महामारी चल रही थी तब संक्रमित होने पर क्वारंटाइन पीरियड भी 14 दिन का होता था और तब हर किसी से मिलना जुलना या छूना मना होता था। अभी लौटते हैं भगवान जगन्नाथ की भूमि पर उनकी अद्भुत यात्रा में। भक्तों के मन में एक ही आस है, रथ को छू लें, रस्सी से रथ दो कदम खींच लें या बस दूर से भगवान को पल भर निहार लें तो जीवन का उद्धार हो जाए।
2: तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
3: I come from England originally and never see
4: anything. मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ये एक अद्भुत दृश्य है, मैंने ऐसी निष्ठा जगन्नाथ जी को लेकर कभी नहीं देखी।
0: जो परंपरा शुरुआत से रही यानी कि 220 कारीगर ही मिलकर इस पूरे रथ को तैयार करेंगे वो आज भी परंपरा जारी है, यानी कि आज आपके पास और भी विकल्प हैं, मशीनें आ गई हैं, बहुत तरह की चीजें आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परंपरा पूरी होनी चाहिए।

0: भगवान की रथ यात्रा कोई एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा है। रथ निर्माण से लेकर भगवान की हर सेवा का एक ऐसा अलिखित विधान है जिसका उल्लंघन कोई भूल से भी नहीं करता।
1: हमें यहाँ 300-200 से ज्यादा 300 के आसपास लोग काम करते हैं, जैसे कि महा विश्वकर्मा सेवक और भोई सेवक, फिर जो रूपकार है जो रथ को रथ में सब खुदाई करते निकालते हैं, फिर चित्रकार है जो रथ को कलर करते हैं, फिर जो दर्जी है जो रथ के ऊपर कपड़ा बनता है वो डालते हैं। ऐसे मिलकर सब 5-6 सेवक मिलकर ही रथ को तैयार करते हैं, फिर भगवान जी को हम क्या करते हैं।

0: अब अगर बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा साथ हैं, तो भगवान कृष्ण कहाँ हैं? और अगर जगन्नाथ ही कृष्ण हैं, तो वो यहाँ इस रूप में क्यों हैं? क्यों यहाँ भगवान न तो लड्डू गोपाल हैं, न राधा के कृष्ण हैं, न कुरुक्षेत्र के पार्थ सारथी हैं, और न ही द्वारकाधीश के रूप में हैं? क्यों यहाँ भगवान का रूप बिल्कुल अलग है, और क्यों पुरी में आकर उन्हें जगन्नाथ कहा जाने लगा? जगन्नाथ पुरी में एक ऐसी धार्मिक प्रथा सदियों से निभाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का धड़कता हृदय पुरानी प्रतिमाओं से निकालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है।
1: जो लकड़ी में महाप्रभु बनता है, वो लकड़ी नष्ट हो गया बाद में, और दूसरा लकड़ी में चल गया, ब्रह्म परिवर्तन।
2: नवकल में 45 days, 45 दिन को उनको बनाने, उसको शरीर त्याग करने, वो फिर नया भगवान को लाकर बिठाकर उसको भी बनाने, इतना टाइम लगता है। चारों आदमी जाते हैं उसके अंदर में, उसके अंदर में पूरा अंधकार रहते हैं, एक दीप जलता है, उसी में जो ब्रह्म की जो पट निकलते हैं, उसके बाद में जो अलौकिक लाइटिंग होता है, उसी में सब दिखाई जाता है।
0: दुनिया में केवल 4 लोग हैं जो आस्था की इस अविश्वसनीय प्रक्रिया के साक्षी हैं, जो सदियों से जीवित ईश्वरीय हृदय को प्रतिमा में स्थानांतरित करते हैं। उन 4 में से इन 2 व्यक्तियों की बात आपने सुनी, हम आगे आपको इनकी पूरी बात सुनाएंगे। पहले प्रश्न ये कि हृदय कहाँ से आया। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण का हृदय उनके देहोत्सर्ग के बाद भी धड़कता रहा था। यहीं से हमें हमारी कहानी को जोड़ने का एक सिरा मिला, जो पुरी से दूर समुद्र में ब्रह्माद्री पर्वत की ओर ले गया। ये उड़ीसा की महानदी है, हम महानदी तक आए हैं। ये 100 किलोमीटर की दूरी इसकी जगन्नाथपुरी मंदिर से है, लेकिन द्वारका से इसकी दूरी करीब करीब 2,500 किलोमीटर जमीनी हो जाती है। द्वारका से इसकी दूरी हम क्यों दिखा रहे हैं, वही इस कहानी का सबसे अद्भुत सिरा है। चलिए हमारे साथ, हम यहाँ पर नाव में सवार होकर आपको आगे लिए चलते हैं कहीं। तो ये पूरा एरिया जब आप देखेंगे तो ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वैसे तो उड़ीसा जो राज्य है वो समुद्र से लगा हुआ एक राज्य है, लेकिन ये एक नदी है और साथ में है एक पहाड़ी रेंज। और इसी के साथ जब हम गुजरात के द्वारका से जुड़ती हुई कहानी यहाँ से सुनाते हैं, तो उसके कई सिरे जो हैं वो अविश्वसनीय लगते हुए भी बहुत अद्भुत लगते हैं। हमें बताया गया कि ब्रह्माद्री पर्वत की चोटी पर नील माधव की पूजा होती है। जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उस मान्यता का भगवान कृष्ण के धड़कते हृदय और भगवान जगन्नाथ के हृदय स्थानांतरण से क्या संबंध था? हम इसी सत्य की खोज में निकले। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान वहां से 1.5 किलोमीटर करीब आगे जाकर हमें वो स्थान मिला जहां पर एक ऐसी कहानी लिखी हुई थी, और जहां के लोग हमें ये बता रहे थे, जिसके बाद हमने तय किया कि हम वहां से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर ये यात्रा करें उड़ीसा में। यहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी पूरे धूमधाम के साथ निकलती है, बड़ा उत्सव मनता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन दूर दूर से लोग आते हैं। लोग आज भी मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ जो है वो साक्षात भगवान जगन्नाथ में यहाँ है, वो जीवित है, जीवंत है। लेकिन वहाँ कृष्ण जी अपनी नगरी गुजरात के द्वारका, जो आगे सोमनाथ से जो कहानी जुड़ती है, वहाँ से यहाँ तक का इस छोर का, इस महानदी का किस्सा जुड़ता है। आज हम यहाँ पर इस नाव में सवार होकर आगे की ओर जा रहे हैं तो आपको वही अद्भुत अविश्वसनीय और कल्पनीय कहानी सुनाने के लिए। ये नदी का क्या नाम हुआ?
3: महानदी।
0: और ये जो पहाड़ी दिख रही है?
3: वो जो पहाड़ी है ब्रह्मंदी पहाड़ है।
0: अच्छा, तो इसी नदी से कहते हैं कि?
3: हाँ, यहाँ पर जो पहाड़ है ना, हाँ? वहाँ पर सबराज विश्वावस्तु रहते थे।
0: हाँ?
3: वहाँ से वो नदी में, हाँ? नाव में यहाँ पर आए और उधर ऊपर जाके, हाँ? भगवान को पूछते थे।
0: अच्छा, तो भगवान कहाँ से आए थे यहाँ पर?
3: हाँ, भगवान द्वारिका से आए थे।
0: द्वारिका से, इसी नदी से होते हुए?
3: हाँ, इसी नदी से।
0: तो उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ था?
3: नहीं हुआ।
0: इसी नदी से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा था?
3: हाँ।
0: तो कितने पहले की बात होगी है?
3: वो तो
0: हजारों साल पहले,
3: उससे भी ज्यादा होगा।
0: हाँ।
3: हमको का नाम, बच्चे लोग का नाम को मालूम नहीं।
0: किसी और युग की बात है ये। मैं खुद कुछ समय पहले समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर उस द्वारका के अद्भुत दृश्यों की साक्षी बनी थी जो समुद्र में डूब गई थी। मुझे वो स्थान भी मिला जहां कहा गया कि भगवान कृष्ण देह त्याग कर स्वर्गारोहण कर गए थे। ये भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की भूमि है, जहाँ पर आप श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर देख रहे हैं वही जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम वो गए थे। यहीं पर उनका शरीर कहा जाता है, चूँकि नदी के साथ होते हुए ये त्रिवेणी संगम में और फिर सागर में समाहित हो जाता है ये जल। तो मान्यता है कि यहाँ से जब उनका शरीर प्रवाहित किया गया तो उनका दिल जो था वो जाकर उस सागर के रास्ते से होते हुए जगन्नाथ पुरी तक पहुंचा। हमें अब उससे आगे की कहानी जाननी थी, जिसके लिए हम महानदी पार करके ब्रह्माद्री पर्वत तक आए। यहाँ से सीढ़ियां और आगे तीन नदियों का संगम है। यहाँ पर तीन नदियों का यहाँ पर संगम है और यहाँ पर आगे ये सीढ़ियों का रास्ता है। इन सीढ़ियों से ऊपर होकर हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे।
4: हमें ये जानना था कि क्या नील माधव का मंदिर ही हमारी वो मिसिंग कड़ी है जो भगवान कृष्ण के जगन्नाथ रूप में जीवित हृदय के साथ स्थापित होने के सवालों की खोज पूरी करती है।

0: तो नाव ने जिस तट पर हमें उतारा है उसी तट से आकर लगे थे। और यहाँ पर जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों से, तो इसी ब्रह्मागिरी पर्वत पर आज भी पूजा होती है, लेकिन एक समय पर उसकी मान्यता ही अलग थी। पुजारी जी से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या यही इसी नदी के तट पर आकर भगवान कृष्ण का जीवित हृदय लगा था।
1: नीलमाधव को फर्स्ट ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे यहाँ पर 1000 वर्ष। ब्रह्मा जी के बाद में पृथ्वीराजा पूजा कर थे, पृथ्वीराजा के बाद में नारद मुनि पूजा कर, नारद मुनि के बाद में हमार जो विश्वावसु सबर यहाँ पर पूजा करते हैं। विश्वावसु का बाद हम लोग कलि युग में ब्राह्मण का रूप में यहाँ पर पूजा करते हैं। त्रेता युग में क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण लास्ट समय का जो अपना वंश को निजे ध्वंस करने के बाद सियाली का लता में यही सो जाता है। उनको जो जारा सबर कथा बोलेगा, जारा सबर आसेगा उनको मार दिया तीर में, तीर में जल मार देगा तो उनका प्राण चल जाएगा, श्री कृष्ण जी का मानव शरीर रूप श्री कृष्ण चल जाएगा। तो उनका जो पंचु पांडव होता है, पंचु पांडव उनके आसे की अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार में जो बोलाता है जोटा ब्रह्म पॉइंट नहीं संस्कार होता है, तो उनके लिए उनके प्रशांत महासागर उनके फिंगर देता है यहाँ पर। तो इनकी कुछ नहीं, से सब सबाई लोकाचार मत में बोला जाए से जो ब्रह्म पॉइंट तो अभी भी जगन्नाथ के प्राण केंद्र में स्थापित होता है वर्तमान यही पर आता आकर।
0: हमें पुजारी जी से जो पता चला वो इस प्रकार था। नीलमाधव सतयुग से भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन उनकी पूजा आदिवासी विश्ववसु किया करते थे। वहां आदिवासियों के अलावा किसी और की उपस्थिति निषेध थी। वर्तमान मध्य प्रदेश के प्राचीन महाजनपद अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने अपने विश्वस्त विद्यापति को पता लगाने के लिए भेजा। विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्वसु की बेटी से विवाह कर लिया और फिर आग्रह किया कि उन्हें नीलमाधव के दर्शन करवाए जाएं। पहले विश्वसु ने मना किया, लेकिन बेटी के कहने पर वो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए जिनमें बाद में फूल निकल आए। विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई तो राजा रास्ता देखते हुए मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां से नीलमाधव अंतर ध्यान हो चुके थे।
2: ये विष्णु, ये स्वयं विष्णु नीलमाधव नारायण भगवान, अब जहां भी भगवान जी का दर्शन करेंगे भारतवर्ष में सभी तो भगवान जी नारायण है, लेकिन इधर कोई अलग है जो भगवान जी का रूप को तो अलग है। क्यों ना इधर दोनों ऊपर भुज में शंकर चक्र और नीचे दोनों भुज में गदा पद्म नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता और सरस्वती माता श्रीदेवी भूदेवी उन्हें दोनों चरण में है, और इसलिए भगवान जी का बांव चरण में गंगा, जैसा हमारे शरीर से पसीना निकलता है बिंदु बिंदु आकर से, भगवान जी का बांव चरण का छोटा अंगुली होता है ना कानी अंगुली, उनका बिंदु बिंदु आकर से गंगा आता है, ये गुप्ता गंगा होता है।
1: जो पनस का शरीर हम उड़ीसा में जो पनस होता है जैकफ्रूट,
3: अच्छा।
1: जैकफ्रूट का शरीर जो जैसे काटा काटा अच्छा है, कटहल कटहल कटहल का शरीर काटा काटा है, भगवान का टोटल शरीर यहाँ पर काटा काटा है।
0: इससे आगे की कहानी स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य खंड में बताया गया है कि भगवान नीलमाधव के दर्शन न हो पाने के कारण राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए, लेकिन तभी उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी कि अब नीलमाधव के दर्शन उन्हें पुरी के तट पर लकड़ी के लट्ठे के अंदर होंगे।
2: भगवान जी कलयुग में दारू का रूप ले लिया पुरी में, तो इधर चार युग का ठाकुर है, सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग कलयुग, ये पहला युग है जो भगवान जी नीलमाधव सत्ययुग का है। नील यानी जगन्नाथ, महा यानी सुभद्रा, धव यानी बलदेव, भगवान जी बोले थे मैं कलयुग में दारू के रूप में दर्शन दूंगा, हाँ। सही भक्त लोग भी दर्शन दूंगा, हाँ। इसलिए भगवान जी जगन्नाथ बलदेव, हाँ। सुभद्रा ये तीनों पुरी में लीला कर रहे,
3: हाँ।
2: लेकिन ये होता है मुख्य, हाँ। नील माधव ब्रह्मा
3: जी।
2: पहला दर्शन जगन्नाथ जी को, उसके बाद नीलमाधव। जब तक नीलमाधव जी का दर्शन नहीं होगा तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन पुण्य नहीं होगा।
0: तारू का मतलब लकड़ी का लट्ठा ही होता है, जो एक दिन राजा को समुद्र में तैरते हुए दिखा। उस पर शंख कमल गदा के चिन्ह बने हुए थे। मान्यता है कि यही वो लकड़ी थी जिस पर भगवान कृष्ण का हृदय रखा था। राजा ने तय किया कि वो इसी लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनवाएंगे। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा कारीगर के रूप में वहां खुद आए और 21 दिन का समय मांगा मूर्तियां बनाने के लिए, लेकिन शर्त रखी बीच में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा की पत्नी ने 15 दिन बाद ही कौतूहलवश दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा रूप में भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। हृदय सहित तब तक कृष्ण बलराम सुभद्रा की अधूरी प्रतिमाएं बन चुकी थीं। राजा इंद्र द्युम्न भगवान विष्णु के उपासक थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के नाम पर ही जगन्नाथ यानी सारे जगत के नाथ के रूप में प्रतिमाएं उसी स्थिति में स्थापित करवा दी। ये प्रतिमाएं लकड़ी की थी। इन्हें दारू ब्रह्म यानी लकड़ी से निर्मित भगवान भी कहा जाता है। पवित्र तिथि में भगवान का नवकलेवर उत्सव होता है। नव कलेवर का अर्थ होता है नव यानी नया, कलेवर यानी शरीर, यानी भगवान के नया शरीर धारण करने का उत्सव।
3: ये जो नवकलेवर की जो रीति है वो रामनवमी का बाद जो दशमी आता है चैत्र दशमी तिथि से वो शुरू होता है। वो 4 महीना चलता है। 2 महीना जो लकड़ी जंगल से लाने के लिए जाते हैं, 2 महीना रथ यात्रा होता है। 2 महीना क्या होता है, 15 दिन पुराना भगवान को स्नान मंडप में स्नान कराते हैं, वो बुखार में पड़ते हैं, फिर 15 दिन बनाने के लिए नया भगवान को लाते हैं।
0: भगवान की प्रतिमाएं जब नई प्रतिमाओं में बदली जाती हैं, तब कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो जीवित हृदय था वो इसी समय नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रह्म परिवर्तन या ब्रह्म स्थापन कहते हैं।
4: ब्रह्म परिवर्तन क्या जी, भगवान है ईश्वर, सारा विश्व का मालिक, सूर्य का प्रतीक रूप। सूर्य होते हैं सारा विश्व का शक्ति का आधार। ब्रह्म परिवर्तन क्या होता है ये तो बोलना शक्ति नहीं है। हाँ,
3: जो दैतापति वंश में जो जन्म हुए हैं, हमारा सबसे एंड का काम है, लास्ट का काम है भगवान जगन्नाथ जी का ब्रह्म का परिवर्तन करने के लिए। उसको चेंज करेंगे, उसको नहाएंगे, उसको बाद में उसको फिर नूतन भगवान की शरीर में उसको स्थापन करने के लिए।
0: ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को न कोई देख सकता है और न ही किसी को आजीवन बता सकता है।
5: राम अवतार में जब बाली को मार रहे थे, सिवड़ी लट्टा जो है वो एक पेड़ था, पेड़ के पीछे रहकर भगवान बाली को तीर मारा छुपके। हाँ, उसी टाइम भगवान बाली को कहा, मैंने आपको छुपके जब सर मारा, इसके बाद आप भी मुझे मारेंगे जरूर। जब भगवान का कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण जन्म के अवतार में बाली ने भगवान को सर मारा, उस टाइम भगवान ने कृष्ण ने उनको याद दिला दिए जो बाली का जो अवतार था, जो राम अवतार था, उसी टाइम का याद दिला दिए।
0: ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को प्रमुख सेवकों जिन्हें दैतापति कहा जाता है उनके हाथों से संपन्न कराया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ही ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। दैतापति दरअसल आदिवासी राजा विश्वावसु के वंशज कहे जाते हैं और भगवान को छूने का अधिकार हजारों वर्षों से उन्हें ही प्राप्त है। प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया।
6: आप कितने आयु के थे, कितने वर्ष के थे आपके सामने? अच्छा, आपको 4 बार अवसर मिला है। अच्छा, पर किसी से बोल नहीं सकते हैं?
7: नहीं, बोलेगा नहीं।
4: क्या होता है किसको बोलेगा नहीं,
6: अपने अंदर हमेशा रखना है इस बात को,
4: हमेशा रखना है किसको बोलेगा नहीं।
6: तो उस समय आप लोग देखते हैं, आप लोग
4: देखते हैं,
6: आप लोग देखते हैं, पर क्या होता है किसी से नहीं आप वर्णन कर सकते हैं। आप कहाँ से
4: बोलेगा?
6: हाँ,
4: बहुत हमारा खेती हो जाएगा।
6: अच्छा,
4: इसलिए बोलेगा नहीं,
3: वो तो गुप्त कथा है, उसको बोलना नहीं है।
0: भगवान की पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर के अंदर ही एक हिस्से में समाधि दे दी जाती है, जिसकी प्रक्रिया भी ये दैतापति सेवक ही पूरी करते हैं।
3: हमारा जो है मत्स्य मंडल में देह वही, माने जो मत्स्य मंडल में जन्म होता है वो देवता होले भी मरता है, जैसे आदमी मरते हैं भगवान भी शरीर त्याग करते हैं। जब जोड़ा आषाढ़ का महीना पड़ेगा तो वो 19 साल में हो सकते हैं, 12 साल में हो सकते हैं, 7 साल में, जब पड़ेंगे जोड़ा आषाढ़ महीना तो भगवान की शरीर की त्याग की समय हो जाएगा। हम लोग जगन्नाथ जी का परिवार है, जैसे आपके घर में कोई मर जाएंगे तो मंडन वगैरह आप जैसे करते हैं, हम भी जाते हैं, नरेंद्र हमारा मारकुंड पुष्करिणी है, हम वहाँ जाते हैं, जल उसको देते हैं, फिर आते हैं, फिर 10 दिन के बाद में फिर मंडन वगैरह काज हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के भी करते हैं नवकलवल में।
0: भगवान जगन्नाथ को भक्त जागृत अवस्था में मानते हैं और उन्हीं के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम आकर चार युगों की कथा पूरी होती है। सतयुग से नील माधव की मान्यता का सिरा, त्रेता में भगवान राम ने बाली का छुप कर संहार किया था, द्वापर में जब बहेलिया ने भगवान कृष्ण पर छुप कर तीर चलाया तो बहेलिया ने क्षमा मांगी, तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने उसे त्रेता युग के कर्म फल की याद दिलाई।
5: ब्रह्म को कोई दिखना नहीं चाहिए, ब्रह्म ऐसे स्वरूप है जो कि वो पूरा ब्रह्मांड का विश्व है, इसलिए उनको अंधेरे में कोई आएगा लाकर भगवान के अगली एक स्वरूप में रखेगा, और जो पुराना स्वरूप है जगन्नाथ जी का उनको पाताली किया जाएगा भगवान जो मंदिर के अंदर, हाँ, इसीलिए वहाँ पर पूरा चारों तरफ अंधेरा रहता है, पूरा मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ सेवक और भगवान का सेवा चलेगा।
0: कलयुग में भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ रूप में विराजमान माने जाते हैं। सनातन धर्म के चार प्रमुख तीर्थ हैं, उनमें बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारका के साथ जगन्नाथ पुरी शामिल है। युगों और सदियों के अंतराल में निश्चित है कुछ कड़ियां खो जाएं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सारी कहानी एक प्रेम में सुना देती। नील माधव मंदिर में हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें स्पष्ट हो रही थी भगवान कृष्ण से लेकर जगन्नाथ तक की यात्रा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, भगवान कृष्ण के हृदय स्थान से एक प्रकाश निकल रहा है और नीचे भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाएं दर्शाई गई। मान्यताएं भी यही कहती हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थित है, यानी द्वारका से जगन्नाथ मंदिर के बीच का केंद्र नील माधव मंदिर को कहा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण एक समय अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूरी भ्रमण पर आए थे और जनता ने उनका स्वागत किया था। कहते हैं रथ यात्रा के माध्यम से वो युगों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, लोगों का विश्वास तो यही है। इस विश्व में असंख्य रंग और हर रंग भगवान के, इसीलिए तो हमारे आज के अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में आपको इतने रंग दिखे जिन्हें समेट कर हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, अजय कुमार नाथ और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: और अब लोकसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूपीटी के 6 मांगे सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है, मंजूरी दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले ये 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने अब मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घट गई है, सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़ गई है और ये बढ़कर 13 पहुंच गए हैं, +6 आप देख लीजिए, 13 शिवसेना के साथ और अब उद्धव गुट के साथ सिर्फ 3 ही बचे। इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में भी बढ़ोतरी हुई, जबकि गठबंधन इंडिया को नुकसान पहुंचा है।
8: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
7: तो लोकसभा में किसकी ताकत बढ़ी है किसकी घटी है, ये जरा समीकरण जो है वो अब आप देख लीजिए। एनडीए के साथ आपको 318 यानी कि +26 जो दिख रहे हैं उसमें तो टीएमसी वाले भी हैं जिन्होंने एनसीपीआई का दामन थामा है और एनडीए को सहयोग देने की बात कही है। अभी उनको मान्यता वाला मामला जो है चल ही रहा है, उस पर भी फैसला आना है, लेकिन जो 6 हैं उद्धव गुट वाले जो शिवसेना के साथ जुड़े उनको मान्यता मिल गई है, तो इस 26 का जो समर्थन है वो एनडीए गुट को मिल गया, जबकि इंडिया गठबंधन के साथ 26 को आप माइनस कर दीजिए तो इसको झटके के रूप में गठबंधन इंडिया के लिए देखा जाएगा। अब बात करते हैं यूपी के, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए उन्होंने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
9: कौन आया?
10: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
11: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
10: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
11: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
10: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया, साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
7: अब अंतरिक्ष में भारत के दम की, जहां पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिसने ये कारनामा किया है।
12: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है।
9: ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
12: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
13: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स द डिले दैट टुक आवर हार्ट्स।
9: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काईरूट के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
14: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
9: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
15: इट्स ए ग्रेट मूवमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
16: तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
9: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
17: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
20: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
21: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई,
1: हाँ, पावर वॉश का कमाल,
2: गहरी खुशबू
1: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
1: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
3: इसीलिए फेना ही लेना।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई,
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल,
2: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
3: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
9: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे,
10: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
8: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता का बहुत अभिनंदन आज हमारे साथ बैंस बाजीगर के शो में शामिल होने के लिए। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर तक टूटा। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े, कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइंस लगी, खुदरा थोक महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों को एक साल तक सोना न खरीदने जैसे बचत का सात मंत्र भी देना पड़ा। लेकिन अब जबकि युद्ध में एक युद्ध विराम की स्थिति आई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, वो फिर से अब हमले के दम भर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो भी हो स्थिति कम से कम ऐसी सुधरी कि लगातार जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम आया। और बीजेपी का ये कहना है कि भारत 2 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमलों से बनी परिस्थितियों में खुद को संभालने में कामयाब रहा। और ये बात सच है कि भारत सबसे तेज बढ़ती जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अभी भी बना हुआ है। भारत ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अपने आयातक देश जो है जिनसे वो इंपोर्ट करता था वो देश हमने बढ़ाए, यानी कच्चे तेल और गैस का जो सोर्स है जो हम अलग अलग देशों से ले रहे थे, युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा था, तो हमने अपना बेस बढ़ाया। कच्चे तेल में हम जिन जिन देशों से ले रहे थे उसमें हमने फेरबदल की, कुछ और नए देशों से लिया, ऐसा ही हमने गैस के साथ किया। और ईरान से लेकर इसराइल और अमेरिका तक और अन्य खाड़ी देशों के साथ साथ रशिया के साथ भी जो हमारी कूटनीतिक संतुलन है उसको हम बनाने में कामयाब रहे। पश्चिम एशिया में शांति पूरी तरह नहीं लौटी है जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन भारत के लिए आगे भी चुनौतियां हो सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध के असर से खुद को बचाने में कामयाब है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, क्योंकि हमने सोचा ऐसा विषय उठाया जाए जो सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी कमाई, आपकी जो रोजमर्रा की चीजें उससे जुड़ी हुई है। इसीलिए बहस बाजीगर में इस बार का मुद्दा है ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, और ये नीले गमछे वाला हिस्सा मानता है कि नहीं बचा पाया, यही मानते हैं आप लोग, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए क्योंकि आपको डिफेंड करना है अपनी टीम को। सफेद गमछे वाले हैं जो ये मानते हैं कि क्या मानते हैं क्या मानते हैं कि विश्व में शांति है, न्यूट्रल है, मतलब बचा भी पाया नहीं भी बचा पाया, दोनों ये मानकर चलते हैं। आपके पास मौका रहेगा आगे गमछा बदलने का। और ये वो लाल गमछे वाला हिस्सा है जो मानता है कि हम बचाने में कामयाब रहे। ताली अपने लिए बजा लीजिए। आप सभी को बता दें कि आपके पास ये मौका रहेगा, जैसे जैसे यहाँ के 6 बहस बाजीगर आकर बैठेंगे, अगर आपको लगता है कि भाई आप कन्विंस हो रहे हैं उनकी बातों से तो आप अपने गमछे का रंग बदल भी सकते हैं, नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के लिए दोनों तरफ का रास्ता खुला है, लाल और नीले का, और लाल गमछे वाले सफेद या नीला लेकर अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। और लास्ट में हम वोटिंग कराएंगे इस मोशन पर, लेकिन अब सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
1: आज की इस बहस का आधार बना है ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में बिगड़ते हालात, और ऐसे हालात में भी संभलता भारत। वैश्विक महायुद्ध की आग जब पश्चिम एशिया में भड़की तो उसकी तपिश भारत के आम आदमी की रसोई तक आ पहुंची। डॉलर के सामने देश की करेंसी औंधे मुंह गिरी तो पेट्रोल डीजल के मीटर ने आम आदमी की जेब खाली कर दी। हालात ये हो गए कि कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया। संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने जैसी बड़ी अपील की। सत्ता पक्ष का दावा है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो जो तबाही बची उसमें भी भारत खुद को संभालने में कामयाब रहा।
2: के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता।
1: अभी पूरी तरह शांति नहीं हुई है, खतरा टला नहीं है, इसीलिए आज बहस बाजीगर में सीधा सवाल, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया?
0: आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। अशोक सज्जन हारजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं और कूटनीति में सबसे बड़े नाम के तौर पर आज चर्चा में देश में शामिल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिस्ट हैं और तीन ताल के ताऊ, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ताऊ का तड़का जब शो में लगता है तो गंभीर से गंभीर विषय पर ऐसी चोटीली बात वो कह देते हैं अपने सरकाज्म के जरिए जिसकी खूब चर्चा होती है। तो अब तीनों जजेस अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। ईरान युद्ध में क्या भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर बहस करने के लिए आइए बुलाते हैं अपने पहले दो वक्ता। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी टीम को लीड करने के लिए आप अपनी जगह ले लीजिए। सर अभी तो पहले स्वागत होगा, बाकी चार कहेंगे कि स्वागत नहीं करोगे मैं हमारा। यह देखिए अपने अपने दो जगह लेके टीम के लिए वो बैठ गए हैं। अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। के साथ स्वागत कीजिए आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सत्य प्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और जेडीयू के समर्थक हैं। तालियों के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और अगले आखिरी दो वक्ताओं को आप बुलाते हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ जुड़ रही है प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिस्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती हैं। और इसी के साथ साथ आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो छह आज के जो बहसबाजीगर हैं वो बैठ गए हैं, इनमें से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हम अभी से इनको बहसबाजीगर कह रहे हैं क्योंकि विषय बड़ा दिलचस्प है। सीधा आपसे हमसे हमारी जेब से सरोकार रखता है, देश की अर्थव्यवस्था से सरोकार रखता है। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर क्या इस डिबेट के शुरू होने के पहले अशोक सज्जन हार जी कुछ ऐसा संदेश और संकेत है जो आप इन लोगों को देना चाहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं वो फोकस करें?
3: बहुत धन्यवाद। देखिए युद्ध तो शुरुआत हुई 28 फरवरी को और कहा गया 8 अप्रैल को सीज फायर हो गया, 17 जून को दस्तखत हो गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आज फिर से लड़ाई शुरू हो गई है।
0: इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रंप की गारंटी नहीं है वो कब पलटेंगे कब बदलेंगे
3: जी, तो इसको भी मेरे ख्याल से फैक्टर इन किया जाना होगा जो आगे चलते हुए भी क्या वही से फिर से दोहराया जाएगा, और अगर दोहराया जाता है तो उसमें हमारा
0: तैयारी क्या है
3: वो हमें देखना होगा। ट्रंप
4: जब साइन करते हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
5: देखिए हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर एनालिस्ट बैठे हैं,
0: हाँ।
5: वैसे बड़ा मुश्किल हमारा
0: टॉपिक है
5: ये विषय है,
0: हाँ।
5: लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके
0: यदि
5: हम राष्ट्रीयता के आधार पर फैक्ट्स पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा।
0: चलिए ठीक है, इसी के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय का, क्योंकि दोनों को ही शुरुआती डेढ़ डेढ़ मिनट का समय मिलेगा। विषय पर रहिएगा, हर बार की तरह शाम की तरह शाम की डिबेट की तरह उलझने की जरूरत नहीं है, दलीलों में दम होगा तो आपको जनता और जजेस का भी समर्थन मिलेगा। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर बोलने के लिए गौरव भाटिया जी आपको मिल रहे हैं डेढ़ मिनट का ये समय और आपका समय शुरू होता है अब।
6: सभी को नमस्कार, और मैं जजेस की टिप्पणी भी सुन रहा था, यहाँ दर्शक भी हैं, और बड़ी गंभीरता से सबसे पहले ये कहूंगा एक संकट और चुनौती की स्थिति थी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भारत ने मजबूती से डटकर उस चुनौती का सामना किया है। मैं कहता हूं इसमें तीन बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले सरकार, तो सरकार पे जब आती है तो ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि 130 दिन हो गए इस संकट के, लेकिन चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी कमी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि अगर संकट भी आएगा तो भारत का जो रूप है वो इतना विशाल है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, नागरिक। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी आए और जब एक संकट है तो परिवार का जो पिता तुल्य सदस्य होता है वो अपने परिवार की तरफ देखता है। उन्होंने एक अपील करी, उन्होंने कहा हमें ये कदम उठाने होंगे जिसमें फॉरेन ट्रैवलिंग पे कमी हो, जिसमें सोना ना खरीदा जाए, और यहां की जनता को और भारत की जनता को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का आह्वान स्वीकार किया और भारत को विजयी बनाया। तो आपको 10/10 मिलता है बहस के बाजीगर में। और तीसरा,
0: समय समाप्त हुआ,
6: मैं एक तीसरी बात
0: जल्दी से आपको भी दे दूंगी 10 सेकंड, जल्दी जल्दी जल्दी।
6: तीसरा, कभी नहीं भूलना चाहिए विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता रहा, और 10 सेकंड में कहता हूं झूठ बोलता रहा। जो दो जहाज भारत की तरफ चले थे कांग्रेस ने कहा वो कहीं और जा रहे हैं, बाद में झूठ पकड़ा गया, ट्वीट डिलीट हुआ। और दूसरा, कतारें लगी हुई हैं एलपीजी के सिलेंडर के लिए, कहते थे वो 2013 की तस्वीर निकली।

0: लेकर के और डीजल पेट्रोल लेने के लिए और वहाँ डीजे भी सुन रहे थे मुफ्त में, तो ये देश के सरकार की बड़ी मेहरबानी थी जी। इसलिए अब देश सुरक्षित है, महामानव जी फिर आएंगे, आप लोगों को बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, फिर विदेश चले जाएंगे।
1: धन्यवाद है जी आप दोनों का। तो उससे पहले कोई सवाल अगर सब प्रश्न पूछना चाहे।
2: नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है कि विशुद्ध राजनीति पे बात चली गई है अर्थव्यवस्था से, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है।
3: हमारा तो प्रयास था कि केवल आज के विषय पे रहे, जैसे एक आपने कहा था तो हमने उसका पालन किया ईमानदारी।
1: कुछ जो आप पूछना चाहें सर?
4: नहीं, मैं केवल अपने जो वक्ता है उनसे यही पूछूंगा। रसोई का ज्यादा इतना आपने जिक्र नहीं किया, टॉपिक तो रसोई का था, परंतु रसोई में क्या हालचाल रहे आपने उसको बहुत ही टेंजेंशियली उसको ट्रीट किया।
0: नहीं सर,
4: उसके ऊपर
0: मैं तो कह रहा हूँ कि कोई महंगाई है ही नहीं।
4: हाँ, नहीं
0: कोई तो, कोई महंगाई न बढ़ी है, न दवाई का 900 दवाइयों का दाम नहीं बढ़ा है, हवाई यात्राएं नहीं बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम तो देखिए ना जी कितना कम है। तो आप भी आए होंगे तो आपको आपको कुछ नहीं खर्च हुआ होगा। देश बड़े सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो फिर बात किस बात की जाए।
4: बिल्कुल अग्री कर रहे हैं गौरव जी, तो फिर तो
3: विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जो ओपनिंग कमेंट होता है हम लोग का भी प्रयास रहता है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव आना चाहिए। मेरी तैयारी पूरी है, मैं निराश करके आपको नहीं जाऊंगा। और गैस की रसोई पे भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ जो ठोस कदम उठाए हैं वो आपके समक्ष जरूर रखूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक मौका मुझे अंजना जी जरूर और देंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद।
1: ठीक है, एक मिनट का
0: आज के अखबार का एक रिपोर्ट है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर कमा रही है, पर आम लोगों को कोई राहत नहीं है, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई है ही नहीं जी, कोई महंगाई नहीं है, बेकार में यहाँ बहुत हम लोग करते हैं जी रोज दिन।
1: चलिए, ये मान्यतों की बहस करते हैं रोज दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में एक एक मिनट का रिबटल टाइम आपको मिलेगा, तब आप फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। अब अगले दो जो वक्ता हैं उनको बुलाते हैं, प्रोफेसर सुबोध मेहता जो कि आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी, 90 सेकंड का, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई, आप शुरू करेंगे?
5: मैं कर रहा हूँ।
1: ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी, टॉपिक फिर से बता रहे हैं, टॉपिक से मत भटकिए। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: देखिए, ईरान जब युद्ध शुरू हुआ चुनौती बड़ी थी, 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ प्रधानमंत्री और देश की अन्य सरकारों को न्याय करना था, उनको समुचित सुविधा देनी थी और महंगाई को नियंत्रण में रखना था। कैसे समझेंगे इसको? आपकी फरवरी में जो महंगाई दर थी खुदरा विक्रेता पर, उस पर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी अमेरिका में बढ़ी और यूरोपीय यूनियन के 21 देशों में बढ़ी। अमेरिका में 50% पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया। 21 देशों में जो यूरोपियन जो अपने करेंसी को शेयर करते हैं उनमें 40% की महंगाई बढ़ गई। हमने क्या किया कि अन्य देशों से एलपीजी आयात किया, पीएनजी को बढ़ाया। एक छोटा उदाहरण दूं तो बिहार जैसे, जिसको आप पिछड़ा समझते हैं, वहां 17 जिलों में नए पीएनजी कनेक्शन की योजना शुरू हुई। देश ने चुनौती का सामना किया, पूरी दुनिया उस पर विवश थी कि कैसे कैसे भारत जैसे एक बहुत विकासशील देश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और वो कह गए महामानव वाला देश। मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी जी का एक टाइम का कोई उपवास शुरू हो गया हो कि महंगाई बढ़ गई है, मुझे उपवास रखना है, मेरे घर में गैस नहीं है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई कांग्रेसी सड़क पर थाली बजा रहा हो, कह रहे भाई कुछ खाने को नहीं है। मैंने नहीं देखा कि 140 करोड़ की जनता कहीं सड़कों पर आ गई है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पूरी मुस्तैदी थे, सरकार ने एलपीजी का आयात किया, पीएनजी का उत्पादन बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल को नियंत्रित रखा। थोड़ा
1: समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त। अब इस विषय पर बोलने का आपका, प्रोफेसर साहब, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, 90 सेकंड का समय शुरू होता है। अब
7: देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने बाद जाकर कुछ अपना उसमें सुधार करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सप्लाई शॉक हुआ, लेकिन सप्लाई शॉक भी हुआ और जो हमारा रिलेशन है ईरान के साथ, ये आइसोलेशन में कोई भी इकोनॉमी चलती नहीं है, हमारा रिलेशन सिविलाइजेशनल बॉन्ड है उनके साथ। और जो पर्शिया था, हम जो है इंडो पर्शियन कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हम जो हैं सम्राट अशोक के जो अशोका पिलर है वहाँ से भी डिपिक्ट, अब देखिए तो सिंगल स्टोन सिस्टम वहीं से आया है। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो साहब भी अपनी पूरी जो लिखते थे वो पर्शियन में लिखते थे, उर्दू भी देखिए

0: हम वहीं से लेकर आएँ और जाकर जिस तरीके से जो पारसी लोग हैं उसमें भारत के डेवलपमेंट में अलग कंट्रीब्यूशन है उनका, चाहे टाटा हो गए, चाहे मानेकशॉ हो गए, होमी बाबा साहब हो गए, लेकिन जो इकोनॉमी की बात हम आज कर रहे हैं, ये इकोनॉमी जो है एलपीजी, जब से ये हॉर्मोन्स बंद हुआ तो हम तैयार नहीं थे उसके लिए और भारी जो है किल्लतें उठानी पड़ी और कम से कम जो 100 रुपये का सिलेंडर गरीबों को मिलता था वो 500 रुपये में हो गया, जिसको लेकर माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, लोग अपने घरों में चले गए और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और ब्लैक मेलिंग होने लगी ये एलपीजी की, तो पूरा त्रहिमाम हो गया हमारा सिस्टम और जो हमारा सिविलाइजेशनल जो बॉन्ड था वो भी धराशायी हो गया ईरान के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टेप लिया, लेकिन ठीक इससे उल्टा अंबानी और नयारा ने जिस तरीके से अटलांटिक की तरफ देखा, बेल्टिक रूट की तरफ देखा और जो है अल्जीरिया और नाइजीरिया और रशिया के साथ तेल लेकर आया, इन्होंने एक्सपोर्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री को इस पे अंकुश लगाना चाहिए।
1: समय समाप्त हो गया। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, कुछ प्रश्न इन दोनों से अगर आप लोगों का हो और एक एक सवाल इधर ऑडियंस से भी लेंगे। पूछे था
2: मेरा सवाल उतना नहीं है जितना की ये है कि जिस ईरान से हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशन थे वो ईरान ये ईरान नहीं है, और हमारे रिश्ते ईरान के लोगों के साथ हैं थे, जिसके खिलाफ ये रिजीम अभी भी है। हम उसको इतना डेफाई करके नहीं देखें, वो जैसे वो अमेरिका से ज्यादा साफ देश नहीं है। दो लोगों की लड़ाई में अपने को दोस्त ऐसे नहीं चुनने चाहिए। हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशन है वो हमारा आयतुल्ला खमेनी और उनके IRGC से नहीं है, वहां के लोगों से है। जो पारसी आपने उदाहरण दिया ना, वो वहां से भाग के आए हैं,
0: भाग कर आए हैं, इस्लामिक वहां पे चल रहा था उससे भाग कर आए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसमें हमें सस्ता तेल ईरान ने ही दिया। हम मानते हैं कि 1935 में जो है पर्शिया जो है ईरान की तरफ शिफ्ट किया और वर्ल्ड वार सेकंड में देखिए अमेरिका के साथ चला गया और हम लोग जो है कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन के साथ थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान जो है इनकंटिन्यूटी है। इनकंटिन्यूटी इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस 91 में हमें बहुत मदद किया ईरान ने, और अभी भी जो हॉर्मुज बंद तो जो हमारा तेल आना यहां चाहिए था डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत 70 दिनों के बाद ये जो है हमारा तेल ईरान से कम उनका परमिशन दिया, तो ये जो बॉन्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो बॉन्डिंग कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है। और जिस तरीके से
1: किधर से कर रहे हैं, अब लग रहा है कि आप इनकी टीम की तरफ बोलने लगे।
0: नहीं, जो तथ्य है तथ्यों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ और तथ्यों के आधार पे है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप लिया वो स्टेप पहले लेना चाहिए था। जो हमारा पूल होता है क्रूड ऑयल का, उसको जो है एक्सप्लॉइट करना चाहिए था और अंबानी और नयारा की जो कंपनी है जामनगर में उसको कंट्रोल करना चाहिए था। उसने जो है एक्सपोर्ट किया और हमारे अपने घर में जो किल्लत हो गई और हमारे गरीबों के, खासकर गरीबों जो लोग माइग्रेट किए, 100 रुपया का 500 रुपया में जो है एलपीजी भराया गया, ये रेमिटेंस आना वहां से बंद हो गया, बहुत सारी बातें ऐसी है।
3: सारे तथ्यों पर मेरे पास सिर्फ एक तथ्य है, ये वो व्यक्ति है उस पार्टी से है राष्ट्रीय जनता दल से जो उस सरकार में शामिल थे जब ईरान से गैस पाइपलाइन 2700 किलोमीटर आना था। लालू जी मंत्री थे, मणिशंकर अय्यर पेट्रोल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के दबाव में वो गैस पाइपलाइन नहीं लाया। आज वकालत कर रहे कि क्या संबंध अच्छे होने चाहिए थे। ये तथ्य हैं आपके खिलाफ महोदय, क्या बोलेंगे आप?
0: देखिए,
3: भारत ने कभी भी किसी भी देश के आंतरिक मसलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, सबसे अपने अच्छे संबंध रखे। उन देशों की अपनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने भारत के साथ संबंधों में थोड़ी दाएं बाएं आगे पीछे किया। प्रधानमंत्री मोदी 1,45,000 टन गैस डीजल सब लाने में सफल रहे, आप उसके लिए तो ताली बजा दीजिए।
0: देखिए, 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियर डील हुआ, यही लोग भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध में थे अमेरिका के, न्यूक्लियर डील होने नहीं दे रहे थे, सिविल न्यूक्लियर डील। और आज ये बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव जी ने वो सरकार को बचाया, उस अग्रीमेंट को बचाया,
3: वो सिविल बचाया, नोटों की गद्दी लेकर के समाजवादी पार्टी को खरीद करके डबरू डबरू बजा के आज जल डबरू मध्य की बात कर रहे हैं, सदन में नोट लहराया। इसी में
0: आपके पास कोई तथ्य नहीं है,
3: स्टिंग ऑपरेशन दिखा नहीं पाए किसी और चैनल में थे,
0: आपके पास कोई तथ्य नहीं है।
3: वाले अभी
0: राष्ट्रीय जनता दल
3: विश्लेषक बने हैं, वो बताएंगे कि क्या उस समय ऐसा मसला था कि न्यूक्लियर डील पे जो नोटबंदी चल रही थी वो किसके पेट में स्टिंग ऑपरेशन हजम हो गया, उन्हीं के शागिर्द इसी पैनल में विरोध में बैठे हैं। आज बता के जाइएगा आशुतोष जी, रुकिएगा नहीं। क्या मजबूरी रही होगी कि न्यूक्लियर डील पे पैसे से वोट खरीदते रहे सदन में बहुमत के लिए।
0: आपके पास क्या है?
3: और वो
0: आपके
3: ऑपरेशन देश में
0: आपके पैसा लेते सदन में पकड़े गए,
1: हो गया दोनों का, हो गया
0: कि लोग सदन में पकड़े गए पैसा लेते हैं। आप ये भूल गए
3: कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? किस तरीके का है खड़ा रहेगा
0: नेशनल चैनल पे इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा पकड़ा गया?
1: अरे रुकिए गुरुदेव, अरे रुकिए प्रभु,
3: हो गया हो गया।
1: जज साहब सवाल पूछ रहे हैं।
3: नहीं नहीं, सवाल मेरा कुछ नहीं है। देखिए ये वाली जो बातचीत हो रही है, जो क्या हमारा बिल्कुल सांस्कृतिक एक सहयोगी है ईरान, तो आप ये भी ध्यान रखिए जब 1965 की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के जेट गए थे, उनको ईरान ने शरण दी थी अपने यहाँ। कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर एक देश बोलता है भारत के विरुद्ध कश्मीर पर, ईरान है। आप देखिए वहां पर जो, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो ही आपको उदाहरण दूंगा, वहां पर आपके कितने 4.5 मिलियन 45 लाख लोग हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे या जो 10,000 लोग हैं ईरान में आपके जो इंडियन डायस्पोरा है? आपका जो गैस है 40% यूनाइटेड अरब एमिरेट से आता है, तो वो थोड़ा सा इसको सभी
1: फाइन ट्यूनिंग समझनी जरूरी है। कोई प्रश्न है आप लोगों का?
4: हेलो सर, सर जापान जैसी कंट्री जिसके पास ऑलमोस्ट 470 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी स्टॉक था, विच इज ऑलमोस्ट 255 डेज ऑफ बफर पीरियड। इंडिया जैसी कंट्री ऑन दी अदर हैंड जिसके पास ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, जापान को अपना वो पूरा हिस्सा खाली करना पड़ा कि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाए। ऑन दी अदर हैंड सर, इंडिया ने ऐसा कुछ ना करके अपने आम नागरिक को प्रायोरिटाइज किया, अपना टियर वन, अपनी रसोई घर को रखा, और आज भी उसके हर आम नागरिक के घर के चूल्हे जल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि बिना किसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो उन्होंने पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन किया था, क्या वो वेस्ट था?
1: ठीक है,
5: जवाब दूं मैम?
1: रुक जाइए, आए आए।
6: सर मेरा ये क्वेश्चन है कि भले ही इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया हो और कंट्रीज से ऑयल और गैस इंपोर्ट कराकर, पर महंगाई तो बढ़ गई। आगे अब अगर आगे ये वॉर कंटिन्यू होता है या फिर ऐसा कोई भी वॉर आता है, तो ये महंगाई को फेस करने के लिए कोई प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की?
1: सफेद गमछे में से कोई आपका?
6: ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा अभी कि कोई भी मतलब कोई भी कमी नहीं पड़ी रिसोर्सेज की पहले, तो मतलब कमी तो तभी पड़ेगी ना जब उसे खरीदा जाएगा। अभी भी ग्रोसरीज के हाई प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैस के प्राइसेस वो भी बहुत ज़्यादा है, और हर घर में चूल्हे ही चल रहे हैं, तो वो तो खरीदे ही नहीं गए, तो कमी कैसे नहीं हुई?
1: ठीक है, तो आप लोगों को दोनों को 30-30 सेकंड का समय मिलेगा। आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है, और जो एम्बेसडर साहब ने कहा अगर उस पर बोलना है जल्दी।
0: देखिए ये बच्ची ने एकदम सही कहा कि हमारे पास जो है क्रूड ऑयल का जो रिजर्वायर है वो कम था, 25 दिन का था, जैसे जापान में ज्यादा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाए और जो इन्होंने जो आग्रह किया आम जनमानस से कि भाई आप जो है इसको ठीक से यूटिलाइज कीजिए या फिर गोल्ड का इंपोर्ट कम कीजिए, ये लगभग 70 दिनों के बाद इन्होंने किया। इस पर भी नेशनल कंसेंसस इन्होंने नहीं बनाया, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के साथ इन्होंने कोई वार्ता इस संदर्भ में लेकर नहीं किया। साथ में अगर ये चाहते तो जो रिजर्वायर और जो रूट जो है अंबानी जी ने उठाया था, जो मैंने कह रहा हूं कि बाल्टिक रूट लिया और अटलांटिक रूट लिया, नाइजीरिया अल्जीरिया से लाया, ये हम भी कर सकते थे हमारे अपने नयारा में जो है, और अंबानी जी को क्यों नहीं?
1: एक ही पॉइंट आप बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी से। आप
3: दोनों ने एक सवाल पूछा है उसका एक उत्तर,
1: महंगाई पर उस बच्ची ने
3: एक प्रश्न समझिए। जब दुनिया में इस कदर का युद्ध हो जहां कई महाशक्तियां टकराहट में खड़ी हो गई हों और लंबा युद्ध चल रहा हो, और 20% दुनिया का कच्चा तेल गैस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उधर से आता है वो हमारे लिए चुनौती का विषय था। दुनिया की महंगाई को अगर आप देखेंगे कि उससे दुनिया में कितनी महंगाई बढ़ी, और भारत को देखेंगे तो अगर दुनिया में 10 महंगाई बढ़ी तो भारत 1 पे खड़ा था। आज भी आज के डेट में 3.93% खुदरा महंगाई दर है, जो 1% ऊपर उठा है, 1 से 1.5% फरवरी से लेके अभी तक। तो हम इस देश को महंगाई से निकाल ले जाएंगे।
1: चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हुआ। नेक्स्ट राउंड में एक एक मिनट करें, बट ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए, सब अपनी अपनी पक्ष के लिए खुलकर बैटिंग करें। आइए आइए प्रोफेसर साहब, आप आइए, और आशुतोष जी आ गए हैं। आशुतोष जी पर बहुत सारे बातें कही गई हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा जवाब देने का, और आप बच्चों के भी प्रश्न देख ही रहे हैं और जो जजेस की अभी तक की रिस्पांस है। चलिए शुरू करते हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
5: नमस्कार आप सभी को। देखिए, जब भारत जिसमें 90% के करीब तेल आयात होता है और वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा हो, तो उस समय क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप बंद हुआ, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल के लिए लाइनें लगी, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल का राशन हुआ, क्या मेरे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसको ठप किया गया, क्या हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम किया गया। अगर इन सब प्रश्नों के जवाब ना है तो ये अपने आप में एक जवाब है कि नहीं, मेरे यहाँ भारत में जो रसोई घर था वो चलता रहा। हाँ अगर बंद हुआ तो बंद हुआ। ये जो अफवाह थी विपक्ष की कि क्या यहाँ पे आर्थिक सुनामी आएगी, क्या यहाँ पे डेड इकोनॉमी है, बिल्कुल वो जरूर बंद हुआ, वो नहीं चल पाया। अब बात विशुद्ध आंकड़ों पे करते हैं। आंकड़ों का ये है कि जी पेट्रोल पंप यहाँ पे जो पेट्रोल के दाम थे वो केवल 5.90 रुपए बढ़े उस दौरान जब मैंने कहा कि 90% हम ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं, और जो क्रूड ऑयल के दाम थे तकरीबन 100% राइज हुआ, $60 पर बैरल से वो तकरीबन $120 पर बैरल पे गया। अब आते हैं रसोई घर के चूल्हे पे। जो आपका चूल्हा था वो 853 रुपीस पर यूनिट से जो डोमेस्टिक था वो आपका पहुंचा 942 रुपीस पर यूनिट, जो तकरीबन 11% का राइज हुआ। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 2014 से तो तब वो ऑलरेडी 1241 था। तो इस दौरान अगर आप देखो कि 1241 पे जो नॉर्मल सामान्य आपको सिचुएशन में मिल रहा था, आज भी उससे वो 24% कम है। तो ये आपका जवाब है कि हमारे रसोई घर बंद नहीं हुए। अगर हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट है 3.93%।
7: समय समाप्त हो गया, समय समाप्त। नेक्स्ट राउंड। चलिए, अब आपका आशुतोष जी, तो प्रोफेसर जी के लिए अलग से तालियां बज रहे हैं। आशुतोष जी आपके लिए भी बजेंगी, आप भी शुरू कीजिए 90 सेकंड का इस विषय पर बोलने का कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। आपका समय शुरू होता है अब।
8: इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सरकार मानती नहीं कहीं कोई संकट होता है, तो इसलिए हमारे एलपीजी का कोई संकट नहीं था, क्योंकि जो इतने बड़े पैमाने पर लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए, लाखों की संख्या में गए, वो एक रिकॉर्ड है। अगर उस वक्त अगर आप अखबार खाली निकाल के देख लेंगे तो रोज आपको पता चलेगा किस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किस तरीके से 4,000-5,000 में सिलेंडर्स मिल रहे थे, लेकिन कोई संकट नहीं था। हकीकत ये थी कि 4 लाख बैरल पर डे एलपीजी की सप्लाई की क्राइसिस थी उस वक्त। 4 लाख हो भी सकती है, 60% हम चूंकि इम्पोर्ट करते हैं और 90% उस इलाके से आता है, तो जाहिर सी बात ये तो संभव है। लेकिन ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही थी? दिक्कत इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि हमने जिस तरीके से अपना प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहिए था, हमने प्रोडक्शन बूस्ट नहीं किया। खुद आईएनबी, खुद मिनिस्ट्री के अपने रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लगातार एलपीजी का गिरा है। हमें जिस तरीके से अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए था, हमने उस तरीके से स्टोरेज को नहीं बढ़ाया है। यह संकट था, लेकिन सरकार नहीं मानती इस बारे में। सरकार कहती है सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान का आदमी 105, 106, 110 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे? जब $115 था तब आपसे कहा गया कि आप एक्स्ट्रा दीजिए। आज लगभग 50% कम हो गया है, फिर भी आप उसी दाम पे दे रहे हैं। सब चंगा। ये
7: समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ भाई। दोनों ने अच्छा किया। कोई प्रश्न आपका हो उसके बाद रिबटल राउंड शुरू करेंगे।
3: नहीं, एक प्रश्न है आशुतोष जी से। इंडिया का जो अपना बास्केट प्राइस है $156 हो गया था, आपको याद होगा 23 मार्च को $156 हो गया, तो तब उस समय तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक नहीं इंक्रीज हुआ, तो अब आप कहते हैं और 200 रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे, परंतु अब तो आप कह रहे हैं जो उसमें कम। देखिए, जब वो लॉस, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, लॉस जो मार्केटिंग कंपनीज ने उस टाइम फेस किया उसमें थोड़ा सा लॉस की कमी हो गई है। दूसरी बात, आपने जो कहा, देखिए मुझे याद है जहां तक आंकड़े, तो ये कहा गया है जो एलपीजी का प्रोडक्शन है इंडिया में वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसमें करीब 40-45% की बढ़ोतरी हुई थी इस पीरियड में, तो परंतु आप पता नहीं कहां से स्टैटिस्टिक्स, मुझे तो ये बड़ी अच्छी तरह याद है, हम फॉलो कर रहे हैं।
7: छोटा सा जवाब,
8: वरिष्ठ है, जवाब नहीं होगा इसका, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आपके पास डेटा कहां से, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो घाटे में थी। 2023-24 ऑयल कंपनीज 130,000 करोड़ के फायदे में थी। 2024-25 ऑयल कंपनी, सारी ऑयल कंपनीज ये 80,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी, और 2025-26 जिसमें आपका मार्च 26 भी आता है उसमें 117,000 करोड़ के प्रॉफिट ऑयल कंपनीज थी, और अप्रैल से लेकर जून तक का जो वक्त है, मैं सिर्फ आपको इंडियन ऑयल का डेटा दे रहा हूँ, 5,633 करोड़ के प्रॉफिट में थी जब संकट था। जून अप्रैल से जून तीन क्वार्टर में 5,663 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन ऑयल का अकेले था सिर्फ। तो यह कहना कि हमारी ऑयल कंपनीज घाटे में चल रही थी, ये तथ्यों से परे है। और मैं नहीं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस बारे में झूठ बोला है।
7: चलिए ठीक।
8: और ये फैक्ट,
7: एक काउंटर आर्गुमेंट चलिए चलिए,
8: मैं मेरे कम से कम ये बात मेरे गले नहीं उतरती है कि हम एक जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करें और उस नेता को सपोर्ट करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा और जिसके खिलाफ वारंट है और वो वॉर क्रिमिनल है। और हम इस बात को जस्टिफाई करें कि अगर कोई अमेरिका या कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर हमला करता है, हम उसको सही ठहराने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये भारत की जो विदेश नीति है उसकी नैतिकता के खिलाफ।
7: ठीक है जी। आशुतोष जी, मैं आपके इस लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगी, हालांकि मेरे को आपके डेटा पे भी करना है। मतलब इंटरनेशनल क्राइम बॉर्ड जस्टिस की आप बात कर रहे हो, सर ने बड़ा बखूबी समझा दिया है ये कैसे होते हैं। सर ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कैसे वो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस में होता है। इसके ऊपर कम से कम आप अमेरिका का तो साथ ना दें सर, ये बहुत एक विडंबना भरा आपका सवाल है। बाकी जो बात सर ने करी, आपने ऑयल इंपोर्ट्स ऑयल कंपनीज की बात करी, आपने डेटा के ऊपर सवाल उठाया। सर ये डेटा कल का है कि 47,781 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान झेल रही हैं ऑयल की कंपनीज। और जो आप बात कर रही हो कि अगर उनको फायदा हुआ जब भी हमने तेल के दाम कम थे, ऑयल बॉन्ड्स का आप भूल गए। ऑयल बॉन्ड्स बच्चों इतना ज्यादा हमने उसका इंटरेस्ट रेट दिया जितना हमारे पास उसका प्रिंसिपल नहीं था। और मैं आपको उसमें भी बता दूं, उसमें भी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स के तहत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपीज लिया और जो फॉरेक्स आई उससे वो हमारी $44 बिलियन से $97 बिलियन हुई 2020 से 2025 में। तो ये आप उसके अपसाइड नहीं देखते। लास्ट पॉइंट जो आपने बात करी गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर के मैं एक चाणक्य नीति के एक शब्द से खत्म करूंगी अंजना जी, कि अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार,
9: नेक्स्ट राउंड में
7: अफवाहों का सबसे बड़ा, अजय जी अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार असत्य का, सत्य की अनुपस्थिति, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति नहीं होता है बल्कि लोगों का अधूरा ज्ञान होता है। जो यह अधूरा ज्ञान अजय जी जैसे और आशुतोष जी जैसे,
9: समाप्त होता है, तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए। नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस, नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गौरव जी, अजय उपाध्याय जी, रिबटल राउंड में एक एक मिनट का समय आपका शुरू होता है, उसके बाद कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो महाजन जी पूछ लीजिएगा। चलिए गौरव भाटिया जी, रिबटल राउंड 60 सेकंड्स, आपका समय शुरू होता है अब।
10: देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, और मैं बिल्कुल टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि अब घर आ जाएंगे और मेडल्स खरीद लिए, तो मैं ये कहता हूं ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 28 देशों ने, जिसमें इस्लामिक मुल्क भी है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये बात इनसे पचती नहीं है। आज मोला लीजिए आप। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। अभी बात आ गई किसको सपोर्ट करना है क्या, मैं आज विषय पे रह के ही अपनी बात रखूंगा। हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भारतीय भूखा नहीं सोया है, सप्लाई में कोई कमी नहीं, पेट्रोल पंप खुले रहे, गैस के सिलेंडर आते रहे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, उनका वजन भी बढ़ गया क्योंकि माँ ने रोटियां बहुत खिलाई है, गैस का सिलेंडर घर पे था। दूसरी बात, ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व था।
9: समय समाप्त, समय नहीं, टाइमिंग अब रखना पड़ेगा, जल्दी से, ठीक है 10 सेकंड, ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप
10: तीसरा पाइप गैस लाइन कनेक्शन बढ़ाना, ये मोदी जी ने कहा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और गैस का सिलेंडर बिल्कुल सही कहा, 1241 रुपए का जनवरी 2014 में मिलता था और आज उसका रेट 950 के आसपास है। आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन के विपरीत जाके सस्ता हुआ। और इतना कहता हूँ, रेणुका चौधरी का बयान निकालिएगा, 1241 रुपए पे कहती थी गरीब 1241 का सिलेंडर नहीं ले सकते, आज मोदी जी 950 में।
9: समय
11: देखिए, गौरव भाई ने बड़ी बड़ी बात की कि भाई प्रधानमंत्री जी तो लगातार एक से एक बातें कर रहे हैं और विदेश में घूम रहे हैं। वाकई ये कहावत है ना, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, देश चाहे जितना बर्बाद हो जाए, मोदी जी को अपने मेडल से ही चिंता है और मेडल के अलावा उनको कुछ नहीं लेना देना है। ये सच्चाई आप स्वीकारिए। जब देखिए, 3 हमारे नाविक इसी ईरान युद्ध के दौरान शहीद हुए, उनको अमेरिकन सैनिकों ने मारा, प्रधानमंत्री जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि ट्रंप के साथ कुछ बात करेंगे, कहेंगे, चुप्पी। मौन व्रत का तो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, हर मुद्दे पर मौन व्रत लगाया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान की बात आए वहां भी वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये मौन धारण करने का जो महारथी है उनसे सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई कभी कभी इस देश में आइए और जो मन की बात करते हैं जरा आम जन की भी बात कर ले। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से लोग परेशान हैं, देश में ईरान युद्ध के जो परिस्थितियां थी तो थी, अब पेट्रोल डीजल जब इतना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कम हुआ है फिर भी हम और आप क्यों अपना हमारा जेब आप लूट रहे हैं। 43 लाख करोड़ का लूट किया इन्होंने पिछले 12 साल में, जब 40 रुपए डॉलर
7: और
11: आज क्या हाल है, आज फिर वही रुपया।
10: देखिए विषय से भटकते हुए केवल नकारात्मक राजनीति करना इनका काम है, मोदी जी को गाली देते हैं और अर्ज किया है राहुल गांधी के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से, इसलिए देश के लिए सर झुकाओ, मोदी जी का सम्मान करो। दूसरी बात, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने कहा तुरंत कि ईरान की तरफ आ जाओ, लेकिन मोदी जी ने कहा हम अमेरिका से अपाचे लेते हैं, चिनूक लेते हैं, इजराइल हमें ड्रोन देता है और ईरान भी हमें कहता है कि हम मित्र देश हैं। ये होती है बैलेंस डिप्लोमेसी, इसे सज्जन हार जी जानते हैं जो मोदी जी ने
11: उठाया। वाकई सर झुकाना चाहिए यदि देश की बात आए, लेकिन देश का सर नहीं झुकना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार अमेरिका के यहां जाकर के बिछने का काम किया, इजराइल में जाकर बिछने का काम किया, ईरान के साथ जिस तरह दूरियां बढ़ाने का काम किया, यह स्पष्ट पूरा देश और पूरा विश्व जो है हम पर धिक्कारता रहा कि कैसे प्रधानमंत्री जो भारत इतना पुराना
10: राहुल गांधी पे धिक्कार रहा है,
11: लेकिन उसके साथ ये ऐसा प्रधानमंत्री जो एक वैसे देश के साथ इजराइल के साथ जो बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, सरेआम विश्व में अशांति फैलाया है, उसके साथ आप खड़े हैं और भारत के लोगों को उसका
7: आप दोनों का बहुत अच्छा
11: उठाना पड़ा है।
7: बहुत अच्छा आप दोनों का। आइए सत्यप्रकाश मिश्रा जी,
12: एक मिनट जरा।
7: अच्छा एक जल्दी,
12: मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स पर इस दौरान 3.5 महीने जब तक युद्ध चला मैं गया, रोज रुपया 100 हो जाएगा 150 हो जाएगा, ऑयल रशिया से ऑयल खरीद बंद कर दी है, ये सर देश झुक गया है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, रसोई घर की गैस जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं जा रहे हैं, टैक्स कम हुआ तो क्या हुआ, सरकार ने क्या ऐसी बड़ी बात कर दी, यानी कुल मिलाकर के ये जो ये मतलब मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कम से कम मैंने पहले भी कहा कि देश की बात करें, देश कहां झुका है, आज हमने 6 महीने जो इस 6 महीने में हमने तेल खरीदा है, अजय उपाध्याय जी, रूस से जितना तेल खरीदा है उससे कहीं कम हमने पहले 2025 के पहले 6 महीने में खरीदा था। आप हाथ मत हिलाइए,
11: सुनिए ना, मैं अब आपका उत्तर दे दूं, आप बता रहे हैं जज के कुर्सी पर हैं, आरएसएस के कार्यालय में नहीं है, आप इतना तो देखिए,
12: मेरी बात
11: से बड़ी शोभा नहीं देती, मुझे उत्तर देने दीजिए, आपने कहा देश में कोई समस्या,
10: अरे भाई आरएसएस के कार्यालय में नहीं है, आपकी की बात हो रही है, आप जज क्यों की इज्जत करते हैं,
11: वो जिस तरह से प्रश्न कर रहा
10: है क्या गलत किया, अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो आप ये सब कहने लगे
11: क्या,
10: हम भी कहे हम भी आपसे कहे राहुल गांधी का हेडक्वार्टर नहीं है, गलत बात है, आप बताइए क्या ठीक है, छत पे उंगली उठाने क्या ठीक है, आप बताइए,
11: विदेश मंत्री झूठा है क्या, विदेश मंत्री करता है कि अमेरिका ने जैसे जैसे कहा,
10: आपके पास मुश्किल प्रश्नों के उत्तर नहीं है, घबरा के,
11: अरे सुनिए ना, आप चिल्लाइए नहीं, अमेरिका क्या जयशंकर जी ने नहीं कहा कि रसा से जैसे जैसे कहा अमेरिका ने तेल खरीदो तो मैंने खरीदा,
10: रशिया से तेल बंद कर दो तो बंद कर दिया,
11: जयशंकर जी से बड़े हो गए क्या आप लोग,
10: रुपये की सरकार में 1% तेल आता था,
11: विदेश मंत्री
10: हमारी सरकार में 35-40% आया और 20 बिलियन डॉलर,
11: जयशंकर जी पर विदेश मंत्री झूठा है, यहाँ झूठे मत दीजिए बच्चों को,
7: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
11: तेल और चार बाग से क्यों अपना बस्ता लेके भागने का काम किया आपने, क्यों भागा आपने ईरान से भाई, ये तो बता दीजिए।
7: चलिए ठीक है, नेक्स्ट राउंड में चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे ही आप दोनों बैठते हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी आते हैं और सुबोध मेहता जी, आप लोगों के पास वक्त है, अगर आप गमछा बदलना चाहते हैं तो आप गमछा बदल सकते हैं, वापस अपनी जगह पर बैठ जाइएगा गमछा बदलने के बाद, कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है,
13: अरे बदल लो, क्या बचा है, नीले सब लाल लाल लहराए।
7: इधर वाले खुश हो रहे हैं, दो सफेद गमछे ले रहे हैं इधर नीले वाले में से। और कोई है अभी? नहीं है, आप आपने भी बदल के लाल ले लिया है, ठीक है। तो दो तीन लोग इधर बदल कर बैठे हैं। तुम बहुत सही हो भैया, पहले से दो तीन लेके बैठे हो, जब मन करेगा बदल लूंगा। तो एक ने लाल लिया है, दो ने सफेद लिया है नीले में से, लाल वाले में से कोई नहीं हिला है, और इधर सफेद वाले में से भी। चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
3: देखिए, मुझे बुलाया गया था कि ईरान में युद्ध जब हुआ तो भारत कैसे निकला महंगाई से, लेकिन मैंने तो यहां देखे कि कांग्रेस ने झूठ झूठ झूठ झूठ झूठ पे बैटिंग की कि मोदी जी तो विदेश गए थे, उसी दौरान गए थे जब उन्होंने अपील की देश की जनता से कि कम विदेश यात्रा करें। क्यों गए थे? 5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश लेकर आए। आपने कहा कि नाविकों के मारे जाने पर भारत ने कुछ नहीं किया। अरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठा, एस जयशंकर साहब ने वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से उठाए। सवाल आज ये नहीं, आज है क्या हम महंगाई पर नियंत्रण कर भारत को ईरान के युद्ध के बीच निकाल पाए? बिल्कुल निकाल पाए। कैसे नहीं निकाल पाए? अब राहुल गांधी यूके घूमते हैं तो हम थोड़ी जाते यूके घूमने महंगाई में। आप लोग घूमिए यूके। इस देश में अपवाह का बाजार गर्म हुआ। कुछ लोग जहां ब्लैक में सिलेंडर मिलता था वो लोग गांव की ओर चले गए, तो गांव में सिलेंडर पे खाना बना रहे थे या किसी गोबर गैस पे खाना बना रहे थे। 30% एलपीजी का उत्पादन बढ़ा, 50% पीएनजी का उत्पादन बढ़ा, 40% आयात बढ़ा, अलग अलग देशों से किया। महंगाई से भारत को मरने नहीं देंगे और ना झेलने देंगे।
7: आपका जोश देखकर इधर वाले भी जोश में आ रहे हैं एकदम। चलिए आपका प्रोफेसर साहब, 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
0: चर्चा हो रही थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर और ये बात जो है पार्टी लाइन के ऊपर ये लोग बात करने लगते हैं। बात ये हो रही है कि भाई जब सप्लाई शॉक हुआ तो भारत के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ, जो लगभग 18% का एक्सपोर्ट था वहाँ हमारी जो कमजोरी दिख गई। इसके साथ साथ जो रेमिटेंस आते थे, लगभग 1 करोड़ की आबादी जो रहती है मिडिल ईस्ट में, उसका जो रेमिटेंस था वो आना बंद हो गया। जैसे अभी कह रहे थे कि जो शहर से लोग गांव की तरफ माइग्रेट कर गए क्योंकि एलपीजी बहुत महंगा मिल रहा था यहाँ पे। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है। खारी क्रॉप जो है अभी और उसके साथ साथ रबी का जो क्रॉप होगा, उन दोनों में फर्टिलाइजर की कमी है। सरकार इसके ऊपर तत्पर होकर क्या काम कर रही है किसी को कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी बाहर से बाहर जा रहा है। चूंकि एफडीआई यहाँ आ नहीं रहा है, कारण यह है कि लोग जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से मिला हुआ है। सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की, और जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है।
7: वाह, चलिए आप दोनों का बहुत। इस बीच कोई जो गमछा बदलना चाहता है, आपके पास मौका है। जैसे अगले दो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, एक एक मिनट बोलने के लिए। नहीं, चलिए ठीक है, एक एक मिनट का रिबटल राउंड है, इसमें कोई भी उसके बाद नहीं बोलना। आशुतोष जी,
13: नहीं बोलूंगा,
7: नजरें मिला के, ठीक है। पिछली बार आप लोगों ने बहुत ओवर टाइम बोला दोनों ने। चलिए, आप
13: से बहुत डरता।
7: आपका इस विषय पर बोलने का प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है अब।
14: शुरुआत करूंगी सुबोध जी की बात से। प्रोफेसर सुबोध, आपने कहा कि हमारे यहाँ पे जो तरीका है, अभी फर्टिलाइजर खत्म होने वाला है खरीफ क्रॉप के लिए। आप शायद राहुल गांधी के बूट्स में स्टेप इन कर गए हो। आर्थिक सुनामी आने वाली है जो कभी आई नहीं, यहाँ पे डेड इकोनॉमी है जो कभी हुई नहीं, तो आपका भी ये भविष्यवाणी बिल्कुल असत्य होगी, ये मैं कह सकती हूँ। बाकी जो बात आशुतोष जी आपने कही थी कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसके बावजूद भी हमारा ऑयल इम्पोर्ट क्यों बढ़ा है, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो 37 मिलियन मेट्रिक टन था, जो गिर के 26.5 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, क्योंकि हमारे बॉम्बे हाई जो है उसमें जो हमारे तेल के जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें आपको तकलीफ होती है। और इसमें हमारा क्रूड का जो डिमांड था वो 3.8 मिलियन बैरल्स पर डे से 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे हुआ है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो तकरीबन डबल हुआ है इस पीरियड में। और जहां तक बात आती है मैम की, बात हो रही थी कि इसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोटैटो, पीस, जीरा, मोटर गैस, जीप्स, टू व्हीलर्स, इन सबके जो रेट है वो कम हुए हैं।
7: समय समाप्त हुआ,
14: मैं खत्म करूंगी राहत इंदौरी जी की बात से। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
7: चलिए आशुतोष जी, आसमान है या धुआं आप बताइए। शुरू कीजिए, आपका रिबटल राउंड का 60 सेकंड शुरू होता है अब।
8: नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं फिर अपनी इस बात को दोहराऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे डेटा पे शक किया है, मैंने अभी गूगल किया है और मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल का अप्रैल से जून के बीच में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 5,688 करोड़, ये इंडियन ऑयल का है। ये अप्रैल से जून के बीच में है जब हमारी क्राइसिस जबरदस्त तरीके से थी। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर कहा। जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई नहीं थी कि उस दौरान जबरदस्त तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी? अगर आप में से किसी को शक हो, सिर्फ अभी मार्च के महीने में, 6 तारीख मार्च के महीने को आप टाइम्स ऑफ इंडिया गूगल करिए, आपको सारा अंदाजा लग जाएगा कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां से गांव से छोड़कर, शहर छोड़कर गांव गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑटो वाले सब जो बेचारे थे वो गए छोड़ के। आप उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप आंख बंद कर बंद करना चाहते, कुछ भी कहना चाहते तो सही है, मुझे कुछ नहीं कहना उस पर।
7: समय समाप्त हुआ और समय का एकदम गजब ख्याल रखा है ताऊ, कुछ बोलना है?
2: मुझे बोलना बस पिछली,
8: आपने हंस दिया, पिछली बात अंदाजा नहीं होगा,
2: पिछली जो बात थी उसको आशुतोष जी आगे भी बढ़ाए कि हमको बहुत ज्यादा लगता है कि ईरान हमारा मित्र है और इन्होंने उसमें जोड़ दिया कि इसराइल से संबंध रखना भी अनैतिक है अंतर्राष्ट्रीय, और ये कि हमारी बॉन्डिंग रही है बहुत सिविलाइजेशनल। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं बॉन्डिंग पे चलते नहीं, मोदी जी की ट्रंप से बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग थी, हमने नतीजा देख लिया है, कुछ नहीं होता बॉन्डिंग से। कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब भी लोग किसी से मित्रता करते हैं फायदे
7: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी क्यूआर कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं, और जो ऑडियंस यहां पर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, आप भी क्यूआर कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया? अगर आप टीम गौरव भाटिया के लिए वोट करना चाहते हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी उनके साथ हैं और इसी के साथ साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, तो आप हां पर वोट करेंगे, नहीं वाले नहीं पर कर सकते हैं, और कह नहीं सकते वालों के पास तो ऑप्शन है ही। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर हैं, आप भी क्यूआर कोड स्कैन करके जरूर वोट डालिए। और अब जजेस हमें बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है, लेकिन उससे पहले वोटिंग शुरू करते हैं। चलिए वोटिंग शुरू करते हैं, और वोटिंग शुरू हो चुकी है, देखिए 53:50 बच रहे हैं, और फिलहाल नहीं कहने वाले 28% हैं, 60% हाँ कहने वाले, 13% कह नहीं सकते वाले भी हैं। तो ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया 54-34 का मामला हो रहा है, 58-30 का मामला 60-30 हो गया है। तो अभी थोड़ा सा समय और है, लगभग 30 सेकेंड अभी और है जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं, 57, 31 और 12% कह नहीं सकते वाले हैं। आखिरी के 25 सेकेंड, मुझे लगता है इतनी देर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है सबने, एकदम सब ऐसे उचक के देख रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट, हमने अपना वोट वेस्ट तो नहीं किया है, कौन जीत रहा है आज। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष या विपक्ष दोनों उतना ही जरूरी होता है, तो हां जितना जरूरी है, नहीं भी उतना ही जरूरी है। 58% 4, 3, 2, 1, और इसी के साथ टीम गौरव भाटिया ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया में जीत गई है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी और प्रोफेसर तनेजा इनकी टीम जीत गई है। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नीले गमछे वाले भी कुछ बच्चे ताली बजा रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको भी आप धन्यवाद करिए। अब वो घड़ी है जब आप लोग बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है भाई, 6 वक्ताओं में से।
15: सभी को सुनने के बाद जो हमारा यूनानिमस कंसेंसस डिसीजन है जजेस का, वो है जो श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट
7: सत्य प्रकाश मिश्रा जी,
15: उनको करार दिया जाता है, जो वो विजयी रहे हैं अपने तर्क रखने में, जितना उन्होंने एनर्जी एंथुजियाज्म जितनी वो दिखाया बहुत ही अच्छी तरीके से,
7: काफी ऊर्जावान होकर बोलते हैं सर, काफी ऊर्जा, तालियां जबरदस्त। तो आज के बहस बाजीगर के विजेता हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, और कई बार तो मुझे लगता भी है कि मतलब मैं पानी वानी दे दूं, वो गुस्से में दिखने लगते हैं, हिलने लगते हैं, लेकिन बहुत पैशनेटली हर विषय पर बोलते हैं। इसी के साथ बहस बाजीगर में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद जनता का। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
17: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
18: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
22: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
6: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
4: गहरी सफाई।
5: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
4: गहरी खुशबू
5: और प्यार भरी भी।
3: कैसे?
5: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए फेना ही लेना।
7: मैं करता हूँ ना,
8: मैं करूँगा।
9: ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में पीएनबी, दोनों ही चैंपियन है।
9: पीएनबी लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, पीएनबी मेरा अपना बैंक।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल छह सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता, शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को कल सर्वदलीय बैठक के लिए मिला न्योता, किरण रिजिजू ने भेजा आमंत्रण, स्पीकर आज ही जारी कर सकते हैं अधिसूचना। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार कहा, जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता का दम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को बधाई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। आज शो में देखिए कैसे ईरान के एक गलत कदम और डोनाल्ड ट्रंप के इशारे भर से अमेरिका ईरान जंग नए और विनाशकारी दौर में पहुंच गया। जहां ट्रंप को ईरान से कड़ी टक्कर मिल रही है, अमेरिका जहां हमले के जरिए डिप्लोमेसी कर रहा है, वहीं ईरान फिर से अपने पड़ोसियों से ही हिसाब चुकता कर रहा है। हम इस तनाव को डीकोड करेंगे। वहीं बात पड़ोसी पाकिस्तान की होगी जो टूटने की कगार पर है। पीओजेके में हिंसक प्रदर्शनों के बीच बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है। इस गृह युद्ध की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे और आखिर में दिखाएंगे ब्लैक सी की वो तस्वीरें जहां यूक्रेन के मरीन ड्रोन्स ने रूसी जंगी जहाजों को समुन्द्र में तबाह कर दिया है और कैसे बातचीत की तरफ बढ़ते बढ़ते रूस यूक्रेन युद्ध मैदान में फिर आमने सामने है।
1: इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी है। जंग लगातार सातवें दिन भी जारी है और अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं। रात भर ईरान में पुलों और पानी से जुड़े ढांचों पर हमले हुए, जबकि ईरान ने भी खाड़ी के उन देशों में अहम ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। क्या ये जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट।
0: यूएस और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष बहुत संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 5 महीनों से जारी एक युद्ध मौसमी होता जा रहा है, जिसमें आगे क्या होगा ये ठीक ठीक बता पाना, उसका पूर्वानुमान लगा पाना जानकारों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध लगातार हर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा पेच है। एक तरफ जहां दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस युद्ध का नया फेज क्या है, कहां कहां हमले हो रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है।

0: हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने बता दिया था कि ईरान युद्ध किस तरफ जा रहा है। ट्रंप की धमकी है कि अगला निशाना ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। और जवाब में ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि उसके निशाने पर फिर खाड़ी देश होंगे।
1: The criminal United States continues its reckless conduct and its attempts to destabilize the region. First, we reiterate in the clearest possible terms, under no circumstances and by no means will we permit the United States, a country from outside the region, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. If the recent threats by the President of the United States to target the infrastructure of the Islamic Republic of Iran are carried out, then everything that has thus far remained untouched solely because of Iran's restraint, that is, every piece of infrastructure throughout the region, will be destroyed by the powerful armed forces of the Islamic Republic of Iran.
0: ये हमले बता रहे हैं कि जंग अब भी जारी है। बातचीत के लिए माहौल तैयार करने का काम बमों से लिया जा रहा है।
2: They better behave.

0: दरअसल ईरान ने हॉर्मुज पर ओमान के क्षेत्र में हमले किए तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने हमलों का दायरा काफी बढ़ा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान के कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को तबाह करना है, जिससे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहे। तेहरान से करीब 110 मील पूर्व में स्थित सेमनान एयरपोर्ट के हिस्सों पर यूएस ने हवाई हमले किए। ये इलाका ईरान की मिसाइल टेस्टिंग और स्पेस लॉन्च के लिए जाना जाता है। दक्षिण में ईरानी नौसेना के बेस बंदर अब्बास और ग्रेटर तुम्ब आइलैंड पर क्रूज मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही सिरिक और केशम द्वीप पर भी अमेरिकी बमबारी हुई। ईरान के तेल समृद्ध प्रांत खुजेस्तान की राजधानी अवाज को भी यूएस ने अपने निशाने पर लिया। इस इलाके से कई धमाके सुने गए। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान से 155 मील दूर मध्य ईरान में खोंदाब को अमेरिका ने सोमवार से तीसरी बार निशाना बनाया। साउथ ईस्ट ईरान की पाकिस्तान सीमा के पास के रस्क और चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया। अमेरिका के हमलों का ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि जॉर्डन ने ईरान की 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत पर भी ईरान ने हमले किए। इराक के इरबिल पर भी ईरान ने ड्रोन से हमला जरूर किया। हालांकि दावा किया गया कि आसमान में ही 8 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया गया। इस युद्ध का एक और बड़ा मोर्चा समुद्र है। ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने फिर ब्लॉकेड लगा दिया है, जिससे ये जलमार्ग फिर से एक बार दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्ग में तब्दील हो चुका है। नाफरमानी का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है। यूएस की चेतावनी के बावजूद ऐसा करने वालों को अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल से अब तक ऐसा 10 बार हो चुका है जब अमेरिकी हमलों में जहाज नष्ट हुए।
1: तो मैं ये मान के चलना चाहता हूँ कि दोनों देश इसकी गलती है और दोनों को मिलकर पूरी वर्ल्ड पावर्स को इन पर दोनों पर एक दबाव डालना पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी, कि आप दोनों के मसले आप आपस में सुलझाइए। बहुत आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन ये हॉर्मुज को खोलिए, इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। तो मैं ये होप करता हूँ कि वर्ल्ड प्रेशर से दोनों देश मान जाएंगे, ईरान भी और यूएस भी, कि किसी प्रकार के हॉर्मुज को खोला जाए और वर्ल्ड को इतना परेशान ना किया जाए।
0: अब सवाल है कि अमेरिका आगे करना क्या चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की बैठक में सैन्य ऑपरेशन के विकल्पों पर भी विचार किया गया। अमेरिका के पास मुख्य रूप से 3 बड़े विकल्प हैं। पहला, पिकैक्स माउंटेन पर बमबारी। ये ईरान का एक बेहद सुरक्षित और जमीन से 300 से 475 फीट नीचे ग्रेनाइट की पहाड़ियों में बना अंडरग्राउंड बेस है, जिसे परमाणु गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इतनी गहराई में होने के कारण अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के लिए भी इसे पूरी तरह नष्ट करना आसान नहीं होगा। दूसरा विकल्प है खार्ग आइलैंड पर कब्जा। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात का केंद्र है। अगर अमेरिकी सेना इस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये बेहद रिस्क भरा होगा। तीसरा, डिप्लोमेसी। इन तमाम विकल्पों के बावजूद ट्रंप प्रशासन अभी भी पर्दे के पीछे बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है। डिप्लोमेसी और अटैक साथ साथ चलते रहेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग की शुरुआत से ही आम लोगों से लेकर अधिकांश विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला से मुश्किल होगा, लेकिन जो पहले केवल मुश्किल लग रहा था अब वो असंभव सा होता दिख रहा है। जंग अपने 20वें हफ्ते में यानी करीब 137 दिनों से भी आगे बढ़ चला।
2: पश्चिमी एशिया की यह जंग एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सुपर पावर अमेरिका के सारे दांव फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सैन्य अभियान को केवल 4 से 6 हफ्ते में समेटने का दावा किया था वो खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा।

0: spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way.
2: युद्ध नीति या विदेश नीति या कहें ट्रंप नीति, इन दो बयानों से अंदाजा लगाइए कि वॉशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है। इस यूटर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसके आगे सुपर पावर को भी अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ रही है।

0: से इकट्ठे हो गए तो और चलते चलते उनके हाथ में हार्मोज आ गई और उनको कभी सोचा नहीं था कि हार्मोज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी यहां से शुरू से ही जो प्लानिंग थी वो फॉल्टी थी।
1: विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया भर में अमेरिकी ताकत का लोहा मनवाया है। नाटो देशों से सैन्य खर्च बढ़वाना हो या वेनेजुएला में कमांडो रेड कराना, लेकिन ईरान के मामले में उनकी ये रणनीति फंस गई।
2: ईरान के अंदर इनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत हो गई। इन्होंने सोचा था कि हम रजीम चेंज करा देंगे एक आयतुल्लाह को मार के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सारी उनकी असेसमेंट गलत निकली, सारी उनकी जो ऑब्जेक्टिव है गलत निकले और इसी वजह से उनका एम भी गलत निकला।
1: जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक रुख को कई जगह किस्मत का साथ मिला, लेकिन पिछले 47 वर्षों के इतिहास को देखते हुए तेहरान से किसी तरह के समझौते की उम्मीद करना एक बड़ी भूल से ज्यादा कुछ नहीं है। जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिकी सरकार, थिंक टैंक्स और नीति निर्माताओं ने ईरान के सैन्य और मजहबी ढांचे के गठजोड़ को कम करके आंका और ये मान लिया कि हवाई हमलों और सोशल मीडिया पोस्ट से ये राजनीतिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब नतीजा ये है कि ट्रंप के दावे के उलट शिप ट्रैकर क्लेपर का डेटा बता रहा है कि जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। ईरान भी लगातार अपने बताए गए जलमार्ग को लेकर अटल है और अमेरिका ब्लॉकेड को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फारस की खाड़ी के बाहर जाने वाले कच्चे तेल के शिपमेंट्स को देखें और 2025 का औसत स्तर 100 माने तो जनवरी से फरवरी 2026 तक तेल की आवाजाही सामान्य थी। शिपमेंट्स 80 से 120 के स्तर के आसपास चल रहे थे। फरवरी के आखिर से मार्च की शुरुआत में अचानक भारी गिरावट आई। मार्च के दूसरे सप्ताह तक तेल का निर्यात लगभग शून्य पर पहुंच गया। मार्च से जून के मध्य तक बहुत कम या लगभग न के बराबर तेल के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकले। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी, लेकिन शिपमेंट्स अभी भी सामान्य स्तर से बहुत नीचे रहे। 16 जुलाई 2026 तक भी तेल का निर्यात सामान्य स्थिति में वापस नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की सहमति के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अमेरिका को या तो बहुत बड़ा नौसैनिक एस्कॉर्ट मिशन चलाना होगा या फिर दक्षिणी ईरान पर एक बड़ा जमीनी हमला करना होगा। ये दोनों ही विकल्प अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ ट्रंप के राजनीतिक भविष्य के लिए भी जोखिम भरे हैं।
3: डोनाल्ड ट्रंप की ये हिम्मत नहीं रही है कि वो बोट्स ऑन ग्राउंड करे या एम्फीबियस ऑपरेशन करे। उसके तीन चार रीजन हैं। देखो, ईरान एक छोटा देश नहीं, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। ईरान ज्यादातर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर कोई बोट्स ऑन ग्राउंड करेगा अमेरिका तो उसको बहुत ज्यादा ट्रुप्स चाहिए और इतने ट्रुप्स वो ला नहीं पाएगा क्योंकि मेन लैंड से काफी दूर है। दूसरी बात यह है, अगर जमीन पे आते हैं अमेरिकन ट्रुप्स तो उनकी भारी कैजुअल्टी होगी और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका, और बॉडी बैग जो है अमेरिका पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी। दूसरा, जो एम्फीबियस ऑपरेशन की बात होती है, जो नेवल ऑपरेशन जैसे कि खर्क आइलैंड में जहाँ की 90% ऑयल आता है, वहां पर भी वही बात है कि इतना आसान नहीं होगा कि जो एम्फीबियस ऑपरेशन करना, अगर एम्फीबियस ऑपरेशन करता है अमेरिका तो वहां पर भी उसको भारी कैजुअल्टी होंगी।
1: उधर अमेरिका लगातार नए प्रतिबंध लगाकर ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में दर्जनों कंपनियों, जहाजों और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन ने भी IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, यानी अब लक्ष्य सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि ईरान के तेल, बैंकिंग, शिपिंग और डिजिटल फाइनेंस नेटवर्क को एक साथ कमजोर करना है। ईरान की अर्थव्यवस्था भले ही प्रतिबंधों की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच हुआ अस्थायी सीज फायर अब टूट चुका है। ट्रंप पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी जनता किसी और बड़ी जंग के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अमेरिका के सामने विकल्प बेहद

0: सीमित है।
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: जानकार मानते हैं कि ईरान का ये संकट अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों की विरासत पर असर डाल चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप कोई बीच का कूटनीतिक रास्ता तलाश पाते हैं या फिर दोनों देशों के बीच का यह गतिरोध किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी बनेगा। अमेरिका ईरान युद्ध का जो ये नया दौर चल रहा है उस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो सीज फायर के बावजूद जिस दौर में है पूरी दुनिया देख रही है। अब ट्रंप धमकी ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी सेना जो है उन टारगेट्स को हिट कर रही है जो ट्रंप बता रहे हैं, ऐसा क्या?
2: देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दिक्कत श्वेता यह है कि अब उनको डिलीवर करके देना होगा। देखिए, मिड टर्म करीब आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने जब 2025 में 2026 में इतने बड़े ऑपरेशन चलाए तो आपने आखिरकार हासिल क्या किया, क्योंकि ईरान के रिजिम दोबारा से पहले कंपैरेटिवली ज्यादा सॉलिड हो गया, ज्यादा मजबूत हो गया, यहां तक कि लोग की जो आपके से रिजिम को लेकर जो भावनाएं थी वो कंसोलिडेट हो गई है, वो अपने लोग अपने देश के साथ खड़ी है, और ना तो आप उनका एनरिच यूरेनियम हासिल कर पाए और ना ही उनकी कैपेबिलिटीज को कमजोर कर पाए, और यहां तक कि आपने एक नया अब चैलेंज खड़ा कर दिया पूरे दुनिया के सामने, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि अब उसका मुकाबला करके एक मैसेज दिया जा सके पूरी दुनिया में कि अमेरिका की सुप्रीमेसी अभी भी कमजोर नहीं हुई। दूसरी तरफ एक और बड़ा चैलेंज था कि अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने जो MOU साइन किया वो पूरे टाइम को उसने अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइव करने के लिए, अपनी री इन्फोर्समेंट करने के लिए किया, और शायद इसी वजह से अपने जो फ्रेश ऑपरेशन हम देख रहे हैं और जो अटैक हम देख रहे हैं वो सीधे संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका का पूरी कोशिश है कि पूरी कोस्टल लाइन को करीबन 2450 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है ईरान की उसको आप पूरी तरीके से क्लीन कर दे, उसको पूरी तरीके से IRGC को वाइप आउट कर दे, ताकि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनके शिप और अमेरिका की जो आप कैसे मुस्तैदी है उसको बढ़ाया जा सके।
0: पर ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, उसकी मिसाइल ताकत को देखते हुए क्या अमेरिका के लिए उसे घेर पाना इतना आसान होगा?
2: देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो IRGC को या फिर ईरान के अंदर बड़े विध्वंसक अटैक भी कर दे तब भी वो ईरान को इस समय झुका नहीं पाएगा। ईरान ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो अपने साइलोस तैयार किए, अपने मिसाइल पावर तैयार की, अपने ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, वो शायद अमेरिका ने आप कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टूड कर लिया या फिर उसका आकलन सही अमेरिका नहीं कर पाया। अभी के ताजा हालातों में अमेरिका के सामने एक ही चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो यथास्थिति को 28 फरवरी से पहले कायम कर दे, और ये प्रेशर ना सिर्फ अमेरिका पर दुनिया भर से बल्कि मिडल ईस्ट के उन देशों पर है जिनके लिए अमेरिका एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। तो ऐसे में अमेरिका की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, बाकी चीजों को लेकर अमेरिका को लगता है वो बातचीत के जरिए या फिर सैंक्शंस को कम कर या फिर मुस्तफा खमनई को लेकर एंगेज कर वो चीजों को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने इसमें ना सिर्फ अपने मिलिट्री एसर्ट्स को, अपनी साख को खोया, बल्कि अमेरिका ने इन पूरे इलाके में अपनी उस विश्वास को भी खो दिया जो मिडल ईस्ट के देश लगातार अमेरिका पे करते रहे थे।
0: इस युद्ध में एक और चीज जो शुरुआत से चलती रही है वो है विरोधाभासी बयान। ईरान एक तरफ हमले की धमकी दे रहा है, फिर अमेरिकी नागरिक को रिहा करने की खबर ट्रंप दुनिया को देते हैं, हालांकि ईरान कहता है कि कोई प्रिजनर स्वॉप नहीं हुआ है। पर क्या इस सब के बीच बैक चैनल में लगातार बातचीत चल रही है?
2: देखिए, एक बात तो हमेशा तय होती है युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, एक ही चीज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होती है, वो है बातचीत। डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी वॉर। और अभी के ताजा हालात में अगर आप देखें, अमेरिका भी बैकडोर में बात कर रहा, ईरान भी बात कर रहा, एंगेजमेंट दोनों तरफ से, लेकिन एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है। डेडलॉक इस बात को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सुप्रीमेसी किसकी होगी। ईरान को समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर उसने अपनी सुप्रीमेसी कोई नहीं बरकरार रखी तो ना सिर्फ उसे स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा मिलेगा, एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट रहेगा। ईरान अपनी बातें जो है, अपनी शर्तें जो हैं, वो ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि मिडल ईस्ट के देशों को भी मनवा पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को ये पूरा आप कह सकते हैं कि इलाका या फिर ये पूरा मौका जो है अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के तौर पर भी देख रहा है। ईरान को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसा उसको मिलेगा, जो लगातार टैक्स उसको वो वसूलेगा, वो उसकी इकोनॉमी को और उसके सैंक्शंस के बावजूद उसको रिवाइव सर्वाइव करने में बहुत मददगार साबित होगा। ईरान की जो मिलिट्री पावर है उससे उसका भी इजाफा होगा। तो आप मान के चलिए कि अभी ईरान अपनी इन चीजों को लूज नहीं करना चाहेगा। ईरान ये पूरी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर पकड़ बनाए रखे। वहीं अमेरिका ये चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर जो परिस्थितियां ठीक हो सके। और मिडिल ईस्ट के जो देश है, जो क्लोजनेस, जो लगातार जो उनका जुड़ाव हुआ था ईरान के साथ में, वो ऐसा ज्यादा टूट जाए कि ले देकर उनको अमेरिका के पास ही आना पड़े। और शायद इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कितने हिस्सों में टूटने वाला है पाकिस्तान, कैसे विरोध विद्रोह की शक्ल वहां पर ले रहा है। देखते रहिए आज तक, बने रहिए वॉर रूम में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
11: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
12: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
10: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। आज तक वर्टिकल

0: जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत पुरानी है लेकिन पाकिस्तान के ताजा हालात पर यह पूरी तरह फिट बैठती है। हर जगह अपनी फौज के जुल्म की इबारत लिख रहे मुनीर अब अपने ही खोदे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। शहर शहर उनकी फौज और पाकिस्तान के शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उनकी गिरफ्त से आजादी के नारे लगा रहे हैं। पहले मुनीर की फौज ने पुलिस के साथ मिलकर खैबर में जुल्म ढाए तो वहां रहने वाले लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। बलूचिस्तान में तो बीएलए ने आजादी का अभियान ही छेड़ रखा है। अभी मुनीर की फौज ने जब संगीनों के साए में वहां की आवाज दबाने की साजिश रची तो जवाब में बीएलए ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तानी सेना सालों तक इसे याद रखेगी। बीएलए के पलटवार में 45 सैनिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उधर पीओके को लेकर पहले ही मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सेना को कई बार हिंसक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बुनियादी सुविधाएं वहां है नहीं और गुजर बसर करने वाले स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाना आम बात हो गई है। इन बदतर हालात के बावजूद पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए, अब उसने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का पांचवा राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके इस इलाके को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। खैर, कहने को वो कुछ भी कहता रहे लेकिन सच यही है कि लोग मुनीर की फौज और शहबाज की सरकार से आजादी चाहते हैं। वैसे भारत का रुख तो इस पर आईने की तरह बिल्कुल साफ है।
1: कश्मीर को लेके है तो मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में।
0: न नियत न नीति, पाकिस्तान तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ईरान युद्ध को खत्म कराने की उसकी कोशिशें तार तार हो चुकी हैं। नतीजा ये हुआ है कि कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई से वहां आवाम परेशान है। पाकिस्तान सरकार के नए फैसले से लोग ताहिमाम करने लगे हैं। पहले से ही अच्छे खासे महंगे पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब 316.15 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 354.35 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहा है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि अब पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें हर रोज तय की जाएंगी। आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को कल सर्वदलीय बैठक के लिए मिला न्योता। किरण रिजिजू ने भेजा आमंत्रण, स्पीकर आज ही जारी कर सकते हैं अधिसूचना। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार का, जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता का दम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को बधाई दी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

0: पाकिस्तान एक तरफ दुनिया का पीस मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने ही घर में आग लगी हुई है। पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनवा और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विद्रोह की आग लगातार फैलती जा रही है। अहम बात यह है कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इसके सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां आटे की भी जबरदस्त किल्लत है। खैर, आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हर ओर से सड़कों से चुनौती मिल रही है। वहां के लोग साफ कह रहे हैं, अब और नहीं।
1: इस वक्त की एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करने के बाद दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये नारेबाजी, ये शोर यूं ही तो नहीं। ये हाल है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का। यहाँ की आवाम लगातार सड़कों पर है और सरकारी तंत्र उसको लगातार निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क के अंदरूनी हालात खराब हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए।
2: वो जमात जिसे नून लीग कहते हैं, उसकी तारीख गवाह है कि वो हमेशा चोर दरवाजे से आती है, हमेशा चोर।
1: मांग हक की है, राशन की है, मूलभूत सुविधाओं की है और जवाब में जनरल मुनीर के रेंजर्स की गोलियां हैं। लेकिन इस बार मुनीर को चुनौती बाहर से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर से मिल रही है। जमीयत ए इस्लामी फजलुर रहमान के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ को ललकारा है।
3: सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। हमने
1: यहाँ पर मौलाना का गुस्सा सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि सरकार पर भी फूटा।
3: और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी, खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने दो तीन दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं।
1: पाकिस्तानी फौज की जो बर्बरता बलूचिस्तान में दिखती है वही क्रूरता अब पीओजे के में भी दोहराई जा रही है। 14 जुलाई को रावलकोट में हक के लिए इकट्ठा हुई बेगुनाह भीड़ पर रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। पिछले महीने जून में भी रावलकोट में ऐसी ही हिंसा हुई थी, तब 15 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं को देखकर साफ पता चलता है कि शहबाज सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब हक का जवाब सिर्फ गोली है।
2: ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास के राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इसके हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: कमेटी के नेता सरदार अमन खान के इस तेवर ने सीधे जनरल मुनीर की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमन खान अपनी 38 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को 22 जुलाई तक का वक्त दिया है।
4: पाकिस्तान की ये हालत है आज कि बलोचिस्तान में एक फ्रंट खुला हुआ है, टीटीपी जो पख्तूनवा में है उसने बलोचिस्तान में भी स्पेस ले ली है। बमबारी चाहे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की है और उससे लड़ाई अलग चल रही है, तो बलोचिस्तान जो अनगवर्नेबल हो गया है एक तरीके से, वो इतनी बड़ी जगह है कि जितनी मर्जी फौज लगा दें इतनी टेरिटरी को कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो ये 3-4 फ्रंट्स पे जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, ये मेरा ख्याल इतनी बुरी हालत उनकी मैंने 40-50 साल पीछे से नहीं देखी, बांग्लादेश के बाद ये पहली बार है जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है और उसको वो आंखें बंद करके बैठे हुए दुनिया में घूम रहे हैं कि और बाकी लोगों की सलाह करा रहे हैं, अपने घर का उन्हें पता नहीं है और एक दिन ये बम फटेगा और हमें बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि स्पिलओवर हमेशा होता है, चाहे वो पीओके का हो, चाहे पख्तूनवा का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, हमारे ऊपर भी स्पिलओवर आएगा। तो आई एम श्योर हमारे लोग जो हैं वो सचेत हैं और उन्होंने सारे स्टेप्स लिए होंगे प्रीएम्प्टिव की कोई ऐसी ना हो चीज जिसपे हमारे ऊपर असर आए उसका।
1: दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी शांत नहीं हुआ, वहाँ बगावत की चिंगारी अब आजादी की आग बन चुकी है। बता दें कि बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुके हैं। मस्तुंग जिले के खड़कोचा में बीएलए के फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले पर एक बड़ा धमाका किया, सैनिकों की बसों को निशाना बनाया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पहले बसों को उड़ाया गया और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले 1 से 14 जुलाई के बीच भी बीएलए 48 हमलों में 40 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने का दावा कर चुका है। पीओजेके का विद्रोह और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ये बैक टू बैक हमले ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठकर पाइप पी रहा है। लेकिन भारत को यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। गुजरात से पकड़े गए आतंकी इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
0: सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास। अशरफ, पीओजेके में जो कुछ चल रहा है वहां की जनता पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ एक तरीके से आर पार की जंग लड़ रही है, और अभी से नहीं पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह का विद्रोह वहां पर दिख रहा है। क्या हम समझें कि इस बात का संकेत है कि 1971 की तरह पाकिस्तान एक बार फिर बिखर जाएगा और टूटेगा?
5: जी श्वेता, अगर हम पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की बात करें, ये मामला नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई जब पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को देश के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ बनाया था। तब हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से जो युवा गए थे प्रशिक्षण के लिए आतंकवादी बनने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में, उनमें से अधिकतर जो है वहीं पर रह गए। करीब 80% हज़ारों की तादाद में जो युवा है वो वहीं पर रहे और उन्होंने सीमा पार करके वापस आने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको पता था कि भारत वापस आकर क्या अंजाम होगा। जाहिर है कि वही अब जो है बहुत ज्यादा परिवार जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गए हैं। उनको पहले मुहाजिर कहा जाता था, उनको खास रियायतें थी, उनको माहाना 8,000 रुपये प्रति परिवार जो है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सभी रियायतें उन परिवारों को जो है ख़त्म कर दी गई हैं। वो एक कारण है इस बड़े आंदोलन के जो कई महीनों से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ चल रहा है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन लोगों को जो सरकार की तरफ से रियायतें मिलती हैं उनसे जो है अलग कर दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ उन पर जो है अब हर तरह का सरकार का अंकुश लगा है, जिससे वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। और उन पर जिस अंदाज से प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सरकार और सेना ने ताकत का बल का इस्तेमाल किया, कई सारे दर्जनों लोग मारे गए प्रदर्शनकारी, उससे इस पूरे आंदोलन में एक उबाल सा आ गया है और पाकिस्तानी सरकार के लिए अब बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गया है, क्योंकि अब वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जी श्वेता।
0: अच्छा, बलूचिस्तान में क्या अशरफ, वहां पर तो अपने अपनी आजादी घोषित उन लोगों ने कर दी है, तो क्या हम समझेंगे पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अपना नियंत्रण पूरी तरह खो चुकी है?
5: बिल्कुल, अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन पहली बार नहीं चल रहा है, बल्कि दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि दशकों से बलोच लिबरेशन आर्मी हो या फिर बलोच के जो विद्रोही हो, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो बाधा आ रही है इसमें यही है कि अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान आतंकवादी सूची में डालने में जो है कामयाब हुआ है। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो दूसरा रुख है अमेरिका का हो या वेस्ट का हो, कि वो अपने अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार जो है आतंकवादी संगठन भी बनाते हैं और उनको जो है उन पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। उसी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी पर जो है प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यही कारण है कि उनकी स्वायत्तता जो है वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की थी कि उन्हें जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मान्यता मिले, लेकिन भारत भी जो है डिप्लोमेटिक तौर पर फिलहाल इस मामले को लेकर दूसरे देश में मुदाखलत मान रहा है। और यही कारण है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ स्वायत्तता की जो है घोषणा की, बल्कि यहां तक कि उन्होंने कुछ पासपोर्ट बनाने की बात भी की थी, अलग से पासपोर्ट बने, लेकिन उस अलग पासपोर्ट को क्या कोई देश मानेगा, वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर विद्रोह की बात करें तो वो भी पाकिस्तान सरकार के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती, दशकों से और खासतौर से पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर रहा है।
0: तो पाकिस्तान सरकार के पास रास्ता क्या बचा है? क्या हम ये समझेंगे वहां पर मार्शल लॉ लगने के हालात बन चुके हैं? क्या क्या करेगी पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां?
5: पाकिस्तान के भीतर अब जो मात्र 5 प्रांत बचे हैं, उनमें से अगर हम कहें तो 3 प्रांतों में कम से कम सिंध और पंजाब को छोड़कर बहुत ज़्यादा बगावत पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है। आज से नहीं, महीनों से, सालों से चल रही है। उसमें चाहे पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जिसको नॉर्दर्न एरिया के नाम से पाकिस्तान जो है अपने साथ मिला चुका है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भी इसी तरह जो है लगातार आंदोलन और स्वायत्तता और आज़ादी की बात सामने आई है। और पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से तालिबान के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं, खासतौर से तहरीक तालिबान ने जिस अंदाज से पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा था, उस बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर जो कार्रवाई पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से अफगानिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में हुई है, उसमें बहुत सारे आम नागरिक मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और यही कारण है कि क्योंकि पठान वो पूरे पूरा कबीला है, वो खैबर पख्तून के इलाके में कबीलों में लोग रहते हैं, और वो इस तरह की जाति न कभी बर्दाश्त करते हैं, न उन्होंने कभी इस तरह की कोई जुल्म जो है बर्दाश्त किया है। और यही कारण है कि अब बलूचिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है। और पाकिस्तान इस वक्त अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा परेशानियों से देश के भीतर जूझ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाजों पर जो सुइसाइड मरीन ड्रोन से हमला किया है वो पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये सी रूट रूस के लिए काफी अहम है। हमले के बाद रूस की तरफ से किसी भी तरह की बातचीत के लिए ना कह दिया गया है। वहीं अमेरिका का टैरिफ बॉम्ब भी रूस पर बरस पड़ा है, यानी रूस के लिए चक्रव्यूह की रचना हो रही है।
1: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करके तबाही मचाई है। शनिवार को यूक्रेन के 370 से ज्यादा ड्रोन्स ने रूस की राजधानी को निशाना बनाया, जिसमें मॉस्को के एक लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हुए हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि ये 4 साल से जारी रूसी हमलों का करारा जवाब है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: ईरान अमेरिका से हटकर दुनिया के दूसरे छोर पर युद्ध एक बार फिर बढ़ गया। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी। यूक्रेन ने अब अजोव सागर में रूसी जहाजों को निशाना बना शुरू कर दिया। मॉस्को ने कीव के हमलों की तुलना आतंकवादी हमलों से की।
1: Чем занимается украинский режим? Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто вот нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте.
0: Азов Сагар – एक अहम सी रूट है, जहां से रूस अपने अनाज के निर्यात का लगभग एक चौथाई हिस्सा भेजता है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर के मुताबिक ड्रोन ने 11 जहाजों पर हमला किया।
2: देखिए, आपने देखा होगा कि यूक्रेन जिस प्रकार से हमला कर रहा है शिप्स के ऊपर, वो बेसिकली बाय ड्रोन्स है। ड्रोन्स की ताकत यूक्रेन के अंदर बहुत आगे बढ़ गई है। वो न केवल समुद्र के अंदर बल्कि डीप इनसाइड रशिया भी यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उनसे एनर्जी स्टेशन पर हमला कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली बिकॉज नाउ यूक्रेन हैज गॉट अ वेरी गुड सोफिस्टिकेटेड, वेरी रिलायबल एंड पोटेंट ड्रोन आर्सेनल। उसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और जब तक इसकी ड्रोन कैपेबिलिटी और रहेगी तब तक ये सक्सेसफुल होता रहेगा। सो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रोन कैपेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स आल्सो बैक्ड अप विद सम मिसाइल कैपेबिलिटी।
0: इस समुद्री मार्ग पर रूस का तेल व्यापार निर्भर करता है। जाहिर है, इस मार्ग पर यूक्रेन का हमला करना यानी रूस पर सीधे तौर पर दबाव बनाना, ये हमले एक बड़े अभियान का हिस्सा है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। कीव का कहना है कि वो केवल सैन्य ठिकानों या ऐसी सुविधाओं पर ही हमला करता है जो सीधे तौर पर रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करती है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसने रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर भी टैरिफ बम फोड़ दिया। इसमें भी यूरोप और भारत के पीछे अमेरिका ने भेदभाव किया।
3: We are closely following these developments and we are aware of the proposed legislation. That is what I have to say. She on the number of Indian vessels which are there in the Persian Gulf as of today, we have, as you all know, that you know there's regular traffic between India and the Persian Gulf region. We have 7 Indian ships which are there in Persian Gulf.
0: रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध और तेज होने के संकेत हैं।
4: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
5: गहरी सफाई,
6: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
5: गहरी खुशबू
6: और प्यार भरी भी।
5: कैसे?
6: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
7: इसीलिए फेना ही लेना।
8: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
13: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की तो इसे घोड़ों से खींचा जाता था, लेकिन जब भाप इंजन आया तो ट्रेनों ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही डीजल इंजन का दौर आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर है। न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली। इस ट्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये ट्रेन हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और वाष्प को हवा में ही छोड़ देगी। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में खास है। इसकी पहली खासियत यह है कि डीजल इंजन की तरह इससे धुआं नहीं निकलता और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ जल वाष्प और गर्मी निकलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन है। जहां कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें 2 से 4 कोच की हैं, वहीं भारत ने शुरुआत ही 10 कोच और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन से की है। इसका 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में भी शामिल करता है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से बिजली लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने साथ मौजूद हाइड्रोजन से खुद बिजली तैयार करती है। इसलिए जिन रेल मार्गों पर ओवरहेड बिजली नहीं है, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट किया गया है। यानी भविष्य की रेलवे तकनीक में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर मल्टी लेयर सुरक्षा, हाइड्रोजन गैस लीकेज, आग, धुआं और तापमान पर 2400 घंटे नजर रखने वाले सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी तकनीक की शुरुआत है। जिम में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है। यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई बल्कि हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव भी रख दी है। आज ये शुरुआत जींद से सोनीपत तक है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकती है। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को कल सर्वदलीय बैठक के लिए मिला न्योता। किरण रिजिजू ने भेजा आमंत्रण, स्पीकर आज ही जारी कर सकते हैं अधिसूचना। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार का, जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता का दम, श्रीहरिकोटा से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, पीएम मोदी ने टीम स्काई रूट को बधाई दी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। भारत की सभ्यता में कुछ स्थान सिर्फ शहर नहीं होते, वो इतिहास, आस्था और पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। अयोध्या, काशी, संभल, द्वारका और फिलहाल मथुरा, इन सब के केंद्र में एक ही सवाल बार बार लौटता है, क्या इतिहास में जो हुआ उसका फैसला आज होगा? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान कर दिया है। आज कहानी में हम मथुरा को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास से लेकर अदालत तक, आस्था से लेकर राजनीति तक, आज कहानी कृष्ण जन्मभूमि की।

0: 9 अगस्त कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है। सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
1: अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासकीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है?
2: पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है।
1: गौशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है?
3: आज जो ये हो रहा है इस पर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए।
1: कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहाँ बोर्ड लगा हुआ है।
4: मथुरा वो नगरी जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। मान्यता है कि यहीं कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इसी जन्मभूमि को लेकर सदियों पुराना विवाद आज फिर देश की सबसे बड़ी बहस बनता जा रहा है। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान हो चुका है, संत समाज सक्रिय हो चुका है, सियासत गर्म है और अदालत के बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश भी जारी है।
5: ये मथुरा है, कान्हा की नगरी।

0: ब्रज की वो पावन धरती जहाँ मान्यता है कि कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था।
1: राधे रानी का, बाके बिहारी का, इसी का ही भाव होता
2: है। ठाकुर जी आगे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और हमारे साथ अच्छे मस्ती में डांस में चल रहे हैं।
1: साक्षात दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में होए साक्षात दर्शन होते हैं हमको। जो प्रभु करा दे हमारे से और हम कर ले वही बहुत है।
0: यहाँ हर सुबह शंखनाद से जागती है, हर शाम आरती की लौ में सिमट जाती है। यहाँ राधे राधे सिर्फ अभिवादन नहीं, जीवन जीने का मंत्र है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर गली, हर मोड़ कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है।

यही वो भूमि है जहां देश ही नहीं दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते हैं। किसी के लिए ये मोक्ष का मार्ग है तो किसी के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी आस्था।

0: ब्रज की परिक्रमा हो, बांके बिहारी के जयकारे हो, या जन्मभूमि में माथा टेकने की इच्छा, आस्था का हर रास्ता आकर इसी नगरी में ठहरता है। लेकिन इस बार मथुरा की पहचान सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि बहस भी है।
1: जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आजाद होना चाहिए।
2: कार सेवा जरूर होना चाहिए, सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है।
3: विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया, हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हो।
4: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो।
5: जो इस जन्मभूमि स्थान है वहां पर भगवान कृष्ण ही विराजमान होना चाहिए।
0: चर्चा है 9 अगस्त की, चर्चा है उस कार सेवा की जिसका ऐलान हो चुका है, चर्चा है उस आह्वान की जिसने एक बार फिर संत समाज को मथुरा चलने का संदेश दिया है।
6: हमें अपना श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर का स्थान लेना है और वहां पर मंदिर बनाना है।
7: कार सेवा होनी चाहिए क्योंकि सभी सनातनी हिंदुओं को मंदिर चाहिए है।
8: अब समय आ गया है कार सेवक का करने का, संतों ने जो ऐलान किया, संत समाज श्री धाम वृंदावन से उन संतों के साथ है।
0: आज कहानी में इन जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे, आखिर 9 अगस्त को मथुरा में क्या होने वाला है, कार सेवा का मकसद क्या है, संत समाज इस आह्वान के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का केस क्या है और क्या है मथुरा से जुड़ा पूरा विवाद। लेकिन फिलहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने देश भर के साधु संतों से 9 अगस्त को मथुरा पहुंचने की अपील की है।
9: देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे।
10: मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहां मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
0: जिस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये आह्वान किया है उसे देश के सनातन अखाड़ों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था माना जाता है। परिषद का दावा है कि उसके साथ 50 लाख से ज्यादा साधु संत, सन्यासी और नागा जुड़े हैं। इसमें 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं, जिनमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन परंपरा के अखाड़े शामिल हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों से लेकर सनातन से जुड़े बड़े मुद्दों तक अखाड़ा परिषद की राय को संत समाज में अहम माना जाता है।
11: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश भी जारी है। हाल ही में विशेष लोक अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आए। अब अगस्त में फिर बातचीत की कोशिश होगी, यानी एक तरफ अदालत समाधान का रास्ता तलाश रही है और दूसरी तरफ कार सेवा की तैयारियां तेज हो रही हैं।
12: पोजीशन ये है कि भी एप्लीकेशंस काफी हैं, वो चल रही हैं और इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है उसको देखते हुए जब सब क्लियर हो जाएगा तो उच्च न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
0: मथुरा की हलचल अब सिर्फ धार्मिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष से पूछ रहे हैं, अगर आस्था की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर क्यों नहीं बोलते।
13: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या

0: अदालत में जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई लगातार चल रही है, तो सवाल यही है कि आखिर 13.37 एकड़ जमीन का पूरा विवाद आखिरकार है क्या, इतिहास क्या कहता है, दोनों पक्षों के दावे क्या हैं और अदालत में मामला अभी किस मोड़ पर पहुंच चुका है।
1: करीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि ये हमारे मंदिर थे।
2: ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना, ये तो मेरा था ना, जो मेरा था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था।
3: अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
4: मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा।
5: यहाँ आस्था और इतिहास सदियों से साथ साथ चलते आए हैं, लेकिन इसी मथुरा में एक ऐसी जमीन भी है जिस पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं।

0: आस्था के अपने दावे हैं और कानून की अपनी सीमाएं। करीब 13.37 एकड़ जमीन जिस पर दशकों से अदालतों में सुनवाई चल रही है और जिसके भविष्य पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद आखिर है किस बात का। पूरा मामला मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके की 13.37 एकड़ जमीन का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। उनका कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यहां बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया, लिहाजा हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ भूमि पर अपना अधिकार चाहता है।
1: टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए।
0: वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से स्थापित है और 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद उसका प्रबंधन वैध तरीके से ईदगाह कमेटी के पास है। यानी यही वो बिंदु है जहां से दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का भी हवाला देते हैं जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे बदला नहीं जा सकता।
2: नाम रोशन हो, समाज में हमारा नाम फैले, राजनीति में हमारा नाम आए, इसलिए दावे दायर किए गए हैं।
0: अब जरा इतिहास को समझिए। इतिहासकारों और अलग अलग दस्तावेजों के अनुसार ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ भगवान केशव देव का भव्य मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसके बाद शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। बाद में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर अंग्रेजी शासन आया और 1815 में ये जमीन नीलाम हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा और स्वतंत्रता के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का गठन हुआ। यहीं से आधुनिक कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस दस्तावेज की होती है वो है 1968 का समझौता। 17 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक मंदिर और मस्जिद दोनों अपनी अपनी जगह बने रहेंगे। मुस्लिम पक्ष आज भी इसी समझौते को अपनी सबसे बड़ी कानूनी ताकत मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता करने वाली संस्था को ऐसा अधिकार ही नहीं था। इसीलिए आज अदालत में सबसे बड़ी बहस 1968 के उसी समझौते की वैधता पर भी चल रही है।
3: जब से औरंगजेब ने कब्जा किया उसके बाद कब्जा तो

0: मराठों का शासन था, मराठों ने शासन किया करीब 30 साल, उसमें खत्म हो गया था। 1815 में इसका जमीन का की नीलामी हुई, उस नीलामी में राजा पटनीमल जो बनारस के थे उन्होंने सारी जमीन 13.36 एकड़ खरीद दिया और उस समय कोई मस्जिद नहीं थी। ये बाद में कुछ यो कहे 47 के बाद जो यहाँ के कांग्रेसी शासन था राजनीतिक वजह से वहाँ कब्जा कर लिया गया और फिर से ढांचा तैयार कर दिया गया और उसमें बहुत सी जमीनें 1968 के बाद मिला दी गई। तो सारी बातें कोर्ट सामने सब सामने आएंगे।
1: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे अलग अलग याचिकाओं के रूप में दायर किए जा चुके हैं। इनकी मुख्य सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। यहीं भूमि के स्वामित्व, 1968 के समझौते की वैधता और अन्य जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने का रास्ता सुझाया। मामला विशेष लोक अदालत भेजा गया। 4 जुलाई को सुनवाई थी लेकिन मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ। अब 21, 22 और 23 अगस्त को फिर बातचीत की कोशिश होगी।
2: यहाँ तक के मथुरा और बनारस की ताल्लुक है, जो मस्जिदें वहाँ बनाई गईं और जिन पर अब डिस्प्यूट है, तो उनका जिक्र है फारसी किताबों में उस जमाने की कि वहाँ मंदिर था और उसको औरंगजेब ने मस्जिद बनाया दो जगहों पर।
3: कौन कौन सी जगह थी सर?
2: तो मथुरा की थी और बनारस की, तो उसमें दो राय नहीं है।
1: अदालत अभी भी ये संभावना खत्म नहीं मान रही कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहिदगा परिसर का कोर्ट मॉनिटर वैज्ञानिक सर्वे कराने की अनुमति दी थी, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी आधार पर अदालत में डटे हुए हैं।
4: मस्जिद के नीचे क्या है, इस सवाल की सबसे बड़ी तलाश अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय शुरू हुई थी। विवाद 5 शताब्दियों तक रहा, करीब 134 साल कानूनी लड़ाई चली और फिर 2019 में सुप्रीम आदेश के बाद वो विवाद शांत हो गया। अब वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन काशी में विवाद अब तक नहीं सुलझा है और अब अदालत को फैसला करना है कि मस्जिद के नीचे क्या है।

0: जहां महादेव स्वयं काशी के कण कण में विराजते हैं। जहां गंगा की लहरें सदियों से हर हर महादेव का उद्घोष सुनती आई हैं। जहां मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है, वही काशी आज एक ऐसे सवाल के बीच खड़ी है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों से लेकर अदालत की चौखट तक तलाशा जा रहा है।
1: रोंगटे खड़े हो गए, मैं खाली सामने देखा, बस एक दीवार है, उसके बगल में सिर्फ बाबा हैं पीछे।
2: अपना काम करता है लेकिन सहयोग नहीं करेगा तो सहयोग नहीं हो पाएगा।
3: कौन करेगा? हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते।
0: काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में खड़ी ज्ञानवापी मस्जिद एक तरफ स्वर्ण शिखर से सजा बाबा विश्वनाथ का धाम और दूसरी तरफ सदियों पुराना विवाद। दावा यह है कि जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है वहीं कभी काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर हुआ करता था।
4: शिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है, वो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए।
5: मेरे घर परिवार वाले बताते हैं, चाचा पिताजी लोग बताते हैं कि बाकायदे एकदम भव्य मंदिर हुआ करता था, अंदर जाके दर्शन पूजा पाठ लोग करते थे
6: और ये हौसला करते हैं कि हम फिर आगे पहुँच जाए और वो हर एक का राइट है।
7: इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर जाता है।
0: यानी एक ही परिसर दो दावे और इतिहास के इस दौर की एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी काशी की गलियों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक सुनाई दे रही है।
8: साई ने ऐसा ओपिनियन दिया और ऐसा लिखा है साई ने कि 17वीं शताब्दी में करीब यहाँ पे जो हिंदू मंदिर था प्री एग्जिस्टिंग उसको तोड़ा गया है और ये बात एएसआई ने रिलाई की है। इसके लिए मजरिस आलमगिरी पे भी एएसआई ने रिलाई किया है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ा गया, साथ ही साथ वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल 1965 में एएसआई के पास था और वो इंस्क्रिप्शन इस समय आधा टूटा हुआ इन्हीं की मस्जिद के कमरे से एएसआई को सर्वे के दौरान मिला।
0: कहा जाता है मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई दारा शिकोह बनारस के ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव से बेहद प्रभावित था। औरंगजेब को दारा शिकोह का काशी और हिंदू धर्म के प्रति यह आकर्षण पसंद नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में मंदिरों और हिंदू धार्मिक शिक्षा संस्थानों को लेकर कई कड़े आदेशों का उल्लेख मिलता है। मासीरे आलमगिरी नाम की पुस्तक में दर्ज विवरण के अनुसार बनारस में ब्राह्मणों की ओर से धार्मिक शिक्षा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दौर में काशी विश्वनाथ का प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर भी ध्वस्त किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में लिखा है कि विश्वेश्वरनाथ मंदिर को सिर्फ गिराया ही नहीं गया बल्कि उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिराई गई, छोटे मंदिरों को जमींदोज किया गया, मंदिर के पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी द्वार बंद कर दिए गए, द्वारों पर उठे शिखर गिराए गए और उनकी जगह गुंबद स्थापित किए गए। दावा यह भी है कि जिस स्थान पर कभी गर्भगृह था उसे मस्जिद के मुख्य दालान में बदल दिया गया।
7: मैं ये बात कहता हूँ कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं, उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है, हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती ले करके वहाँ मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते।
0: समय बीता, शासन बदले, लेकिन काशी में आस्था की ज्योति नहीं बुझी। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज जिस मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं वो मंदिर उसी पुनर्निर्माण की विरासत है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर उस मूल स्थान पर नहीं है जहां प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर हुआ करता था। उनका दावा है कि मूल मंदिर की जगह आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है।
9: महादेव के बुलंद नारों से जिस काशी की पहचान है वो काशी बाबा विश्वनाथ से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ देखती है। इस धाम से बहुत लगाव जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों को हमेशा, लेकिन कई बार आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किया पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ पर इस समय स्थापित देख रहे हैं, एक तरह से इन्हें शुक्रिया करने का भी तरीका है, इनकी विरासत को याद रखने का तरीका है कि 1780 में इन्होंने ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
0: अदालत में किसी भी दावे का फैसला सिर्फ आस्था से नहीं, सबूतों और कानून के आधार पर होना है। सर्वे से जुड़े दावों और रिपोर्ट पर अदालत में सुनवाई चल रही है और इसी कानूनी लड़ाई के बीच एक ऐसा दावा भी है जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की प्रतिमा से जुड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सदियों से नंदी विराजमान है। सनातन परंपरा में नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल माने जाते हैं। हिंदू मान्यता है कि नंदी का मुख सदैव अपने आराध्य शिव की ओर होता है और इसी आस्था के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की दृष्टि ज्ञानवापी परिसर के भीतर मौजूद उस स्थान की ओर है जहां हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग होने का दावा करता है।
9: काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा हमेशा से भोले बाबा के साथ, और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा खास तरह के पत्थरों के साथ, जो नागर शैली के की कलाकृतियों का नमूना होता है वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है।
0: ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष अपने दावों के साथ अदालत में है, मुस्लिम पक्ष अपने कानूनी तर्कों के साथ। सर्वे के दावे हैं, इतिहास के दस्तावेज हैं, आस्था की अपनी मान्यताएं हैं और संविधान का अपना कानून, लेकिन इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला न किसी नारे से होगा, न किसी दावे से फैसला होगा, सबूतों की कसौटी पर, कानून की चौखट पर और अदालत के निर्णय से होगा।
10: हिंदू शास्त्रों में संभल का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं में ये दावा किया जाता है कि भविष्य में संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सत्ययुग की शुरुआत हो जाएगी। इसी संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है।
11: किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने के लिए सनातन अनुमति नहीं देता और मंदिरों के तोड़ने के लिए, मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लेकिन इतिहास को जानने का अधिकार तो है ना हमें।
12: जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है।
13: सच्चाई ये है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि बाबर ने और इस अकबर ने सब आ करके कई बार औरंगजेब ने जहाँ जिसको जो मिला उस समय जो प्राचीन जगह हुआ करती थी वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाते थे लोग, मंदिर को तोड़ देते थे। दरगाह की भी वही स्थिति है।
14: तो भाई अगर से मस्जिद का मसला है, मस्जिद किसकी है, तो SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठ जाए, ये बैठ के मसले हल कर दे, और कुछ नहीं है तो न्यायालय है, न्यायालय बैठ के हल कर दे।
15: और अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धर्म बिगाड़ने, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है, और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं, इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन।
0: संभल एक ऐसा शहर जिसे हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु के भविष्य के कल्कि अवतार की भूमि माना जाता है। कहा जाता है कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में संभल की धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन इसी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान वाले संभल में आज एक ऐसा विवाद खड़ा है जिसकी जड़ें इतिहास की किताबों में तलाश की जा रही हैं और जिसका फैसला अदालत की चौखट पर होना है।
16: सनातन धर्म के सब जगह लिखा हुआ है कि जो कल्कि जी का अवतार होगा, यानी भगवान अब की बार कलयुग में वही अवतार लेंगे, हरिहर मंदिर संभल में था, पूजा पाठ होती थी। बाबर के जमाने में जो आक्रमण हुआ तो इन आक्रांताओं ने उसे गिरा दिया और ढांचा खड़ा कर दिया, पर जो कमीशन गया था, कमीशन ने देखा है तो सारे मंदिर प्रमाण है, सारे चीज मंदिर के हैं, उसके जगह जगह पर जो कुछ बिल्डिंग में है वो सब नोट कर दिया गया है। रिपोर्ट अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी केस रुका हुआ है, जब आगे होगा तो आगे केस बढ़ेगा। और ये भी जगह हम स्वतंत्र कराएंगे और यहाँ हरिहर मंदिर पुनः स्थापित होगी।
0: सवाल यह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद क्या कभी किसी प्राचीन मंदिर की जगह पर बनाई गई थी या फिर सदियों से मौजूद मस्जिद को लेकर आज इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। यही सवाल संभल की सड़कों पर है, अदालत में है और सियासत के बीच भी है। संभल में विवाद का सिलसिला शुरू होता है जब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ता संभल की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत पहुंचते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदुओं के शताब्दियों पुराने पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद बनवाई गई है। इसके पक्ष में अदालत के सामने 95 पन्नों की याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में 3 प्रमुख ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया गया। याचिका का आधार नंबर 1 है बाबरनामा, याचिका का आधार नंबर 2 आईने अकबरी और याचिका का आधार नंबर 3 ASI रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं हुआ है जब संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा किया गया हो या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान होने की बात उठाई गई हो। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार करवाया था। उस समय सरकारी गजेटियर में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोर्ट के ऊपर बने हरि मंदिर ही लिखा गया था।
15: अगर अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं, इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन।
0: केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी याचिकाकर्ता भी हैं, अपने दावे के पक्ष में एक नक्शा दिखा रहे हैं। इस नक्शे को शक संवत 987 का बताया जा रहा है। इस नक्शे में उस जगह को जहां आज जामा मस्जिद मौजूद है हरिहर मंदिर के रूप में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है। संभल को इसमें तीर्थराज संभल लिखा गया है और संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों का भी उल्लेख होने का दावा है। लेकिन इतिहास की यही कहानी मुस्लिम पक्ष पूरी तरह खारिज करता है। जामा मस्जिद के सदर का दावा है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी में बाबर के आदेश पर बनवाई गई थी, लेकिन उनके मुताबिक इसे किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बल्कि समतल जमीन पर बनाया गया था।
17: सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी बल्कि वो खुद उसकी जगह थी, वहां पर मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं।
0: यानी एक तरफ बाबरनामा का हवाला है दूसरी तरफ आईने अकबरी का उल्लेख है, तीसरी तरफ एएसआई की पुरानी रिपोर्ट है, सरकारी गजेटियर है, पुराने नक्शे हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शुरू से ही मस्जिद थी। संभल का सच इतिहास की किताबों के नीचे दबा है। आज दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य लेकर अदालत में।
10: जिस तरह से एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे सामने आ रहे हैं, उससे देश के सामने एक बड़ा धर्म संकट शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से देश भर में सैकड़ों हजारों मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। अब हम आपको वो दावे और कुछ ऐसी मस्जिदों की जानकारी देते हैं जहां मस्जिद के नीचे क्या है का विवाद लगातार कई दशकों से चला आ रहा है।

0: अयोध्या से काशी और काशी से संभल तक मंदिर मस्जिद विवादों की ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों की भी है जिन्हें लेकर आज भी दावे और सवाल आमने सामने खड़े हैं। कहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा है।
1: आज हम एक एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे।
0: कहीं पुराने ढांचे में मंदिर के अवशेष होने की बात कही जाती है।
2: वो नहीं बोलता है कि जो मथुरा में हमारी जो वहाँ पे भगवान की मेन मंदिर है उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है उसको हमें वापस दीजिए। क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियाँ कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए। क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए उसको सही किया जाए।
0: और कहीं इतिहास की किताबों पुरातत्व रिपोर्टों और दस्तावेजों को सबूत बनाया जाता है। लेकिन इन दावों के बीच एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है, आखिर देश में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जिनके अतीत को लेकर विवाद चल रहा है।
3: काशी मथुरा और जितनी भी जगह हैं, उन सबको हम संतुलित कराते रहेंगे। पूरे देश में अभियान चल रहा है, मैं और मेरी टीम सक्षम है और जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उस जगह वापस लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और हम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि हम सारी जगहों को स्वतंत्र कराकर रहेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें हमको धीरे धीरे सफलता मिल रही है।
0: विवादित मस्जिद मंदिर की लिस्ट बहुत लंबी है, अलग अलग लोगों की रिसर्च में ये संख्या अलग अलग बताई गई है। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप लेखकों के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। ये किताब दो खंडों में लिखी गई। इस किताब में अलग अलग राज्यों में करीब 1800 से अधिक मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों और विवादित ढांचों की बात कही गई है। राज्यवार अगर देखा जाए तो इस किताब में आंध्र प्रदेश में 142, असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102, बिहार में 77, दिल्ली में 72, गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 151, राजस्थान में 170, तमिलनाडु में 175, उत्तर प्रदेश में 299, हिमाचल प्रदेश में 1, दीव में भी जो एक जामा मस्जिद है उसके बारे में यही दावा किया गया है कि वो भी मंदिर तोड़कर बनवाई गई।
4: एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हुए जा रहे हैं, तो इसका इस बात का कोई मोल नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहां बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी मलबे से बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। कटी हुई मूर्तियां हैं सर, कटे हुए क्या है आप, मतलब क्या आप हम लोग को एक नेशनल शेम के लिए आप वहां पे भेज रहे हो और अगर अपने सम्मान के लिए अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा तो आप कह रहे हो कि कहां का ये बात। वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं।
0: साल 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने मंदिर तोड़कर मस्जिदों को लेकर जो बयान दिया उसके मुताबिक विवादित स्थलों की संख्या 36,000 है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुगल काल में देश भर के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए जिनमें से 3,000 मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई।
4: ज्ञान व्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है, भोशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है, राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है, तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बनी क्या मान लिया जाएगा, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी।
5: देश भर में ये संख्या तो हजारों में,
4: तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए, अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासकीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल।
0: आंकड़े अलग अलग हैं, दावे अलग अलग हैं, इतिहास की व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन विवाद एक ही है, क्या किसी धार्मिक स्थल का अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद रहना चाहिए या फिर इतिहास के उन दावों की जांच होनी चाहिए जो आज भी समाज और सियासत दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद संभल और अब मथुरा, मंदिर मस्जिद विवादों की एक कहानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही।
6: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: बात यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
1: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
2: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
1: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
2: 2017 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
1: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
3: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
4: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
5: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
3: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी। कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
6: इट्स ए ग्रेट मूवमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
7: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
3: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
8: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
13: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
14: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
13: हैट्रिक का दावा।
14: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
13: विश्वास पूरा।
14: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
13: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मॉनसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो रामनवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक।

संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सोमवार से 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक एजेंडे में उठ सकता है सोनम वांगचुक का मुद्दा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त। दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में करवाया भर्ती। नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता, सुदीप बंदोपाध्याय होंगे लोकसभा में एनसीपीआई के नेता। टीएमसी के बाकी सांसद एनसीपीआई में गए। बागियों को अभिषेक बनर्जी की चुनौती, मुझसे दिक्कत है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार, वापस आए मैं एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी। शिवसेना यू मीटिंग नेता आनंद दुबे बोले कि हमारे 6 सांसद हमसे छीन लिए गए, लोकतंत्र कमजोर होगा। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा, चोरी पर बोले उज्जैन से अयोध्या तक घोटाले हुए। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलट, बोले कि उद्धव को भगवान राम की याद आ गई, याद जो है राम रक्षा पाठ को राजनीतिक कार्यक्रम ना बनाए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले कि उद्धव के पिता की विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, सत्ता के लिए वो राम विरोधियों के साथ जा मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूपी सरकार से अतिरिक्त समय मांगा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने की अपील। संभल में बोले सीएम योगी, एसपी के अत्याचार को अब गरीब भुगत रहे, जमीन पर कब्जे की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं। 300 करोड़ से बनने वाले 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा कि इनके नेता बेलगाम, ये लोग श्री कृष्ण को नमाजी बताने लगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा है, रडार पर ट्रस्ट के जमीन सौदे और 50 कर्मचारी। बुलंदशहर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों के विकास परियोजनाओं के स्वागत में काफी छात्रों से। रामपुर में आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार, सेशन कोर्ट ने आजम खान की अपील खारिज की। 2019 के चुनावी भाषण मामले में राहत नहीं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में विकास के स्वागत, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से संवाद। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च, इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। लॉन्च की कामयाबी के बाद से स्काई रूट के फाउंडर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बधाई दी, इस सफल मिशन को बताया युवाओं की जीत। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस भारत की कार्यनीति। दक्षिण 24 परगना में ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर, टीएमसी ने बताया बदले की कार्रवाई। एमबी के 4 बीएड कॉलेजों की होगी जांच, फर्जी बीएड कॉलेजों पर सरकार अब सख्त, एनसीटीई ने जांच कमेटी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सरकारी खर्चों पर अब सख्ती है, अफसरों की हवाई यात्रा अब सीमित होगी, होटलों में बैठकों पर लगी रोक, किराए के वाहन भी कम होंगे। सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और 69.95% छात्रों ने इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, श्रीकांत को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड मिला, चंदू चैंपियन के लिए ये सम्मान। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सम्मान। मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार मम्मूटी को सर्वश्रेष्ठ और संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया है, फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए बेहतरीन काम के लिए ये सम्मान। आर्टिकल 370 को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बने कल की 2898 AD। बंदीना चढ़ाव चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को जेल भेजा, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ के जंगलों को काटने पर लगी रोक, मुख्यमंत्री ढामी ने रोक लगाया, एलिवेटेड हाईवे के लिए 4,000 से ज्यादा पेड़ कटने थे। 175 साल के ऐतिहासिक नैनीताल नगर पालिका की गरिमा तार तार, एंट्री टैक्स के टेंडर पर भड़का विवाद, सभासदों ने और ईओ के बीच में तीखी भिड़ंत। अलवर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत पाटा समेत 9 को उम्र कैद सरपंच चुनावी रंजिश में हत्या हुई थी। झारखंड के गिरिडीह में नक्सली अजय महतो गिरफ्तार, 25 लाख का था इनाम। बिहार के मुंगेर में अस्पताल में 45 मिनट तक बिजली गुल, मोबाइल के फ्लैश में मरीजों का इलाज हुआ।
बिहार के रोहतास में बच्चों से स्कूल में बाइक धुलवाने का वीडियो आया सामने, डीएम ने जांच कमेटी बना दी। झारखंड के रामगढ़ में बिजली विभाग के खिलाफ बढ़ के गांव वाले, भारी भरकम बिजली के बिल मिलने से लोग गुस्से में। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में संयुक्त संघर्ष मंच का ऐलान है कि न्याय को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी है। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में खुदाई में मिला करोड़ों का खजाना, चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे कलश, पुलिस कर रही जांच। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के स्थगित, खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। पहलगाम बालटाल रूट पर दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद मौसम सुहाना, अब तक 14,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में 20-21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का खतरा है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के चलते चंबा के चुवाड़ी भराड़ी मार्ग पर भूस्खलन, मलबे में गाड़ी फंस गई। किन्नौर के मसतरंग में बादल फटने से हड़कंप, आईटीबीपी कैंप के करीब आवाजाही हुई ठप। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 लोगों की मौत, धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में प्रणाम करने पर छात्र की पिटाई का आरोप है, स्कूल गेट पर अभिभावकों का प्रदर्शन, शिक्षक पर कार्रवाई की सीधी मांग। हरिद्वार में दुष्कर्म और पिटाई के मामले में 6 युवक गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। गाजियाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ वकील पर जानलेवा हमला, फायरिंग का आरोप, 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंदौर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने किया फरियादी के घर में तोड़फोड़ और मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में पुलिस ने एक दिन में 247 ठिकानों पर दबिश दी, 182 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 27 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी, बकरीद की दावत में मिले सुराग से भोपाल से पकड़ा गया। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोप में 9 गिरफ्तार, आरोपियों से 27 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड बरामद। पटना में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके कई खातों में पैसे मंगवाने वाले 4 साइबर गिरफ्तार, ये आरोपी अब तक करोड़ों के ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में घुसकर युवक ने मचाया उत्पात, दरोगा की कैप पहनकर फाड़े कागजात, वीडियो वायरल। भोजपुर के बिहिया में जर्जर दीवार गिरने से दबकर 2 मासूमों की मौत, एक बुजुर्ग भी गायब। इंदौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 5वां आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में सीआईएसएफ जवान पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण का आरोप, शिक्षिका ने दर्ज करवाया केस। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, लिफ्ट में फंसे 6 यात्री, 30 मिनट तक दरवाजा काट कर लोगों को निकाला। एमपी के श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, कहा कि पत्नी छोड़कर चली गई। दिल्ली मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई, 6 से 7 यात्री इसमें घायल। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिकअप और टेम्पो के बीच में टक्कर, हादसे में पिकअप गाड़ी में भरे हुए आम को लूटने की होड़ मच गई। बिहार के कैमूर पुलिस का एक्शन, 1138 लीटर शराब जब्त, 2 जगहों पर तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा के बरडीहा प्रखंड में एक स्कूल में मिड डे मील में खराब तेल का इस्तेमाल हो रहा था, भनक लगते ही वीडियो ने शिकंजा कसा। आज भी वर्ल्ड कप में तीसरे पायदान का मुकाबला है, आपस में भिड़ेंगे फ्रांस और इंग्लैंड, रात 2:30 बजे मुकाबला। कल होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा, वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और स्पेन। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा और अंतिम वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों ही टीमें हैं। बैडमिंटन के जापान ओपन में फाइनल में पहुंचे भारत की पीवी सिंधु, 2 साल में अपना पहला खिताबी मैच के लिए। रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का डूरंड कप, 135 पे डूरंड कप 2026 की ट्रॉफी रांची पहुंची। दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने BWF विश्व चैंपियनशिप के शुभंकर का किया अनावरण, 17 से 23 अगस्त तक चलेगा मुकाबला, असम के सीएम हेमंता भी मौजूद रहे। दिल्ली में आम महोत्सव का आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका से प्रेरित होकर एक आम का रखा गया ब्रह्मोस नाम। पटना पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल, बिहार टूरिज्म की जमकर की तारीफ, लिट्टी चोखा खाने की जताई इच्छा। झारखंड के धनबाद में मां विपदा तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सलाम, परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष पूजा। IRCTC लाया हम्पी बादामी विरासत ओडिसी टूर, 6 दिनों में दिखाए जाएंगे कर्नाटक के प्रमुख स्थल, 30 जुलाई से 4 अगस्त तक हवाई पैकेज चलेगा। ईरान का दावा, अमेरिकी सेना ने 95 ठिकानों पर हमले किए, 10 दिन में 8 लोगों की मौत। ईरान ने अमेरिका पर लगाए सभी कमिटमेंट तोड़ने के भी आरोप, पहली बार कहा कि MOU अब खत्म। ईरान का कुवैत के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला, कई घायल, भारी नुकसान।
ईरान के नए हमलों पर यूएई का कड़ा एतराज, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के समर्थन मुद्रा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में अमेरिका का अलर्ट, नागरिकों से लेबनान की यात्रा से बचने की सलाह। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन से हमला, लॉजिस्टिक सेंटर पर हमला, 7 लोगों की मौत, कई घायल। स्पेन के उत्तरी अरागोन इलाके में जंगलों में भीषण आग, 50 मील तक तबाही, ड्रोन से वीडियो सामने आया। कनाडा में भीषण जंगलों की आग से अब अमेरिका के कई शहरों में प्रदूषण, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रवासियों पर कार्रवाई करने वाली सरकारी एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आईसीए के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। चीन के दक्षिण

0: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
1: गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर।
0: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
2: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
0: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजन सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
0: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचुक ये उपासना बसले आज वीस दिवस होते। आता सरकार ने आदित्य त्यांचा अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय करते।
0: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
10: वांगचुक की भूख हड़ताल, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।

0: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
1: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथी प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
2: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
1: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
2: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
1: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
0: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
1: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
4: तो कौन आया?
5: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
6: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
5: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
6: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
5: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
3: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
7: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
8: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
9: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
7: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी। कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
10: It's a great moment. It is a history is made.
11: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
7: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
12: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों की वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मॉनसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया लेकिन इस पर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतने उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथा कथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजन सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचन हे उपासनावर बसले आहेत आज
10: वीस दिवस
9: होत आले. आता सरकारने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय करते.
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया. तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया. सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है. अब ऐसे में सवाल की इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है. उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया. जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है.
12: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई. सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची. इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए. सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है. सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे. तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं. मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए. उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी. दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए. जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए. जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया.
13: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है.
12: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए.
13: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी. और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी.
12: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन.
12: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं. हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है. वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
10: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
14: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
10: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
14: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
10: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
15: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
16: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
17: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
15: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
18: उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
15: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
19: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
20: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
15: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल, इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अदब दुनिया की, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्ते पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
2: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
2: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
4: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
5: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
6: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
7: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
8: सोनम वांगचन हे उपोषणावर बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल की इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ब्यूरो
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
9: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है।
10: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
11: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
10: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
11: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
10: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
9: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
10: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
12: कौन आया?
13: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
14: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदसर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
13: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
14: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
13: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

0: आज तक ब्यूरो।
1: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
2: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से देरी हो गई थी, इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
3: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इन टू ऑर्बिट।
4: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स द डिले दैट टुक आवर हार्ट्स।
2: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काईरूट के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
5: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
2: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
6: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
7: तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
2: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
1: बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसकी जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें

0: बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको, इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है। नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना, तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं।
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है, तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेड से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने दो मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजन सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचन ये उपासना बसले आज
10: वीस दिवस
9: होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय हरकत नाही.
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया. तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया. सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है. अब ऐसे में सवाल की इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है. उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया. जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है.
12: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई. सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची. इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए. सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है. सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे. तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं. मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए. उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी. दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए. जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए. जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया.
13: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है.
12: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए.
13: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है. ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी. और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी.
12: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन.
12: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं. हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है. वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
10: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
14: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदसर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
10: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
14: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
10: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
15: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
16: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
17: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
15: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
18: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश जाने की प्रेरणा देगी।
15: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
19: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
20: तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
15: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: जिस राजा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहा है या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मॉनसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागे सांसदों को भी न्योता चढ़ावा चोरी और बांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका शिंदे गुट में शामिल छह सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर दो अमेरिकी सैनिकों की मौत। सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया लेकिन इस पर सियासत तेज है विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर चलेगा।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
4: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
5: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
6: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
7: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
8: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
9: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
10: सोनम वांगचंद ये उपासनार बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय करते.
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया. तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया. सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है. अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है. उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया. जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है.
12: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई. सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची. इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए. सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है. सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे. तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं. मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए. उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी. दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए. जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए. जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया.
13: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है.
12: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए.
13: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी. और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी.
12: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया.
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन.
12: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं. हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है. वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
14: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
15: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
14: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
15: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
14: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
16: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
17: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
18: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes.

0: का भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
0: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
2: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
3: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
0: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको, इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा

0: उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं, तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
1: जिस राजा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
2: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
3: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की।
4: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
2: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
5: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं।
2: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
6: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
2: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेड से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार सातवें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
8: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने तीन दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित दो पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने दो मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मॉनसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागे सांसदों को भी न्योता चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया लेकिन इस पर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के राष्ट्रपति।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
4: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
5: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
6: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
7: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
8: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
9: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
10: सोनम वांगचंद ये उपासनार बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ब्यूरो
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है।
12: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
13: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
12: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
13: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
12: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
11: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
12: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
14: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
15: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
14: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
15: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
14: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
16: পনেরো তারিখ হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে দুদিন আগে, আজকে 18 তারিখ, সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতির যিনি ওএসডি রয়েছেন তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में यह दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
17: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
18: So well authorized by space, which is the authorizing voting agency, the regulator for space in India.
17: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
19: Actually, we are very much very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
20: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay that took our hearts.
21: Skyroot Aerospace कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
22: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
21: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
23: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
24: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि Skyroot एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
21: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो
0: बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: मुकेश राणा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना, तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं।
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है, तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है।
11: शहादत दृश्य
10: अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
2: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
2: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
4: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
5: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
6: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
7: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
8: सोनम वांगचंद ये उपोषणार बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ब्यूरो
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
9: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है।
10: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे। तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
11: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
10: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
11: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
10: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
9: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
10: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
12: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
13: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचाता जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचाता जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
12: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
13: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
12: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
14: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
15: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
16: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
14: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
17: उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
14: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था।

0: ऑर्बिट में जाएगा, जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
1: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
2: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
0: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे, जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है, जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से जो धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए।

0: इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
1: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
2: आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको काय को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
3: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
1: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
4: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
1: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
5: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
1: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
7: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मॉनसून सत्र से गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंत्र में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
2: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचुक ये उपोषण और बसले आज 20 दिवस झाले आता सरकारने आदित्य त्यांचा अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय होते.
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया. तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया. सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है. अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है. उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया. जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं.
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है.
11: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई. सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची. इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए. सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है. सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे. तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं. मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए. उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी. दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए. जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए. जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया.
12: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है.
11: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए.
12: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी. और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी.
11: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया.
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन.
11: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं. हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है. वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
13: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
14: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
13: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
14: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
13: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
15: পনেরো তারিখ হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে 2 দিন আগে, আজকে 18 তারিখ, সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতির যিনি ওএসডি রয়েছে তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में यह दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
16: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
17: So well authorized by space, which is the authorizing holding agency, the regulator for space in India.
16: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर ये काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
18: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
19: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
16: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
20: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
16: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
21: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
22: तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि Skyroot Aerospace के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
16: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद। चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे, तब भी उतनी सजा है। जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना, तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है, तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
2: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचन हे उपोषणावर बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांचा अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय हरकत.
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया. तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया. सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है. अब ऐसे में सवाल की इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है. उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया. जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं.
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है.
11: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई. सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची. इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए. सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है. सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे. तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं. मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए. उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी. दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए. जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए. जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया.
12: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है.
11: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए.
12: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी. और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी.
11: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया.
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन.
11: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं. हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है. वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आते यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
13: कौन आया?
14: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव है।
15: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
14: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
15: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
14: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के, जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
16: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर ये काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
17: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
18: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
16: Skyroot Aerospace Company की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
19: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
16: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
13: इट्स ए ग्रेट मूवमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
20: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
16: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या। अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को

0: शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की।
1: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद। चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे, तब भी उतनी सजा है। जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
2: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना, तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
3: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है, तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना, में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेड से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
5: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित दो पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने दो मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के राष्ट्रपति।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजन सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम वांगचंद ये उपासना बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल की इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ब्यूरो
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है।
11: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
12: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहां पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
11: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
12: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
11: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
11: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
13: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
14: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
13: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
14: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
13: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
15: পনেরো তারিখ হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে দুদিন আগে, আজকে 18 তারিখ, সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতি যিনি ওএসডি রয়েছেন তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
16: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
17: So well authorized by space, which is an authorizing company agency, regulator for space in India.
16: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
18: Actually, we are very much very, very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
19: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay that took our hearts.
20: Skyroot Aerospace Company ke sthapna 2018 mein do doston, Pavan Kumar Chandna aur Naga Bharat Daka ne ki thi. PM Modi ne Skyroot ke founder Pavan Kumar Chandna se phone par baatcheet kar badhai di.
21: Sabse pehle to aapko bahut bahut badhai. आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी.
20: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था. अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है. करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है.
22: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड.
23: तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है.
20: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है. आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसकी जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है.

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या। अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहा है या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवाए आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों की वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र से पहले असर बदलिए बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मुज्तमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
1: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से देरी हो गई थी, इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
2: Actually, we are very much very very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit.
3: We can't express that moment, you know, how we felt, you know, that 5 minutes, the delay, that took our hearts.
1: Skyroot Aerospace कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने Skyroot के फाउंडर पवन कुमार चंदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
4: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
1: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था।
0: अब आज जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
5: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
6: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
5: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
7: ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
8: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
9: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
10: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
5: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
11: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
12: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
5: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
13: सोनम वांगचुक ये उपोषण और बसले आज वीस दिवस होते। आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत आहे।
5: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया, तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
0: वांगचुक की भूख हड़ताल, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
14: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
15: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
16: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहां पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
15: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए,
16: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
15: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
14: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
15: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
17: तो कौन आया?
5: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
18: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
5: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
18: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
5: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को ₹5,00,000 की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
1: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
2: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
3: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स, द डिले दैट टुक आवर हार्ट्स।
1: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
4: सबसे पहले तो आपको बहुत

0: आपने मजबूती दी है, जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
1: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
2: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
3: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
1: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे, जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है, जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने

0: और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
1: देश राणा ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
2: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
3: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त थी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
4: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
2: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
5: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं।
2: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
6: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया।
2: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अदब दुनिया की जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार सातवें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
8: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

मानसून सत्र से पहले असर बदल लिया बैठक एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के भी आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता, शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परिवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, इन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को